0: तारीख निकल गई है। ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
1: इन्होंने क्या किया, हाईजैक किया है टोटल। इट वॉज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द ईवीएम मशीन। इवन
0: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो, लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: पंजाब में भी चुनाव से पहले जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पंजाब में नशे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार मान सरकार को घेर रहा है।
3: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच एएसआई के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
4: मैं आज यहां के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूं कि आप लोगों ने केवल नारा गिरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया, उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय, उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
5: वो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे की? 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री, जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है, किस मुंह से कह रही है?
3: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए।
6: कई चीजें केजरीवाल जैसे, आप शर्म आती है मुझे यार, जिस पंजाबी, एक पंजाबी के ऊपर अटैक करने जो आए, एक केजरीवाल के, एक ये टोपी वाले के कहने पे ये आज काम किया है। मैं पंजाब पुलिस को भी हमेशा बहुत अच्छी पुलिस समझता था।
3: वहीं मान सरकार के मंत्री पर हमले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
7: सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने उनके ऊपर हमला किया है। सर,
3: अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए।
8: तकरीबन 12:30 बजे का इंसिडेंट सी, 9:30 बजे रात में और ड्यूटी लई गेट हकीमा थाने तो इतने दाना मंडी से दूर किए गए सी, ते टू व्हीलर ते उन्हें फॉलो किया गया है। क्लोज रेंज 30 बोर का जड़ा पिस्टल हैगा, वो यूज करके क्लोज रेंज ते शूटिंग हुई है।
3: पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधु, चंडीगढ़ आज तक।
2: खबर यूपी के पावर प्ले की। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का समय है और तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं तो बीजेपी सनातन के भरोसे। सवाल ये कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है। इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली 2 बार की ये कोशिश असफल हो चुकी है।
9: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था, जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है रथनुमा। इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था, जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा? इसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हों, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
10: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं, आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
9: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है, इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
11: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
12: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
11: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
12: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
11: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
12: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
9: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
13: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में बी आर अम्बेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी।

0: का मतलब मुसलमान और वाई का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही, इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही एमवाई है।
1: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, एमवाई के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस एमवाई के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका एमवाई समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
0: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। एसपी के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
2: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है। वोट इनका, राज किसी और का, ये नहीं चल सकता है।
0: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
3: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
0: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और अब एक चौंकाने वाली खबर, नोएडा के निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली के आत्महत्या की। जिस कोहली को कोर्ट से फांसी की सजा नहीं मिली, वो फांसी के फंदे से लटका मिला।
5: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने यह दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि यह शव सुरेंद्र कोहली का है।
6: प्रथम दृष्टया सुसाइड लग रहा है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा, यह सब होगा। जानकारी दी गई।
5: सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है।
7: सुबह आए यहाँ पे तो कहने लगे यहाँ पे तो दीवान जी बैठे थे यहाँ पे, मैं नहीं जानता हूँ, चाय के लिए। कहने लगे कि चाचा ने आज दुकान नहीं खोली चाय, तो मैंने आवाज मारी दूसरी बार शटर में, तो शटर का थोड़ा लोग ढीला था तो शटर अपना उठ गया, तो देखा तो फांसी लटक पड़े थे।
8: सबसे पहले आप ही ने देखा उनको?
7: हाँ, वहाँ पे उन्होंने देखा, सबने देखा, 2-3 बंदे थे यहाँ पे।
5: अब सवाल यह है कि अगर ये

0: सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2000 रुपए भी लिए थे।
1: डिप्रेशन में थे, किसका बर्थडे था कल इनके किसी बच्चे का, तो उसमें कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है तो फोन पे बात कर दे, उनसे चिल्ला चप्पी उड़ दी।
0: 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंडेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार सुरेंद्र की मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं।
2: कोली ने सुसाइड नहीं किया, करना होता ना तो जेल में कर लेता, वो जेल में क्यों नहीं किया? अब छूट के आ गया था, तो बता रहे तुम्हें लोग बता रहे हो कि चाय की दुकान चलाता था। अब चाय की दुकान चलाता था तो खुद तो कमाता होगा, अभी भी बच्चों के साथ रहता था। यही मैं मारा होगा, पंडेर के अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता इसमें।
3: इसमें मतलब जो है, लोगों ने कुछ कहा होगा, कोई खुलासा वो करने वाला होगा, कोई खुलासा करने वाला होगा, या इसको कहा होगा इतना नहीं इतना देंगे तुम्हें, और वो नहीं तो वो कहा होगा हम बता देंगे।
0: बहरहाल सुरेंद्र कोली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया, उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
4: अब एक हैरान और विचलित कर देने वाली खबर। हमारे देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया।
0: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है।
5: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा?
6: उसका मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
5: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
6: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
0: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा। मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
7: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
0: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं। सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
4: फोन ने भले ही अपनी कीमत बढ़ा ली हो, लेकिन उसका क्रेज कम नहीं हो रहा है। हमारे देश में नया आईफोन लॉन्च कर दिया गया। देर रात से ही स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें खरीदने के लिए लोगों की दिखी।
8: दुर्गा पूजा गिफ्ट फ्रॉम मी टू मी।
9: ये आईफोन की दीवानगी है। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स भारतीय बाजार में जैसे ही आया, आईफोन के दीवाने दौड़ पड़े इसे अपना बनाने।
10: और एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कि क्या नया है इसके अंदर।
11: एक्साइटेड मैं देख रहा हूँ, 2 फोन आप लेके आए हैं।
10: हाँ, ये ट्रेड इन के अंदर है, इसे एक्सचेंज करना है और इसके बदले में मैं दूसरा फोन लेकर के जाऊँ।
9: 18 सितंबर से आधिकारिक तौर पर आईफोन 18 सीरीज के फोन भारत के बाजार में बिकने लगे। देश के चुनिंदा शहरों में ही अभी एप्पल के स्टोर हैं और ये फोन अभी सिर्फ एप्पल के आधिकारिक स्टोर पर ही उपलब्ध हैं। इसलिए आईफोन प्रेमियों ने पहले से ही अपनी बुकिंग कर रखी थी ताकि स्टोर पहुंचने पर आसानी से खरीदारी हो सके, लेकिन स्टोर के बाहर तो लंबी लाइनें लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां साकेत में एप्पल का स्टोर है। देर रात से ही लोग स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, इंतजार करने लगे सुबह के 8 बजने का, क्योंकि स्टोर में एंट्री सुबह 8 बजे ही शुरू होती है। जैसे ही लोगों ने स्टोर में प्रवेश किया तो तुरंत प्री बुकिंग के हिसाब से फोन को अपना बना लिया।
12: मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। आईफोन 18 प्रो बरगंडी कलर, बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आईफोन 18 ले गए, फीचर्स तो वही है, जैसे अगली जनरेशन आ है तो उसके हिसाब से जैसे कैमरा वगैरह में भी मतलब एक बढ़िया क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी का कैमरा है, बढ़िया लग रहा है।
9: आईफोन प्रो की शुरुआती कीमत 1,64,000 रुपए है, जो 3,14,000 तक आती है, तो वही प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,000 रुपए है, जो 3,29,000 तक जाती है। इस बार के आईफोन काफी महंगे हैं। कीमतों को लेकर लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि खरीदना तो है ही। आज तक ब्यूरो।
4: अब खबर पहाड़ों पर अचानक बदले मौसम की। बीते सितंबर ही पहाड़ों पर मौसम बदलने लगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई।
0: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है, पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर ले हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की है। यहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
13: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
0: अब मनाली की तस्वीरें देखिए, मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है, क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
14: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है, और इस बर्फबारी से जैसे ही बर्फबारी हुई और सवेरे खबरें फैली तो होटलों में बुकिंग आना शुरू हो गई है।
0: मनाली के पहाड़ों पर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने चांदी लपेट दी। मौसम खुशगवार है, लेकिन यही मौसम कुछ लोगों के लिए काल बन गया है। दरअसल पहाड़ पर एकाएक मौसम बदला, जिसकी वजह से लाहौल स्पीति में पवित्र ड्रिलभुरी कोरा यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक मौसम बदलने और भारी बर्फबारी के बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की वजह से दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं एक श्रद्धालु के पैर की हड्डी टूटने से वह घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए केलांग क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनाली के बाद कुल्लू की तस्वीरें देखिए, यहां भी आसमान से बर्फ बरसी है। रुई के फाहों जैसी बर्फ इस बर्फबारी ने पर्यटकों को प्रसन्न कर दिया है। अब उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें देखिए, यहां भी मौसम बदला है। बरसात के बाद हल्की बर्फबारी ने तापमान में गिरावट की है। रुद्रनाथ में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले, पहाड़ों पर बिछी सफेदी और बारिश के बीच बदलता मौसम। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब भी सीजन की पहली बर्फबारी के बाद सफेद रंग में रंगा नजर आया। चारों तरफ बर्फ और उसके बीच नजर आता पवित्र धाम का खूबसूरत नजारा। कुल मिलाकर पहाड़ों पर सर्दियां दस्तक दे रही हैं। कुदरत अपना सबसे खूबसूरत रंग बिखेर रही है। आज तक ब्यूरो।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक का, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक,
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
16: देयर इज अ very famous quote ki history repeat itself.
17: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
18: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
17: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara cover mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

नंदीग्राम कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर घमासान, बंगाल कांग्रेस का आज राज्यव्यापी प्रदर्शन, नंदीग्राम चलो कैला। बंगाल उपचुनाव में ट्विस्ट पे ट्विस्ट, पहले नंदीग्राम से ममता के उम्मीदवार के नाम वापस लिया तो कांग्रेस का दावा, हमारे प्रत्याशी मिलन प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोपों पर मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, कहा कांग्रेस एक भस्मासुर पार्टी है, साथ आने वाले सभी दलों को जलाने का करती है काम। ट्रंप ने रूस ईरान पर नए प्रतिबंध कानून को दी मंजूरी, रूस से तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ। और ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बड़ा दावा, डेनमार्क से हुई डील, अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी, ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर स्थायी नियंत्रण का दावा।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। और शुरुआत एक बड़ी खबर से जो कि आ रही है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ओग्राम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार कानून रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ संबंधी प्रावधानों को बढ़ाता है, जबकि ईरान पर मौजूदा प्रतिबंधों को जारी रखता है। कानून के तहत ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। इसमें भारत और चीन जैसे बड़े रूसी ऊर्जा खरीदार भी प्रभावित हो सकते हैं। तो 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल साइन किया है ट्रंप ने, और यह अधिकार दिया है। देखिए, कानूनी अधिकार मिल गया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफी निकल के सामने आ सकते हैं। रुख करेंगे हमारे सहयोगी रोहित शर्मा का, सीधे अमेरिका से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। हस्ताक्षर भी इसमें हो गए हैं। अब इसका आप आने वाले वक्त में क्या रिजल्ट देखते हैं?
1: देखिए, ये ऑब्वियसली माना जा रहा था कि जब हाउस ने ये बिल को पास किया तो उसके बाद ट्रंप इसे साइन जरूर करेंगे, और वो उन्होंने आज किया। अब इसके बाद आई थिंक प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, क्षमता है कि वो इसे कैसे यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं। हालांकि ये बिल साइन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% जो टैरिफ है वो लग जाएगा, लेकिन अब एक पावर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास और आने वाले हर राष्ट्रपति के पास अमेरिका के, जब तक ये रशिया यूक्रेन का युद्ध चलेगा तब तक, कि वो इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो देखना होगा। आज एक बड़ी बात ये रही कि यूजुअली जो हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह का कोई बड़ा बिल साइन करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, तो वो बहुत मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ सवाल जवाब करते हैं, लेकिन इस बिल को बिहाइंड क्लोज डोर उन्होंने साइन किया है। तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि चीन के राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका आ रहे हैं, तो उससे पहले शायद ये एक विन चाहते थे, वो कोशिश थी कि उनके पास इस तरह की कोई पावर हो, अगर जो वार्ता है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ वो सही नहीं जाती तो उन्हें थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो देखना होगा, बट हाँ, ये अब जो है लॉ बन चुका है।
0: बहुत से विशेषज्ञ इस बारे में कह रहे थे कि जैसे रूस की तरफ से गैर दोस्ताना बताया गया है, ठीक है, जो भी हालात इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच में तो एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। तो उससे पहले क्या ये दबाव के तौर पर देखा जा रहा है कि बातचीत अगर होनी है तो हमारी शर्तों पर होनी है, और उसके लिए एक पहले से माहौल क्रिएट किया जाए, दबाव बनाया जाए, और उसी की एक तैयारी, एक फैसला ये बिल?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई थिंक दोनों चीजें हैं, एक वो कि चाइना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश इस जो समिट होने वाला है उससे पहले, और दूसरा कि अगेन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। दोनों वॉर चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ईरान का वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली भी एक ऑडियंस को मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वॉर्स को रोकने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि हमें देखना होगा किस तरह से प्रेसिडेंट से यूज करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऑप्टिक्स अगर आज आप देखें तो बिहाइंड क्लोज डोर इसे साइन किया गया है, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं रखा गया है, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट नहीं चाहते कि इसको अभी इमीडिएटली इसका इस्तेमाल वो करें।
0: मतलब अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, अभी पत्ते अपने पास उन्होंने रखे हुए हैं, और उसके बाद जब वक्त आएगा तो उस वक्त ट्रंप कार्ड चलने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। बने रहिए आप हमारे साथ, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच ऐसा स्थायी समझौता हुआ है जिसके तहत ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर अमेरिका को पूरी ताकत मिलेगी। ट्रंप के मुताबिक अब अमेरिका की मंजूरी के बिना कोई भी अमेरिकी विरोधी देश ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा, सैन्य मौजूदगी या संवेदनशील निवेश नहीं कर सकेगा। ट्रंप ने इस करार को कभी खत्म ना होने वाला समझौता बताया। ट्रंप ने कहा कि समझौते से अमेरिका को कोई आर्थिक लागत नहीं होगी, और समझौते की पूरी शर्तों पर अभी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रोहित बने हुए हमारे साथ। रोहित, अमेरिका और डेनमार्क के बीच ऐसा स्थायी समझौता हुआ जिसका जिक्र अभी ट्रंप कर रहे हैं, ऐसा इस क्या है समझौते में और उससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास?
1: देखिए, इसमें बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एक्चुअली। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर 10 साल से ये कहते थे कि ये अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, और लास्ट हमने देखा था कि किस तरह से नेटो की जो समिट थी उसको भी इस कॉन्वर्सेशन ने काफी डोमिनेट किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम मिलिट्री भी जो है एनेक्स कर सकते हैं ग्रीनलैंड को। तो अब ये जो अनाउंसमेंट हुई उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये डील जो है डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को, उन्होंने डील की है अमेरिका के साथ कि कोई भी नॉन नेटो बेस यानी रशिया चाइना और कोई भी देश वहां पे अपना मिलिट्री बेस नहीं बना पाएगा. जो मिलिट्री बेस होगा वो अमेरिका का होगा या किसी नेटो कंट्री का होगा, जिसके लिए ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते थे. उनका डर था, उन्होंने कहा था कि क्या हो सकता है आने वाले समय वहां पे चाइना अपना बेस बना ले या चाइना वहां पे कुछ करने की कोशिश करे. पहला. दूसरा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वहां पे काफी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो अमेरिका के पास फर्स्ट राइट होना चाहिए, तो उसको लेके अभी तक तो कुछ लिखा नहीं गया है इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें, लेकिन उसको लेके भी हमें ऐसा बता रहे कि कोई ना कोई डील जरूर होगी. तो दोनों तरीके से आई थिंक मिलिट्री और साथ ही साथ जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसको लेके बहुत ज्यादा
0: रोहित बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर कोई बयान किया जाता है तो वो किसको सुनाने की कोशिश कर रहे थे, किस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसके जरिए उन्होंने किन देशों तक अपनी बात पहुंचाई, अपना संदेश देने की कोशिश की है.
1: मैं कहूंगा तीनों. आई थिंक डोमेस्टिक ऑडियंस को बताने के लिए, देखिए ग्रीनलैंड को लेके वो सक्सेसफुल रहे हैं, देखिए चुनाव आ रहे हैं अमेरिका में. दूसरा, चाइना को जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का डर था कि वहां पे किसी तरह से मिलिट्री बेस चाइना ना बना रहे. और तीसरा, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसको लेके जिस तरह से कंपटीशन चल रहा है दुनिया के देशों में, सबको बताने की कोशिश की जा रही है कि वो सक्सेसफुल रहे हैं इतनी बड़ी डील करने में. और जैसे कि उन्होंने कहा इसमें इनफिनाइट टाइम तक हमेशा के लिए ये डील रहेगी डेनमार्क के साथ, तो बहुत बड़ी आई थिंक जीत हम मान सकते हैं इससे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की.
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्पेन से बड़ी खबर आ रही है. सेउटा पुलिस ने समुद्र तटों पर मौजूद सैकड़ों प्रवासियों को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. पुलिस और स्पेनिश सेना ने मिलकर समुद्र तटों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की है. प्रवासियों को शहर के बंदरगाह पर बनाए गए अस्थायी ठिकानों में ले जाया गया. सीमित जगह के कारण वहां पहुंचने के दौरान भीड़ और धक्का मुक्की की स्थिति बनी. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हवा में दंगा नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल किया और कुछ प्रवासियों पर लाठियां भी चलाई. रिपोर्ट के मुताबिक सेउटा में करीब 10,000 प्रवासी अब भी मौजूद हैं. जुलाई के अंत में मोरक्को से 72,000 से अधिक लोगों के क्षेत्र में पहुंचने के बाद ये संकट और गंभीर हो गया था. और आपको वो तस्वीरें याद होंगी, और ये जुलाई के अंत की तस्वीरें थी जब समुद्र से कोई अपनी साइकिल के साथ तो कोई सिर्फ एक जो ट्यूब होता टायर का उसका सहारा लेते हुए स्पेन पहुंचे थे. वहीं यमन की राजधानी सना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. हूती समर्थकों ने राजधानी सना में बड़ी रैली निकालकर संगठन के सैन्य अभियान के प्रति समर्थन जताया है. प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें हूतियों पर पवित्र शहर मक्का को निशाना बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. हूती समर्थकों की रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. हाथों में झंडे और हथियार लिए प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती के पोस्टर भी दिखाए गए. पिछले एक सप्ताह में हूतियों की ओर से सऊदी अरब की तरफ कई बार हमले किए गए हैं जिससे देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में अलर्ट बढ़ा है. सऊदी अरब का कहना है कि इससे उसकी वायु रक्षा ने मक्का के दक्षिण में एक हूती ड्रोन को मार गिराया था. हालांकि हूती सैन्य प्रवक्ता ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है. वहीं कानपुर में सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ केडीए की कार्रवाई आज सुबह से शुरू हो गई है. केडीए के मुताबिक मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी और हरी मस्जिद की ओर से सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था और यहां कब्र भी बनाई गई थी. कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया जा चुका था. अब केडीए की टीम कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकी टीम बुलडोजर के जरिए बाउंड्री वॉल और कब्रों को हटाने की कार्रवाई कर रही है. प्राधिकरण के अनुसार ध्वस्तीकरण के बाद जमीन का कब्जा वापस लिया जाएगा. मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है. सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी समर चावला के पास जो कानपुर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह ये कार्रवाई की बात कही जा रही है. समर, तस्वीरों के जरिए समझाइए कि इस वक्त क्या कार्रवाई की जा रही है वहां.
2: बिल्कुल, आपको बता दूं इस वक्त मैं मौजूद हूं मौके पे जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण का ये बुलडोजर एक्शन यहां पर चल रहा है. पीछे अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो ये एक कब्रिस्तान है जिसे यहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके यहां पर कब्रिस्तान बनाया गया था. बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन है और तकरीबन 35 से 40 वर्ष से यहां पर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी ने अवैध तरीके से कब्जा करा हुआ था. पीछे विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो ये जेसीबी और बुलडोजर यहां पे पहुंच चुके हैं. यहाँ पर जो आप देखेंगे जो कब्र है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उसको फिलहाल यहाँ पे बुलडोजर द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, हटाया जा रहा है. विजुअल्स में आप देखेंगे यहाँ पे कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम है जो इस अवैध स्ट्रक्चर को यहाँ से हटाने का काम कर रही है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस का जो बल है वो तैनात किया गया है। सुबह 6 बजे इस कार्रवाई को शुरू किया गया ताकि किसी तरीके से भीड़ ना यहाँ पे जमा होने पाए, क्योंकि सिचुएशन इतनी सेंसिटिव है और इस तरीके की जब कार्रवाई होती है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना होने पाए, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस की फोर्स जो है उसको डिप्लॉय करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो जो कर्मी है जिन्हें सुरक्षा के लिए लगाया जाता है वो भी आपको यहाँ पे हथियारों के साथ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हाथ में उन सभी के हथियार हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच के सुपरवाइज कर रहे हैं पूरा जो ऑपरेशन है। कोशिश करेंगे अंदर चलेंगे और आपको दिखाने पाएंगे कि कैसे यहाँ पर कब्र जो है वो बनी हुई थी, उसके ऊपर यहाँ पर जो आप देखेंगे जो टॉम जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो मजार जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए गए थे। यहाँ पर इनको ध्वस्तीकरण की जो है इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पूरे कब्रिस्तान पे जो एक बड़ा हिस्सा जो था वो था उनके पास, वहां कोशिश करेंगे जो बात करेंगे। अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से है, क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या आप लोग ने पूरे केस में सुनवाई करके यहाँ पे फाइनल फैसला?
3: ये ग्रेवयार्ड है जिसका बहुत बड़ा पोर्शन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था, इसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया, इन लोगों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया, प्रॉपर इनकी बात विचार करके ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। ये लोग माननीय उच्च न्यायालय भी गए थे, वहाँ से रिट पिटीशन खारिज हो गई थी। इन लोग को सफिशिएंट महीनों का मौका दिया गया कि स्वयं हटा लें मौखिक लिखित, उसके बाद जब नहीं हटा रहे हैं तो केवल कब्रिस्तान का वो पोर्शन जो सरकारी भूमि पे इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसको हटाया जा रहा है। जो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज पोर्शन है उसको टच नहीं किया जा रहा है।
2: क्या आप लोगों ने बताया था कि जो कब्रें हैं यहाँ पर इनको हटा लीजिए, इसके पहले आप लोग द्वारा इनको बताया गया था?
3: जी हाँ, लिखित रूप से प्रॉपर डिमोलिशन ऑर्डर पारित किया था, मौखिक भी बताया था, हर प्रकार से बताया था, कई बार अपॉर्चुनिटी दी गई थी। ये लोग माननीय उच्च न्यायालय भी गए थे, वहाँ से पिटीशन इनकी डिसमिस हो गई।
2: क्या इन कब्रों को भी कभी ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जाएगा क्योंकि सरकारी जो भूमि है?
3: किसी भी कब्र को ऐसा सच नहीं हटाया जा रहा है, केवल कब्र का जो ऊपर वाला रेस्ट पोर्शन होता है जो बाद में लोगों ने रेस किया है, जो ऊपर का माउंड होता है, जो ऊपर का मिट्टी का चबूतरा है उसको टच कर रहे हैं, अंदर कब्र बिल्कुल नहीं हटाई जा रही।
2: तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं पौके पे पूरा जो ऑपरेशन है वो सुपरवाइज कर रहे हैं। पीछे विजुअल्स में आप देखेंगे तो ये कब्रिस्तान के अंदर के विजुअल्स आपको दिखेंगे, जहां पर बुलडोजर की जो यहाँ पर आपको 2-3 बुलडोजर्स दिखेंगे, जेसीबी देखेंगे, सामने देखेंगे तो वो दीवार जो है वो भी गिरा दी गई है। लगभग 5-6 बुलडोजर लगे हैं जो यहाँ पर पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई बार से इन्हें नोटिस दिया जा रहा था और कई समय से ये पूरा केस चल रहा था। ये बकायदा बताया जा रहा था लिखित तरीके से कि यहाँ पर जो है आके जो यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान में कब्र बनी हुई है इन्हें हटाया जाए, लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके से इसे हटाया नहीं गया। उल्टा जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आई तो यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रक्चर्स बना दिए गए ताकि उसका सहारा लेकर कहीं ना कहीं इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचा जाए। लेकिन फिलहाल जो पूरा सरकारी अमला यहाँ पे आप देखेंगे वो प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है पूरी अपने पूरी फोर्स के साथ, वो पूरी कार्रवाई कर रही है। वहां पे अगर आप देखेंगे हाईवे पे अगर आपको दिखने पाएगा कि हाईवे के बगल की जमीन है, वहां पर भी आपको पुलिस फोर्स दिखेगी कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरीके की यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ना उत्पन्न होने पाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो। यहाँ पे आप देखेंगे लगातार कार्रवाई कर रही है। बैक टू यू
0: समर, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है दर्शकों को, जैसा कि अभी अधिकारी बता रहे थे जिनसे आपकी बात हो रही थी, कि कब्रों को खोदा नहीं जा रहा है, जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया गया था सिर्फ उसको हटाया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं किया जा रहा है, और सरकारी संपत्ति पर जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया था सिर्फ उसको डिमोलिश किया जा रहा है, तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सिमर हमारे साथ में बने हुए हैं। सिमर ये बताइए कि प्रशासन तो यहां पर मौजूद है, लेकिन क्या दूसरे पक्ष की तरफ से कोई आपत्ति जताई गई, उन लोगों की तरफ से कुछ विरोध दर्ज कराया गया, वो मौजूद थे अभी मौके पर?
2: मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो दूसरा पक्ष है वो मौके पर नहीं आया है, उनको पूरा समय दिया गया इससे पहले अपनी बात रखने का। कई बार कानपुर विकास प्राधिकरण में उनकी तरफ से मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से जो टीमें हैं हरी मस्जिद की तरफ से वो बकायदा आई, उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन फिलहाल उनकी सुनवाई के बाद भी जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए थे वो प्रोवाइड नहीं करने पाए, जिसके बाद ये पूरा जो एक्शन है वो हुआ और डिमोलिशन जो है उसके आदेश दे दिए गए। आपको क्लियर कर दूं कि जैसा बताया गया कि यहाँ पे जो कब्रों के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना दिए गए थे, जो बकायदा यहाँ पर सीमेंट के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, अंदर से जो है कब्रों को वो अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि खोदा नहीं जा रहा है, लेकिन जो पोजेशन का जो पूरी लैंड का पोजेशन है, क्योंकि एक भूमि है वो शहर के बीचों बीच कहीं ना कहीं हाईवे से लगी हुई जमीन है, अपने आप में यहाँ पे इतना बड़ा एक्शन होना वो एक बड़ी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार चल रहा है। ये अनुमान लगाया गया था कि ये सेंसिटिव सिचुएशन हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट तक दूसरी जो पार्टी है वो गई थी, जो मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी पक्ष के जो लोग हैं वो हाई कोर्ट तक गए थे, वहां से भी इनको जो किसी तरीके की राहत नहीं मिलने पाई, इसलिए आखिरकार जो है वो आदेश पारित कर दिया गया। 6 बजे सुबह का समय था जब ये पूरा बुलडोजर एक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 3 जो बुलडोजर की आपको गाड़ियां हैं वो दीवार को ढहाते हुए आपको दिखेंगी। हर जगह पे चारों तरीके से, चारों तरफ से पुलिस जो है उनको वहां पे मौजूद रखी हुई है, पुलिस को डिप्लॉय किया हुआ है और पूरी बाउंड्री वॉल को डिमोलिश करके जो है यहाँ पे हटाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ऊपर से मेट्रो जा रही है, यानी कि मेट्रो के आड़े जो जमीन आनी थी, जो सरकार को इस्तेमाल में लेनी थी, उसके बीचों बीच ये कब्रिस्तान जो है वो आड़ बन रहा था। ये चिन्हित किया गया कि ये सरकारी भूमि है, केस चला, जिसके बाद आखिरकार ये जो एक्शन आपको पीछे देखने को मिल रहा है ये फिलहाल किया गया है।
0: और सिमर, आपने और आपके विजय ने बहुत अच्छे तरीके से तस्वीरों के जरिए समझाया कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से कार्रवाई भी की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के IIT बॉम्बे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के एक सेकेंड ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली। ये बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान छात्र को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। हालांकि संस्थान के अधिकारियों ने उसे भरोसा दिया था कि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इस घटना से पूरे परिसर में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर छात्रों ने कैंपस के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
4: इस वक्त मौजूद है मुंबई के पवई स्थित IIT गेट के सामने, जहां पर अंदर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक एक छात्र के आत्महत्या के बाद जो है अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर यहां पर भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। अंदर जो है पुलिस गई हुई है, पुलिस के आला अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं और जो अंदर में छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है माहौल, जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो जल्द से जल्द शांत हो सके। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक एक जो मृतक छात्र है वो परीक्षा के दौरान जो है फोन लेकर गया था और अंदर वो क्वेश्चन पेपर को ये फोन में अपलोड, ChatGPT पर अपलोड कर उसका आंसर जानने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जो वहां पर मौजूद जो इंस्ट्रक्टर थे वो उसे पकड़ लेते हैं और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बारे में कहा जाता है। हालांकि जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन वो छात्र जो है अपने कमरे में जाता है और वहां पर आत्महत्या कर लेता है। घटना के बाद से ही जो छात्र हैं वो यहां पर इंसाफ की और जो की बात कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को देखकर जांच होनी चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई हो उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। एजाज खान, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, पावर प्ले की बात करते हैं। बस चुनावों में कुछ ही महीनों का वक्त है, तैयारियां दोनों ही खेमों में भरपूर जोर शोर से चल रही है। अखिलेश पीडीए के सारे हैं, बीजेपी सनातन के भरोसे है। सवाल है कि जनता ने क्या सोचा है। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है और इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे यूपी में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली 2 बार की यह कोशिश असफल हो चुकी है।
5: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है। रथनुमा इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था, जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया, यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा? इसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है, सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है, पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हों, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
6: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं, आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
5: बीजेपी का तो पूरा प्रयास यही है कि पीडीए का ये नारा किसी भी तरह से ध्वस्त करना है। इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
7: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
8: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
7: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
8: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
7: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
8: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
5: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
9: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं, बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे, या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
5: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही, इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही एमवाई है।
10: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, एमवाई के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस एमवाई के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका एमवाई समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
5: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। एसपी के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर देंगे।
11: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है। वोट इनका, राज किसी और का ये नहीं चल सकता है।
5: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
12: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी। और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
5: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
14: क्या मंगल का राशि परिवर्तन दुनिया भर में युद्ध का कारण बनेगा? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी? क्या मंगल का राशि परिवर्तन वाद विवाद बढ़ा देगा? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन की स्थिति, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

कानपुर के बर्रा में अवैध कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद गुस्सा, कैंपस में छात्रों ने किया प्रदर्शन, आईआईटी प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप, छात्रों का दावा रिस्ट्रिक्शन की धमकी ने ली जान। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी, ममता गुट के उम्मीदवार ने वापस लिया नाम, राहुल खड़गे ने उठाए सवाल, बताया लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोपों पर मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, कहा कांग्रेस एक भस्मासुर पार्टी, साथ आने वाले सभी दलों को जलाने का करती है काम। ट्रंप ने रूस ईरान पर नए प्रतिबंध वाले कानून को दी मंजूरी, रूस ईरान से तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुशित। शुरुआत बड़ी खबर से, कानपुर से। कानपुर में सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई तड़के सुबह ही शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह कई बुलडोजर पहुंचते हैं और कार्रवाई शुरू करते हैं। अब कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी और हरी मस्जिद की ओर से सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था और वहां पर कई कब्रें बनवा दी गई थी। कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट की तरफ से भी जब मुस्लिम पक्ष को झटका लगा और उनके दावे को निरस्त कर दिया गया तो उसके बाद फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। बाउंड्री वॉल और कब्रों को हटाने का काम कार्रवाई की जा रही है और कब्रों को अंदर से नहीं हटाया जा रहा है। कब्रों के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना दिया गया था सरकारी जमीन पर, जो ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया गया था, सिर्फ उस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। प्राधिकरण के अनुसार ध्वस्तीकरण के बाद जमीन का कब्जा वापस लिया जाएगा। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है कि अगर कहीं कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको उसी वक्त रोका जा सके।
1: आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं मौके पे जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण का ये बुलडोजर एक्शन यहां पर चल रहा है। पीछे अगर आप विजुअल्स में देखेंगे तो ये एक कब्रिस्तान है जिसे यहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके यहां पर कब्रिस्तान बनाया गया था। बताया जा रहा है कि ये सरकारी जमीन है और तकरीबन 35 से 40 वर्ष से यहां पर मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी ने अवैध तरीके से कब्जा करा हुआ था। पीछे विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो ये जेसीबी और बुलडोजर यहां पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे जो कब्र है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उसको फिलहाल यहाँ पे बुलडोजर द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, हटाया जा रहा है। विजुअल्स में आप देखेंगे यहाँ पे कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम है जो इस अवैध स्ट्रक्चर को यहाँ से हटाने का काम कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस का जो बल है वो तैनात किया गया है। सुबह 6 बजे इस कार्रवाई को शुरू किया गया ताकि किसी तरीके से भीड़ ना यहाँ पे जमा होने पाए क्योंकि सिचुएशन इतनी सेंसिटिव है और इस तरीके की जब कार्रवाई होती है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना होने पाए, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस की फोर्स जो है उसको डिप्लॉय करके रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो कर्मी है जिन्हें सुरक्षा के लिए लगाया जाता है वो भी आपको यहाँ पे हथियारों के साथ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हाथ में उन सभी के हथियार हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच के सुपरवाइज कर रहे हैं पूरा जो ऑपरेशन है। कोशिश करेंगे अंदर चलेंगे और आपको दिखाने पाएंगे कि कैसे यहाँ पर कब्र जो है वो बनी हुई थी। इसके ऊपर यहाँ पर जो आप देखेंगे जो टॉम जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो मजार जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए गए थे। यहाँ पर इनको ध्वस्तीकरण की जो है इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पूरे कब्रिस्तान पे जो एक बड़ा हिस्सा जो था वो था उनके पास, वहां कोशिश करेंगे जो बात करेंगे। अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। आप लोग यहां पे कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से है, क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या आप लोग ने पूरे केस में सुनवाई करके यहां पे फाइनल फैसला?
2: ये ग्रेवयार्ड है जिसका बहुत बड़ा पोर्शन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था। इसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया। इन लोगों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया। प्रॉपर इनकी बात पर विचार करके ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। ये लोग माननीय उच्च न्यायालय गए थे, वहाँ से रिट पिटीशन खारिज हो गई थी। इन लोग को सफिशिएंट महीनों का मौका दिया गया कि स्वयं हटा लें मौखिक लिखित। उसके बाद जब नहीं हटा रहे हैं तो केवल कब्रिस्तान का वो पोर्शन जो सरकारी भूमि पे इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसको हटाया जा रहा है। जो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज पोर्शन है उसको टच नहीं किया जा रहा है।
0: और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के IIT बॉम्बे से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के एक सेकेंड ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली। ये बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान छात्र को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। हालांकि संस्थान के अधिकारियों ने उसे भरोसा दिया था कि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इस घटना से पूरे परिसर में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर छात्रों ने कैंपस के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
3: इस वक्त मौजूद है मुंबई के पवई स्थित IIT गेट के सामने, जहां पर अंदर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक एक छात्र के आत्महत्या के बाद जो है अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर यहां पर भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। अंदर जो है पुलिस गई हुई है, पुलिस के आला अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं और जो अंदर में छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो है माहौल, जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो जल्द से जल्द शांत हो सके। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक एक जो मृतक छात्र है वो परीक्षा के दौरान जो है फोन लेकर गया था और अंदर वो क्वेश्चन पेपर को ये फोन में अपलोड चैट जीपीटी पर अपलोड कर उसका आंसर जानने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जो वहां पर मौजूद जो इंस्ट्रक्टर थे वो उसे पकड़ लेते हैं और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बारे में कहा जाता है। हालांकि जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन वो छात्र जो है अपने कमरे में जाता है और वहां पर आत्महत्या कर लेता है। घटना के बाद से ही जो छात्र हैं वो यहाँ पर इंसाफ की और जो की बात कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को देखकर जांच होनी चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई हो उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। एजाज खान, मुंबई, आज तक।
0: और एक बड़ी खबर आपको बता दो, और ये बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिंडसे ओग्रैम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। व्हाइट हाउस के अनुसार कानून रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ संबंधी प्रावधानों को बढ़ाता है, जबकि ईरान पर मौजूदा प्रतिबंधों को भी जारी रखता है। अब इस कानून के तहत ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। इसमें भारत, चीन जैसे बड़े रूसी ऊर्जा खरीदार भी प्रभावित हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच ऐसा स्थायी समझौता हुआ है, अमेरिका और डेनमार्क के बीच, जिसके तहत ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर अमेरिका को पूरी ताकत मिलेगी। ट्रंप के मुताबिक अब अमेरिका की मंजूरी के बिना कोई भी अमेरिकी विरोधी देश ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा, सैन्य मौजूदगी या संवेदनशील निवेश नहीं कर सकेगा। ट्रंप ने इस करार को कभी खत्म न होने वाला समझौता बताया। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को कोई आर्थिक लागत इसकी नहीं होगी, अमेरिका को नहीं लगेगी। समझौते की पूरी शर्तों पर अभी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का डबल एक्शन सामने आया। एक तरफ रूस पर दबाव बढ़ाने वाले टैरिफ बिल पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के साथ अहम सैन्य समझौते की दिशा में कदम बढ़ाया गया है, और ये ट्रंप का डबल अटैक कहा जा रहा है। हालांकि इसके दूरगामी परिणामों का भी इंतजार करना होगा, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और देखिए, ये दोनों ही अगर जो फैसले हैं तो इससे चीन पर भी असर पड़ेगा, और चीन के साथ तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका दौरे पर पहुंचने वाले हैं। पावर प्ले की करते हैं, बस चुनावों में कुछ ही महीने का वक्त है और तैयारियां दोनों ही खेमों से भरपूर है। अखिलेश पीडीए के सहारे हैं, बीजेपी सनातन के भरोसे है। अब सवाल है कि जनता ने क्या सोचा। उधर लखनऊ में अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रथ तैयार हो चुका है, और इसी रथ के सहारे अखिलेश यादव अब चुनावों से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन उनकी पिछली दो बार की यह कोशिश असफल हो चुकी है।
4: अखिलेश यादव ने यूपी जीतने के लिए दोनों बार रथ यात्राओं का सहारा लिया। यही हाईटेक रथ 2017 में भी था जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने विजय रथ यात्रा शुरू कर दी थी। कोशिश यही थी कि वो दोबारा यूपी जीत पाएंगे, लेकिन न 17 में सफल हुए न 22 में। अब 27 से पहले उनका रथ फिर से तैयार है। रंग वैसा ही है लाल, वैसा ही हाईटेक है। रथनुमा इस लग्जरी बस में सारी सुविधाएं हैं। बस नारे बदल गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जब अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी की यात्रा पर निकलेंगे तो क्या होगा। इसकी कुछ झलक आपको 5 साल पहले की इन तस्वीरों से दिखाते हैं। 2022 में यूपी में चुनाव होना था, और उससे पहले ही नवंबर 2021 में अखिलेश यादव की कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तब भी उनके चुनावी रथ को यूपी में समर्थन तो बहुत मिला था, जहां से गुजरते थे वहीं लोगों की भीड़ लग जाती। ऐसे ही रथ के ऊपर खड़े होकर वो हाथ हिलाते, लोगों के उपहार और फूल मालाएं स्वीकार करते थे, लेकिन नतीजा उनके फेवर में नहीं रहा। 2017 में उनके रथ पर नारा लिखा था समाजवादी विकास रथ, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी यूपी के लोगों ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, चुनाव हार गए। 2022 में फिर रथ का नारा बदला गया, लिखा गया यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, लेकिन 5 साल के बाद भी यूपी वालों ने अखिलेश को जनादेश नहीं दिया, फिर से हार गए। अब 2027 की बारी है, रथ फिर तैयार है और रथ पर नया नारा चिपका दिया गया है। अब लिखा है समाजवादी पीडीए यात्रा। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम। अब नए रथ का नारा क्या अखिलेश की 10 साल के बाद वापसी कराएगा? इसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस बार अखिलेश यादव के रथ में क्या बदलाव हुआ है। अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है, सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाईं ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में स्लोगन लिखा है, पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पीडीए के इस मुद्दे में बड़ा दम दिखता है। वो भले ही पीडीए की परिभाषा बदलते रहे हों, मौका भांपते ही वो पी को पिछड़ा से पंडित भी करते हैं, लेकिन पीडीए का असली मतलब उनके चुनावी रथ पर ही लिखा है, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन न हो तो अल्पसंख्यक के बाद डैश लगाकर मुसलमान भी लिखा है।
5: ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं, आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं।
4: बीजेपी का तो पूरा प्रयास

0: इसीलिए बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि पीडीए वो समीकरण है कि अगर वो चुनावों में चला तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव में पीडीए के चलने का मतलब है चुनाव जाति पर शिफ्ट हो गया, और बीजेपी चाहती है कि चुनाव जाति पर नहीं सनातन पर हो।
1: पीडीए को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
2: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
1: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
2: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
1: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
2: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
0: इसी समाजवादी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल और रूट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन चमचमाती बस पहुंच चुकी है। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन, वाईफाई कनेक्टिविटी की भी सुविधा है।
3: अक्टूबर के अंत में सूत्रों के मुताबिक ये रथ मैदान में उतरेगा और चुनावी कैंपेनिंग करेगा। अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद पीडीए इस बार 27 की सत्ता तक पहुंचाएगा। अब बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और इसे नई बोतल और पुरानी शराब करार दे रही है। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं, बल्कि MY समीकरण की रीपैकेजिंग है। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में B.R. अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे, या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा।
0: यूपी में पहले चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए MY समीकरणों का हवाला दिया जाता था। M का मतलब मुसलमान और Y का मतलब यादव। अखिलेश ने इसी समीकरण को बड़ा कर दिया है। मायावती चुनावों में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में वो लगभग सरेंडर के मोड में रही, इसीलिए अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट को भी अपनी तरफ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पीडीए वही MY है।
4: समाजवादी पार्टी ने माल वही है, पैकेजिंग नहीं है, MY के समीकरण पर एक्सपोज हो चुके थे। सब उनके इस MY के समीकरण को समझते हैं, इसीलिए अब ये पीडीए के नाम पर नया सिगुफा लेकर आए हैं। वो जानते हैं कि पीडीए एक नई पैकेजिंग केवल है, इसीलिए रोज पीडीए की परिभाषा बदलते हैं। लेकिन पीडीए के अंदर वही माल है जो पुराना इनका MY समीकरण है। लेकिन ये जाति मजहब के आधार पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो विकास के मुद्दे पर होगा, और विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी फिर फेल होगी।
0: अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर ही 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी के अंदर बीजेपी को रोका है। बीजेपी 240 पर सिमटी तो इसके लिए यूपी को ही जिम्मेदार माना जाता है, जहां अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बड़ी रिकॉर्ड सफलता पाई। 2024 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं, और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गईं। SP के सहयोगी कांग्रेस की सीटें भी 2024 में 1 से बढ़कर 6 हो गईं। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में 403 में से 224 विधानसभा सीटों पर आगे था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लगभग बराबर वोट मिले। बीजेपी को 3,83,00,000 और समाजवादी पार्टी को 3,81,00,000 वोट मिले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के साथ दलितों के वोट भी हासिल किए थे। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि 2027 से पहले वो एक बार

0: फिर से 2024 जैसा माहौल खड़ा कर दें।
1: 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की थी 2024 के पहले, मतलब लोगों को जगाना, उनके अधिकारों की उनकी बात करना और समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उनकी बात करना, उनको बताना कि उनका अधिकार कितना है, वोट इनका राज किसी और का ये नहीं चल सकता है।
0: लेकिन बीजेपी के पास सनातन का वो हथियार है जो अगर चुनावों में चल गया तो फिर समाजवादी पार्टी के ये समीकरण किसी काम के नहीं रहेंगे। अखिलेश पीडीए पर टिके हैं तो बीजेपी भी सनातन और हिंदुत्व से हिल नहीं रही।
2: याद रखना, ये पावन कथा जब तक भारत की धरती पर चलती रहेंगी, सनातन का ध्वजा पताका कभी झुकने नहीं पाएगी, और सनातन की ध्वजा पताका ऊंची रहेगी तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। पावन कथाओं को व्यापक प्रचार प्रसार करना, व्यापक रूप से आगे बढ़ाना।
0: संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: हैरान और विचलित कर देने वाली खबर, देश के कई शहरों में आतंक का नाम बन चुका पिटबुल एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली के करीब सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने एक 6 महीने के मासूम पर हमला बोल दिया, बच्चे की हालत गंभीर।
4: तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपको हूबहू नहीं दिखा रहे। तस्वीरें देखिए, चीख पुकार मची है, लोग एक काले पिटबुल कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन पिटबुल बेकाबू है। स्क्रीन पर जो हिस्सा आपको ब्लर नजर आ रहा है, दरअसल उस हिस्से में 6 महीने का एक मासूम बच्चा है जिस पर पिटबुल लगातार झपट्टा मार रहा है। यह तस्वीर दिल्ली से सटे सोनीपत के सिक्का कॉलोनी की है। यहाँ 6 महीने के एक मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का यह हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी, तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है।
5: पिटबुल ने उसको कितनी जगह से काटा,
6: उसका मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे बहुत सारी जगह चोट आई है।
5: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
6: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
4: सोनीपत में पिटबुल हमले के बाद प्रशासन जागा, मेयर और पुलिस ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक्शन का भरोसा दिया।
7: इस तरह के जो कुत्ते पालने वाले हैं लोग, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य जो है सरकार की तरफ से किया गया, उसका भी अभियान चलाया जाएगा। और अगर जो है कोई व्यक्ति प्रतिबंधित जो है डॉग पालने का काम करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
4: आए दिन पिटबुल के हमले की खबरें आती रहती हैं, सवाल कुत्ते के मालिक की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। प्रशासन का कहना है कि शिकायत के बाद एक्शन लिया जाएगा। पवन राठी, सोनीपत आज तक।
3: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एफडीए का सख्त एक्शन जारी है। महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के चलते मुंबई में 3 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

0: महाराष्ट्र FDA का मिलावट खोरों और खाने पीने में साफ सफाई से समझौता करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक बार फिर मुंबई में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर टीम तुकाराम मुंडे ने कार्रवाई की है। दक्षिण मुंबई के कोलाबा ओलंपिया कॉफी हाउस समेत 3 जगहों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। ओलंपिया कॉफी हाउस की जांच में खाद्य भंडारण क्षेत्र में यूरिनल पाए गए, कॉकरोच और मक्खियों का प्रकोप दिखा, खाने का सामान सीधे फर्श पर रखा जा रहा था, सड़ चुकी लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल, 35 में से 34 खाद्य कर्मचारियों ने अनिवार्य फूड सेफ्टी ट्रेनिंग तक नहीं ली थी।
1: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फिर एक बार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस बार महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के 3 बड़े रेस्टोरेंट्स और एक हॉस्पिटल के कैंटीन पर रेड करते हुए उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया है। हम इस वक्त मुंबई के प्रसिद्ध ओलंपिया रेस्टोरेंट के बाहर है, जहां पर 16 तारीख को FDA ने रेड की थी और कई खामियां पाने के बाद इनका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया था। यहां पर होटल की तरफ से एक नोटिस भी लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि कुछ कारणों की वजह से, सुधार करने की वजह से और मेंटेनेंस के काम के वजह से जो है रेस्टोरेंट कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। अगले नोटिस तक ये रेस्टोरेंट बंद रहेगा, लेकिन 16 तारीख को FDA ने रेड की थी, जिसमें उन्होंने कई खामियां पाई थी। FDA के अधिकारियों ने जब किचन का दौरा किया, तब उन्होंने पाया कि जो यूरिनल था वो किचन में ही था, जो खाने पीने की चीजें थी वो फर्श पर रखी जा रही थी। इसके साथ ही जो कर्मचारी थे, 35 कर्मचारियों में से 34 कर्मचारियों को खाने पीने की ट्रेनिंग या जो फूड ट्रेनिंग जिसे कहते हैं वो नहीं दी गई थी। और इसके साथ ही जो पीने का पानी था उसमें, उसको लेकर भी FDA के अधिकारियों ने कई तरह की खामियां पाई। साथ ही जो चॉपिंग बोर्ड यूज किया जा रहा था वो भी काफी खराब अवस्था में था, जिसके बाद FDA ने ये बड़ा कदम उठाया है। पिछले कई दिनों से FDA की रेड लगातार जारी है और इसी कड़ी में ये FDA की रेड हुई है, जिसमें FDA ने मुंबई के प्रसिद्ध कुलाबा में स्थित ओलंपिया होटल का लाइसेंस जो है उसको सस्पेंड किया है।
0: इसी सिलसिले में नायर अस्पताल के नर्सेस मिस का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया। 12 सितंबर को हुई रेड में गंभीर खामियां सामने आई थी।
1: FDA ने रेड की, कैंटीन बंद हो गया है, क्या कहेंगे किस तरह से रेड हुई, कौन सा कैंटीन एग्जैक्टली बंद हुआ है?
2: कॉलेज का कैंटीन बंद नहीं हुआ है या वहां पे रेड नहीं हुआ है। कल शाम को FDA का प्रेस रिलीज देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि नायर कैंटीन, मगर ये नायर कैंटीन ने मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो ये नायर में जो स्टूडेंट नर्सेस का मेस है वहां पे उन्होंने इंस्पेक्शन किया, मगर जब वो इंस्पेक्शन को आए तो कोई भी ऑफिसर से उन्होंने बात नहीं किए, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम इंस्पेक्ट कर रहे कि किए हैं या कुछ डिफिकल्टीज है उसमें, इसके बारे में FDA ने हमको कुछ भी बताया नहीं है। अभी तक, इस वक्त तक मेरे पास कोई भी उनकी रिपोर्ट ऑफिशियल आई नहीं है हमारे प्रीमाइसिस के बारे में। हमारे कॉलेज का कैंटीन तो शुरू है, उसका इसके पहले 2 बार उन्होंने इंस्पेक्शन किया है और उसमें कोई इश्यू नहीं था। ये जो है वो स्टूडेंट नर्सेस मेस का, उन्होंने मेस एरिया जो है वो उन्होंने इंस्पेक्ट किया था।
0: FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे अपनी कार्यशैली से साफ संदेश दे रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
3: रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: क्या मंगल का राशि परिवर्तन दुनिया भर में युद्ध का कारण बनेगा? क्या मंगल के राशि परिवर्तन से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी? क्या मंगल का राशि परिवर्तन वाद विवाद बढ़ा देगा? क्या है मंगल के राशि परिवर्तन की स्थिति, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
6: देयर is a very famous quote ki history repeat itself.
7: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
8: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
7: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

कानपुर के बर्रा में अवैध कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। IIT बॉम्बे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद गुस्सा, कैंपस में छात्रों ने किया प्रदर्शन, IIT प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप, छात्रों का दावा, रिस्ट्रिक्शन की धमकी ने ली जान। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी, ममता गुट के उम्मीदवार ने वापस लिया नाम, राहुल खड़गे ने उठाए सवाल, बताया लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोपों पर मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, कहा कांग्रेस एक भस्मासुर पार्टी, साथ आने वाले सभी दलों को जलाने का करती है काम। ट्रंप ने रूस ईरान पर नए प्रतिबंध वाले कानून को दी मंजूरी, रूस ईरान से तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता साफ।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल देव ने अपनी राशि बदल ली है और आज हम बात करेंगे मंगल देव के इसी राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा, अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:26 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है आज, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल के इस राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगल अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे। अब मंगल 18 सितंबर को दोपहर के बाद कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि मंगल के लिए बड़ी कमजोर राशि मानी जाती है, इसीलिए मंगल का ये राशि परिवर्तन कमजोर है, मंगल की ये स्थिति कमजोर हो गई है। मंगल की ये कमजोर स्थिति 12 नवंबर तक बनी रहेगी, और मंगल का इतना ज्यादा कमजोर होना ज्यादातर आप देखेंगे कि 12 नवंबर के पहले बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगा। मंगल के कमजोर होने से देश और दुनिया में बहुत सारी समस्याएं एकदम से आनी शुरू हो जाएंगी। मंगल के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन के समय मंगल गुरु के साथ हो गए हैं। गुरु कर्क में पहले से विद्यमान थे और अब मंगल गुरु के साथ आ चुके हैं। जल की तीनों राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों राशियां प्रभावित हो गई हैं और राशि परिवर्तन के समय अष्टम भाव में केतु विद्यमान हैं। संघट राशि चक्र में केतु का संबंध मंगल से और चंद्रमा का संबंध शनि के साथ बन रहा है। ये जो मंगल के राशि परिवर्तन की कुल स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि ये समय प्राकृतिक आपदाओं का हो सकता है। दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप जैसे हालात आपदाओं की स्थिति बन सकती है और दुनिया के अलग जगह पर बेवजह का तनाव बढ़ सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन में, अमेरिका ईरान में तनाव है। उसके अलावा दुनिया के किसी और जगह पर भी आपसी तनाव बढ़ सकता है। उत्तर पूर्व और बंगाल का जो इलाका है वो अशांत हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में अशांति हो सकती है। भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में इस समय आंतरिक अशांति फैल सकती है। जो महिलाएं उच्च पद पर हैं या जो महिलाएं मजबूत स्थिति में हैं, ऐसी महिलाओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का और अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। ये समय बड़ी दुर्घटना की सूचना दे रहा है और महिलाओं के लिए ये समय संकट का समय हो सकता है। मंगल के राशि परिवर्तन का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक उलझने सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न प्रियंका जी ने हमें लिखा है और प्रियंका जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1994, दोपहर के 2 बजे, जन्म स्थान है बरेली। ये लिख रही हैं कि मेरा विवाह भी 1 साल पहले हुआ है लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और मुझे किस तरह का उपाय करना चाहिए। प्रियंका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह बिल्कुल चलेगा, इसके टूटने की संभावना नहीं है। लेकिन अभी 22 नवंबर 2026 तक थोड़ी शांति रखिए, नवंबर 26 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी और आगे वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम माता दुर्गा के मंत्र का जप करिएगा, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये उपाय करिए, आपको लाभ होगा। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जान लेते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मंगल का ये राशि परिवर्तन लोगों के जीवन में बहुत तेजी से प्रभाव दिखाएगा। वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन शुभ है, मंगल का ये राशि परिवर्तन अच्छा है। वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ वालों के रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, करियर और जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन इनको भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा, जल्दबाजी का निर्णय इनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन। मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लोगों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन मध्यम रहेगा। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। करियर में किसी भी प्रकार का इस समय आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए और इस समय आपको चोट चपेट से भी बचाव करना चाहिए। तमाम राशियों में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन
सबसे ज्यादा निगेटिव है मेष, सिंह और धनु वालों के लिए। इनको अपने पारिवारिक जीवन का और अपने कारोबार का ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटना, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन और मुकदमेबाजी की समस्याओं से बचना होगा। जिन लोगों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन बेहतर नहीं है, उन्हें दुर्घटनाओं से, सर्जरी से और चोट चपेट से बचना चाहिए। मंगल के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपको बताया कि 12 राशियों में से केवल 4 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है, बाकी राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो अगर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, ये राशि परिवर्तन 8 राशियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और उसमें भी ये राशि परिवर्तन मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ज्यादा निगेटिव है। इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा पानी प्लेन वाटर रोज सवेरे सूर्य को चढ़ाइए। सुबह और शाम एक एक बार कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करिए, या भगवान कार्तिकेय के द्वादश नामों का उच्चारण करिए। अगर इस समय संभव हो तो नियमित रूप से गुड़ का दान करिएगा, और अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं है तो लाल रंग की वस्तुओं से लाल कपड़ा धारण करने से इस समय परहेज करिएगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि महिलाओं को हनुमान जी का चित्र या उनकी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, ईश्वर का स्वरूप हैं और ईश्वर के स्वरूप में लिंग भेद नहीं होता। पुरुष और स्त्रियां दोनों अपना इष्ट, भगवान, भाई या मित्र मानकर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। महिलाएं भी हनुमान जी के चरणों का स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी के चित्र का या मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकती। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते।

पूरे होंगे। नंबर दो, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर तीन, काम की अधिकता रहेगी। नंबर चार, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर पांच, अतिथि का आगमन होगा। नंबर छह, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर सात, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर आठ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर नौ, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में यथाशक्ति किसी भी मंत्र का जप करें, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अविनाश जी ने हमें लिखा है, मुरादाबाद से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1979। जन्म का समय शाम के 7:55। जन्म स्थान है बदायूं। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अविनाश जी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी साल 2027 में मई के बाद। धीरे धीरे आप कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे और जनवरी 2027 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक मोती, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को आप धारण करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रखकर ले जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान

का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है, आज शिव जी की पूजा जरूर करिएगा और आज थोड़ा सा समय निकाल कर शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा, आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

कांग्रेस उपचुनाव से पहले जारी सियासी घमासान, नंदीग्राम से ममता के उम्मीदवार ने नाम वापस लिया, कांग्रेस प्रत्याशी समर्थन के बाद गिरफ्तार। मिलन प्रधान पर 2007 के हत्या मामले में कार्रवाई, 3 हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 वारंट लंबित। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का विरोध, आज पूरे बंगाल में नंदीग्राम चलो अभियान। मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस, चुनाव आयोग से भी करेगी शिकायत। कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा गिरफ्तारी कोई सहयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध, बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं। टीएमसी के नाम और निशान पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ममता गुट, चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। टीएमसी के चुनाव चिन्ह विवाद पर किरेन रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस खुद भद्मासुर है। राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद का जवाब, बोले कांग्रेस का इतिहास याद कीजिए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने कहा हम साथ हैं और हमारा लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से हटाना। लिफाफा चुनाव चिन्ह पर ISF की आपत्ति, नौशाद सिद्दीकी बोले हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंदौर में आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम, करीब 1.5 घंटे के कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर छात्र से चर्चा होगी। 31 शर्तों के साथ पुलिस ने दी मंजूरी, कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद, आसपास के क्षेत्र में निगरानी के लिए 40 CCTV कैमरे लगाए गए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का आरोप, लगातार कार्यक्रम रोकने की कोशिश की जा रही है। इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जुटेंगे छात्र, कांग्रेस का दावा 1,00,000 तक पहुंच सकती है संख्या। छात्रों की गूंज में मध्य प्रदेश के परीक्षा मुद्दे उठाएगी कांग्रेस, MPPSC और व्यापम पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। 20वें रोजगार मेले में देश भर के 45 केंद्रों से जुड़ेंगे युवा, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देंगे नियुक्ति पत्र। यूपी में योगी सरकार का बड़ा भर्ती अभियान, अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। योगी आज से शुरू होगी यूपी में आज से शुरू होगी 1,00,000 सरकारी भर्ती का महाअभियान, पुलिस होमगार्ड में 77,000 पद। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का यूपी में मिशन तेज, विनोद तावड़े लगातार कर रहे संगठन की जमीनी समीक्षा। पूर्वांचल और अवध पर बीजेपी का फोकस, विनोद तावड़े कार्यकर्ताओं से लेंगे संगठन और विधायकों का फीडबैक। 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर तावड़े का खास जोर। अखिलेश यादव से लोक दल प्रमुख सुनील सिंह की मुलाकात, 2027 चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हुई। लोक दल का 2027 में करीब 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, अखिलेश को सीएम बनाने का लक्ष्य बताया। आरएलडी नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई, पत्नी चारू चौधरी और बेटियों शाहिरा इलेशा बनी मुलाकात का हिस्सा। पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, फतेहगढ़ साहिब से आज दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी रेखा गुप्ता। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पर सियासत तेज, रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमले का आरोप, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। पंजाब में रवनीत बिट्टू के काफिले पर कथित हमला, पत्थरबाजी और अंडे टमाटर फेंकने का लगाया आरोप। बिट्टू के काफिले पर हमले को लेकर राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले पंजाब में कानून व्यवस्था का खुलासा हुआ। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भगवंत मान सरकार ने डीए में 8% बढ़ोतरी का ऐलान किया। यूपीआई पर MDR को लेकर विवाद, कांग्रेस ने संसदीय समिति के दावे पर उठाए सवाल, मनीष तिवारी बोले विपक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। यूपीआई MDR पर मनीष तिवारी का पलटवार, बोले समिति ने सिर्फ राजस्व मॉडल तलाशने को कहा था, एक्सप्लोर शब्द का मतलब शुल्क लगाने की मंजूरी नहीं। यूपीआई MDR पर कांग्रेस का विरोध, जयराम रमेश ने सीमित अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाए, रमेश बोले विपक्ष के समर्थन की बात गलत तरीके से पेश की गई। यूपीआई MDR पर संसदीय समिति के अध्यक्ष का जवाब, भर्तृहरि महताब बोले रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई गई, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। यूपीआई MDR पर कांग्रेस और सरकार के दावों में टकराव, शुल्क लागू करने की तैयारी, सरकार का दावा MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालने की व्यवस्था होगी। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास आयोजन, 11,000 दिए जलाकर लंबी उम्र की कामना की गई।
भजन क्लबिंग और आधुनिक संगीत के अनूठे संगम के बीच युवाओं ने पीएम मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। कैंपस को रोशन कर जेनजी ने व्यक्ति की कृतज्ञता। उज्जैन में देश की छठवीं धर्म संसद का अवंतिकापुरी में हुआ विधिवत शुभारंभ। मोहन भागवत ने युवाओं को बताई धर्म की परिभाषा, बोले धर्म बांधता नहीं मुक्त करता है। गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन केस मामले में दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। निटारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोहली ने की आत्महत्या, हरिद्वार में चाय की दुकान में लगाई फांसी। अंकिता भंडारी की चौथी पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच की मांग के लिए निकाला कैंडल मार्च। नासिक में विज्ञापन होर्डिंग्स के लिए रातों रात काटे गए 55 पेड़, सिर्फ 10,000 रुपए में हुआ था सौदा, 6 आरोपी गिरफ्तार। गंगापुर रोड पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में मुख्य विज्ञापन एजेंसी संचालक समेत 6 लोग 5 दिन की पुलिस कस्टडी में, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज। बेटी की पढ़ाई के लिए नंगे पैर मैराथन दौड़ने वाली बीड़ की रमाबाई के संघर्ष को राष्ट्रीय पहचान, उपराष्ट्रपति ने दी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। दिल्ली के NSIC ग्राउंड में सजा कला का अनोखा संसार, कला कनेक्ट में देश भर के पहुंचे 150 से ज्यादा कलाकार, 2000 से ज्यादा आर्ट वर्क प्रदर्शित हुए, एक ही छत के नीचे कला के कई रंग। 23 साल के ऋतिक कोहली पैरों से बनाते हैं प्रिंटिंग। सेमिकॉर इंडिया 2026 में रे वेक्टर का बहु सेंसर मॉड्यूल बना आकर्षण। सीटीओ चक्रवर्ती एलुमुलाई बोले वेफर की खराबी को शुरुआती स्तर पर पकड़ने में मदद करती है तकनीक। सूरत में अनोखा गणेश पंडाल, बापा के दर्शन से पहले भूत प्रेतों का सामना, हॉरर थीम ने खींचा लोगों का ध्यान। हांगकांग के NRI उद्यमी 7 साल से बना रहे चॉकलेट गणेश उत्सव, दूध में विसर्जन कर प्रसाद बांट कर दे रहे ग्रीन, गणेश उत्सव का संदेश। देश भर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रहा जन सैलाब, 5वें दिन लाल बागचा राजा के दर्शन की अनोखी छटा, दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार। गणेश गली के मुंबई का राजा के दरबार में भी दर्शन, अभिलाषियों की भीड़ पंडाल में विराजमान है, 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश। संतों के योगदान की कथाओं से संबंधित झांकियों से की गई सजावट, इस बार अपने 99वें साल मना रहे गणेश गली गणेश उत्सव मंडल। मुंबई के किंग सर्कल स्थित GSB सेवा मंडल में सजा बाप्पा का दरबार, देश का सबसे महंगा मंडल माना जाता है GSC सेवा मंडल। 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाए गए हैं गजानन, 703 करोड़ रुपए का कराया गया है बीमा। सतना की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, बिल्डिंग से अब तक 2 बच्चों को निकाला गया सुरक्षित। तेलंगाना के करीमनगर में बाइक की टक्कर से 63 साल के बुजुर्ग की मौत, उप सरपंच के पिता थे मृतक। रंगारेड्डी के शाद नगर में स्कूल की सीढ़ियों से गिरने से 4वीं कक्षा की छात्रा की मौत हुई, जांच में जुटी पुलिस। कोटपूतली में 11,000 KV की लाइन टूटने से घरों में दौड़ा संकट, एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे, ग्रामीणों ने जाम किया। मैनपुरी में भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, हादसे में कई लोग घायल हुए। खेड़ा में टोल प्लाजा पर कार में लगी भीषण आग, टोल बूथ को भारी नुकसान। पुरुलिया में महिलाओं के कपड़े पहनकर होटल में छुप कर रह रहे थे 4 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बिजनौर में शादी में भात देने के लिए महिला ने गैंग के साथ ज्वेलरी शोरूम में 8 लाख की चोरी की, 2 गिरफ्तार। गुजरात के अमरेली में किराए के मकान में पिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि उसकी 5 साल की बेटी का शव फ्रिज के अंदर मिला। तेलंगाना के खम्मम में स्थानीय मुद्दों पर वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर दबाव, शहर छोड़ने की बात कह हुए भावुक। मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में बीजेपी विधायक के कीचड़ में गाड़ी फंसी, ट्रैक्टर से खींच कर ग्रामीणों ने गाड़ी को बाहर निकाला। जमशेदपुर में बेकाबू स्कूल वैन डिवाइडर पर चढ़ी, वैन में 14 छात्र सवार थे, सभी बच्चों को चोट आई है। सोनीपत में नाबालिग बच्चे की हत्या, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार किया, देर रात तक शमशान घाट के बाहर हंगामा हुआ, पुलिस के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार हुआ। औरैया में स्कूली बस पलटने के मामले में एक्शन, लापरवाह ड्राइवर का लाइसेंस रद्द हुआ, बस जब्त। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाइक सवार युवक पर भारी भरकम पेड़ गिर गया, गंभीर रूप से वो घायल हो गया। बागपत में ढाबे पर खाना खाते हुए बाप बेटे से जमकर मारपीट, बुजुर्ग का मुंह कपड़े से बांधा, ढाबा बना WWE रिंग। सहरसा में 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, पैसों के लेनदेन में युवक की हत्या की गई। दिल्ली में पैदल जा रहे व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी, व्यक्ति की मौत, फिलहाल CCTV फुटेज पर जांच हो रही है।
दिल्ली में कार ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक कार के बंपर में फंसी, चालक ने कई सौ मीटर तक बाइक को घसीटा।

0: रुख बदला, जमकर बर्फबारी हुई। राजस्थान के बारा में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस के जवान, बारा साथी नाले में फंसे दो संतों को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र बीड जिले में डेढ़ महीने के सूखे के बाद कड़कड़ाती बिजली के साथ बारिश, किसानों ने राहत की सांस ली। जूनागढ़ के खड़िया रेल पर एक साथ छह शेर सड़क पर पार करते हुए दिखाई दिए। शेरों की इस चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कृष्ण नगरी मथुरा के बरसाना में भव्य दिव्य राधा अष्टमी का उल्लास, राधा अष्टमी के लिए राधा रानी मंदिर में सजावट की गई। राधा जन्मोत्सव के रंग में डूबी कृष्ण नगरी, आज आधी रात से शुरू हुआ जन्मोत्सव, सुबह 5 बजे किया जाएगा अभिषेक किया गया। राधाष्टमी पर देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के बरसाना पहुंचने का अनुमान, श्रद्धालुओं को संभालने के लिए पुलिस ने लगाई सीसीटीवी। राधाष्टमी की तैयारियों के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की है। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए करीब 16 घंटे तक खुला रहेगा राधा रानी का मंदिर। मंदिर की वेबसाइट पर जन्मोत्सव का लाइव प्रसारण भी होगा। महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है, 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। प्रेम कीटाणु का चौथा गाना इश्क का गुलाम जारी, 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म। ऑस्कर के लिए जाएगी मराठी थ्रिलर फिल्म गोंधल, भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री रेस में 30 से ज्यादा फिल्मों को छोड़ा पीछे। म्यूजिकल लव स्टोरी मैं ना रहा मेरा का टीजर रिलीज हुआ, फिल्म में अध्ययन सुमन के साथ मिस दीवा 2022 रह चुके नई कलाकार देविता राय नजर आएंगे। पर्दे पर पहली बार महान गायिका का किरदार निभाएगी रश्मिका मंदाना, भारतीय सिनेमा की महान सिंगर MS सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में बनेंगी अम्मा। पाकिस्तान के कुहाट में बड़ा बम धमाका, 21 लोगों की मौत, शुक्रवार की नमाज के दौरान ओल्ड पुलिस लाइंस के पास विस्फोट। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या शहर पर रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बुनियादी ढांचा समेत शॉपिंग मॉल को बनाया गया निशाना, हमले के बाद इमारत में आग लगी। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस से पहली बार हो रहा है संसदीय चुनाव, 3 दिनों तक चलने वाले चुनाव में 450 सीटों पर स्टेट ड्यूमा के लिए मतदान। रूस के समर्थक और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो का बड़ा बयान, कहा यूरोप बड़े युद्ध के मुहाने पर, शांति के लिए प्रयास जरूरी है। ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर दक्षिण कोरिया की सरकार का बड़ा फैसला, अमेरिका की इस लड़ाई में अपनी सेना उतारने से इनकार किया। IRGC का दावा, कहा उन्होंने हॉर्मुज में टोगो के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हमला कर कब्जा कर लिया है। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने मक्का पर हूती विद्रोहियों के हमले से इनकार किया, कहा आरोप एक घिनौना झूठ। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरानी लोगों ने अपनी सरकार के समर्थन में निकाली बड़ी रैली, अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद विरोध और एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन। दक्षिण फिलीपींस के हाई स्कूल में भीषण गोलीबारी से हड़कंप, 16 वर्षीय हमलावर समेत 3 छात्रों की मौत, 8 लोग घायल हुए। दक्षिण चीन सागर में चीनी और फिलीपींस के जहाजों की टक्कर, फिलीपींस का आरोप, चीन के तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस की मछली पकड़ने वाली नाव को टक्कर मारी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर यार,
7: करेक्ट करेक्ट।
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार

0: उतार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
14: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cool

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Papa.
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
15: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
16: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: अखिलेश की चुनावी तैयारी फिलहाल दफ्तर के अंदर और दफ्तर के बाहर ज्यादा नजर आ रही है। दफ्तर के अंदर अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एआई वाले वीडियो दिखाते हैं और दफ्तर के बाहर अब अखिलेश का पीडीए रथ भी तैयार होकर आ चुका है। यही वो समाजवादी रथ है जिस पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल, रूट का खुलासा नहीं किया, लेकिन चमचमाती बसें जरूर पहुंच चुकी हैं। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सेल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन। दरअसल ऐसी ही बस में अखिलेश यादव पहले भी चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन इस बार की बस आते ही बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ पीडीए के फॉर्मूले को लेकर मोर्चा खोल दिया, क्योंकि बस पर पीडीए का असली फुल फॉर्म लिखा गया है।
1: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए। पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
0: दरअसल अखिलेश की समाजवादी रथ वाली बस में बाई ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है, सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाई ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में ये स्लोगन लिखा है, पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें। दरअसल समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इसी फॉर्मूले के साथ संविधान के मुद्दे वाली कॉकटेल ने उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी और तब 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई।
2: जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में बीआर अंबेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन संजय के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर बंगाल से दिल्ली तक संग्राम। ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 19 साल पुराने केस में गिरफ्तार। राहुल खड़गे, ममता ने उठाए सवाल। आज कांग्रेस का पूरे राज्य में प्रदर्शन। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम। छात्रों की गूंज, पेपर लीक, परीक्षा, रोजगार होंगे मुद्दे। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज। कांग्रेस का आरोप, अड़ंगा डालने की लगातार कोशिश। मिशन 2027 से पहले बीजेपी का रोजगार वाला दाव। आज 51,000 युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने यूपी में 1,00,000 सरकारी नौकरियों का किया ऐलान। में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर सुबह सुबह चला बुलडोजर। अवैध स्ट्रक्चर और बाउंड्री वॉल ध्वस्त। नोटिस के बाद केडीए का एक्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। और आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद गुस्सा। कैंपस में छात्रों ने किया प्रदर्शन। आईआईटी प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप। छात्रों का दावा, कैंपस से निकालने की धमकी के बाद जान दी।

0: नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि क्या है आपके लिए। देखिए, कानपुर में अवैध कब्रिस्तान पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया है। ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इसमें किस तरह से एक्शन लिया गया है, अधिकारियों की तरफ से क्या कहा गया है। बात IIT बॉम्बे की भी करेंगे, जहां सेकेंड ईयर के एक छात्र ने आत्महत्या कर दी, जिसके बाद कैंपस में माहौल गरमाया हुआ है। छात्रों में आक्रोश है, क्यों आत्महत्या की, अब क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा राजनीति की खबरों की भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें, शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर में सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई आज सुबह सुबह शुरू हुई। KDA के मुताबिक मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी और हरी मस्जिद की ओर से सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था और यहां पर कब्र बना दी गई थी। कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया जा चुका था। अब कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम बुलडोजर के जरिए बाउंड्री वॉल और कब्रों को हटाने की कार्रवाई वो करती दिखी सुबह सुबह। जो आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहे, सुबह सुबह से ही शुरू हो गए। प्राधिकरण के अनुसार ध्वस्तीकरण के बाद जमीन का कब्जा वापस लिया जाएगा। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है और कानपुर के बर्रा में ये अवैध कब्रिस्तान बताया जा रहा था, और पूरा नहीं लेकिन सरकारी जमीन पर जितना कब्जा किया हुआ था, जहां पर स्ट्रक्चर बना दिया गया था, जहां पर कब्र बना दी गई थी, तो वहां पर ये बुलडोजर कार्रवाई हुई। और एक बार फिर से आपको बहुत क्लियर कर दें कि कब्रों को नहीं हटाया गया है, ना ही कब्रों को यहां पर खोदा गया है। उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर था, सिर्फ उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया गया है, सरकारी भूमि पर जो कब्जा था सिर्फ उसको। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा कि कहीं कोई अराजकता ना फैलाए, कोई कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न ना करे, तो उसको लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए थे। बुलडोजर एक्शन हुआ, अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया कि इनको पहले से ही नोटिस दे दिया गया था, जानकारी दे दी गई थी और उसके बाद फिर ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो देखिए, कानपुर में कब्रिस्तान पर बुलडोजर एक्शन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पूरे कब्रिस्तान को नहीं हटाया गया, सिर्फ अवैध हिस्सा ध्वस्त किया गया और ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। प्राधिकरण ने नोटिस दिया था और नोटिस के बाद कानूनी कार्रवाई हुई, ये नहीं कि सीधे बुलडोजर गया तोड़ दिया। कब्जा हटाने का समय दिया, मुस्लिम पक्ष ने कब्जा नहीं हटाया तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रशासन ने कोई कब्र नहीं हटाई है, कब्र के ऊपर का जो निर्माण था, जो स्ट्रक्चर था, सिर्फ उसको हटाया गया है। कब्रिस्तान की जो अवैध बाउंड्री थी उसको गिराया गया है, सरकारी जमीन पर बाउंड्री बनी हुई थी। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कई तरह की अफवाहें भी फैलती हैं जिससे माहौल खराब होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कब्र को नहीं खोदा गया, सिर्फ ऊपर का जो स्ट्रक्चर था उसको हटाया गया है। कानूनी नोटिस पूरी तरह से दिया गया था, उसके बाद हुआ है पालन, कोई जवाब नहीं दिया गया। हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। उसके बाद जब नोटिस दिया गया, वक्त दिया गया कि इतने वक्त में आप ये हटा लीजिए, जब मुस्लिम पक्ष ने नहीं हटाया तो उसके बाद कार्रवाई हुई है। समर चावला हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। समर, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्या जो कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है या बाकी अभी?
1: बिल्कुल हिमांशु, आपको बता दूं, एक बड़ी कार्रवाई जो कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुबह 6 बजे यहां पर शुरू की गई थी उसे पूरा कर लिया गया है। प्रशासन के मुताबिक जो जिस जमीन पर उनको कब्जा लेना था वो वापस ले लिया गया। आपको विजुअल के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की कार्रवाई हुई यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वो कब्रिस्तान है जो कई सालों से यहाँ पर था। ये प्रशासन द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जो है वो सरकारी जमीन थी। यहाँ देखेंगे पूरी बाउंड्री वॉल जो है उसको तोड़कर JCB जो और बुलडोजर मशीन यहाँ पर लगी थी। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो मैं आपको कब्र दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एक बड़ा कब्रिस्तान था यहाँ पर जो कई सालों से यहाँ पर बना। उन कब्रों के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उनको यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम किया गया है। ये प्रशासन द्वारा बताया गया कि अंदर से कब्रों को नहीं निकाला गया है, लेकिन हाँ, जो ऊपर कब्रों के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स बने थे उनको यहाँ से हटा लिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे जमीन को कब्जे में लेकर जो है वो यहाँ पर प्रशासन की टीम फिलहाल वापस लौट गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बाउंड्री वॉल जो है वो यहाँ पर टूटी हुई पड़ी हुई है, और यहाँ पे बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद बुलडोजर मशीन से अपना एक्शन लिया। यहाँ पे कुछ जो लोग हैं मुतवल्ली हैं मुस्लिम कमेटी से, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है सुबह, आप लोग कमेटी से हैं, क्या कार्रवाई हुई है, आप लोग को नोटिस दिया गया पहले, आप लोग कैसे देखते हैं इस कार्रवाई?
2: जो नोटिस दिया गया था उनके अगेंस्ट हम लोगों ने उनको पेपर मुहैया कराए थे, 315 नंबर, हमारे 3 कब्रिस्तान है यहाँ बर्रा में, 315 नंबर 1 बीघे 7 बिस्वे का, 312 नंबर 1 बीघे 1 बिस्वे का, और 265 नंबर 5 बीघे 8 बिस्वे का, जिस पर गलत तरीके से सुबह 4 बजे आकर बाउंड्री वाल को हमारी ध्वस्तीकरण कर दिया, जबकि इससे 25-30 साल पहले जब ये रोडें निकाली गई थी यहाँ से तो हमारी ज़मीनों पर रोडें निकली हुई थी। हमारी ज़मीनों पर रोडें निकालने के बाद में केडीए के सक्षम अधिकारियों ने ये बाउंड्री हम लोगों को करा कर
1: शासन ने कहा है कि उन्होंने डेमोलिशन का नोटिस आप लोग को दिया और ये भी तक कहा कि जो कब्रें हैं उनको हटाने में लिखित में उनको कहा गया था आप लोगों को कि कब्रें यहाँ से हटा ली जाए, उसके बाद भी नहीं हटाई गई, ये प्रशासन का पक्ष आप लोगों को कह गया?
2: नहीं, ये नहीं, उनका कोई नोटिस नहीं। कल सुबह मेरे पास नोटिस आया और उसमें कल शाम के समय नोटिस मिला हम लोग को, और ये सुबह 4-3 बजे कार्रवाई करते हैं सुबह शाम को।
0: तो देखिए कुछ लोगों की आपत्तियां भी हैं यहाँ पर और जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया था। शुक्रिया समर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और चलिए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के नांगलू इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात एक अनियंत्रित कार ने सड़क पर पैदल जा रहे शख्स को जोरदार टक्कर मार दी। अब ये फुटेज आप देखिए, वीडियो फुटेज, कार की रफ्तार का अंदाजा लगाइए आप, कार आउट ऑफ कंट्रोल है, कार स्किड कर जाती है। आप देखिए आउट ऑफ कंट्रोल है, कार रोड पर सीधे नहीं जा रही है, कार अचानक से जैसे मुड़ जाती है आउट ऑफ कंट्रोल के बाद, और वहां पर एक शख्स को टक्कर मारती और उस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे का दिल दहला देने वाले सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। कार की खतरनाक रफ्तार साफ स्पष्ट समझ आ रही है। पुलिस ने फुटेज को कब्जे में ले लिया है, जांच की जा रही है। चालक हालांकि फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। वही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईआईटी बॉम्बे से जहां छात्र की आत्महत्या के बाद अब जबरदस्त आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। सेकेंड ईयर का ये छात्र बताया जा रहा है, उसने आत्महत्या की, उसके बाद कैंपस में छात्रों में आक्रोश देखा गया। छात्रों का यह आरोप है कि आईआईटी प्रशासन की प्रताड़ना की वजह से छात्र ने आत्महत्या की, उसको निकालने की बात की जा रही है। इसी बात से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की। जिस छात्र ने आत्महत्या की वो सेकेंड ईयर का छात्र था, परीक्षा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते वो पकड़ा गया था। हालांकि आईआईटी प्रशासन का ये दावा है कि उसने छात्र के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसके बजाय उसे बुलाकर काउंसलिंग दी गई। प्रताड़ना के आरोपों को आईआईटी ने खारिज किया है। अब इस घटना से पूरे परिसर में शोक की लहर है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
3: देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी मुंबई, जहां देश भर से लाखों छात्र अपने सुनहरे भविष्य को साकार करने के लिए आते हैं, लेकिन आज इसी आईआईटी मुंबई का जो कैंपस है वो भारी तनाव में है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आईआईटी जो कैंपस है उसके बाहर। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सेकंड ईयर के छात्र साहिल वाकोड़े की मौत, जिसने अपने हॉस्टल के कैमरे में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि आईआईटी प्रशासन का कहना है कि साहिल परीक्षा में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था, जिसके बाद सिर्फ उसकी काउंसलिंग हुई थी। लेकिन कैंपस के छात्रों की कहानी बिल्कुल अलग है। छात्रों का सीधा आरोप है कि साहिल को 1 साल के लिए सस्पेंशन और हॉस्टल से बेदखल करने की धमकी दी गई थी और इसी मानसिक दबाव ने उसकी जान ले ली, और छात्र अब सीधे डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। हालांकि कैंपस के अंदर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि क्योंकि अभी माहौल जो है पूरी तरह शांत है और जो बातचीत चल रही है, और जल्द ही इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाएगा। एजाज खान, मुंबई आज तक।
0: चलिए अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी को लेकर सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई। कांग्रेस ने गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को राज्य भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बंगाल कांग्रेस कह रही है कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख करेंगे और चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी भेजेंगे। पार्टी ने नंदीग्राम चलो अभियान का भी आह्वान किया है। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि उसका नंदीग्राम उम्मीदवार है कहां और कार्रवाई का समय क्या है। साथ ही पार्टी ने चुनाव आयोग के टीएमसी चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के फैसले के समय पर भी सवाल खड़े किए। तो नंदीग्राम में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। आज ममता बनर्जी से पार्टी, कल की बात है ये, ममता बनर्जी से जब पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो छीन लिया गया, हालांकि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्योंकि दावा दूसरी तरफ से किया गया था। अब इसके बाद ममता बनर्जी जबरदस्त गुस्से में दिखाई दी।
4: 2026 के बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा फूल फ्रीज हो गया।
5: What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
6: Hindu dharma ke ganda dharma bola, Mahakumbh ke mithu kumbh bola, ar Ram mandir udbodhoner din Ram mandir manina bole michil kora. Achen to Bhagwan Purushottam Ramchandra Maharajer
4: स्वेंदु अधिकारी की खाली सीट नंदीग्राम और हुमायूं कबीर की खाली सीट रेजीनगर पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह में खींचतान को देखते हुए आयोग ने दोनों दलों से 3-3 पसंदीदा विकल्प पूछे थे। उसी के आधार पर ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी निशान मिला, जबकि बागी धड़े को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफे का निशान दिया। ये नाम और निशान 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लागू रहेंगे।
7: इंटरिम ऑर्डरिंग से साबित है, जाहिर है कि परिवारवाद का कोई जगह नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई वारिशन हो नहीं सकता है, ये साबित हो गया है।
4: इस बीच नंदीग्राम उपचुनाव में नया ट्विस्ट आ गया, जहां ममता बनर्जी की उम्मीदवार संचिता प्रधान स्वेंदु अधिकारी से मिलने पहुंची और फिर नाम वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब नंदीग्राम में नामांकन की तारीख निकल गई है। ऐसे में अब ममता ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है।
5: इन्होंने क्या किया? हाईजैक किया है। टोटल इट वाज कंट्रोल फ्रॉम सम ऑफिस टू हाईजैक द ईवीएम मशीन इवन।
4: पश्चिम बंगाल में भले ही लड़ाई उपचुनाव की हो, लेकिन घमासान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात करते हैं राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की, जिसका आयोजन आज होने जा रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का ये 5वां संस्करण है, लेकिन इंदौर में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से अनुमति और वेन्यू को लेकर विवाद बना हुआ था। पहले नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन परमिशन नहीं मिली। उसके बाद तारीख 12 से बढ़ाकर उसको 19 सितंबर किया गया और IDA ग्राउंड को नया वेन्यू बनाया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण, प्रशासन और इंदौर पुलिस ने 31 शर्तें रखी हैं और ग्राउंड के लिए अतिरिक्त करीब 4 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में करीब 1 लाख छात्र पहुंच सकते हैं। शिक्षा, परीक्षा, पेपर लीक, भर्ती, रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुखता से यहां उठाए जाएंगे। राहुल गांधी का छात्र संवाद कार्यक्रम है, पुलिस ने 31 शर्तें रखी हैं, इन 31 शर्तों को मानना होगा कांग्रेस को।
8: 80 साल की देश की आजादी के बाद अब देश में यह चर्चा होनी चाहिए कि शिक्षा अब सरकार का दायित्व है, उसको निभाना पड़ेगा, उसको कानून बनाने पड़ेंगे, उसको उस अधिकार संपन्न राष्ट्र जिसमें एक बच्चा ये कहे कि शिक्षा मुझे सरकार देगी, ये मेरा अधिकार है, इस तरह की सोच पर चर्चा हो। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी उस डिबेट को करना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं, प्रदेश के अभिभावकों से चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए इस सकारात्मक काज में आप सबके सहयोग की अपेक्षा, इंदौर शहर को बहुत साधुवाद।
0: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले केंद्र सरकार का रोजगार पर बड़ा फोकस सामने आया। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज 19 सितंबर को 20वें रोजगार मेले के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर होगा और देश भर के 45 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। नवनियुक्त युवा राजस्व, रेलवे, गृह स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं और रक्षा समेत विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल होंगे। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके होंगे। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डूसू चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। नॉर्थ कैंपस के मल्टीपर्पज हॉल में कड़ी सुरक्षा के बीच आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है, शुरू हो चुकी है अभी। कल यानी 18 सितंबर को भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई थी। हिंसा हुड़दंग रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के सख्त निर्देश थे कि इस बार कोई विजय जुलूस या जश्न नहीं निकाला जाएगा, और यह आज भी लागू होता है। इस साल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के 4 पदों पर करीब 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, और कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि डूसू की नई सेंट्रल टीम की कमान किसके हाथ में होगी। और यह बहुत अहम इसीलिए भी है क्योंकि हाल ही में आपने देखा था दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ था, वहां पर युवा छात्र इकट्ठे हुए थे, तो छात्रों की जब बात हो रही है उसके बाद ये रिजल्ट बहुत अहमियत रखते हैं। और आइए अब बड़ी खबर आपको बताते हैं अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 100% टैरिफ वाले कानून पर दस्तखत कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। नए कानून के तहत अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है। 100% तक, अब वो कितना लगाना चाहें ये उनके ऊपर है। अब इसमें भारत और चीन जैसे बड़े रूसी ऊर्जा खरीदार भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल गैस लेता है। और भारत कहता रहा है कि हम पहले अपनी जनता का हक देखेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। चीन तो रूस और ईरान के तेल गैस का बहुत बड़ा खरीदार रहा है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर उधर क्या?
2: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है।
7: हां ओ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
8: बिना तो चार्ज हुआ यार।
9: ओ ला बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: ओ नो, बहुत बोर लग रहा है।
12: Take a date, not bites.
13: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
12: Lion Date Nut Bites.
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: GK Max.
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: GK Max. Best पुट्टी?
17: JK Wall Max.
15: Best paint?
17: JK Max.
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
17: JK Max Paints.
15: JK Max Paints. खुशियों के रंग।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: अनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
8: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
7: असली शहद, असली स्वाद।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

अब नहीं होगी देरी, तेज होगी तेजस की डिलीवरी। स्वदेशी हथियारों से भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। MK-1 के बाद MK-1A का दिखेगा दम, दुश्मन की बढ़ेगी टेंशन। तेजी से बदलते वॉर प्लान और सरहदों को और सुरक्षित रखने के लिए भारतीय वायुसेना हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। इन्हीं में से एक अहम मोर्चा है ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करते रहना। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारतीय वायुसेना का एक अहम एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना की योजना तेजस के MK-1 वर्जन के बाद MK-1A वर्जन पर तेजी से काम करने की थी, लेकिन MK-1 डिलीवरी में देरी से रक्षा मंत्रालय न सिर्फ नाराज था बल्कि कुछ महीने पहले तक इसे बनाने वाली कंपनी HAL पर जुर्माना लगाने के लिए भी तैयारी कर रहा था। दरअसल तेजस MK-1A कार्यक्रम में देरी का सबसे बड़ा कारण GE एरोस्पेस द्वारा F-404IN-20 इंजन की सप्लाई में देरी माना जा रहा है। HAL इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेनल्टी के विकल्पों पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा इजरायली AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इंटीग्रेशन से जुड़े तकनीकी मुद्दों ने भी कार्यक्रम को प्रभावित किया है। इस महीने HAL और भारतीय वायुसेना के बीच तेजस MK-1A कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक होने की संभावना है। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने वाले ये एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया के फॉर्मूले पर कितना खरा उतर रहे हैं। रणभूमि में सेनाओं के जिस शौर्य पर पूरा देश नाज करता है, तकनीक के मोर्चे पर हथियार बनाने वाली कंपनियों की तेजी और सटीकता भी किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होती। उम्मीद यही है कि HAL की युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियां उसे ये इम्तिहान आसानी से पास करा देंगी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर बंगाल से दिल्ली तक संग्राम। ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 19 साल पुराने केस में गिरफ्तार। राहुल खड़गे ममता ने उठाए सवाल। आज कांग्रेस का पूरे राज्य में प्रदर्शन। इंदौर में आज राहुल गांधी के कार्यक्रम, छात्रों की गूंज, पेपर लीक परीक्षा और रोजगार होंगे मुद्दे। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज। कांग्रेस का आरोप, अंगा डालने की लगातार कोशिश। 2027 से पहले बीजेपी का रोजगार वाला दावा। आज 51,000 युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने यूपी में 1,00,000 सरकारी नौकरियों का किया ऐलान। कानपुर में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर सुबह सुबह चला बुलडोजर। अवैध स्ट्रक्चर और बाउंड्री वॉल ध्वस्त। नोटिस के बाद केडीए का एक्शन। मौके पर पुलिस बल रहा तैनात। और IIT बॉम्बे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद गुस्सा। परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़े जाने पर कैंपस से निकालने की धमकी का आरोप। और अब वक्त उछला है नॉन स्टॉप 100 का।

कानपुर में केडीए का बुलडोजर एक्शन, 500 वर्ग मीटर सरकारी जमीन से कब्जा ध्वस्त किया गया। मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी ने सरकारी जमीन पर बनाया था कब्रिस्तान। कार्रवाई के दौरान पुलिस पीएसी महिला पुलिस बल की तैनाती रही, नोटिस के बाद कार्रवाई की। कब्रिस्तान पर नगर निगम की कार्रवाई के बाद हंगामा, मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति, कहा नोटिस के बावजूद बिना पर्याप्त सूचना के की गई कार्रवाई। कानपुर के कब्रिस्तान की जमीन पर निगम की कार्रवाई का विरोध, मुस्लिम पक्ष बोला कई सालों से यहां मौजूद है कब्रिस्तान। नगर निगम की कार्रवाई के बाद कब्रिस्तान पहुंचा मुस्लिम पक्ष ने कहा कार्रवाई गलत, मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। बंगाल उपचुनाव से पहले जारी सियासी घमासान, नंदीग्राम से ममता के उम्मीदवार ने नाम लिया वापस, कांग्रेस प्रत्याशी समर्थन के बाद गिरफ्तार। मिलन प्रधान पर 2007 की हत्या मामले में कार्रवाई, 3 हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 वारंट लंबित। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का विरोध, आज पूरे बंगाल में नंदीग्राम चलो अभियान। मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस, चुनाव आयोग से भी शिकायत करेगी। कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा गिरफ्तारी कोई सहयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है। टीएमसी के नाम और निशान पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ममता गुट, चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती। टीएमसी के चुनाव चिन्ह विवाद पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस खुद भस्मासुर है। राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद का जवाब, बोले कांग्रेस का इतिहास याद कीजिए। सूत्र के मुताबिक राहुल गांधी से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने कहा हम साथ हैं और हमारा लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से हटाना है। लिफाफा चुनाव चिन्ह पर आईएसएफ की आपत्ति, नौशाद सिद्दीकी बोले हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंदौर में आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, 1.5 घंटे के कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। 31 शर्तों के साथ पुलिस ने मंजूरी दी, कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद, 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का आरोप, लगातार कार्यक्रम रोकने की कोशिश हो रही है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जुटेंगे छात्र, कांग्रेस का दावा 1,00,000 छात्र पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश के परीक्षा मुद्दे उठाएगी कांग्रेस, एमपीपीएससी और व्यापम पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। 20वें रोजगार मेले में देश भर के 45 केंद्रों से जुड़ेंगे युवा, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नियुक्ति पत्र देंगे। यूपी में योगी सरकार का बड़ा भर्ती अभियान, अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज से शुरू होगी 1,00,000 सरकारी भर्ती की प्रक्रिया, पुलिस होमगार्ड में 77,000 पद। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का यूपी में मिशन तेज, विनोद तावड़े लगातार कर रहे हैं संगठन की जमीनी समीक्षा। पूर्वांचल और अवध पर बीजेपी का फोकस, विनोद तावड़े कार्यकर्ताओं से लेंगे संगठन विधायकों का फीडबैक। 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर तावड़े का खास जोर। अखिलेश यादव से लोकदल प्रमुख सुनील सिंह की मुलाकात, 2027 चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। लोकदल का 2027 में करीब 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, अखिलेश को सीएम बनाने का लक्ष्य बताया। आरएलडी नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात, पत्नी चारू चौधरी और बेटियां साहिरा इलेशा मुलाकात का हिस्सा रही। पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, फतेहगढ़ साहिब से आज दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी रेखा गुप्ता। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पर सियासत तेज, रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमले का आरोप, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। रवनीत बिट्टू के काफिले पर कथित हमला, पत्थरबाजी और अंडे टमाटर फेंकने का आरोप लगा है। रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमले को लेकर राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले पंजाब में कानून व्यवस्था का खुलासा हुआ। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भगवंत मान सरकार ने डीए में 8% बढ़ोतरी का ऐलान किया। यूपीआई पर एमडीआर को लेकर विवाद, कांग्रेस ने संसदीय समिति के दावे पर उठाए सवाल, मनीष तिवारी बोले विपक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। यूपीआई एमडीआर पर मनीष तिवारी का पलटवार, बोले समिति ने सिर्फ राजस्व मॉडल तलाशने को कहा था, एक्सप्लोर शब्द का मतलब शुल्क लगाने को मंजूरी नहीं। यूपीआई एमडीआर पर कांग्रेस का विरोध, जयराम रमेश ने सीमित समिति अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाए, रमेश बोले विपक्ष के समर्थन की बात गलत तरीके से पेश की गई। यूपीआई एमडीआर पर संसदीय समिति के अध्यक्ष का जवाब, भर्तृहरि मेहताब बोले रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई गई, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। यूपीआई एमडीआर पर कांग्रेस और सरकार के दावों में टकराव, शुल्क लागू करने की तैयारी सरकार का दावा, एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालने की व्यवस्था होगी। वडोदरा की पावल यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास कार्यक्रम, 11,000 दिए जलाकर की गई लंबी उम्र की कामना। भजन क्लबिंग और आधुनिक संगीत के अनूठे संगम के बीच युवाओं ने पीएम मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।
उज्जैन में देश की छठवीं धर्म संसद का अवंतिकापुरी में हुआ विधिवत शुभारंभ। मोहन भागवत ने युवाओं को बताई धर्म की परिभाषा, बोले धर्म बांधता नहीं मुक्त करता है। गुरुग्राम गोल्फ कोर्स और रोड हिट एंड रन केस मामले में दोनों आरोपियों के 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, अक्टूबर 2016 को हुई अगली सुनवाई होगी। निठारी कांड में बरी हुए सुरेंद्र कोहली ने आत्महत्या की, हरिद्वार में चाय की दुकान में फांसी लगाई। अंकिता भंडारी की चौथी पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, निष्पक्ष जांच की मांग के लिए कैंडल मार्च निकाला। नासिक में विज्ञापन होर्डिंग के लिए रातों रात काटे गए 55 पेड़, सिर्फ 10,000 रुपए में हुआ था सौदा, 6 आरोपित गिरफ्तार। गंगापुर रोड पर अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में मुख्य विज्ञापन एजेंसी संचालक समेत 6 लोग 5 दिन की कस्टडी में, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। बेटी की पढ़ाई के लिए नंगे पैर मैराथन दौड़ने वाली बीड़ की रमाबाई के संघर्ष को राष्ट्रीय पहचान, उपराष्ट्रपति ने 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। कृष्ण नगरी मथुरा के बरसाना में भव्य दिव्य राधाष्टमी का उल्लास, राधाष्टमी के लिए राधा रानी मंदिर में सजावट की गई। मां राधा के जन्मोत्सव के रंग में डूबी कृष्ण नगरी मथुरा, आधी रात से शुरू होगा जन्मोत्सव, सुबह 5 बजे किया जाएगा राधा रानी का अभिषेक। राधाष्टमी पर देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के बरसाना पहुंचने का अनुमान है, श्रद्धालुओं को संभालने के लिए पुलिस ने लगाए CCTV। तैयारियों के लिए जिलाधिकारी और SSP ने पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की, श्रद्धालुओं के साथ अच्छे से पेश आने के निर्देश। राधाष्टमी के दौरान श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए करीब 16 घंटे तक खुला रहेगा मंदिर, मंदिर की वेबसाइट पर जन्मोत्सव की लाइव तस्वीरें भी रहेंगी प्रसारण। देश भर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, 5वें दिन लालबाग चार राजा के दर्शन के लिए अनोखी छठा। गणेश गली के मुंबई का राजा के दरबार में भी दर्शन अभिलाषियों की भीड़, पंडाल में विराजमान है 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश। संतों के योगदान की कथाओं से संबंधित झांकियों से की गई सजावट, इस बार अपने 99वें साल का साल मना रहे हैं गणेश गली गणेश उत्सव मंडल। मुंबई के किंग सर्कल स्थित GSB सेवा मंडल में सजा बप्पा का दरबार, 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाए गए हैं गजानन, 703 करोड़ रुपए का बीमा कराया गया है। सतना की बहुमंजिल इमारत में भीषण आग, बिल्डिंग में अब तक 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। तेलंगाना के करीमनगर में बाइक की टक्कर से 63 साल के बुजुर्ग की मौत, उप सरपंच के पिता थे मृतक। रंगारेड्डी के शादनगर में स्कूल की सीढ़ियों से गिरने से 4वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। कोटपुतली में 11,000 केवी की लाइन टूटने से घरों में दौड़ा संकट, करंट की वजह से एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे। मैनपुरी में भरभराकर गिरा 2 मंजिला मकान, कई लोग घायल हुए। केड़ा में टोल प्लाजा पर कार में लगी भीषण आग, टोल बूथ को भारी नुकसान। पुरुलिया में महिलाओं के कपड़े पहनकर होटल में छुपकर रह रहे थे 4 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक, गिरफ्तार हुए। बिजनौर में शादी में भाग देने के लिए महिला ने गैंग के साथ ज्वेलरी शोरूम में की 8 लाख की चोरी, 2 गिरफ्तार, जेवर बरामद। गुजरात के अमरेली में किराए के मकान में मिला पिता का शव, फांसी के फंदे से, जबकि उसकी 5 साल की बेटी का शव फ्रिज के अंदर मिला। तेलंगाना के खम्मम में स्थानीय मुद्दों पर वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर दबाव, शहर छोड़ने की बात कहते हुए भावुक। मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में बीजेपी विधायक की कीचड़ में फंसी गाड़ी, ट्रैक्टर से खींचकर ग्रामीणों ने गाड़ी को बाहर निकाला। जमशेदपुर में बेकाबू स्कूल वैन डिवाइडर पर चढ़ी, वैन में 14 छात्र थे सवार, सभी बच्चों को चोट आई। सोनीपत में नाबालिग बच्चे की हत्या, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार किया, देर रात शमशान घाट के बाहर हंगामा, पुलिस जांच की बात कहती हुई दिखी। औरैया में स्कूली बस पलटने के मामले में एक्शन, लापरवाह ड्राइवर का लाइसेंस रद्द, बस जब्त। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाइक सवार युवक पर भारी भरकम पेड़ गिर गया, गंभीर रूप से घायल हुआ। बागपत में ढाबे पर खाना खाने गए बाप बेटे से जमकर मारपीट, बुजुर्ग का मुंह बांधकर कपड़े से बांधा। सहरसा में 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, पैसों के लेनदेन में युवक की हत्या हुई, जांच जारी है। दिल्ली में पैदल जा रहे व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर, व्यक्ति की हुई मौत, फिलहाल जांच जारी है। दिल्ली में कार ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक कार के बंपर में फंसी, कई 100 मीटर तक घसीटा। इटावा में 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी, पुट्टी के बोरियों में छिपाकर पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार।
हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से हटाई जा रही बर्फ की परत। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तुलाइल घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। राजस्थान के बारा में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस के जवान, बरसाती नाले में फंसे दो संतों को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र बीड जिले में डेढ़ महीने के सूखे के बाद कड़कती बिजली के साथ बारिश, किसानों ने राहत की सांस ली। जूनागढ़ के खाड़िया रोड पर एक साथ छह शेर सड़क पार करते हुए दिखाई दिए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है, 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। प्रेम कीटाणु का चौथा गाना इश्क का गुलाम जारी, 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म। ऑस्कर के लिए जाएगी मराठी थ्रिलर फिल्म गोंधल, भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री, रेस में 30 से ज्यादा फिल्मों को पीछे छोड़ा। म्यूजिकल लव स्टोरी बना रहा बेला का टीजर रिलीज हुआ, फिल्म में अध्ययन सुमन के साथ मिस दीवा 2022 कलाकार दिव्यता राय नजर आएंगी। पर्दे पर पहली बार महान गायिका का किरदार दबाएगी रश्मिका मंदाना, भारतीय सिनेमा की महान सिंगर MS सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में अम्मा बनेंगी। पाकिस्तान के कुवैत में बड़ा बम धमाका, मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हुई, 100 से ज्यादा घायल। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या शहर पर रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बुनियादी ढांचों समेत शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस में पहली बार हो रहे संसदीय चुनाव, 3 दिनों तक चलने वाले चुनाव में 450 सीटों पर स्टेज टूमा के लिए मतदान। रूस के समर्थक और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो का बड़ा बयान, कहा यूरोप बड़े युद्ध के मुहाने पर, शांति के लिए प्रयास जरूरी। ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर दक्षिण कोरिया की सरकार का बड़ा फैसला, अमेरिका की इस लड़ाई में अपनी सेना उतारने से इनकार किया। IRGC का बड़ा दावा, कहा उन्होंने हॉर्मुज के टोगो के झंडे के वाले एक तेल टैंकर पर हमला करके कब्जे में ले लिया है। हुती नेता अब्दुल मालिक अल हुती ने मक्का पर हुती

फिलीपींस के हाई स्कूल में भीषण गोलीबारी से हड़कंप, 16 वर्षीय हमलावर समेत 3 छात्रों की मौत, 8 लोग घायल। दक्षिण चीन सागर में चीनी और फिलीपींस के जहाजों की टक्कर, फिलीपींस का आरोप, चीन के तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस की मछली पकड़ने वाली नाव को टक्कर मारी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल देव ने अपनी राशि बदल ली है और आज हम बात करेंगे मंगल देव के इसी राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा, अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शनिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 3:26 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9:10 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है आज, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल के इस राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगल अभी तक मिथुन राशि में विद्यमान थे। अब मंगल 18 सितंबर को दोपहर के बाद कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि मंगल के लिए बड़ी कमजोर राशि मानी जाती है, इसीलिए मंगल का ये राशि परिवर्तन कमजोर है, मंगल की ये स्थिति कमजोर हो गई है। मंगल की ये कमजोर स्थिति 12 नवंबर तक बनी रहेगी, और मंगल का इतना ज्यादा कमजोर होना, ज्यादातर आप देखेंगे कि 12 नवंबर के पहले बहुत सारी समस्याओं को जन्म देगा। मंगल के कमजोर होने से देश और दुनिया में बहुत सारी समस्याएं एकदम से आनी शुरू हो जाएंगी। मंगल के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान

सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब ये जानते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, मंगल के राशि परिवर्तन के समय मंगल गुरु के साथ हो गए हैं। गुरु कर्क में पहले से विद्यमान थे और अब मंगल गुरु के साथ आ चुके हैं। जल की तीनों राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों राशियां प्रभावित हो गई हैं और राशि परिवर्तन के समय अष्टम भाव में केतु विद्यमान हैं। संघट राशि चक्र में केतु का संबंध मंगल से और चंद्रमा का संबंध शनि के साथ बन रहा है। ये जो मंगल के राशि परिवर्तन की कुल स्थितियां हैं वो बता रही हैं कि ये समय प्राकृतिक आपदाओं का हो सकता है। दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप जैसे हालात, आपदाओं की स्थिति बन सकती है और दुनिया के अलग जगह पर बेवजह का तनाव बढ़ सकता है। जैसे रशिया यूक्रेन में, अमेरिका ईरान में तनाव है, उसके अलावा दुनिया के किसी और जगह पर भी आपसी तनाव बढ़ सकता है। उत्तर पूर्व और बंगाल का जो इलाका है वो अशांत हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में अशांति हो सकती है। भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में इस समय आंतरिक अशांति फैल सकती है। जो महिलाएं उच्च पद पर हैं या जो महिलाएं मजबूत स्थिति में हैं, ऐसी महिलाओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का
और अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। ये समय बड़ी दुर्घटना की सूचना दे रहा है और महिलाओं के लिए ये समय संकट का समय हो सकता है। मंगल के राशि परिवर्तन का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक उलझने सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न प्रियंका जी ने हमें लिखा है और प्रियंका जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1994, दोपहर के 2 बजे, जन्म स्थान है बरेली। ये लिख रही हैं कि मेरा विवाह भी 1 साल पहले हुआ है लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और मुझे किस तरह का उपाय करना चाहिए। प्रियंका, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह बिल्कुल चलेगा, इसके टूटने की संभावना नहीं है। लेकिन अभी 22 नवंबर 2026 तक थोड़ी शांति रखिए, नवंबर 26 के बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी और आगे वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम माता दुर्गा के मंत्र का जप करिएगा, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये उपाय करिए, आपको लाभ होगा। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जान लेते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मंगल का ये राशि परिवर्तन लोगों के जीवन में बहुत तेजी से प्रभाव दिखाएगा। वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन शुभ है, मंगल का ये राशि परिवर्तन अच्छा है। वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ वालों के रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, करियर और जीवन में सफलता मिलेगी। लेकिन इनको भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा, जल्दबाजी का निर्णय इनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन। मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लोगों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन मध्यम रहेगा। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। करियर में किसी भी प्रकार का इस समय आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए और इस समय आपको चोट चपेट से भी बचाव करना चाहिए। तमाम राशियों में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन
सबसे ज्यादा निगेटिव है मेष, सिंह और धनु वालों के लिए। इनको अपने पारिवारिक जीवन का और अपने कारोबार का ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटना, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन और मुकदमेबाजी की समस्याओं से बचना होगा। जिन लोगों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन बेहतर नहीं है, उन्हें दुर्घटनाओं से, सर्जरी से और चोट चपेट से बचना चाहिए। मंगल के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपको बताया कि 12 राशियों में से केवल 4 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है, बाकी राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो अगर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, ये राशि परिवर्तन 8 राशियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और उसमें भी ये राशि परिवर्तन मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ज्यादा निगेटिव है। इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा पानी प्लेन वाटर रोज सवेरे सूर्य को चढ़ाइए, सुबह और शाम एक एक बार कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करिए या भगवान कार्तिकेय के द्वादश नामों का उच्चारण करिए। अगर इस समय संभव हो तो नियमित रूप से गुड़ का दान करिएगा, और अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं है तो लाल रंग की वस्तुओं से, लाल कपड़ा धारण करने से इस समय परहेज करिएगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि महिलाओं को हनुमान जी का चित्र या उनकी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, ईश्वर का स्वरूप हैं और ईश्वर के स्वरूप में लिंग भेद नहीं होता। पुरुष और स्त्रियां दोनों अपना इष्ट, भगवान, भाई या मित्र मानकर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। महिलाएं भी हनुमान जी के चरणों का स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी के चित्र का या मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकती। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जान।

काम पूरे होंगे, नंबर दो यात्रा के योग बन रहे हैं, नंबर तीन काम की अधिकता रहेगी, नंबर चार धन लाभ के योग बन रहे हैं, नंबर पांच अतिथि का आगमन होगा, नंबर छह करियर में कुछ बदलाव होगा, नंबर सात चोट चपेट से बचाव करें, नंबर आठ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नंबर नौ संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाए।

बजे से 7:30 तक इस समय में यथाशक्ति किसी भी मंत्र का जप करें, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अविनाश जी ने हमें लिखा है, मुरादाबाद से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1979। जन्म का समय शाम के 7:55। जन्म स्थान है बदायूं। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अविनाश जी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी साल 2027 में मई के बाद। धीरे धीरे आप कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे और जनवरी 2027 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक मोती, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को आप धारण करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो लौंग खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, घी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रखकर ले जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को, सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है, आज शिव जी की पूजा जरूर करिएगा और आज थोड़ा सा समय निकाल कर शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा, आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और अभी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में 17 साल की बच्ची से हैवानियत पर सवाल उठाया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। महिलाओं के विकास की बातें सिर्फ खोखली साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कई मामलों में पीड़िताओं को FIR दर्ज कराने तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रियंका गांधी ने सरकार और समाज दोनों पर महिलाओं को सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। कल राहुल गांधी ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय को घेरा था। महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अब दिल्ली पुलिस ने स्वरूप नगर रेप और हत्या केस में 72 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया। 13 सितंबर की सुबह कुशक रोड के पास खुले खेत में एक नाबालिग लड़की का शव मिला था। शुरुआती जांच में पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पोस्टमार्टम और जांच के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि के बाद पुलिस ने हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच में पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया। करीब 50 से ज्यादा CCTV फुटेज को जोड़कर पुलिस ने एक संदिग्ध टेम्पो की आवाजाही को ट्रेस किया। टेम्पो खड्डा कॉलोनी से बरामद हुआ, जिसके बाद पूछताछ के आधार पर 4 आरोपियों को पकड़ा गया। इन 4 आरोपियों में 3 नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 16, 17 साल की बताई गई है, जबकि चौथे आरोपी की पहचान शिवम और सुदामा के तौर पर हुई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू, वारदात के दौरान पहने गए खून लगे कपड़े भी बरामद किए हैं। दरिंदगी की हद पार कर दिया। अब आप समझिए कि 3 तो नाबालिग थे, गैंगरेप किया गया, एक 16 साल का, 2 17 साल के और एक बालिग। अब महिला आयोग ने 7 दिन में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस कह रही है कि हमने रिकॉर्ड टाइम में इसको सुलझा लिया। 4 लोग गिरफ्तार भी हो गए। NCW ने दिल्ली पुलिस से कठोर कार्रवाई करने को कहा।
4: ये 10 या 11 तारीख रात में 4 लड़कों ने, एक अडल्ट और 3 जुवेनाइल्स, इन्होंने एक लड़की थी वो भी माइनर है, उनको लेके मतलब इन 5ों ने मतलब शराब पी रखा था एज प्लेन्ड वेरी एक्टिव, और इसको इस फील्ड में लेके गया। वो लड़की के साथ ये 4ों लड़कों ने अंडर इंटॉक्सिकेशन रेप किया है, और रेप करके उस फील्ड में लेके गया। फील्ड में जाके ये लड़की के ऊपर चाकू वाकू मार के डेड बॉडी को उधर जंगलों में छुपा के रख दिया। फिर वो डेड बॉडी को कुत्ते वगैरह बाहर लेके आया। फिर 13 तारीख को हमारा रिपोर्ट हुआ। फिर वो डेड बॉडी को हमने रिकवर किया, उसके ऊपर पूरा काम किया एंड इसी तरीके से पूरा केस वर्कआउट हुआ।
3: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक माइनर नाबालिग के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई, और उनमें से जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वो भी 3 नाबालिग, एक 16 साल का, 2 17 साल के। कितने भी सुधार की बात की जाए लेकिन सुधार दिख नहीं रहा। आज भी बच्चियां असुरक्षित हैं, और ये राष्ट्रीय राजधानी में जब ऐसा होता है तो सवाल उठना लाजमी है।
5: बिल्कुल, सवाल उठना लाजमी है, और ऐसे में पुलिस के सामने भी एक चुनौती होती है, क्योंकि जब कोई 16 और 17 साल का लड़का जब क्राइम करता है और इस तरीके का क्राइम करता है, जब वो अपनी किसी नोन जानकार के साथ इस तरीके की हरकत करता है और अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर के, कि न सिर्फ ब्रूटल तरीके से रेप किया और उसके बाद फिर हत्या भी की, और फिर आप देखिए कि पूरी साजिश क्या, जो कहने के लिए बच्चे हैं 16 17 साल, लेकिन अगर आप पूरे क्राइम पर देखेंगे तो मर्डर के पहले का पूरा प्लान आपको नजर आएगा, किस तरीके से उन्होंने साजिश रची, उसके बाद रेप किया और फिर बॉडी को छिपाया, और उसके बाद एक ऐसी जगह उसकी बॉडी को डंप किया जहां से उसकी पहचान ना हो पाए। अब आप देखिए ये पूरी प्लानिंग, और उसके बाद ये भाग जाते हैं, कोई सबूत मौके से नहीं मिलता हिमांशु।
3: लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन समझिए कि क्या मानसिकता है, क्या सोच है कि नाबालिग 16 17 साल के, अगले साल ये बालिग हो रहे हैं और ये इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसे जघन्य भी कहा जा सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक और दिल दहलाने वाली खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में एक 18 महीने के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बच्चा गली में खेल रहा था तभी आवारा कुत्ता सामने से आया और हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के चेहरे पर हमला किया और बुरी तरह घायल कर दिया। आप देखिए कहीं पर 6 महीने के बच्चे पर हमला किया जाता है कुत्तों की तरफ से। अब यहां पर देखिए 18 महीने का बच्चा, मतलब दिल्ली की गलियों में, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, पॉश इलाकों में, हर जगह बच्चे असुरक्षित हैं। अब बहुत सारे एनजीओ आते हैं, बहुत सारे डॉग लवर्स आते हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर, इन वीडियोस पर, इन खबरों को लेकर जरूरी है बोलना, आवाज उठाना कि इन छोटे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। इससे पहले कल सोनीपत में भी विचलित करने वाली ऐसी एक तस्वीर सामने आई थी। सोनीपत में पिटबुल कुत्ते ने 6 महीने के मासूम पर हमला किया था। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। दिल्ली में भी बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों में आप देखिए छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे बच्चे आप कुछ पल के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं, घर से बाहर तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। कहीं आवारा कुत्ते, कहीं पालतू कुत्ते, कहीं पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्ते अपने जबड़े में दबा देते हैं 6 महीने के बच्चे को, कहीं 18 महीने का बच्चा जिसके चेहरे पर कई तरह के निशान आते हैं। वहीं दिल्ली के नांगलोई इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। देर रात एक अनियंत्रित कार ने सड़क पर पैदल जा रहे शख्स को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये देखिए एक गाड़ी निकलती है, उसके बाद इस कार की रफ्तार समझिए। और कार की रफ्तार इतनी थी कि ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया, आउट ऑफ कंट्रोल होती है गाड़ी, उसके बाद पलट जाती है और इस दौरान एक शख्स की जान चली जाती है। वो शख्स जो सड़क किनारे जा रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था, घर पर लोग इंतजार कर रहे होंगे, उसके परिजन इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन एक रफ्तार की वजह से, अनियंत्रित कार की वजह से एक घर बर्बाद। वहीं चंबा के पांगी घाटी को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण साच पास पर सितंबर महीने में ही मौसम ने अचानक करवट ली। ताजा बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद हो गई, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अचानक हुई इस बर्फबारी से मार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत मुश्तैदी दिखाई, सड़क से बर्फ हटाई, यातायात बहाल किया।
1: चंबा के सांच पास से आई ये तस्वीरें, जहां सितंबर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या सड़कें, हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। बर्फ से ढकी वादियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बर्फबारी ने खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ाई। चंबा को जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी से जोड़ने वाले सांच पास मार्ग पर बर्फ जमने से कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर बर्फ होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आए। सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद सांच पास मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अब चंबा और पांगी घाटी के बीच आवाजाही एक बार फिर सुचारू है। सांच पास में मौसम बेहद तेजी से बदलता है, यहाँ अचानक बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखकर ही सफर करने की अपील की है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सितंबर की इस बर्फबारी ने सांच पास की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद रास्ते यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबा से विशाल आनंद आज तक।
3: मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार को अचानक कई छात्र छात्राओं, कॉलेज कर्मियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। पेट दर्द, उल्टी, सिरदर्द की शिकायत के बाद 25 से ज्यादा लोगों को सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई है। ये आशंका है कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के प्रसाद के सेवन के बाद यह हालत हुई। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।
1: मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक छात्र छात्राओं और कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी। अलग अलग वार्ड में रह रहे लोगों को पेट दर्द, उल्टी, सिरदर्द और दूसरी परेशानियों की शिकायत हुई। एक साथ कई लोगों की तबीयत खराब होने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल भेजना शुरू किया। शाम करीब 6 बजे से सदर अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। लगातार एम्बुलेंस से मरीजों के पहुंचने के कारण अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी भीड़ बढ़ गई। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सभी मरीजों के इलाज में जुटे रहे। कॉलेज कर्मियों के अनुसार करीब 50 छात्र और कर्मियों के प्रभावित होने की सूचना है।
6: इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट लोग आए थे, कंप्लेन था, सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का केस था। मैंने सभी को देखा है, सभी बच्चे स्टेबल है। वो लोग बता रहे थे कि प्रसाद खाए थे जिसके कारण ऐसा हो गया है, तो लेकिन सभी लोग ठीक हैं।
1: अब सवाल घटना की वजह को लेकर है। 17 सितंबर को कॉलेज परिसर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन हुआ था। बताया जा रहा है कि पूजा में शामिल कुछ लोगों ने प्रसाद का सेवन किया था। इसके बाद शुक्रवार को कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई। ऐसे में प्रसाद को संभावित वजह माना जा रहा है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
7: मतलब उसमें बहुत लोगों को फ्लू का भी शिकायत है, सर्दी खांसी फीवर भी आ रहा है, कई लोगों को उल्टी दस्त भी है। तो एग्जैक्ट रीजन तो जांच जब हो जाएगा तो उसमें हम लोग बता पाएंगे डिटेल में।
1: कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही बीमार छात्र छात्राओं और कर्मियों को अस्पताल भेजा गया। कारणों की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम की रिपोर्ट के बाद ही फूड पॉइजनिंग की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल कॉलेज परिसर की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक।
3: खबरें जारी रहेंगी, लेकिन अभी वक्त हो चला है हेडलाइंस का।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें।
2: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर बंगाल से दिल्ली तक संग्राम। ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 19 साल पुराने केस में गिरफ्तार। राहुल, खड़गे, ममता ने उठाए सवाल। आज कांग्रेस का पूरे राज्य में प्रदर्शन। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम। छात्रों की गूंज, पेपर लीक परीक्षा और रोजगार होंगे मुद्दे। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज। कांग्रेस का आरोप, अडंगा डालने की लगातार हुई कोशिश। मिशन 2027 से पहले बीजेपी का रोजगार वाला दाव। आज 51,000 युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने यूपी में 1,00,000 सरकारी नौकरियों का किया ऐलान। कानपुर में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर सुबह सुबह चला बुलडोजर। अवैध स्ट्रक्चर और बाउंड्री वॉल ध्वस्त। नोटिस के बाद केडीए का एक्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। और आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद गुस्सा। परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़े जाने पर कैंपस से निकालने की धमकी का आरोप है। आइए अब आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। नोएडा सेक्टर 10 की फर्नीचर कंपनी में भीषण आग। लाखों का सामान जल गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने काबू पाया। रोहतास में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की मौत, 5 से ज्यादा घायल। ट्रक को आग लगाई गुस्से में लोगों ने। बिजनौर में कंबल ओढ़कर बैंक में घुसा चोर। स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ा, अलमारी का ताला नहीं टूटा तो खाली हाथ भागा। गुना में वीआईपी ड्यूटी से नदारद होकर शराब पीने का आरोप। पुलिसकर्मी ने किया हंगामा। वायरल वीडियो के बाद एसपी ने कांस्टेबल को सस्पेंड किया। पुणे में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 3 ट्रकों की टक्कर, 1 व्यक्ति के फंसे होने की थी आशंका। कानपुर में केडीए का बुलडोजर एक्शन। 500 वर्ग मीटर सरकारी जमीन से ज्यादा का कब्जा मुक्त। मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी ने सरकारी जमीन पर बनाया था कब्रिस्तान। कार्रवाई के दौरान पुलिस पीएसी और महिला पुलिस बल की तैनाती रही। कब्रिस्तान पर नगर निगम की कार्रवाई के बाद हंगामा। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई, कोर्ट जाने की बात कही। कानपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर निगम की कार्रवाई पर विरोध। मुस्लिम पक्ष बोला, कई सालों से यहां मौजूद है कब्रिस्तान। नगर निगम की कार्रवाई के बाद कब्रिस्तान पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कहा कार्रवाई गलत, मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। बंगाल उपचुनाव से पहले जारी सियासी घमासान। नंदीग्राम से ममता के उम्मीदवार ने नाम वापस लिया। कांग्रेस प्रत्याशी समर्थन के बाद गिरफ्तार। मिलन प्रधान पर 2007 की हत्या मामले में कार्रवाई। 3 हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 वारंट निलंबित। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का विरोध। आज पूरे बंगाल में नंदीग्राम चलो अभियान। मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस, चुनाव आयोग से भी शिकायत करेगी। कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा गिरफ्तारी को सहयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध। टीएमसी के नाम और निशान पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ममता गुट, चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती। टीएमसी के चुनाव चिन्ह विवाद पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस खुद भस्मासुर है। राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद का जवाब, बोले कांग्रेस का इतिहास याद कीजिए। सूत्र के मुताबिक राहुल गांधी से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, हम साथ हैं और हमारा लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से हटाना। लिफाफा चुनाव चिन्ह पर आईएसएफ की आपत्ति। नौशाद सिद्दीकी बोले, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंदौर में आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। करीब 1.5 घंटे के कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर छात्रों से बात होगी। 31 शर्तों के साथ पुलिस ने मंजूरी दी है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद। 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का आरोप, लगातार कार्यक्रम रोकने की कोशिश। इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जुटेंगे छात्र। कांग्रेस का दावा, 1,00,000 तक पहुंच सकती है संख्या। छात्रों की गूंज में मध्य प्रदेश के परीक्षा मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। एमपी, पीएससी और व्यापम पर भी चर्चा। पीएम मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। 20वें रोजगार मेले में देश भर के 45 केंद्रों से जुड़ेंगे युवा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देंगे नियुक्ति पत्र। यूपी में योगी सरकार का बड़ा भर्ती अभियान। अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। योगी की तरफ से यूपी में आज से शुरू होगी 1,00,000 सरकारी भर्ती का महाअभियान। पुलिस होमगार्ड में 77,000 पद। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का यूपी में मिशन तेज। विनोद तावड़े लगातार कर रहे संगठन की जमीनी समीक्षा। पूर्वांचल और अवध पर बीजेपी का फोकस। विनोद तावड़े कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के फीडबैक लेंगे। 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर तांबड़े का खास जोर। अखिलेश यादव के लोकदल प्रमुख सुनील सिंह की मुलाकात, 2027 चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। लोकदल का 2027 में करीब 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, अखिलेश को सीएम बनाने का लक्ष्य बताया। आरएलडी नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई, पत्नी चारू चौधरी और बेटियां साहिरा इलेशा मुलाकात का हिस्सा बनी। पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, फतेहगढ़ साहिब से आज दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी रेखा गुप्ता। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पर सियासत तेज, रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमले का आरोप, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। पंजाब में रवनीत बिट्टू के काफिले पर कथित हमला, पत्थरबाजी और अंडे टमाटर फेंकने का आरोप। बिट्टू के काफिले पर हमले को लेकर राघव चड्ढा का आप पर हमला, बोले पंजाब में कानून व्यवस्था ठप। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भगवंत मान ने सरकार ने डीए में 8% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यूपीआई पर एमडीआर को लेकर विवाद, कांग्रेस ने संसदीय समिति के दावे पर उठाए सवाल, मनीष तिवारी बोले विपक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। यूपीआई एमडीआर पर मनीष तिवारी का पलटवार, बोले समिति ने सिर्फ राजस्व मॉडल तलाशने को कहा था, एक्सप्लोर शब्द का मतलब शुल्क लगाने की मंजूरी नहीं। यूपीआई एमडीआर पर कांग्रेस का विरोध, जयराम रमेश ने समिति अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाए, रमेश बोले विपक्ष के समर्थन की बात गलत तरीके से पेश हुई। संसदीय समिति के अध्यक्ष का जवाब, भर्तृहरि मेहताब बोले रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई गई, सब कुछ रिकॉर्ड पर। यूपीआई एमडीआर पर कांग्रेस और सरकार के दावों में टकराव, शुल्क लागू करने की तैयारी, सरकार का दावा एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालने की व्यवस्था होगी। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास आयोजन, 11,000 दिए जलाकर की गई लंबी उम्र की कामना। भजन क्लबिंग और आधुनिक संगीत के अनूठे संगम के बीच युवाओं ने पीएम मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की, कैंपस को रोशन कर जेंजी ने व्यक्त की कृतज्ञता। उज्जैन में देश की 6वीं धर्म संसद का अवंतिकापुरी में हुआ विधिवत शुभारंभ, मोहन भागवत ने युवाओं को बताई धर्म की परिभाषा, बोले धर्म बांधता नहीं मुक्त करता है। गुरुग्राम गोल्फ कोर्स हिट एंड रन केस मामले में दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 1 अक्टूबर 2026 को अगली सुनवाई। देशभर में गणपति बप्पा के विसर्जन दर्शन के लिए उमड़ रहा जनसैलाब, 5वें दिन लालबागचा राजा के दर्शन की अनोखी छटा दिखी। गणेश गली मुंबई के राजा के दरबार में भी दर्शन अभिलाषियों की भीड़ देखी गई। संतों के योगदान की कथाओं से संबंधित झांकियों से सजावट की गई, इस बार अपना 99 साल मना रहे हैं गणेश गली उत्सव मंडल। मुंबई के किंग सर्कल स्थित जीएसबी सेवा मंडल में सजा बप्पा का दरबार, सबसे महंगा माना जाता है इसे। 66 किलोग्राम से अधिक शुद्ध सोने और 335 किलोग्राम चांदी से सजाए गए हैं गजानंद, 703 करोड़ रुपए का बीमा हुआ है। सतना की बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, बिल्डिंग से अब तक 2 बच्चों को निकाला गया सुरक्षित। तेलंगाना के करीमनगर में बाइक की टक्कर से 63 साल के बुजुर्ग की मौत हुई, उपसरपंच के पिता थे मृतक। रंगारेड्डी के शादनगर में स्कूल की सीढ़ियों से गिरने से 4वीं कक्षा की छात्रा की मौत, जांच जारी। कोटपुतली में 11,000 केवी की लाइन टूटने से घरों में दौड़ा करंट, एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे, ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। मैनपुरी में 2 मंजिला मकान गिर गया, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। खेड़ा में टोल प्लाजा पर कार की भीषण आग लग गई, कार में टोल बूथ को भी नुकसान हुआ। पुरुलिया में महिलाओं को कपड़े पहनकर होटल में छुपकर रह रहे थे 4 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक, गिरफ्तार कर लिया गया सबको। बिजनौर में शादी में भाग देने के लिए महिला ने गैंग के साथ ज्वेलरी शोरूम में की 8 लाख की चोरी, 2 गिरफ्तार, जेवर बरामद। गुजरात के अमरेली में किराए के मकान में पिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जबकि उसकी 5 साल की बच्ची का शव फ्रिज के अंदर से मिला। तेलंगाना के खम्मम में स्थानीय मुद्दों पर वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर दबाव, शहर छोड़ने की बात कहते हुए भावुक हुए। मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में बीजेपी विधायक के कीचड़ में गाड़ी फंसी, ट्रैक्टर से खींचकर ग्रामीणों ने बाहर निकाला, वीडियो वायरल। जमशेदपुर में बेकाबू स्कूल वैन डिवाइडर पर चढ़ी, वैन में 14 छात्र सवार थे, सभी बच्चों को चोट आई। सोनीपत में नाबालिग बच्चे की हत्या, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार किया, देर रात तक शमशान घाट पर हंगामा होता रहा। औरैया में स्कूली बस पलटने के मामले में एक्शन, लापरवाह ड्राइवर का लाइसेंस रद्द हुआ, बस जब्त। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाइक सवार युवक पर भारी भरकम पेड़ गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। बागपत में ढाबे पर खाना खाने के बाद बेटे से मारपीट हुई, बुजुर्ग का मुंह कपड़े से बांधा, ढाबा WWE का रिंग बन गया। सहरसा में 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, पैसों के लेनदेन में युवक की हत्या की गई। दिल्ली में पैदल जा रहे व्यक्ति को कार ने जोरदार टक्कर मारी, व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में कार ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक कार में बम्पर में फंसी रही, कई मीटर तक घसीटा कार चालक ने। इटावा में 50 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई, भुट्टी की बोरियों में छुपाकर पंजाब से बिहार ले जा रहे थे दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार हुए। हिमाचल के चंबा में दूसरे दिन भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखी। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तुलाइल घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, प्रकृति का सुंदर नजारा दिखा। राजस्थान के बारह में देवदूत बने ग्रामीण और पुलिस के जवान, बरसाती नाले में फंसे दो संतों को रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र बीड जिले में डेढ़ महीने के सूखे के बाद कड़कती बिजली के साथ बारिश, किसानों ने राहत की सांस ली। जूनागढ़ के काड़िया रोड पर एक साथ छह शेर सड़क पार करते हुए दिखाई दिए, वीडियो वायरल हो रहा है। महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है, 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। प्रेम कीटाणु का चौथा गाना इश्क का गुलाम जारी, 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है फिल्म। ऑस्कर के लिए जाएगी मराठी थ्रिलर फिल्म गोंधल, भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री में 30 फिल्मों को पछाड़ा। म्यूजिकल लव स्टोरी मैं ना रहा मेरा का टीजर रिलीज, फिल्म में अध्ययन सुमन के साथ मिस दिवा 2022 रह चुकी नई कलाकार दिविता राय दिखाई देंगी। पर्दे पर पहली बार महान गायिका का किरदार दबाएंगी रश्मिका मंदाना, भारतीय सिनेमा की महान सिंगर MM सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक में बनेंगी अम्मा। पाकिस्तान के कुवैत में बड़ा बम धमाका, 31 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा घायल। यूक्रेन के ज़ापोरिज्या शहर पर रूस का बड़ा ड्रोन हमला, बुनियादी ढांचे समेत शॉपिंग मॉल को बनाया गया निशाना। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद रूस में पहली बार हो रहे संसदीय चुनाव, 3 दिनों तक चलने वाले चुनाव में 450 सीटों वाला स्टेट ड्यूमा के लिए मतदान। रूस के समर्थक और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो का बड़ा बयान, कहा यूरोप बड़े युद्ध के मुहाने पर, शांति के लिए प्रयास जरूरी है। ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने पर दक्षिण कोरिया की सरकार का बड़ा फैसला, अमेरिका की इस लड़ाई में अपनी सेना उतारने से इनकार किया। ईरान के IRGC का दावा, हॉर्मुज में टोगो के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर हमला किया और कब्जा कर लिया। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने मक्का पर हूती विद्रोहियों के हमलों से इनकार किया, कहा यह घिनौना झूठ है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरानी लोगों ने अपनी सरकार के समर्थन में निकाली बड़ी रैली, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद विरोध और एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शन। दक्षिण फिलीपींस के हाई स्कूल में भीषण गोलीबारी से हड़कंप, 16 वर्षीय हमलावर समेत 3 छात्रों की मौत हो गई, 8 घायल। दक्षिण चीन सागर में चीनी और फिलीपींस के जहाजों की टक्कर, फिलीपींस का आरोप, चीन के तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस की मछली पकड़ने वाली नाव को टक्कर मारी। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, IIT बॉम्बे से बड़ी खबर है, जहां छात्र की आत्महत्या के मामले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सेकंड ईयर के छात्र ने आत्महत्या की, जिसके बाद कैंपस में लोगों का आक्रोश बढ़ गया। छात्रों का आरोप है कि IIT प्रशासन की प्रताड़ना की वजह से छात्र ने आत्महत्या कर ली। जिस छात्र ने आत्महत्या की वो सेकंड ईयर में था, परीक्षा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। ये हालांकि IIT प्रशासन का दावा है कि उसने छात्र के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बजाय उसे बुलाकर काउंसलिंग दी गई। प्रताड़ना के आरोपों को IIT ने खारिज किया। इस घटना से पूरे परिसर में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर छात्रों ने कैंपस के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
1: देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT मुंबई, जहां देश भर से लाखों छात्र अपने सुनहरे भविष्य को साकार करने के लिए आते हैं, लेकिन आज इसी IIT मुंबई का जो कैंपस है वो भारी तनाव में है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के IIT जो कैंपस है उसके बाहर। दरअसल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सेकंड ईयर के छात्र साहिल वाकोड़े की मौत, जिसने अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि IIT प्रशासन का कहना है कि साहिल परीक्षा में ChatGPT का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था, जिसके बाद सिर्फ उसकी काउंसलिंग हुई थी। लेकिन कैंपस के छात्रों की कहानी बिल्कुल अलग है। छात्रों का सीधा आरोप है कि साहिल को 1 साल के लिए सस्पेंशन और हॉस्टल से बेदखल करने की धमकी दी गई थी और इसी मानसिक दबाव ने उसकी जान ले ली और छात्र अब सीधे डायरेक्टर

0: बातचीत कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि क्योंकि अभी माहौल जो है पूरी तरह शांत है और जो बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पूरे मसले को सुलझा लिया जाएगा। एजाज खान, मुंबई आज तक।
1: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर
2: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: ओला ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
5: अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
7: ओला बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट।
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: अखिलेश की चुनावी तैयारी फिलहाल दफ्तर के अंदर और दफ्तर के बाहर ज्यादा नजर आ रही है। दफ्तर के अंदर अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एआई वाले वीडियो दिखाते हैं और दफ्तर के बाहर अब अखिलेश का पीडीए रथ भी तैयार होकर आ चुका है। यही वो समाजवादी रथ है जिस पर सवार होकर अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक यात्रा की तारीख, शेड्यूल, रूट का खुलासा नहीं किया, लेकिन चमचमाती बसें जरूर पहुंच चुकी हैं। 15 मीटर लंबी मल्टी एक्सेल एसी बस में बुलेट प्रूफ शीशे हैं। छत के ऊपर पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है। 6 लोगों की मीटिंग के लिए सोफा कम बेड है। लिविंग एरिया, किचन, वॉशरूम से लेकर एलईडी स्क्रीन। दरअसल ऐसी ही बस में अखिलेश यादव पहले भी चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन इस बार की बस आते ही बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ पीडीए के फॉर्मूले को लेकर मोर्चा खोल दिया, क्योंकि बस पर पीडीए का असली फुल फॉर्म लिखा गया है।
1: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए। पीडीए पूरी तरह से फर्जी है। सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
0: दरअसल अखिलेश के समाजवादी रथ वाली बस में बाईं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है, सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा। बस के दाई ओर एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और साथ में ये स्लोगन लिखा है, पीडीए सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का संघर्ष है। बस पर समाजवादी पीडीए यात्रा के नीचे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक भी लिखा है। बस पर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं की तस्वीरें। दरअसल समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि इसी फॉर्मूले के साथ संविधान के मुद्दे वाली कॉकटेल ने उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी और तब 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2019 में 62 से घटकर 33 रह गईं और 2014 के बाद पहली बार पार्टी की कुल सीटें संसद में बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई।
2: जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने रथ में बी आर अम्बेडकर के अलावा 18 महापुरुषों को जगह देकर एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन सामने है बीजेपी का संगठन और सनातन, जो बीजेपी लगातार अपनी पिच से बताती आई है। अब देखना यह है क्या रथ यात्रा के ये पहिए अखिलेश को 27 की सत्ता तक पहुंचाएंगे या बीजेपी कई संगठनात्मक ताकत बीच रास्ते रथ को रोक लेगी, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन संजय के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

चुनाव को लेकर बंगाल से दिल्ली तक संग्राम। ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 19 साल पुराने केस में गिरफ्तार। राहुल खड़गे, ममता ने उठाए सवाल। आज कांग्रेस का पूरे राज्य में प्रदर्शन। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम। छात्रों की गूंज, पेपर लीक परीक्षा और रोजगार होंगे मुद्दे। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज। कांग्रेस का आरोप अड़ंगा डालने की हुई कोशिश। मिशन 2027 से पहले बीजेपी का रोजगार वाला दावा। आज 51,000 युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने यूपी में 1,00,000 सरकारी नौकरियों का किया ऐलान। कानपुर में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर सुबह सुबह चला बुलडोजर। अवैध स्ट्रक्चर और बाउंड्री वॉल ध्वस्त। नोटिस के बाद केडीए का एक्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। और आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद गुस्सा। परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़े जाने पर कैंपस से निकालने की धमकी का आरोप।

0: सुबह के 10 बज चुके हैं। बुलेटिन में चार बड़ी खबरों की बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। और देखिए चार बड़ी खबर, वो आपको बता दे क्या है। पहली जो बड़ी खबर होगी वो होगी पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। बंगाल की नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ममता गुट की प्रत्याशी चुनाव से अपना नाम वापस ले चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी को बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद बंगाल सरकार और विपक्ष में जो संग्राम है वो इस वक्त एकदम चरम पर पहुंच गया। इसके साथ बात आज इंदौर में होने वाले राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की भी करेंगे, जिसकी 31 शर्तों को लेकर एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ कांग्रेस आमने सामने हंगामा। साथ ही बात 20वें रोजगार मेले की भी करेंगे, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को पीएम मोदी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में कब्रिस्तान पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ और उसके बाद क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो अपने संसदीय क्षेत्र गुना में नागरिकों से भिड़ गए। नागरिकों को धमकी देने का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से सांसद हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम के लिए सिंधिया जा रहे थे, तभी रास्ते में गुलाबगंज के पास जनता ने रोका। ये उसी वक्त का वीडियो है, क्योंकि लंबे समय से वहां पर सड़क नहीं है। अब इतने वक्त से सांसद हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार सांसद, पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं यहां से। हाथ में तख्ती लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए, और आम मतदाता ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बोला। एक शख्स ने सिंधिया को अपने ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर रोड नहीं होगी तो फिर हम वोट नहीं देंगे। इस बात पर सिंधिया भड़क गए और धमकी देने लगे कि ऐसी बातें मेरे से तो बिल्कुल मत करना। मतलब एक मतदाता जो
1: वोट के मनीष जी आप शांत रहना, हम हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार समय से पहले ये रोड डल जाए, तो ये निवेदन है। वोट के हम वोट बिल्कुल कोई नहीं डालेगा।
2: हाँ हाँ, ये भाषा मेरे साथ कभी उपयोग मत करना,
1: समझ
2: नहीं नहीं नहीं किसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ। आप आके निवेदन करो, मेरी जिम्मेदारी है काम करना है, ठीक है।
1: मनीष जी आप शांत रहना, हम हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार समय से पहले ये रोड डल जाए, तो ये निवेदन है। वोट के हम वोट बिल्कुल कोई नहीं डालेगा।
2: हाँ हाँ, ये भाषा मेरे साथ कभी उपयोग मत करना, समझ
1: नहीं साहब आप
2: नहीं नहीं नहीं मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ।
1: नहीं तो
2: आप आके निवेदन करो, मेरी जिम्मेदारी है काम करना है, ठीक है।
1: मनीष जी आप शांत रहना, हम हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बार समय से पहले ये रोड डल जाए, तो ये निवेदन है। वोट के हम वोट बिल्कुल कोई नहीं डालेगा।
2: हाँ हाँ, ये भाषा मेरे साथ कभी उपयोग मत करना, समझ
1: नहीं साहब आप
2: नहीं नहीं नहीं मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ।
0: वोट दे दिए, एक वोट देने के बाद फिर कुछ ऐसा ही होता है आम जनता के साथ। चलिए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। नया सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है यहां पर। 6 अक्टूबर को नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव पर संग्राम बढ़ गया। पहले ममता गुट की ओर से प्रत्याशी बनाई गई संचिता प्रधान डे ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, और इस मुलाकात के कुछ ही देर बाद नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन सूबे की सियासत तब और गर्मा गई जब बंगाल पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया। अब कांग्रेस इसे लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। बंगाल में 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासी जंग बढ़ती दिख रही है। अब जरा ये देखिए, 6 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, जो ममता की तरफ से यानी तृणमूल कांग्रेस, ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी थी वो शुभेंदु अधिकारी से मिलती हैं, उसके बाद अचानक अपने नामांकन वापस ले लेती हैं, तो अब उसके बाद कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर राहुल गांधी हमला बोलते हैं।

0: don't think that we are going to give our support to Congress party.
1: टीएमसी में टूट के बाद साग की जंग बने नंदीग्राम सीट पर सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा।
0: To strengthen the Indian alliance. पहले से डिसाइड किया था कांग्रेस को ऐसी दुनिया में सपोर्ट करेगा। उसका कैंडिडेट अच्छा है।
1: लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल है।
2: हमारा डिमांड है तुरंत उसको तुरंत रिलीज करना चाहिए, रहा करना चाहिए। कल स्क्रूटिनी है, ये क्या हो रहा है? इतना डर। सीएम बोल रहा है हम जीतेंगे। अरे कैसे जीतेंगे? आप इलेक्शन कमीशन को मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस को मिसयूज कर रहे हैं, एक पार्टी को तोड़ने के लिए पूरा ताकत दे रहे हैं।
3: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना, अंगूर फॉल टॉक, ग्रेप्स आर सावर, तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है।
1: आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि जो नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी की सियासी उभार के सबसे अहम केंद्रों में रही, वहां उपचुनाव से पहले ऐसा क्या कुछ हुआ कि बात दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन तक पहुंच गई और कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी में नई जंग छिड़ गई। दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया।
4: इसको मैं क्या बोलूंगा, अभी तो अरेस्ट दिखाया नहीं, पुलिस आके लेके गया, बट अभी तो अरेस्ट शो नहीं किया, पता नहीं चल रहा है क्या है।
5: हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो आज गुंडागर्दी करने वाला के गुंडा दमन बिल भी लाया है, कोई यहाँ पे किसी का कोई यहाँ बंगाल में कोई करप्शन करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, किसी का कोई दुष्कर्म करने वाला कोई रहेगा तो किसी को रियायत नहीं किया जाएगा।
1: नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही से लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। साफ है कि नंदीग्राम सीट पर ये लड़ाई और आगे बढ़ती दिख रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
6: इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, साउथ की किसी फिल्म में इतना थ्रिलर नहीं देखने को मिलता जितना पश्चिम बंगाल के चुनावों में इस वक्त देखने को मिल रहा है, और क्या क्या देखने को मिलेगा अभी?
7: बिल्कुल, और वो भी एक उपचुनाव में इस तरह का जो घमासान देखने को मिल रहा है वो काफी दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्थान जो है वो नंदीग्राम से हुआ था, और कल देखिए जिस तरह से ईसी का जो फैसला आया जिसमें पहली बार ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई और ऑफिशियली दो गुट में बट गई है, और जब ममता बनर्जी के खुद का कैंडिडेट संचिता प्रधान दे मुख्यमंत्री से मिले और कुछ ही घंटों में उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, फिर ममता बनर्जी के पास और कोई चारा नहीं बच गया था इंडिया गठबंधन का को सामने लाने का और कांग्रेस को अपना समर्थन देने का, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को भी अब अरेस्ट कर लिया गया है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ जो चार पेंडिंग केसेस थे, पुराने केसेस थे, उसमें से तीन हत्या के मामले थे जिसके ऊपर कार्रवाई अब हुई है, उसको लेके कंप्लेन किया था ममता के खिलाफ जो बागी खेमा है, रितम्बरतो बैनर्जी का जो खेमा है, उन्होंने कंप्लेन दाखिल किया था इस कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ कि उन्होंने जो नामांकन के दौरान जो कागजात उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को दिया है उसमें इन सब चीजों का मेंशन नहीं है, और इसके बाद पुलिस एक्शन हुआ है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं जहां एक और ये कांग्रेस के खिलाफ कहा जा सकता है एक एक्शन हुआ है, लेकिन जो क्षति है वो सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका खुद का कैंडिडेट वहां से पिछड़ गए और कांग्रेस को समर्थन
6: मतलब
7: करने
6: बहुत
7: के
6: कुछ अभी और देखने को मिलेगा इंद्रजीत। यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी अभी और सवाल बाकी हैं। वहीं उधर टीएमसी के सिंबल को फ्रीज किए जाने के मुद्दे पर भी पश्चिम बंगाल में संग्राम जारी है। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता गुट ने पार्टी का नाम सिंबल फ्रीज किए जाने और पार्टी में टूट के खिलाफ चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष दो अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में चुनाव आयोग के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत असली पार्टी के नाम और दो फूल घास के प्रतीक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी याचिका में 10 बागी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हो रही देरी पर सवाल उठाया गया है। इंद्रजीत बने हुए हमारे साथ। इंद्रजीत, लगता नहीं है कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से जाने देंगी पार्टी सिंबल को, और अभी ये लड़ाई बहुत लंबी होना बाकी है।
7: बिल्कुल, देखिए कल जब शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब ये सवाल उनसे पूछा गया था आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा था कि जिस किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार है। तो जहां एक और उनकी सिंबल उनसे छीन गई है, और इलेक्शन कमीशन का जो इंटरिम ऑर्डर कल आया था परसों, उसको तृणमूल कांग्रेस अब चैलेंज कर रहे हैं, और वो भी एकदम एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और 20 जो एनसीपीआई के सांसद हैं, जो एनसीपीआई के साथ जुड़ गए हैं, और यहाँ पे बागी खेमे में जो 60 विधायक हैं उनके खिलाफ अलग अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रही है, वो पेंडिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के खेमे को ये लगता है कि जो ओवरऑल लीगैलिटीज है या टेक्निकलिटीज है वो उनके फेवर में है, और यही कारण है कि उसको वो चैलेंज करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनको लगता है वहां से कहीं ना कहीं उनको एक रिलीफ मिल सकता है।
6: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इंद्रजीत। चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की, जिसका आयोजन आज इंदौर में होने जा रहा है, और ये राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का 5वां संस्करण है। लेकिन इंदौर में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से अनुमति और वेन्यू को लेकर विवाद बना हुआ था। पहले नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम प्रस्तावित था लेकिन वहां परमिशन नहीं मिली, फिर तारीख 12 से बढ़ाकर 19 सितंबर की गई और आईडीए ग्राउंड को नया वेन्यू बनाया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण प्रशासन और इंदौर पुलिस ने 31 शर्तें रखी हैं। इनमें पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए गठित जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ भी दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। तो आईडीए ग्राउंड में यह कार्यक्रम होगा, 31 शर्तों के साथ अनुमति मिली है। अब इसको लेकर देखिए जीतू पटवारी हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी तरफ से सवाल भी उठाए गए कि कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से यह कार्यक्रम ना हो सके बीजेपी की तरफ से।
8: 80 साल की देश की आजादी के बाद अब देश में ये चर्चा होनी चाहिए कि शिक्षा अब सरकार का दायित्व है, उसको निभाना पड़ेगा, उसको कानून बनाने पड़ेंगे, उसको उस अधिकार संपन्न राष्ट्र जिसमें एक बच्चा ये कहे कि शिक्षा मुझे सरकार देगी ये मेरा अधिकार है, इस तरह की सोच पर चर्चा हो। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी उस डिबेट को करना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं, प्रदेश के अभिभावकों से चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए इस सकारात्मक काज में आप सबके सहयोग की अपेक्षा। इंदौर शहर को बहुत साधुवाद।
9: इंदौर शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है और यहाँ लगभग 1.5 लाख छात्रों ने तो अभी अपने आप को पंजीयन करा चुके हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, हमारे प्रदेश कांग्रेस के और सभी कांग्रेस जन मिलकर इसमें NSUI का यूथ कांग्रेस के लड़कों ने, बच्चों ने खूब काम किया है और हमें तो पूरा भरोसा है कि अति सफल होगा।
6: तो जहां एक तरफ कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए, वहीं पुलिस का कहना है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर आयोजकों के सामने 31 सुरक्षा शर्तें रखी गई हैं। आयोजकों के सामने
10: कि राहुल गांधी जी की जो जेड प्लस और ESLS सिक्योरिटी है, तो ऐसी स्थिति में उसके सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ आयोजनकर्ताओं से लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से कहां से उनको लाना ले जाना है, उनके रूट के आवागमन को लेकर के, प्लस इसके अलावा जो आयोजन स्थल पर इनकी इमरजेंसी जो सर्विसेज को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, कितने वॉलंटियर्स ये प्रदान कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को लेकर कितने महिला वॉलंटियर इनके द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, इसके अलावा फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था है, इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी की क्या व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि लगातार इनसे बातचीत चल रही है। और ये 31 बिंदु इस तरह से नहीं दिए गए, ये एक रिफरेंस पॉइंट होता है वर्मा कमीशन का। हर सिक्योरिटी जो VIP सिक्योरिटी होती है, जेड प्लस जो ESL सिक्योरिटी होती है, उसमें से कुछ सुरक्षा मानक जो होते हैं उनमें केवल संदर्भ दिया गया था।
6: रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश से बात करते हैं उनसे। रवीश, ये बताइए कि 31 शर्तों में से ऐसी कौन सी वो खास शर्तें हैं जिसके चलते कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार अड़ंग लगाने की कोशिश कर रही है कार्यक्रम में?
11: देखिए, वैसे तो 31 शर्तें हैं, लेकिन 2-3 ऐसी प्रमुख शर्तें हैं जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं प्रशासन की मंशा पर। देखिए, सबसे बड़ी शर्त क्या रखी है, सबसे बड़ी शर्त दिखाई है राहुल गांधी के पिता यानी राजीव गांधी का जब हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद जो जांच आयोग बना था उसको सामने रखा है इस बार प्रशासन ने कांग्रेस के सामने, और कहा है कि जांच आयोग ने तब जो सिफारिशें की थी भीड़ नियंत्रण के लिए या फिर आपात स्थितियों में निकासी के लिए, उन तमाम शर्तों को सामने रखा है। यानी राहुल गांधी जब आएंगे तो उनके कांग्रेस पार्टी के सामने ये शर्त रखी है कि राजीव गांधी का जब हत्याकांड हुआ था उस दौरान जो जांच आयोग ने सिफारिश की थी आने वाले दिनों में जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो, रैलियां हो, उसमें क्या इंतजाम होने चाहिए, उसको शामिल किया गया है इन शर्तों में। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस उठा रही है, देखिए, ये छात्रों की गूंज आवाज, छात्रों की गूंज का मतलब है जो युवा छात्र होंगे, छात्राएं होंगी, उनको बुलाया जाएगा राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में। अब राहुल गांधी के चर्चा में जब वो आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का ही नहीं सिर्फ मध्य भारत का सबसे बड़ा आज की तारीख में शिक्षा का केंद्र है, वो ऐसा शहर है जहाँ पे IIT और IIM दोनों है, बड़ी संख्या में हॉस्टल है वहां पे, तो जो हॉस्टल संचालकों को चिट्ठी भेजी जा रही है प्रशासन की तरफ से, उनसे एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि अगर आपके हॉस्टल से कोई छात्र या छात्राएं कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी हॉस्टल संचालक जो कि हॉस्टल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, लेकिन हॉस्टल के बाहर छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, तो उसे लेकर के भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम है क्योंकि वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष।
6: और ये अभी मामला थमने वाला नहीं, अब तो राहुल गांधी आज पहुंचेंगे, उससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शुक्रिया रवीश इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका। देखिए, युवाओं का रोजगार इस दिनों राजनीति का एक अहम मुद्दा बना हुआ है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको लेकर जमकर राजनीति हर जगह होती है। अब इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल इस मुद्दे को उठाएंगे, तो दूसरी ओर पीएम मोदी 20 रोजगार मेले की 50,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां पत्र सौंपेंगे। आप समझिए कि नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, जो संगठन हैं, वहां पर हुई हैं। रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा। पीएम मोदी नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल होंगे। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके होंगे।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
4: ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का
3: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
0: अब मैं क्या ही बोलूं?
4: परिवार अटूट भरोसा।
5: बहुत टायर्ड हो गई।
6: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx, JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर बंगाल से दिल्ली तक संग्राम, ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 19 साल पुराने केस में गिरफ्तार, राहुल खड़गे, ममता ने उठाए सवाल, आज कांग्रेस का पूरे राज्य में प्रदर्शन। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज, पेपर लीक परीक्षा और रोजगार होंगे मुद्दे, पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज, कांग्रेस का आरोप अड़ंगा डालने की हुई कोशिश। मिशन 2027 से पहले बीजेपी का रोजगार वाला दावा, 51,000 युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र, सीएम योगी ने यूपी में 1,00,000 सरकारी नौकरियों का किया ऐलान। कानपुर में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर सुबह सुबह चला बुलडोजर, अवैध स्ट्रक्चर और बाउंड्री वॉल ध्वस्त, नोटिस के बाद केडीए का एक्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। और आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद गुस्सा, परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़े जाने पर कैंपस से निकलने की धमकी का आरोप,

0: एप्पल के लेटेस्ट आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स का इंतजार कल खत्म हो गया। भारत में इन लेटेस्ट आईफोन को लेने के लिए एप्पल के स्टोर्स पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। देश भर के सभी बड़े शहरों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। देश ने आज एक तरफ एप्पल का फोन खरीदने को लेकर दीवानगी देखी तो वहीं आम आदमी के संघर्ष से भी खबरदार हुआ, जो मरने के बाद भी खत्म ही नहीं होता। बिहार के बक्सर में एक लावारिस शव को जिस तरह से खींचा गया वो ना सिर्फ शर्मनाक था बल्कि सिर झुका देने वाला था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक भारत जो लाखों का आईफोन लेने के लिए कतार में लगी है, दूसरा भारत शव को घसीटा जा रहा है।
1: मेरे को फोनों में बहुत इंटरेस्ट है, हर साल मैं 17 प्रो जैसे मैंने पिछली बार भी लिया था तो इस बार मैं 18 प्रो मैक्स लेने आया हूँ 2TB। उसके लिए भाई काफी लोग वेट कर रहे हैं तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ भाई क्या इम्प्रूव करा है।
2: ज्यादा से ज्यादा फोन मिल जाए, बरगंडी कलर प्रो मैक्स, यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है।
3: मैं चाहूंगा कि मैं तो अपने लिए अपने बहन के लिए दोनों के लिए फोन लूंगा।
4: मैं पंजाब से आऊँ, सुबह 6 बजे से लेने लगा हूँ, दो लेते हैं फोन 18 प्रो मैक्स दो लेते हैं।
5: एप्पल के आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के लिए ये क्रेज याद दिलाता है कि शौक बड़ी चीज है। जबकि एप्पल आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1,70,000 से शुरू होती है।
4: बहुत अच्छा लगा, पहली बुकिंग हमारी हुई थी, हमारे को पहले फोन मिला है।
6: मैं एक्चुअली रात में 2 बजे आया था, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मेरी फ्लाइट 2 बजे आई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे सुबह से मैं वेट ही कर रहा था, तो अभी मेरे को फाइनली मिल चुका है। ये
7: बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है आईफोन 18 ले गए, एक नंबर का फोन। तो
8: इसके अंदर जो नया कैमरा आया है जो वेरिएबल अपर्चर उसके लिए, और इसका जो नया कलर है जो ब्यूटीफुल कलर है इसके लिए भी
9: कैमरा इस बहुत लाभ बढ़ा था। हाँ, तो इस बार उसका थोड़ा फीचर चेंज हो गया है, उसके जो एक कॉर्नर पे एक ई बटन दिखा रहा है कैमरा का एंड ऑल दिस ऑल, तो मैं नए फीचर्स ट्राई करने जा रहा था।
5: सोचिए, जो फोन 1,70,000 से शुरू होता है उसे लेने के लिए लोग रात में ही लाइनों में खड़े हो रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहरों में पहुंचने से भी नहीं हिचक रहे। ये सब उस देश में हो रहा है जहां प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख के आसपास, मतलब जितने रुपए एप्पल के दीवाने फोन पर खर्च कर रहे हैं उतनी औसतन भारतीय की सालाना कमाई है।
10: मेरा पहला वाला फोन जो है वो 17 प्रो मैक्स था, अभी मैं 18 प्रो पे अपग्रेड हुआ हूँ, इसके iOS 27 इसमें लॉन्च हुआ हुआ है और ये iOS बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है कम्पेयर टू फोन के, इसमें बैटरी लाइफ इसमें अच्छा दिया हुआ है, कैमरा अच्छा दिया हुआ है, AI अपग्रेड किया हुआ है सीरी के साथ, प्लस सिक्योरिटी इसमें बहुत ही अपग्रेड किया हुआ है और इको फ्रेंडली फोन है, इसलिए मैंने इसको प्री बुक करके इसको मैंने अभी मुझे 8:30 बजे डिलीवर।
11: बहुत खुश हूँ, मैंने प्री बुकिंग किया था, अभी सुबह मैं 7 बजे लाइन में लग गया था, अभी मेरे को फाइनली मिल गया है, तो मेरे को यही चाहता हूँ कि मेरे को पहला मोबाइल मिले। मैंने 12 तारीख को बुकिंग किया था 5:30 पर, जब उसका प्री बुकिंग स्टार्ट है उसी टाइम कर दिया था।
5: आर्थिक असमानता की चौड़ी होती खाई से जगाती ये तस्वीर देखी, ये बिहार के बक्सर की, जो बताती है कि गरीब आदमी का संघर्ष मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, उसे न जिंदा रहते सम्मान मिलता है न मरने के बाद। रेलवे के पोस्टमार्टम हाउस का ये कर्मचारी एक लावारिस शव को घसीटकर पोस्टमार्टम हाउस ले जा रहा है। मौत के बाद भी संघर्ष में गुजरे जीवन में अगर मौत के बाद भी घसीटकर उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे। ये दर्दनाक और शर्मनाक तस्वीर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था उसके कामकाज पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि इस लावारिस शव के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को ही दे दी गई।
12: आप बॉडी कहाँ से लेकर आए हैं?
13: बॉडी जो लेकर आए जो पुल है नए का हॉस्पिटल के सामने,
12: जी जी जी,
13: वही पुल के सामने ही मर गया था।
12: रेलवे के द्वारा आए हैं?
13: रेलवे के द्वारा है, भूरो इंजिन है, चार आदमी बॉडी कहीं काम है, तीन आदमी आते हैं तो हम बॉडी उठाते हैं, लेकिन जो भी 5,000 रुपये मिलता है तो 4,000 रुपया हमारा को मिलता है कॉफी, जो कि
12: अभी जो बॉडी आया था किस चीज का बॉडी था?
13: बॉडी रेलवे का है।
5: 31 अगस्त को रेलवे पैदल पुल के पास ये अज्ञात शव मिला था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया वो हमारे सिस्टम के असंवेदनशील होने को लेकर एक बार फिर याद दिलाता है।
14: आज ही हमको संज्ञान में आया है, जिसमें संज्ञान में आया उसी समय ने आपके डीएस के आपके इंक्वायरी सेटअप करने के लिए किया कि उसकी जानकारी दी, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रेचर डेड बॉडी को ले जाना होगा तो स्ट्रेचर लेकर गया, फोटोग्राफ वगैरह जो है वो वहाँ पे देखने से हमारा वो एक ही इम्प्लॉय वहाँ पे है, उस चेहरे से वो उनका नज़र नहीं आ रहा है। खैर जो भी तो होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो मैंने उसके लिए इंक्वायरी सेटअप करवा दिया है, उसकी जानकारी जिससे मिलती है उसके आगे। ये दिस इज इनह्यूमैनिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत हो रही थी तो किसी से कॉन्टेक्ट कर लेना चाहिए।
5: बक्सर में जो हुआ वो देश की कड़वी हकीकत है। देश के आम आदमी से सिस्टम का ये बर्ताव नया नहीं है, लेकिन ये तस्वीर उस आवाज को जरूर बल देती है जो देश में बढ़ती आर्थिक असमानता से खबरदार करती है, जबकि संतुलित विकास के लिए उल्टा होना चाहिए।
0: तो आर्थिक असमानता की जो हकीकत आपने देखी, आपको कड़वी जरूर लगी होगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, इंडियन एयरफोर्स को 2 तेजस MK1 लड़ाकू विमान और 3 स्वदेशी HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपे गए हैं। लंबे समय से एयरफोर्स को ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, जो आज किसी हद तक पूरी हो गई है। तो साथ ही HAL ने 4 नए ध्रुव हेलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड को सौंपे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आसमान के 3 सिकंदर।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को दो बड़ी सौगातें सौंपी हैं। पहला स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 दूसरा तेजस MK-1 ट्रेनर विमान। तेजी से बदलते वॉर प्लान और सरहदों को और सुरक्षित रखने के लिए भारतीय वायुसेना हर मोर्चे पर मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रही है। बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किए गए आसमान के दो नए सिकंदर, ये न सिर्फ सेना की ताकत को बढ़ाएंगे बल्कि दुश्मन का दिल भी दहलाएंगे। आज हम इन एयरक्राफ्ट की खूबियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा।
1: साथियों, आज हम एक साथ तीन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा कि आज HTT-40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।
0: पहले बात HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की। HAL ने भारतीय वायुसेना को HTT-40 सौंपा और इसे नाम दिया गया अंकुर। ये भारतीय रक्षा सेवाओं की शुरुआती पायलट ट्रेनिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 70 HTT-40 विमानों का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मौजूदा हैंडओवर इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिलीवरी की शुरुआत है।
2: भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पायलट के लिए एक अच्छी खबर है कि उन्हें अब देश में बना स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 मिलने जा रहा है। ऐसे तीन एयरक्राफ्ट का पहला बैच भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। और सबसे खास बात, अभी तक भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं, लड़ाकू विमान पायलट हैं, उन्हें विदेशी विमान पिलटस पर बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद उन्हें जो लड़ाकू विमान है वो उड़ाने का मौका मिलता है। लेकिन अब ये पहला HAL ने तैयार किया है स्वदेशी बेसिक ट्रेनर विमान HTT-40 जो भारतीय वायुसेना की जो लड़ाकू विमान पायलट हैं उन्हें ट्रेनिंग देगा। और ऐसे 40 बेसिक ट्रेनर HTT-40 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने जा रहे हैं। यहां बेंगलुरु से और इसके अलावा नासिक जो फैसिलिटी है HAL की, वहां पर ये HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान तैयार किए गए हैं।
0: हालांकि ये पहला स्वदेशी विमान नहीं है जिसमें भारतीय पायलट ट्रेनिंग लेंगे। इससे पहले भी इंडियन एयरफोर्स स्वदेशी HAL-HPT-32 दीपक जैसे ट्रेनर विमानों का इस्तेमाल कर चुकी है। HAL ने भारतीय वायुसेना को दूसरी डिलीवरी LCA-FOC ट्रेनर विमान की दी है। ये 4.5 जनरेशन का हल्का और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, तो सिंगल इंजन सुपरसोनिक फाइटर भी है।
3: इसमें देखिए, नाउ वी हैव आई थिंक नाउ अराउंड 60% अराउंड है बिकॉज इंजन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो द इंडियननेस परसेंटेज इज अराउंड देयर। स्लोली वी आर इंक्रीजिंग इन द नेक्स्ट कमिंग 97 एयरक्राफ्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट टू मोर देन 65-70%। And the capability of the aircraft is contemporary with whatever aircraft we have. We have the capability because it's already, this has been designed by Aeronautical Development Agency to have these capabilities, whether it is air-to-air refueling or the weapons or the sensor or the radar. It has already been designed and accordingly we are manufacturing.
0: रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2025 में HAL के साथ 97 तेजस MK-1A के लिए 62,370 करोड़ रुपए का नया कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस समझौते के तहत 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A विमान सौंपे जाने थे। इनमें 68 लड़ाकू विमान और 29 ट्विन सीट ट्रेनर शामिल हैं। तेजस MK-1 हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने के लिए हथियारों से लैस है। इन विमानों में बेहतर रडार, ऑटो पायलट, फ्यूल सिस्टम, सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब जैसी सुविधाएं हैं।
2: देश और दुनिया में युद्ध के हालात के बीच भारतीय वायुसेना को तेजी के साथ जो लड़ाकू विमान है देश का बना हुआ LCA Tejas Mk-1 की दरकार है और ऐसे में उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए तेजी के साथ इस लड़ाकू विमान पर जो पायलट हैं वो ट्रेनिंग कर पाए उसके लिए LCA Tejas Mk-1 जो FOC ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो अब तेजी के साथ भारतीय वायुसेना का में शामिल हो रहे हैं। ऐसे दो नए ट्रेनर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं और अब तक ऐसे कुल मिलाकर 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो जाएंगे क्योंकि बदलते हालात के बीच बड़ी संख्या में LCA और LCA Tejas Mk-1 जो लड़ाकू विमान है वो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। ऐसे 180 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को मिलने हैं और इसीलिए उसी तेजी के साथ भारतीय वायुसेना को ऐसे ट्रेनर की भी जरूरत है जिस पर तेजी के साथ जो पायलट हैं वो ट्रेनिंग कर सकें।
0: और HAL ने तीसरी डिलीवरी 4 ध्रुव NG हेलीकॉप्टर की दी है जो पवन हंस कंपनी को सौंपे गए हैं। ये पहली बार होगा जब सिविल सर्टिफाइड ध्रुव NG को सिविल एविएशन क्षेत्र में शामिल किया गया। ये HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित 5.5 टन का हल्का ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है।
2: इस वक्त मैं ध्रुव हेलीकॉप्टर के कॉकपिट पर मौजूद हूं। अभी तक HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर सेनाओं के लिए तैयार करता है यानी कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं लेकिन पहली बार HAL ने ध्रुव NG यानी कि सिविल में इस्तेमाल के लिए इसका सिविल वर्जन तैयार किया है और ऐसे पहले 4 ध्रुव NG जो हेलीकॉप्टर हैं वो पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी को दिए जा रहे हैं जिनका सिविल में इस्तेमाल होगा। और ये इसका इस्तेमाल की हम बात करें तो VIP मूवमेंट के लिए यानी कि चुनाव रैली हो या बाकी जगह इस्तेमाल हो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो भारत सरकार की उड़ान स्कीम में दूर दराज के इलाकों में लोगों की आवाजाही में इस्तेमाल होता है उस पर इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके कॉकपिट को हम आपको दिखाते हैं किस तरह का ये आधुनिक कॉकपिट है और कितने लोग इसमें आ सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं।

0: लेकिन ये 11 जो पीछे की 11 सीटें हैं ये वीआईपी मूवमेंट के हिसाब से या फिर दूसरे इस्तेमाल से इनको चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये एक सिविल हेलीकॉप्टर एचएल ने तैयार किया है, और क्योंकि इस वक्त भारत में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिविल क्षेत्र में, चाहे यात्राओं के लिए हो, धार्मिक यात्राएं हो, चार धाम यात्रा से लेकर वैष्णो देवी यात्रा, हर जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, ऐसे में ये एक बड़ी संभावना सिविल में ध्रुव हेलीकॉप्टर की हो सकती है।
1: ध्रुव एनजी को वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर ऑपरेशन, एयर एम्बुलेंस सेवाओं और हेली तीर्थ यात्रा सहित अन्य भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। मंजीत नेगी, बेंगलुरु आज तक।
2: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: In association with
3: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol. Signature finest cardamom seeds.
4: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
5: Wait, lifestyle ke liye 10 alag pages kyu follow karna? Health, fitness, yoga, mental wellness, sab kuch ek hi jagah. FitTok. Simple tips, expert insights, real conversations. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे, वॉच ओनली ऑन FitTok YouTube.
6: There is a very famous quote ki history repeat itself.
7: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
8: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
7: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में, तावड़े सीधे जमीनी स्तर का फीडबैक ले रहे हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। इस बार आरएसएस और बीजेपी कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं रखना चाहती।

आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। खबर है कि समन्वय बैठक में आरएसएस ने बीजेपी को 2027 चुनाव की वो बड़ी चुनौतियां बता दी हैं जिनसे बीजेपी को पार पाना है। आरएसएस की तरफ से बीजेपी के लिए यूपी में 5 चैलेंज बताए गए हैं। पहला है यूजीसी गाइडलाइन से सामान्य वर्ग का आक्रोश, दूसरा है पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ बना माहौल, तीसरा है रोजगार और शिक्षा, चौथा है निचले स्तर का भ्रष्टाचार और पांचवा है कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना। यानी बीजेपी ने अगर इन मुद्दों पर काम कर लिया तो आरएसएस को लगता है कि वो 2027 फिर से जीत जाएंगे। ये वो मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द लगातार अखिलेश यादव हमला करते रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, पेपर लीक हो, अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला हो, अखिलेश यादव ने इन्हें लगातार मुद्दा बनाया हुआ है। आरएसएस की तरफ से बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में ना फंसे, अपने मुद्दों और सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए जोर लगाएं, विपक्ष के मुद्दों का सटीक और तथ्यात्मक तरीके से जवाब देने पर जोर लगाएं। ये भी डर है कि विपक्ष जातिवाद का मुद्दा बनाएगा तो कहा गया है कि इससे भी बचना है। कुल मिलाकर बीजेपी को कहा गया है कि वो विपक्ष के नैरेटिव में उलझने के बजाय अपने मुद्दों और लक्ष्यों पर फोकस करें। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: सो सॉरी।

ऑनलाइन शॉपिंग में किसी प्रोडक्ट पर 50%, 60% या 70% डिस्काउंट देकर अगर आप खरीदारी का फैसला करते हैं तो नए साल से पहले थोड़ा ठहरना सही रहेगा। दरअसल 1 जनवरी 2027 से ऑनलाइन शॉपिंग का तरीका बदलने वाला है। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिनके मुताबिक डिस्काउंट में मौजूदा कीमत के साथ पिछली कीमत बतानी होगी। पिछली कीमत का मतलब पिछले 30 दिनों का सबसे कम दाम होगा। मतलब बड़ा डिस्काउंट दिखाने का खेल आने वाले साल में आसान नहीं होगा। मान लीजिए किसी सामान की पुरानी कीमत 10,000 रुपए थी और सेल से कुछ दिन पहले कंपनी ने कीमत घटाकर 8,000 रुपए कर दी। अब सेल में अगर वो सामान 6,000 रुपए का है तो डिस्काउंट 25% ही माना जाएगा। साथ ही पिछले 30 दिनों में सबसे कम कीमत 8,000 रुपए थी, इसकी जानकारी भी देना जरूरी होगा। ऑनलाइन खरीदारी में कीमत के साथ एक और चीज ग्राहक के फैसले को प्रभावित करती है और वो है सर्च रिजल्ट। इसी को देख कर भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं, जिनके मुताबिक कंपनियां सर्च रिजल्ट को इस तरह नहीं बदल सकेंगी जिससे ग्राहक गुमराह हो जाए। वहीं पैसे देकर ऊपर दिखाए गए प्रोडक्ट को प्रायोजित लिस्टिंग के तौर पर साफ बताना होगा, जिससे ग्राहक को ऑर्गेनिक और पेड लिस्टिंग का फर्क समझ आ जाए। यानी आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करें और ऊपर दिखने वाला सामान किसी कंपनी ने पैसे देकर हाईलाइट कराया है तो इसकी जानकारी ग्राहक से छिपाई नहीं जा सकेगी। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार वेबसाइट या ऐप का डिजाइन ही ग्राहक को फैसला लेने के लिए प्रेरित करता है, जो वो शायद सामान्य स्थिति में नहीं लेता। इसे डार्क पैटर्न कहा जाता है। नए नियमों के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। वही कंपनियों को हर साल सेल्फ ऑडिट करना होगा, साथ ही नियमों के पालन का सर्टिफिकेट प्रमुखता से दिखाना होगा और ग्राहक के डेटा के इस्तेमाल के लिए तय मामलों में उसकी साफ सहमति जरूरी होगी। सरकार ने ग्राहक की शिकायतों को लेकर भी नियम सख्त किए हैं। नए नियमों के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की शिकायत व्यवस्था से भी जुड़ना होगा। शिकायत दर्ज कराने वाले ग्राहक को कंपनी के शिकायत अधिकारी के पास दर्ज शिकायत की कॉपी भी देनी होगी। ऑनलाइन खरीदारी में प्रोडक्ट की जानकारी को लेकर भी कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। सामान की वापसी और रिफंड, वारंटी, डिलीवरी, भुगतान और इस्तेमाल की आखिरी तारीख जैसी जरूरी जानकारी ग्राहक को देनी होगी। आयातित सामान के मामले में इंपोर्टर की जानकारी और सामान किस देश में बना है ये भी बताना होगा। मतलब 1 जनवरी 2027 में ऑनलाइन सेल में केवल बड़ी छूट देकर खरीदारी करने की जगह ग्राहक के पास कीमत और प्रोडक्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी होगी। आदित्य राणा, आज तक।

0: नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर बंगाल से दिल्ली तक संग्राम। ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 19 साल पुराने केस में गिरफ्तार। राहुल खड़गे ममता ने उठाए सवाल, आज कांग्रेस का पूरे राज्य में प्रदर्शन। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज, पेपर लीक, परीक्षा और रोजगार होंगे मुद्दे। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज, कांग्रेस का आरोप, अड़ंगा डालने की हुई कोशिश। मिशन 2027 से पहले बीजेपी का रोजगार वाला दाव, आज 51,000 युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने यूपी में 1,00,000 सरकारी नौकरियों का किया ऐलान। कानपुर में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर सुबह सुबह चला बुलडोजर, अवैध स्ट्रक्चर और बाउंड्री वॉल ध्वस्त। नोटिस के बाद केडीए का एक्शन, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। और आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद गुस्सा, परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़े जाने पर कैंपस से निकालने की धमकी का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। वक्त चलाए शतक आज तक का। आईआईटी बॉम्बे प्रशासन ने छात्र के सुसाइड वाली घटना पर दी प्रतिक्रिया, कहा छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। आईआईटी बॉम्बे प्रशासन ने पूरी घटना पर बात करते हुए कहा छात्र का काउंसलिंग किया और उसे भरोसा दिलाया कि उस घटना को उस करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संस्था ने कहा कि छात्र की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है। असम में एक मेडिकल छात्र और स्थानीय युवकों के बीच समूह के बीच झड़प के बाद तनाव, मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। हमले के बाद बड़ी संख्या में छात्र अस्पताल परिसर के बाहर जमा हो गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के पहले रुझान में एबीवीपी को बढ़त, दूसरे नंबर पर एनएसयूआई तो तीसरे नंबर पर लेफ्ट। हाईकोर्ट से राहत नहीं, आज पीएमएलए कोर्ट में पेश होंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक पीएमएलए कोर्ट के चार्ज फ्रेम पर स्टे की थी मांग, हाईकोर्ट ने मांग मानने से इनकार किया। दिल्ली में नाबालिग से रेप हत्या का मामले पर भड़की प्रियंका गांधी, महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल। सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में ठोस कार्रवाई और जवाबदेही जरूरी है। मसूरी में कैफे पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई, डंडों के साथ कैफे के मालिक पर बदमाशों ने हमला किया। घटना के दौरान कैफे के भीतर अफरा तफरी का माहौल बना, सीसीटीवी में कैद हुआ। संत कबीर नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एसपी सांसद पप्पू निषाद की गाड़ी में भीड़ ने तोड़फोड़ की, भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया, उसका शीशा तोड़ दिया, पुलिस सांसद को भीड़ से बचाकर सुरक्षित बाहर ले गई। घटना के बाहर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया, बड़े स्तर के अधिकारी मौके पर। बंगाल उपचुनाव से पहले जारी सियासी घमासान, नंदीग्राम में ममता की उम्मीदवार ने नाम वापस लिया, कांग्रेस प्रत्याशी समर्थन के बाद गिरफ्तार। मिलन प्रधान पर 2007 की हत्या मामले में कार्रवाई, 3 हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 4 वारंट लंबित। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का विरोध, आज पूरे बंगाल में नंदीग्राम चलो अभियान। मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस, चुनाव आयोग से भी शिकायत करेगी। कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, कहा गिरफ्तारी कोई सहयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध। टीएमसी के नाम और निशान पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ममता गुट, चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती। टीएमसी के चुनाव चिन्ह विवाद पर किरण रिजिजू का पलटवार, बोले कांग्रेस खुद भस्मासुर है। राहुल गांधी के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद के जवाब, बोले कांग्रेस का इतिहास याद कीजिए। सूत्र के मुताबिक राहुल गांधी से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने कहा हम साथ हैं, हमारा लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से हटाना। लिफाफा चुनाव चिन्ह पर आईएसएफ की आपत्ति, नौशाद सिद्दीकी बोले हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंदौर में आज राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम, करीब 1.5 घंटे के कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर बात होगी। 31 शर्तों के साथ पुलिस ने दी मंजूरी, कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा भी चाक चौबंद, 40 सीसीटीवी तैन लगाए गए हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का आरोप, लगातार कार्यक्रम रोकने की कोशिश हो रही है। इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जुटेंगे छात्र, कांग्रेस का दावा 1,00,000 छात्र पहुंच सकते हैं। छात्रों की गूंज में एमपी के परीक्षा मुद्दे पर उठाएगी कांग्रेस, एमपी, पीएससी और व्यापम पर भी होगी चर्चा। पीएम मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र। 20वें रोजगार मेले में देशभर के 45 केंद्रों से जुड़ेंगे युवा, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित भी करेंगे। यूपी में योगी सरकार का बड़ा भर्ती अभियान, अगले 6 महीने में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यूपी में आज से शुरू होगी 1,00,000 सरकारी भर्ती का महाअभियान, पुलिस होमगार्ड के 177,000 पद होंगे। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का यूपी में मिशन तेज, विनोद तावड़े लगातार कर रहे संगठन की जमीनी समीक्षा। पूर्वांचल अरावत पर बीजेपी का फोकस, विनोद तावड़े कार्यकर्ताओं से लेंगे संगठन और विधायकों का फीडबैक। 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर तावड़े का खास जोर। अखिलेश यादव से लोकदल प्रमुख सुनील सिंह की मुलाकात, 2027 चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। लोकदल का 2027 में करीब 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, अखिलेश को सीएम बनाने का लक्ष्य बताया। आरएलडी नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात, पत्नी चारू चौधरी और बेटिया साहिरा इलेशा मुलाकात का हिस्सा बनी। पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, फतेहगढ़ साहिब से आज दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी रेखा गुप्ता। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पर सियासत तेज, रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमले का आरोप, राघव चड्डा ने आप पर निशाना साधा। पंजाब में रवनीत बिट्टू के काफिले पर कथित हमला, पत्थरबाजी और अंडे टमाटर फेंकने का आरोप। बिट्टू के काफिले पर हमले को लेकर राघव चड्डा का आप पर हमला, बोले पंजाब में कानून व्यवस्था का खुलासा हुआ। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, भगवंत मान सरकार ने डीए में 8% बढ़ोतरी का ऐलान किया। कानपुर में केडीए का बुलडोजर एक्शन, 500 वर्ग मीटर सरकारी जमीन से कब्जे का हटा दिया कब्जा। कार्रवाई के दौरान पुलिस पीएसी महिला पुलिस बल भी तैनात रही, नोटिस के बाद कार्रवाई हुई, कब्रिस्तान जो अवैध रूप से बनाया गया था। कब्रिस्तान पर केडीए की कार्रवाई के बाद हंगामा, मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई, कहा कि नोटिस नहीं दिया। कानपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर कार्रवाई का विरोध, मुस्लिम पक्ष बोला कई सालों से यहां मौजूद है कब्रिस्तान। केडीए की कार्रवाई के बाद कब्रिस्तान पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कहा कार्रवाई गलत, मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। यूपीआई पर एमडीआर को लेकर विवाद, कांग्रेस ने संसदीय समिति के दावे पर उठाए सवाल, मनीष तिवारी बोले विपक्ष ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मनीष तिवारी का पलटवार, बोले समिति ने सिर्फ राजस्व मॉडल तलाशने को कहा था। यूपीआई एमडीआर पर कांग्रेस का विरोध, जयराम रमेश ने समिति अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाए, रमेश बोले कि विपक्ष के समर्थन की बात गलत तरीके से की गई। यूपीआई एमडीआर पर संसदीय समिति के अध्यक्ष का जवाब, भारत हरि महताब बोले रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई गई, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। यूपीआई एमडीआर पर कांग्रेस और सरकार के दावों में टकराव, शुल्क लागू करने की तैयारी सरकार का दावा, एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालने की व्यवस्था होगी। देशभर में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रहा जनसैलाब, पांचवें दिन लाल बागचा राजा के दर्शन की अनोखी चटा, दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतार। गणेश गली के मुंबई का राजा के दरबार में भी दर्शन अभिलाषियों की भीड़, पंडाल में विराजमान है 22 फीट ऊंचे अष्टभुजाधारी बाल गणेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कार्यक्रम में बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं।
1: इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है, आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है। और मैं हर भारतवासी से कहूंगा, आप भी दम दिखाइए। हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है। इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हरेक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 GW थी। 12 साल पहले 2 GW, अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 GW से ज्यादा हो चुकी है। 2 GW से 160 GW 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, घरों में एलईडी बल्ब जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब्स घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने हैं। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, यह आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है, हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है, और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है, और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है। 950 गुना। 2014 से पहले के साल में भारत में 3000 से भी कम ईवी की बिक्री थी, 3000। वहीं पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी है। यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है, और इससे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था। ये भी मेरे वकील मित्र याद रखें, 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है, और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवे का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट्स श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है। और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक है इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं। बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और यह अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस, उससे जो नए विचार नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जलवायु सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे कि कैसे सोलर एनर्जी को और आगे बढ़ाना है और प्रकृति को बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। चलिए आगे बढ़ते रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यानी हेडलाइंस का।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

प्रदूषण पर पीएम मोदी ने विकसित देशों को घेरा। दिल्ली में पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत से 6 गुना ज्यादा कार्बन छोड़ते हैं विकसित देश, सोलर एनर्जी पर भारत का फोकस। मिशन 2027 से पहले बीजेपी का रोजगार वाला दाव, आज 51,000 युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने यूपी में 1,00,000 सरकारी नौकरियों का किया ऐलान। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज, पेपर लीक, परीक्षा, रोजगार होंगे मुद्दे। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज, कांग्रेस का आरोप, अड़ंगा डालने की हुई कोशिश। नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर बंगाल से दिल्ली तक संग्राम, ममता के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी 19 साल पुराने केस में गिरफ्तार। राहुल खड़गे, ममता ने उठाए सवाल, आज कांग्रेस का पूरे राज्य में प्रदर्शन। और आईआईटी बॉम्बे में सेकेंड ईयर स्टूडेंट की आत्महत्या के बाद गुस्सा, परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़े जाने पर कैंपस से निकालने की धमकी का आरोप।

0: देखिए सुबह के 11:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन के हिस्से में बात करेंगे राजनीति की खबरों की। वो कौन कौन सी खबरें हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। रोजगार नियुक्ति मिशन जेन जी, राहुल गांधी से पीएम मोदी तक सब जेन जी को साधने में जुटे हैं। विस्तार से इन सारी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। पंजाब में नशा मुक्ति अभियान के पीछे के सियासी ख्वाब की करेंगे बात, साथ ही बंगाल के नंदीग्राम महासंग्राम की भी बात की जाएगी। यानी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कहां क्या हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ग्रेटर नोएडा से हैरान करने वाला एक वीडियो आया, वो आपको बता देते हैं। एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद आरोपी ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। हिट एंड रन का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कार लोगों को टक्कर मारते और भागते हुए दिखाई दे रही है। देखिए ये वीडियो को रोक के आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये कार कितने लोगों को टक्कर दे रही है। ये ऑल्टो कार यहां पर दिखाई दे रही है और ये देखिए ये बहुत सारे लोग और रोड के कोने में खड़े हैं। ऐसा भी नहीं है कि बीच रोड पर ये लोग, रोड जहां खत्म हो गई दूसरी रोड के बिल्कुल कोने में ये 3 से 4 लोग खड़े हैं। लेकिन ये कार चालक ऐसा लगता है कि जानकर इसका इरादा ही था टक्कर मारने का। और ये शख्स आता है अपनी काले रंग की सॉल्टो कार में, सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारता है और फिर उसके बाद गाड़ी भगा देता है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, इस वीडियो में दिख रहा है कि जानकर ये टक्कर मारी गई है, 5 लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी आई है?
1: हाँ, गनीमत बस ये रही हिमांशु की कोई ऐसी सीरियस इंजरी नहीं हुई और सभी लोग आउट ऑफ डेंजर है जिन लोगों को चोट लगी थी इस पूरे मामले में। और उसके बाद पुलिस ने अब इस पूरे FIR दर्ज कर ली है। और सबसे बड़ी चीज है पूरा ट्रेल देख रही है CCTV का पूरा कि ये गाड़ी की मूवमेंट कहाँ कहाँ से हुई और वो वहां पर जब पहुंचा तो कितनी स्पीड थी। हर एक चीज फॉरेंसिक टीम से बुला करके उसकी बकायदा जांच की जा रही है। FIR दर्ज हो गया है लेकिन चूंकि कार का नंबर, बहुत सारी डिटेल ड्राइवर की पुलिस के पास है तो पुलिस की टीमें निकली हुई है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए।
0: हिमांशु, लेकिन ये वीडियो देखकर लग रहा है क्योंकि कार जिस तरह से आ रही है ऐसा लग रहा है कि ये अचानक या धोखे से नहीं हुआ है, ये इंटेंशनली हुआ है ऐसा प्रथम दृष्टया, हालांकि ये तो जांच का विषय, लेकिन प्रथम दृष्टया देखकर ऐसा ही लग रहा है।
1: नहीं देखिए बिल्कुल जो एक्सीडेंट हुआ है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उधर गया, लेकिन इसके लिए पुलिस जो है अब जो विक्टिम्स है और जो एक्यूज्ड है क्या उनके बीच कोई रिलेशन है, कोई किसी तरीके की बातचीत है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कार चालक है अचानक से उसने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या फिर उसका ध्यान भटक गया या फिर क्या वजह है। यह भी FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। जहां से वो कार चली थी वो पूरा रूट उसको ट्रैक किया जा रहा है, किस कंडीशन में था ये पता लगाने की कोशिश की।
0: मतलब ये स्पष्ट है मानसू, ये कहा जा सकता है कि ये अभी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है इस वीडियो को देख के। ये पूरी जांच का विषय है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन ये वीडियो फुटेज आप देखिए, ये शख्स अचानक कार तेजी से आता है। एक बार फिर से वीडियो चला दीजिए और देखिए इस वीडियो को, ये शख्स बहुत तेजी के साथ आता है। ये देखिए ये कई लोगों को टक्कर मारता है और उसके बाद गाड़ी मोड़ते हुए यहां से भाग खड़ा होता है। पुलिस अब CCTV फुटेज अब शुरुआत से लेकर अंत तक इस पूरे कड़ियों को जोड़कर यह जानने की कोशिश करेगी कि ये क्या इंटेंशनली किया गया या फिर कुछ और वजह है। जिन लोगों को टक्कर लगी है, जो अस्पताल में भर्ती हैं 5 लोग, क्या वो जानते थे एक दूसरे को या फिर ये दुर्घटना है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई तीसरे राउंड की गिनती हो चुकी है और तीसरे राउंड में NSUI जबरदस्त वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। अभी तक ABVP आगे चल रही थी। अध्यक्ष पद पर तीसरे राउंड में NSUI आगे निकल गई है। अध्यक्ष पद के लिए विजय शंकर मीणा NSUI को 3,571 वोट मिले हैं जबकि यश डबास ABVP 3,130 वोट मिले हैं। मतलब कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है। अभी तक ABVP आगे चल रही थी लेकिन अब NSUI आगे है। विजय शंकर मीणा NSUI के आगे हैं 3,571 वोट पर। ABVP से यश डबास 3,130 वोट पर। उपाध्यक्ष के लिए दीपांशु शौकीन इंडिपेंडेंट 4,264 वोट और ईशु मौर्य ABVP 2,389 वोट। अनमोल बाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, ये रुझान क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक दूसरे चुनाव के नतीजों से जुड़ी हुई?
2: हिमांशु, जो आपने अभी बात की, आपने तीसरे राउंड की बात की, पर अभी जो पांचवा राउंड है उसका जो नतीजा है, जो उसका रुझान है वो बाहर आ गया और देखा जा रहा है कि एबीवीपी के जो यश डबास हैं, जो प्रेसिडेंशियल उनके कैंडिडेट हैं, वो एनएसवाई के मीना जो है कैंडिडेट विजय मीना, उससे थोड़ा आगे बढ़ते दिख रहे हैं। पहले जो रुझानों में देखा गया था, पहले दो तीन रुझानों में, कि जो एनएसवाई थी, कांग्रेस का छात्र संगठन था, वो आगे बढ़ता दिख रहा था, पर अभी 53 वोट से कहीं ना कहीं जो है एबीवीपी आगे बढ़ती दिख रही है। वहीं अगर बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन की, तो वहां इंडिपेंडेंट पांशु शुकीन है, उनकी जो लीड है उसके आसपास कोई नहीं, तकरीबन 3690 वोट की लीड पर इस समय वो है चल रहे हैं। वही सेक्रेटरी की पोजीशन की बात की जाए तो रिया छावड़ी जो है वो तकरीबन 1400 वोट की लीड पर है इस समय, यानी कि एबीवीपी की सेक्रेटरी पोजीशन पर लीड बन रही है। वही विशेष यादव जो छात्र सभा से थे वो तकरीबन 413 वोटों की लीड पर है और उनके पीछे है एबीवीपी के लक्ष्य राज। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड्स जो है अभी बदलते दिख रहे हैं और अब देखा जाएगा कि 4-5 जो चरण की जो मतदान का जो नतीजा है वो बाहर आ गया और शाम आते आते हम देखेंगे, दोपहर आते आते हिमांशु हम देखेंगे कि दो 10 राउंड होंगे पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद जो फाइनल है रिजल्ट आएगा, पर 10 हिमांशु 10 के आसपास राउंड होंगे, उसके बाद ही हम फाइनल बता सकेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के दिल में कौन था, क्या छात्रों की गूंज कामयाब होती है, प्रधानमंत्री मोदी का जेंजी आउटरीच प्रोग्राम कामयाब होता है।
0: लेकिन अनमोल, एक चीज जरूर देखी जा रही है कि पिछले अगर कुछ इलेक्शंस को देखा जाए, उनके परिणामों को देखा जाए, तो इस बार बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मतलब पहले एबीवीपी आगे होती है, फिर तीसरे राउंड में एनएसयूआई आगे हो जाती है, आप बता रहे हैं कि पांचवा राउंड जब हो रहा है तो वापस एबीवीपी आगे निकल गई है। मतलब बहुत दिलचस्प है कि हर राउंड में कोई आगे निकल रहा है, कह नहीं सकते जब तक ये 8-9-10 राउंड नहीं हो जाते।
2: हिमांशु, मैं पहली बार खुद, मुझे 3-4 साल हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव कवर करते हुए, पर इतना रोचक चुनाव होते मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि पहले देखा जाता था कि पिछले 2-3 सालों से जो एबीवीपी थी वो ज्यादा पद जीतती थी, तकरीबन 3 पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहता था और एक आध पद एनएसवाई जीतती थी, पर इस बार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, चाहे मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कंपटीशन क्रिएट कर दिया और ये इंडिपेंडेंट दोनों जो कैंडिडेट है कांग्रेस के बागी कैंडिडेट है, यानी कि एनएसवाई के बागी कैंडिडेट। जब देखा जाता है कि दीपांशु शुकीन को एनएसवाई की तरफ से टिकट नहीं दी जाती, वो वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए जो है अपना नामांकन एज एन इंडिपेंडेंट भर देते हैं।
0: और उसके बाद देखिए एक तरफा मुकाबला यहां पर कर दिया उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नजर बनाए रखिएगा, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन आप देखिए कि यहां पर ये बहुत दिलचस्प मुकाबला, जैसे अनमोल बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों में ऐसा दिलचस्प मुकाबला देखने को नहीं मिला, इस बार बिल्कुल हर एक राउंड की जैसे ही काउंटिंग हो रही है, दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अभी एबीवीपी आगे हो गई है, लेकिन एनएसयूआई भी ज्यादा पीछे नहीं है। चलिए अब बात मिशन जेंजी की करते हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में अगले 6 महीने में चुनाव होना है और उससे ठीक पहले सभी पार्टियां जेंजी को लुभाने में जुटी हैं। चलिए आपको बता रहे हैं कि कैसे ये सब हो रहा है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, सीएम योगी मैदान में आ चुके हैं, खुल के रोजगार नियुक्तियां कर रहे हैं। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी आज 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। तो वहीं राहुल गांधी छात्र गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं इंदौर में। आज शाम को इंदौर में राहुल गांधी की छात्र गूंज रैली है। राहुल गांधी तो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर चुके हैं कि इंदौर की जनता आज क्या पोहा खिलाएगी या जलेबी खिलाएगी। हालांकि इन कार्यक्रमों में जेंजी शामिल होंगे और दल जाता भी है कि जेंजी उनके साथ चढ़ेगी। हर दल जाता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में हुई। रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा। पीएम मोदी नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल होंगे। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके होंगे।

0: अब बात राहुल गांधी के छात्रों के कुंज कार्यक्रम की भी कर लेते हैं, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। ये राहुल गांधी के छात्रों के कुंज का 5वां संस्करण है, लेकिन इंदौर में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर कुछ दिनों से अनुमति और वेन्यू को लेकर विवाद बना हुआ था कि मतलब किस जगह पर यह कार्यक्रम होगा। पहले नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन अनुमति नहीं मिली। उसके बाद 12 तारीख से 19 तारीख कर दी गई, 19 सितंबर कर दिया गया। आईडीए ग्राउंड को फाइनल किया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण प्रशासन और इंदौर पुलिस अब 31 शर्तें रखी। इनमें पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए गठित जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ भी दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं।
1: अस्सी साल की देश की आजादी के बाद अब देश में यह चर्चा होनी चाहिए कि शिक्षा अब सरकार का दायित्व है, उसको निभाना पड़ेगा, उसको कानून बनाने पड़ेंगे, उसको उस अधिकार संपन्न राष्ट्र जिसमें एक बच्चा ये कहे कि शिक्षा मुझे सरकार देगी, ये मेरा अधिकार है, इस तरह की सोच पर चर्चा हो। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी उस डिबेट को करना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं, प्रदेश के अभिभावकों से चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए इस सकारात्मक काज में आप सबके सहयोग की अपेक्षा, इंदौर शहर को बहुत साधुवाद।
0: बात पंजाब में सियासी घमासान की करेंगे। बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा का दूसरा फेज आज से शुरू होने जा रहा है। फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब में मत्था टेकने के बाद नशा मुक्त पंजाब यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। ये यात्रा लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, रोपड़, होशियारपुर, नवाशहर और फगवाड़ा के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए जालंधर में खत्म होगी। और वहीं आम आदमी पार्टी कल यानी 20 सितंबर को डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेगी और घर घर पहुंचकर भगवंत मान सरकार के कामों के बारे में बताएंगे और आज लुधियाना में अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेगी। हर कोई तैयार है और कांग्रेस तो अल्लाह बोल कर ही रही है। नशे के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। संगरूर में जो आत्महत्या का मामला था गुलजार सिंह, उस मुद्दे में भी सरकार का लगातार घेराव कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। चलिए चलते हैं पंजाब से बंगाल। ममता बनर्जी के और उनके उम्मीदवार ने उपचुनाव के नाम वापस ले लिया। छह अक्टूबर को नंदीग्राम सीट पर होने वाले उपचुनाव पर संग्राम बढ़ गया। पहले ममता गुट की ओर से प्रत्याशी बनाई गई संचिता प्रधान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और इस मुलाकात के कुछ ही देर बाद नामांकन वापस ले लिया। ममता बनर्जी ने फिर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन दे दिया, ऐलान कर दिया। लेकिन सूबे की सियासत और गर्मा गई जब बंगाल पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया।

0: something that we are going to give our support to Congress Party.
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बने नंदीग्राम सीट पर सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा।
0: To strengthen the Indian alliance. पहले से डिसाइड किया था कांग्रेस को ये सीट में आप सपोर्ट करेंगे। उसका कैंडिडेट अच्छा है।
1: लेकिन बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल है।
2: हमारा डिमांड है तुरंत उसको तुरंत रिलीज करना चाहिए, रहा करना चाहिए। कल स्क्रूटिनी है, ये क्या हो रहा है? इतना डर। सीएम बोल रहा है हम जीतेंगे। अरे कैसे जीतेंगे? आप इलेक्शन कमीशन को मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस को मिसयूज कर रहे हैं, एक पार्टी को तोड़ने के लिए पूरा ताकत दे रहे हैं।
3: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना, अंगूर फॉल टॉक, ग्रेप्स आर सावर, तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है।
1: आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि चोर नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी की सियासी उभार के सबसे अहम केंद्रों में रही। वहाँ उपचुनाव से पहले ऐसा क्या कुछ हुआ कि बात दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन तक पहुंच गई और कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी में नई जंग छिड़ गई। दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया।
4: इसको मैं क्या बोलूंगा, अभी तक अरेस्ट दिखाया नहीं, पुलिस आके लेके गया बट अभी तक अरेस्ट शो नहीं किया, पता नहीं चल रहा है क्या है।
5: हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो आज गुंडागर्दी करने वाला के गुंडा दमन बिल भी लाया है, कोई यहाँ पे किसी का कोई यहाँ बंगाल में कोई करप्शन करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, किसी का कोई दुष्कर्म करने वाला कोई रहेगा तो किसी को रियायत नहीं किया जाएगा।
1: नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही से लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। साफ है कि नंदीग्राम सीट पर ये लड़ाई और आगे बढ़ती दिख रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
6: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।

0: సోకుడు.
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें.
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ. कपीवा डायफ्री जूस.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट।
9: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints। JK Maxx, JK Maxx Paints, खुशियों के रंग।

0: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबा केसरी।
5: अगले महीने की 15 तारीख से 2000 से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करना फ्री नहीं रहेगा। हालांकि इसका असर पेमेंट सिस्टम में मर्चेंट साइट पर पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक से ये चार्ज नहीं लिया जाएगा। दरअसल एनपीसीआई ने 2000 रुपए से ऊपर के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% एमडीआर तय कर दिया है। इसने एमडीआर फ्रेमवर्क के तहत 75,000 या उससे ज्यादा पर अधिकतम 300 रुपए एमडीआर लगेगा और पर्सन टू पर्सन यानी P2P पेमेंट पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। इस एमडीआर को ग्राहक से वसूलने की अनुमति नहीं होगी।
6: P2P पे कोई चार्ज नहीं है, जो हम आपस में एक दूसरे से लेन पैसे ट्रांसफर करते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं है। अब आते हैं P2M में। P2M में भी आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, 86% जो UPI में P2M ट्रांजेक्शन होती है वो 500 रुपए से कम होती है, और 96% जो ट्रांजेक्शन है वो 2000 से कम होती है। सो जो आप अपने छोटे छोटे दुकानदार और Tier 1 Tier 2 सिटीज में जितने लोग हैं जिनको हम पैसे दे रहे हैं रेडी पटरी, और इन पे कोई चार्ज नहीं है। और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत क्लियरली ये बोल दिया गया है कि इस पे कोई चार्ज, कोई ऐप या कोई बैंक, कोई मर्चेंट इस पे कोई चार्ज नहीं पड़ेगा।
5: हालांकि हर 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट पर एक जैसा एमडीआर नहीं होगा। कुछ सेक्टर के लिए अलग रेट तय किए गए हैं, जैसे रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और एग्रीकल्चर इनपुट से जुड़े पेमेंट पर फ्लैट 5 रुपए एमडीआर लगेगा। वहीं कैपिटल मार्केट से जुड़े पेमेंट के लिए अलग व्यवस्था है। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े ट्रांजेक्शन पर 0.02% एमडीआर होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन है। नए एमडीआर फ्रेमवर्क में छोटे दुकानदारों को भी राहत दी गई है। यूपीआई क्यूआर के जरिए महीने में 1,00,000 रुपए तक पेमेंट पाने वाले छोटे मर्चेंट के लिए 0 MDR की व्यवस्था जारी रहेगी। इसमें स्ट्रीट वेंडर, मोहल्ले की दुकान और दूसरे छोटे कारोबार शामिल हैं। सरकार के मुताबिक नए फ्रेमवर्क का असर मर्चेंट पेमेंट के एक छोटे हिस्से पर ही पड़ेगा। करीब 96% P2M ट्रांजेक्शन अप्रभावित रहेंगे। इनमें 2000 रुपए तक के पेमेंट और 0 MDR वाले छोटे मर्चेंट के ट्रांजेक्शन शामिल हैं। MDR पेमेंट इकोसिस्टम के भीतर बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप प्रोवाइडर्स के बीच शेयर होने वाला चार्ज है। बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मर्चेंट MDR की लागत ग्राहक पर ट्रांसफर न की जाए। UPI ऐप प्रोवाइडर्स को भी प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए चार्ज लगाने की अनुमति नहीं है। यानी 15 अक्टूबर से UPI के पेमेंट इकोसिस्टम में MDR की नई व्यवस्था शुरू होगी, लेकिन इसका सीधा चार्ज आम UPI यूजर्स पर नहीं पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रदूषण पर पीएम मोदी ने विकसित देशों को घेरा। दिल्ली में पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत से 6 गुना ज्यादा कार्बन छोड़ते हैं विकसित देश, सोलर एनर्जी पर भारत का फोकस। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासी तनाव, रेजीनगर से ममता के उम्मीदवार रबीउल चौधरी ने भी नाम वापस लिया। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर खड़गे राहुल, ममता का हल्ला बोल। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज, पेपर लीक परीक्षा और रोजगार होंगे मुद्दे। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज, कांग्रेस का आरोप, अड़ंगा डालने की कोशिश। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के लिए वोटों की गिनती जारी, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी को बढ़त, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए निर्दलीय ने बढ़त बनाकर चौंकाया। और दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 4 से 5 लोगों को टक्कर मारकर कार सवार फरार, वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया, आरोपित की तलाश।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक लिहाज से राजनीतिक इतिहास भी लिख रहे हैं, क्योंकि भले वो बिहार सरकार का हिस्सा रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बिहार की बागडोर संभाले रहा, बिहार को आगे की दिशा में बढ़ाते रहा। आज उनका विजन, उनकी सोच के बारे में उनसे ही जानते हैं। 150 दिन वो अपने पूरे कर चुके हैं, उससे अधिक पूरे कर चुके हैं। तो हम जानते हैं सम्राट चौधरी से स्वयं कि वो बिहार के बारे में आगे क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, स्वागत करें तालियों के साथ।
1: तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज हम लोगों के साथ हैं, और पंचायत बिहार में मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि बीजेपी इस बात पर बहुत खुश है कि अंग बंग कलिंग, अब तीनों जगह भाई हमारा अपना सीएम हो गया। बिहार एकमात्र हिंदी पट्टी का राज्य था जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। बीजेपी का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन जनता का सपना पूरा करने में 150 दिन के इस सफर में आपने क्या ऐसा किया है जो आप जनता को आज बता सके, अपना 100 दिन तो नहीं 150 दिन वाला रिपोर्ट कार्ड पेश करें।
2: मैं आज तक को पंचायत बिहार के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि आप बिहार के विकास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जनता की आकांक्षा बहुत बड़ी होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन पिछले दो तीन चार महीने में लगातार विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन लगातार हमें मिलता रहा है, और आज मैं बता सकता हूं जरूर कि नीतीश जी ने बिजली और सड़क पर बहुत काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किए, उसको अब तेज गति से बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। हमारे साथी मंत्री वगैरह आपके बीच में आए होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे, यहां पढ़े, यहां रोजगार मिले और यहीं पर अपने जीवन को उन्नति का रास्ता दे। और इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं कि पिछले 150 दिनों में मैंने 700 मॉडल स्कूल बनाए, और उस मॉडल स्कूल में जो संरचना खड़ा किया वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो लगभग 3.5 लाख बच्चे उस मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका सपना होता था कि हम नेतरहाट में पढ़ाई करें, हम सैनिक स्कूल में जाकर पढ़ें, हम देवघर में रामकिशन मिशन स्कूल में पढ़ें, और अभी सिमरतल्ला में हमारा सबसे बेस्ट स्कूल है, वहां जाकर पढ़ने का काम करें। हम उस व्यवस्था को हम लोगों ने मॉडल स्कूल में शिफ्ट किया, वहां अच्छे टीचर्स की पोस्टिंग की, साथ ही साथ हमने 2-3 फॉर्मूला वहां क्रिएट कराया। एक, जो बच्चे बाहर जाते थे नीट की तैयारी करने, जेई की तैयारी करने, उनको पूरी व्यवस्था वहां देना शुरू किया, और रात के 12 बजे यदि हमारा कोई बच्चा, मॉडल स्कूल पढ़ने वाला बच्चा, यदि चाहे कि हमको रात के 1 बजे टीचर हमको ट्यूटर की व्यवस्था करे, तो सरकार ने विद्यार्थी साथी ऐप दिया, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एवरेज रात के 1 बजे 1.5 लाख बच्चे उससे पढ़ाई कर रहे हैं, 1 बजे रात को, और संडे के दिन वही बढ़कर 2 लाख बच्चे उससे अटैच हो जाते हैं।
1: रियल डेटा ट्रैक हो रहा है,
2: इसलिए मैं उसका भी पूरा एक मैकेनिज्म हमने बनाया कि वो ओटीपी के माध्यम से उसका पूरा सिस्टम क्रिएट किया है। जब बच्चा उसको ऐप पे जाएगा तो उसको ओटीपी आएगा, और 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध होंगे, ये 24/7 उनको शिक्षक उपलब्ध होते हैं। तो ये पूरी संरचना क्वालिटी एडुकेशन देने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड टाइम में बिहार में शिक्षक की कमी रही, जबकि नीतीश जी ने लगभग 7 लाख शिक्षकों की बहाली किया। इसके बावजूद जब हम लोगों ने देखा कि डिग्री कॉलेज ब्लॉक में नहीं थे हमारे, पूरे बिहार में 272 डिग्री कॉलेज आजादी के 80 वर्ष में थे। मैंने 15 जुलाई को लॉन्च किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज खोला पूरे बिहार में। और उसमें जो समस्या होती थी कि टीचर नहीं होंगे, तो हम लोगों ने एक महीने के रिकॉर्ड टाइम में 25 जून को इस पूरी व्यवस्था को शुरुआत किया और एक महीने के रिकॉर्ड टाइम में सभी शिक्षकों की बहाली करके उसको पोस्टिंग देकर, और जब मैं स्वयं गया उनसे मिलने, उन शिक्षकों से, तो मुझे खुशी उस दिन हुई कि कोई दिल्ली से, कोई बैंगलोर से, कोई बॉम्बे से नौकरी छोड़कर बिहार आए।
0: सुनने में भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि बिहार की भूमि में शिक्षा का महत्व इतना है। आपके शिक्षा मंत्री भी यहां पर आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे जो भवनहीन स्कूल हैं उन लोगों के लिए भी आप लोगों का एक प्लान है। लेकिन मैं यहां पर एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। पहले हमेशा ऐसा कहा गया कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से 2.5 कदम पीछे चलते हैं, तो एक तो ये कि 2.5 कदम क्यों। लेकिन नीतीश कुमार को जब अपना उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई, तब भी बताया गया कि वो चाहे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहें बिहार के। अब एक 20 वर्ष का शासन एक ऐसे व्यक्ति का हम देख रहे हैं जिनको सुशासन बाबू कहा गया। आखिर में सवाल भी उठे बहुत सारे, सम्राट चौधरी अपने नेतृत्व में बिहार में ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि ये सम्राट अध्याय रहे, नीतीश अध्याय का एक्सटेंशन नहीं।
2: पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं श्वेता जी, बिहार के निर्माण में श्री बाबू कपूरी ठाकुर और नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान रहा है, इसे मैं डिफर नहीं कर सकता। श्री बाबू ने पूरी संरचना खड़ा किया, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए और गए, नीतीश कुमार जी ने डेवलपमेंट का भी काम किया, सामाजिक न्याय का भी काम किया। नीतीश कुमार जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आज लोग घूम सकते हैं बिहार में, काम कर सकते हैं बिहार में, बिजली गांव में है, पानी गांव में है, सड़क गांव में है। अब क्या है कि हमको तेज गति से बढ़ना है। हम कैसे महाराष्ट्र की गति को प्राप्त करें, हम दिल्ली की गति को प्राप्त करें, कर्नाटक की गति को प्राप्त करें, इसके लिए इंडस्ट्री के सेक्टर में, एडुकेशन के सेक्टर में, और अभी तक राज्य सरकार का लक्ष्य ही नहीं था कि इंडस्ट्री के लिए हम जमीन उपलब्ध करा पाते। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 150 दिन में लगभग 950-1000 के आसपास इंडस्ट्री को जमीन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया था। और हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ये काम जब मैं उप मुख्यमंत्री था, नीतीश जी के साथ काम कर रहा था, तो वित्त मंत्री की हैसियत से ये हमें थोड़ा काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए लगभग 13,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया। क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट मान सकता हूं मैं, क्योंकि हमसे पीछे छूट चुका बांग्लादेश, हमसे पीछे छूट चुका इंडोनेशिया, हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में 14 करोड़ की आबादी है, हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं था। मैं पहली बार विधायक जब बना तो बिहार में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 13% रेवेन्यू यहां से आता था। मैं जब बजट पेश किया श्वेता जी, वो मेरे लिए सबसे गौरव का दिन था, जब मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से मैं उप मुख्यमंत्री था और बजट पेश कर रहा था, जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू, उस झारखंड में का बजट 1,39,000 करोड़ का था और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का। ये बदला हुआ बिहार है। आज हम देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला राज्य है। सिर्फ बिजली सेक्टर को आप देख लीजिएगा, 23,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी देते हैं बिहार के गरीबों, और हमने कभी नहीं देखा कि ये लालू जी को हम सब्सिडी दे रहे हैं कि तेजस्वी जी को दे रहे हैं या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं। हम दो करोड़ 22 लाख लोग यहां बिजली कनेक्शन लिए, उसमें लगभग 1,92,00,000 डोमेस्टिक यूजर हैं। 1,92,00,000 परिवार को, हम सबको हम 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। और इसके साथ साथ लगभग 6,000 करोड़ रुपया बिहार के किसानों को उनके कृषि फीडर के तौर पर मात्र 55 पैसा के रेट से हम बिजली उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम सब्सिडी के माध्यम से किसानों को भी मदद करते हैं, गरीबों को भी मदद करते हैं।
3: लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार की एक लेगेसी रही है, और खासकर जब तक वो मुख्यमंत्री रहे 15 साल, खासकर पहले जब जनता दरबार किया करते थे, लोगों से मिलते थे, पटना आते थे लोग उनसे शिकायतें लेके, आपने ऐसा क्या अलग कुछ किया है पिछले 150 दिनों में ताकि जनता की समस्याएं जो है वो कम हो सके, क्योंकि बहुत सारी समस्या आज भी है, लोगों के पास शिकायतें आज भी है।
2: इसमें भी एक अच्छा मैकेनिज्म मैंने लाया, मैं नीतीश जी के साथ काम करता था तो मैं देखता था, एक व्यक्ति उनसे साल में 5 बार मिलता था और एक ही काम लेकर आता, और वो पत्र नीचे जाता था। मैंने एक सहयोग कार्यक्रम शुरू किया, और वो भी प्रेरणा तब मिली हमको जब मैं मुख्यमंत्री हुआ, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद 4-5 दिन तो लोग बधाई दिए, 5वें-6ठे दिन एक एक कागज थमाते गए, और मैंने देखा कि 5 दिन में मेरे पास लगभग 20,000 लोगों का आवेदन था। ये मेरे लिए चैलेंज था। मैंने एक कार्यक्रम की कल्पना की, सहयोग कार्यक्रम, पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चलाया जाता है, और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक लगभग 8.5 लाख आवेदन आए हैं हमारे राज्य में, और 8.5 लाख आवेदन में से 96% आवेदन का निष्पादन हमने किया, और उस आवेदन में क्या कार्रवाई है यह सबसे मिराकल है। जैसे आपने कोई आवेदन दिया कि हमारे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी कनेक्शन नहीं है, हमारा जमीन का डिस्प्यूट है, 10 दिन तक यदि ऑफिसर ने कार्रवाई नहीं किया, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन एक नोटिस जारी होता है उस पदाधिकारी को, उस कर्मचारी को, कि इसका आदेश पारित कीजिए आप। उनको मैं सलाह नहीं देता हूं, उनको कहता हूं कि आप आदेश पारित करें। 20 दिन तक यदि उसने आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया, हम दूसरा नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय से देते हैं।
1: चलिए ठीक है, अब इससे तो जनता से बात करेंगे कि कितना
2: पूरा कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा 25 दिन के ऊपर उसका तीसरा नोटिस आता है, और अभी तक लगभग 12,000 लोगों को नोटिस गया, लेकिन कोई पदाधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं मिला हमको जो 30 दिन पार करे, क्योंकि 30 दिन के बाद वो स्वतः निलंबित हो जाएगा किसी को आदेश देने।
1: मुख्यमंत्री जी, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है बिहार में, तो क्या वजह रही कि जो सीट 3 दशक से ज्यादा के वक्त से बीजेपी के पास थी, जो आपके मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट है, बांकीपुर सीट ही बीजेपी हार गई, जबकि सारे लोगों ने ताकत झोंकी। अब विपक्ष कह रहा है कि ये रेफरेंडम है,
2: देखिए
1: सम्राट चौधरी पर रेफरेंडम है
2: बांकीपुर की जनता, ये तो जनता तय करती है। 243 सीट पर चुनाव हुए, 202 सीट हम जीत कर आए, चाहे वो अररिया जिला का वोट हो, भागलपुर जिला का वोट हो, बक्सर जिला का वोट हो, सासाराम का हो, हाजीपुर का वोट हो, ये तो जनता तय करती है। एक सीट चुनाव तय नहीं करता है, लेकिन विधायक जी है, विधायक काम करें, इसमें क्या दुमत है। 243 विधायक है, सबको काम करने का अधिकार है, सब काम करें।
1: लेकिन वो क्या रही बांकीपुर की, आपको क्या लगता है?
2: देखिए, समय और परिस्थिति, कुछ हो सकता है हम लोगों के निर्णय गलत हुए हों, इससे मैं डिफर नहीं करता।
1: जैसे
2: राज नहीं, मैंने कहा यह समीक्षा का विषय है, मेरा यह मानना है कोई डिसीजन हम लोगों से गलती हुई होगी, जनता को लगता होगा कि इससे अच्छा डिसीजन करना चाहिए था, जनता जो मालिक है उसको कुछ अच्छे नहीं लगे होंगे इसलिए हो सकता है।
0: यूजीसी का मुद्दा बैकफायर कर रहा है लग रहा है।
2: मैं इस पर तो नहीं कह रहा हूं, मेरा यह मानना है ये जनता मालिक है, कभी जिताती है कभी हराती
0: नहीं
2: है।
0: पर आप ये महसूस कर रहे हैं ना कि जिस अगड़ी जाति को आपका वोट बैंक कहा जाता था उनमें नाराजगी रही?
2: भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर तो राजनीति नहीं करती है, लेकिन बिहार की जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिला इससे मैं डिफर नहीं।
3: नहीं तो क्या बांकीपुर सम्राट चौधरी के शासनकाल पर आपके गवर्नेंस पर रेफरेंडम था या नहीं?
2: देखिए एक चीज समझिए, किसी एक व्यक्ति या किसी के कहने से कुछ होता नहीं, ये लोकतंत्र है।
3: वो दिन भर आप ही पर कहते रहते हैं
2: भाई, ठीक है उसको व्यक्तिगत मेरा कोई मामला नहीं है, ना हमको जवाब देने का जरूरत है, 243 विधायक है कितना का जवाब दूंगा मैं। मेरा ये मानना है बिहार लोकतंत्र की धरती है, यहां जिसके पास 122 एमएलए होंगे वही सरकार चलाएगा, एक व्यक्ति के खिलाफ करने से बिहार की राजनीति नहीं बदलती। बिहार 122 हम लोगों को हमारी गठबंधन की सरकार को समर्थन प्राप्त है, हम लोग जनता का काम कर रहे हैं।
1: लेकिन मुख्यमंत्री जी बांकीपुर पर अभी एक दो सवाल और है, छोटा सा ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की जीत वहां बिहार में एक नई दस्तक दे रही है? वजह क्या है कि भाई अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुआ?
2: देखिए मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने फिर कहा ना व्यक्तिगत मेरे इशू है ना मेरी कोई लड़ाई है, बिहार की जनता के बीच में मोदी जी नीतीश जी एनडीए के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, काम करना है, 2030 में फिर चुनाव होगा, फिर पूरी बिहार की जनता देखेगी।
0: पर इत्तेफाक नहीं हो सकता है, जेंजी प्रोटेस्ट उसी समय चलता रहा, छात्रों की नाराजगी एक तरफ नजर आती रही, आंदोलन अलग अलग जगहों पर हो रहा था, उसके बीच में आया तो सबने कहा छात्र नाराज है, युवा नाराज है, आगे नाराज है।
2: जिस तरह प्रधानमंत्री जी पूरी तरह हमारे जो नौजवान साथी है उसके साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है, मैं तो सबसे पहला मुख्यमंत्री था जिसने तुरंत उनके ऊपर जितने FIR हुए सबको मैंने वापस लिया।
3: लेकिन सम्राट जी ये बताइए, क्योंकि आप नीतीश कुमार के साथ भी आपने काम किया हुआ है, एक लंबी लकीर उन्होंने खींची है विकास की पिछले 20 सालों में, सम्राट चौधरी को क्या कोई प्रेशर महसूस होता है क्या कि उस लंबी लकीर को मैं कैसे और बड़ा करूं, और क्या आज भी सम्राट चौधरी इस दबाव में है कि भाई मेरे ऊपर भी कोई सुपर CM है?
2: नहीं नहीं, हमारे नेता रहे नीतीश कुमार भाई, इससे कैसे मैं डिफर कर सकता हूं, आज भी एनडीए के सबसे बड़े नेता वो हैं बिहार के स्तर पर, इससे मैं डिफर नहीं कर सकता, उनका कोई सलाह आएगा तो मैं जरूर सुनूंगा, इसमें कहां दो मत। लेकिन हमारी पार्टी की जो संरचना है और एनडीए का जो स्वरूप है सब मिलकर काम करते हैं, दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा होकर काम कर रहा है, और नीतीश जी 1996 से लेकर 2026 तक भाजपा के सहयोग से बड़े नेता के तौर पर कभी रेल मंत्री कभी मुख्यमंत्री लगातार बनते रहे, और नीतीश जी ने एक मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो भाजपा ने तय किया तो मैं मुख्यमंत्री बना।
1: सम्राट जी मैं मानती हूं कि यह सहयोग नहीं है कि आपने आज अपने काम की शुरुआत में ही छात्रों की चर्चा बहुत की, क्या इसके पीछे छात्र आंदोलन है? 3 सवाल इससे जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिक है। एक तो अभी ही छात्रों का आंदोलन हुआ, BPSC एग्जाम को वो चाहते हैं रिव्यू हो, जो सब इंस्पेक्टर के लिए BPSSC एग्जाम है उसका भी वो रिव्यू चाहते हैं। इससे पहले भी छात्र आंदोलन पटना में हुआ, उस वक्त पर ज्यादतियों को लेकर सवाल खड़े हुए सिवान में, तो AK-47 के इस्तेमाल को लेकर पूरे देश में एक चर्चा हुई कि भाई छात्र थे हमारे बच्चे थे, उनको पेपर लीक से समस्या है, उनको एग्जाम करने की पद्धति से भ्रष्टाचार से समस्या है, हम हल न देकर
2: इसलिए अंजना जी मैं पहला राज्य हूं जिस राज्य में मैंने सिटिंग जज, मैंने रिटायर्ड जज के लिए विशेष तौर पर चीफ जस्टिस साहब से आग्रह किया कि एक सिटिंग जज हाई कोर्ट के उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाए कि इस पूरे मामले का रिव्यू, कहीं जो भी गलत जिसने भी किया सब पे कार्रवाई हमारी सरकार करेगा, इससे मैं पीछे नहीं।
1: बीपीएससी एग्जाम पर
2: किसी भी जो भी रिपोर्ट वो देंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी तरह नौजवानों के साथ खड़ी है, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर तौर पर नौजवान जो चाहेंगे वो आवेदन दे, और जो कमेटी बनी है वो जो आदेश करेगा उसके साथ सरकार 100%।
1: ये कमेटी आप किस पर बता रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम पर या AK-47?
2: मैंने दोनों चीजों पर नहीं, उस पर तो जो कार्रवाई करना था उस पर कार्रवाई, उनको नहीं जाना था, जिनको नहीं जाना था वैसे पदाधिकारी कर्मचारी वहां गए, सब पे कार्रवाई हुई। लेकिन जो परीक्षा का सवाल है या किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार का इशू है जो परीक्षा से संबंधित, उसके लिए विशेष कमेटी का गठन मैंने किया है जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: सम्राट जी, एक युवा की बात और उठनी लाजमी हो जाती है, और वो युवा भरत तिवारी। एक ऐसा एनकाउंटर जो हुआ बिहार में, लेकिन उसकी चर्चा भारत के कोने कोने तक हुई। जो बातें उसके द्वारा कही गई थी, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, उन चीजों को लेकर आपको लगता है वो रोष, वो गुस्सा उन नौजवानों में है अभी भी?
2: मेरा ये मानना है, मैंने 48 घंटे में उस पर न्यायिक कमेटी बनाई और न्यायिक कमेटी ने कहा कि पुलिस से वहां चूक हुई, और हमने तुरंत उस परिवार के सहयोग के लिए भी खड़ा हुआ, परिवार से मैं मिला भी उनकी माताजी से, और जो दोषी पदाधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया गया, जेल में भी डाले गए, और तमाम चीजों के लिए अब न्यायालय तय करे कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके उसको सजा भी देनी।
1: मुख्यमंत्री जी, अगर आपने वो रिपोर्ट देखी है, क्योंकि आप ही ने बताया कि पुलिस लैप्स दिख रहा है, किसने ऑर्डर किया था, शूट का ऑर्डर किसका था, क्यों ऐसा हुआ?
2: कोई भी चीज, मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधी किसी भी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो पुलिस को चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन यदि पुलिस कोई गलती करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसलिए मैंने न्यायिक आयोग बना, जुडिशियल कमीशन बनाया, जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आया उस परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त किया, सरकार ने कार्रवाई किया, उस परिवार को के जीवन यापन के लिए हम लोगों ने कहा कि उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, आर्थिक सहयोग किया जाएगा। इसका मतलब ही है सरकार ने गलती मानी।
0: पर कानून व्यवस्था को आप अपना स्ट्रेंथ बताते हैं, ये कहा जाता है कि अब जीरो टॉलरेंस फॉर ऑल क्राइम सब तरह के अपराध के लिए बिहार में है, पर जो कुछ इंसिडेंट्स, एक सेना के जवान को लेकर जो मामला अभी आया, इस तरह की चीजों को लेकर आप कैसे हैंडल, क्या हैंडल करना चाहते हैं सम्राट चौधरी का क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर क्या?
2: मेरा मानना है कि कार्रवाई लगातार होते रहनी चाहिए। सुशासन तभी स्थापित होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, अपराधी को सजा दिलाया जाए, और यदि कोई जघन अपराध है उस पर तुरंत अपराध पर कार्रवाई हो और उसको सजा एक टाइम फ्रेम में हो। हम लोगों ने इसके लिए गुंडा एक्ट में पूरा प्रावधान किया। अभी आप कह रही थी ना परीक्षा सुधार के, हमने कहा है कि एक से दो बार यदि कोई व्यक्ति चार्जशीटेड हो इस परीक्षा के हेर फेर करने में, उसको एकदम गुंडा एक्ट में बंद करके 1.5 साल रखना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे कई चीज हैं जो कानूनी तौर पर अपराध को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई।
1: एक सेकंड रोहित, जल्दी से एक सवाल इसी टॉपिक पे, चुकी मन में आया, कहते हैं आजकल 3 CM में रेस लगी हुई है, योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी।
2: नहीं नहीं, मैं तो रेस में ही नहीं,
1: बुलडोजर एनकाउंटर,
2: मैं तो रेस में ही नहीं हूँ मैं तो रेस में ही नहीं हूँ कहा अंजना जी आप हमको
1: बुलडोजर एनकाउंटर का बोलबाला, माफिया का अंत करना है, पुलिस एकदम ट्रिगर हैप्पी हो जाए तो हो जाए।
2: नहीं, अपराध अपराध अपराध के खिलाफ होना चाहिए। मैं ना, मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा है, कहाँ मैं इस चक्कर में पड़ूं। मेरा काम है शासन को ठीक से चलाना, पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड छोड़ देना।
3: तो मुख्यमंत्री जी, एक चर्चा अभी पिछले कुछ दिनों से चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो यूसीसी को लेकर जब अपनी बातें रखी हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए शासित या बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, बिहार में हम देख रहे हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू ने इस पर सवाल उठाए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, तो बिहार में सम्राट चौधरी का स्टैंड क्या है या बीजेपी का स्टैंड क्या है यूसीसी को लेकर, और जेडीयू और एलजेपी जो सवाल खड़े कर रहा है इस पे, एक तरीके से कहें तो विरोध में है, उसको फिर कैसे आप लोग मनाएंगे?
2: नहीं नहीं, स्वाभाविक है, हम सबसे बात करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे, तब कोई डिसीजन करेंगे।
3: बिहार में लागू होगा यूसीसी?
2: मैंने क्या कहा कि सबसे चर्चा करेंगे तब डिसीजन करेंगे।
0: आरजेडी ने तो न्योता दे दिया है जेडीयू को कि छोड़ दो उनको, यूसीसी ले आएंगे ये।
2: हमने कहा कि हम चर्चा करेंगे, आरजेडी क्या कहता उससे हमको क्या लेना देना।
0: जेडीयू से कह रहे हैं वैसे भी।
2: मेरा ये मानना है श्वेता जी, मैं अपने गठबंधन को जानता हूं, गठबंधन के सहयोगी के साथ वार्ता करूंगा, चर्चा करूंगा, तब कोई डिसीजन करूंगा।
1: ऐसा लगता है कि गृहमंत्री जी ने यूसीसी का ऐलान तो कर दिया लेकिन आप लोग सब बैकफुट पर चले गए, सही असेसमेंट है?
2: नहीं, ये कोई बैकफुट या फॉरवर्ड खेलने की बात नहीं है, मेरा स्पष्ट मानना है ये एनडीए की सरकार है, हम सबसे मिलकर बात चर्चा करके आगे बढ़ेंगे।
0: सम्राट जी, एक चीज जो इस समय बिहार जिससे जूझ भी रहा है, बाढ़, मतलब कभी कभी लगता है कि नियति बनकर लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, क्या बिहार में बाढ़ का कोई इलाज नहीं हो सकता, क्यों हर साल बाढ़ से पीड़ित होना पड़ता है बिहार को?
2: बेसिकली क्या है श्वेता जी, ये अपना पानी नहीं है, उत्तर प्रदेश से 6.5 लाख क्यूसेक पानी आता है, मध्य प्रदेश झारखंड से लगभग 11.5 लाख क्यूसेक पानी आता है, नेपाल के तराई से कोई लिमिट नहीं है, कभी भी 1 लाख क्यूसेक पानी आएगा और कभी 10 लाख क्यूसेक पानी आएगा, ये नेपाल में तय करना है कि नेपाल में कितनी बारिश हुई, वो बेचारे को भी पता नहीं होता है इतनी बारिश का पानी हमारे यहां आता है। अब है कि सबका जंक्शन बिहार है और जो सबसे बड़ा ड्रेन है वो माँ गंगा है, इस गंगा में एक तरह से गाद बहुत बढ़ गया है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब बिहार के बॉर्डर पर बक्सर में माँ गंगा आती है वहां पे मात्र 6 किलोमीटर का चौड़ाई है, और यही जब आप बिहार से झारखंड के लिए हम डिस्चार्ज करते हैं वहां पर लगभग 32 किलोमीटर का ड्रेन है, भागलपुर में 26 किलोमीटर, खगड़िया और मुंगेर में वो 22 किलोमीटर, ऐसे करते हुए पूरे हमारे जमीन को तबाह करते हुए ये पानी समुद्र में जाता है, हमारे लिए चिंता का विषय है, ये बात सही है। अभी तक हम डरते थे कोसी से, कोसी में 6.5 लाख क्यूसेक पानी आते थे तो हमारी डर रात की नींद उड़ जाती थी, इस बार सिर्फ गंगा में 17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, 17 लाख, आप सोचिए उसको कंट्रोल करने में हाईएस्ट लेवल तक का पानी इस बार गया, एचएफएल जो है अभी तक 16 में आया था 1922 के बाद, और 16 के बाद 10 साल के बाद इस बार हाईएस्ट लेवल पर लगभग 1 फीट अधिक पानी जो 2016 में आया उससे अधिक पानी आया,
0: तो कुछ नहीं हो सकता है?
2: नहीं, इसको करना है,
0: नहीं, किसी की भी सरकार है, कुछ हुआ नहीं, ही नहीं।
2: मैंने इसका वर्कआउट शुरू किया है, कोसी और गंडक पर भी काम शुरू किया था कि नेपाल के तराई में एक जमाना था कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी भी आते थे 2008-09 में, तो बिहार के लगभग 7 से 8 जिले पानी पानी हो जाते थे, चाहे वो कोसी हो चाहे वो मथिला का इलाका हो। गंडक में 3 लाख क्यूसेक पानी आता था, पूरा चंपारण और सारण डूब जाता था, अब धीरे धीरे इसको ठीक किया है हम लोगों ने, जहां बिहार में मात्र 21 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुआ करता था आज वो बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गया है, लेकिन अब जो चुनौती आप कह रही है हमको हर हालत में, हमने नीदरलैंड भी टीम भेजा था, सबसे ज्यादा नदियों पर काम वहीं हुआ, हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, कोसी से हम शुरू करेंगे और गंगा को हर हालत में बांधने का काम हमारी सरकार करेगा।
1: मुख्यमंत्री जी, एक पूजा देवी है कटिहार की, उनका एक वीडियो है आपके नाम, अगर आपका ये हो तो जरा चला देते हैं, आप उनकी बात सुनिएगा, क्योंकि बाढ़ एक ऐसी विभीषिका है जिस पर हम लोग इतना क्यूसेक पानी, उतना क्यूसेक पानी सब बात कर लेते हैं, साल दर साल कुछ बदलता नहीं है। 15 जिलों में उन घरों में शाम का दिन का खाना नहीं बन रहा है कई दिनों से, तो उनको जो समस्या है एक बार सुनिए। हो क्या
4: दुकान दौड़ी सब कुछ रास्ता बंद छे तो जेबे कथी से आइए वोट मांगे तोरा वोट देबो देख पानी हमरा देख हमरा कल तो पानी पी लै जेता पानी तू सब कलर पानी पिए हम अपने पानी पिए छे कल डूबी गेलो छे।
1: ये जो समस्या
2: देखिए, ये कष्ट तो है,
1: बहुत कष्ट।
2: मैं तो ऐसे विधानसभा से पहले जीतता था जिस विधानसभा में 3 नदी गुजरती थी, यहाँ 2 मेरे साथी बैठे हैं बगल के सीटों पर चुनाव लड़ते रहे, कोसी, माँ गंगा और बूढ़ी गंडक, 3 नदी से घिरा हुआ हमारा विधानसभा होता था। उस पीड़ा को मैं जानता हूं, इसमें कहीं तो मत, प्रत्येक साल जो पीड़ा होती है इसी पीड़ा के लिए मैंने कहा इसको हर हालत में बांधना होगा, अब इसका परमानेंट सोल्यूशन करना होगा और इस लक्ष्य को हम लोगों ने कबूला है, इसको आगे बढ़ाने का काम होगा।
3: एक सवाल मेरा मुख्यमंत्री जी है, क्योंकि बिहार की समस्या वर्षों से रही है पलायन, और बिहार में नौकरी क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है। चुनाव के वक्त आप लोगों ने 5 करोड़ रोजगार देने का या सरकारी नौकरी देने का वादा किया था 5 सालों में, उसको लेकर क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, उद्योग की बात आप लोग करते हैं कि उद्योग लगाएंगे, लेकिन अभी कुछ लगा नहीं है। आज भी पलायन हजारों लाखों की संख्या में रोजाना बिहार से हो रहा है, तो ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं कि रोजगार का जो 1 करोड़ का टारगेट था उसको आप पूरा करें, लोग जो बाहर काम कर रहे हैं पटना से या बिहार से बाहर वो वापस आए यहां पर?
2: एकदम रोहित जी, एकदम सही समय है, आ अब लौट चले बिहार वाला स्थिति। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी 10 लाख रोजगार देगी। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो 2025 के चुनाव में जब हम जा रहे थे तो हम लोगों ने हिम्मत बढ़ गया, जब देखा कि बिहार की सरकार ने लगभग 43 लाख लोगों को रोजगार दिया और लगभग 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। अब इस बार इसलिए हम लोगों ने टारगेट किया कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, और यह लगातार काम चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा रही, हम 25 चीनी मिल लगाने का टारगेट हम लोगों ने शुरू किया, अभी तक 10 चीनी मिल बिहार में चालू हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में। अब हम लोगों ने टारगेट और लिया है, अभी 5 चीनी मिल को जमीन उपलब्ध कराना शुरू किया, अभी चाहे वो आपको रिहाम हो, सकरी हो, सासा मूसा का गोपालगंज हो, अभी हम मोतिहारी में जमीन दे रहे हैं, अगले ही कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हम नवादा में लगभग 100 एकड़ जमीन दे रहे हैं।
0: सम्राट जी, इसी पे छोटा सा, कई शुगर मिल तो बंद भी पड़े हैं,
2: वही उसी को टेक ओवर कर रहा हूँ,
0: उसको टेक ओवर करके
2: जो
0: वापस
2: उस समय की तत्काल सरकार ने बेच दिया था, कई चीजों को हम टेक ओवर कर रहे हैं। अशोक पेपर मिल बंद है, उसको भी हमने कहा टेक ओवर करो, और उसको टेक ओवर करके वहां एक बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करना। ये जो सकरी का जमीन मैं बोल रहा हूँ, सकरी में भी पहले शुगर मिल ही था, रिहाम में भी पहले चीनी मिल ही था, सासा मूसा में भी पहले शुगर मिल ही था, इन तमाम चीजों को फिर से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसको करके उसमें हम इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ रोजगार करने आइए, हम इंसेंटिव भी देंगे और फैक्ट्री लगाकर बिहार के लोगों को, किसानों को रोजगार मिल सके।
1: सम्राट जी, मैं चूंकि मैं ये मान रही हूँ कि बाढ़ की स्थिति अभी जो है वो बहुत भयावह है, उसी से जुड़ा एक सवाल रह गया था मेरा, 10,000 करोड़ का, ये जानकारी बाहर आई कि 10,000 करोड़ के नुकसान का अंदेशा आपने, जब शिवराज सिंह चौहान यहां पर आए थे तो आपने इतना डैमेज की रिपोर्ट दी है, इस पर अपडेट क्या है? आपको सहायता और कब तक मिलेगी इन लोगों को, पूजा देवी जैसे लोगों को, क्योंकि एक मानवीय चेहरा होता है बाढ़ का जो हम आंकड़ों में भूल जाते हैं, ऐसे घरों में पैसा, राहत पहुंचे, नाव पहुंचे, किसी तरह से उन तक सामान पहुंचे, ये कैसे सुनिश्चित होगा?
2: देखिए, एक तो लगभग 50 लाख परिवार के बीच में हम लगातार हमारे सभी जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी कर्मचारी तक पहुंच रहे हैं। लगभग 2 करोड़ लोगों को सिर्फ खाना हम लोगों ने खिलाने का काम किया, रसोई कम्युनिटी हम लोगों ने किचन चलवाया। उसके बाद इसका लगातार मॉनिटरिंग मैं स्वयं भी करते रहा, मैं स्वयं भी जमीन पर जाते रहा, और अभी हम लोगों ने लगभग 8.5 लाख परिवार सीधा उनके खाते में 7,000 रुपया देने का काम कर चुके। अब हम पूरी तरह
1: परिवारों को
2: लगभग 8.5 लाख परिवार को, ये मतलब हो गया लगभग 30 लाख से अधिक व्यक्ति आप जोड़ सकती है। हम उन परिवारों को आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। अब इसको हम एक्सरसाइज करेंगे कि उनके खेत में क्या दिक्कत आई, तो हम बिहार में कृषि इनपुट भी देते हैं, हम अलग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी हम लोगों ने इसी साल जुलाई महीने में लॉन्च कर दिया है, उसके तहत भी मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय शिवराज जी को यहाँ भेजा गया कि आप एक बार वहाँ जाकर जमीन पर देख कर आए। उन्होंने स्वयं देखा कि केला का फसल, मकई का फसल कैसे डूब गया, बर्बाद हो गया। भागलपुर के इलाके में कहीं धान खराब हो गया, कहीं केला खराब हो गया, कई जगह वो स्वयं गए। तो उन्होंने स्वयं कहा कि जो घर गिर गए इनको तुरंत हम लोग सहयोग करेंगे। जिस इलाके में सड़क टूट गई इसके मरम्मति के लिए भी हम सहयोग करेंगे। और हम जो किसान के एक तरह से जो बीज है वो उपलब्ध कराएंगे, कि क्योंकि छोटे छोटे फसल हुए थे उसी पर पूरा पानी आ गया, डूब गया, तो वो नष्ट हो गया। हम बीज भी देने का काम भारत की सरकार करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने विशेष तौर पर उनको भेजा, पूरी समीक्षा हुई है, हम रिपोर्ट पूरी तरह डिटेल बनाकर अगले 15 दिनों में देंगे भी, क्योंकि अभी पूरा एक्सरसाइज हमने पूरा नहीं किया। ये प्रथम दृष्टिया हम लोगों ने एक एक्सरसाइज करके आग्रह किया है, लेकिन ये पूरा एक्सरसाइज करके हम लोग रिपोर्ट दुर्गा पूजा के पहले उनको देंगे।
0: सम्राट जी, मुझे तो कोसी बाढ़ याद आता है, जब पहली बार एक मुख्यमंत्री को मैंने जमीन पे देखा था, जब पूर्णिया वगैरह उत्तर बिहार के क्षेत्र में नीतीश जी गए थे। इस बार सरकार दिख तो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो त्रासदी मैं बचपन से देखती रही कि कभी स्कूल छोड़कर दूसरी जगह रहो क्योंकि बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, बाढ़ आ गई, वो आज भी न हो, नंबर वन। क्या जो हमारा फरक्का बराज का इशू है और हमारी संधि है जो दिसंबर में खत्म होने वाली है, उसको लेकर वहां से कोई समाधान आने वाले?
2: उसके दो उपाय हैं। इंटरनेशनल टीटी जो बांग्लादेश के साथ है उसमें है कि हमको 4 महीने ही पानी यूज करने का अधिकार है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जिस समय बिहार के पास पर्याप्त पानी होता है। इस समय पानी हमको मांगने की जरूरत गंगा मैया से नहीं है, हम तो उल्टा डिस्चार्ज करना चाहते हैं कि जल्दी से निकले। हम इंटरनेशनल टीटी में हमने यही आग्रह किया है विदेश मंत्री जी से, हमारा पक्ष सुना जाए, राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए। राज्य सरकार के 3 मुद्दे हैं। एक, हमको पानी पीने के लिए कभी नहीं रोका जाए, साल के 12 महीने पानी पीने और खेत में पानी देने के लिए हमको कभी नहीं रोका जाए। आप एकदम बांग्लादेश को पानी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, पानी जाएगा ही, हम जाए, हमको कोई उससे रोक नहीं। हमको ये अधिकार रहे कि जब हम कष्ट में रहें तो हमको पानी पीने के लिए, जो हमारा साउथ बिहार का पूरा इलाका है, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, इधर सासाराम का इलाका, इस पानी को यूज करने का अधिकार, हमारे खेतों को जब जरूरत हो तब हम पानी ले सके, नहीं तो हम जिएंगे कैसे। और तीसरा, उद्योग लगाने के लिए टाइम आप फिक्स कर सकते हैं कि इस समय पानी ले, क्योंकि बिहार में उद्योग नहीं लगेगा तो बाहर हम प्लान करने जाएंगे। आज दुनिया में सेमीकंडक्टर लग रहे हैं, हमारे यहां लगेगा, हमको सबसे पहले पानी चाहिए, और पानी जो सहायक नदियां इसी से पानी आएगा। हमारे पास मात्र 350 क्यूमटेक पानी आपको उत्तर प्रदेश से आता है, और हम डिस्चार्ज करते हैं 1500 क्यूमटेक पानी। आप सोचिए कि हम 5 गुना पानी छोड़ रहे हैं। ये पानी तो मेरा होना चाहिए, दुगुना ले लीजिए आप, तिगुना ले लीजिए, 2 गुना तो मेरे लिए छोड़ दीजिए, इस बिहार के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी बात, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने फरक्का उठाया। फरक्का इस बार हम लोगों ने शिवेंदु अधिकारी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को मैंने फोन किया। आप सोचिए कि 106 गेट में 97 गेट, मतलब इतिहास के पन्ने में पहली बार है कि जब नेपाल की त्रासदी हुई तो सारे गेट खोल दिए गए और सारा डिस्चार्ज पानी हमारा हुआ। आज भी फरक्का से हमें जो कष्ट है वो मैं बताता हूं। जब फरक्का में पानी रोके जाते हैं तो ऑटोमेटिक रिवर्स होता है पानी, और ये भागलपुर तक, तेल तक हमारे पानी रिवर्स होते हैं और वहां गाद जमना शुरू हो जाता है। मैंने CWC के तमाम ऑफिसर्स को कहा कि आप हमको एक इंजीनियरिंग समझाइए जिससे कि हमको लॉस नहीं हो। इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि कहीं 6 किलोमीटर का चौड़ाई है और कहीं 30 किलोमीटर का चौड़ाई है, इसलिए कि गाद जमते हैं तो पानी दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाता। हमको गाद की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। हमने गाद नीति परसों पिछले कैबिनेट में मैंने पास किया और कहा है कि अब गंगा में, माँ गंगा या नॉर्थ बिहार के किसी भी नदी में कोई व्यक्ति अपने खेत से मिट्टी काटेगा, 1 मीटर क्यूबिक यदि आप खेत से मिट्टी काटेंगे और जमीन को बेचेंगे तो आपको 300 रुपया मिलेगा। मैंने कहा 10 रुपया में गंगा जी मैया का मिट्टी ले जाओ, 1 क्यूबिक मीटर जो है मिट्टी ले जाओ, तुमको हम 10 रुपया में देने का काम करें। इसलिए कि गंगा की सफाई करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसको भी हमने गाद नीति में लाया। इसलिए 2 सब्जेक्ट है, फरक्का एक अलग सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल TT अलग है।
1: तो इंटरनेशनल ट्रीटी आप चाहते हैं कि उस
2: दोनों में दोनों
1: संधि को रोका जाए?
2: नहीं, संधि को रोका मैंने रोकने नहीं कहा। हाँ। मैंने कहा बांग्लादेश को पानी मिले लेकिन जितना पानी हमको मिलता है बक्सर में उसके दुगुना तिगुना तक जाइए, 2 गुना तो मेरे लिए रहने दीजिए, 5 गुना हम पानी दे रहे हैं, हमको 1/3 हिस्सा दे दीजिए, बिहार के किसान का जीवन बदल जाएगा।
1: अगला सवाल आ रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज अब दिखाई देता है बिहार में वो ये है कि आप निवेश कैसे लाएंगे, आप निवेश करने वालों, निवेशकों का विश्वास कैसे वापस लाएंगे, जो लंबे वक्त तक खोया रहा सम्राट जी से इनकार करने में, मतलब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे राज्य हैं जो बड़ी तेजी से आगे बढ़े, आज सोचिए कि 80% मखाना यहां, 40% लीची यहां, लेकिन एक्सपोर्ट में बिहार का कितना योगदान है, 0.5% के आसपास। इसको आप कैसे परिवर्तित करेंगे? सम्राट चौधरी बीजेपी का मुख्यमंत्री ऐसा क्या नया करेगा जिसकी वजह से निवेशक यहां पर आए, और अभी तक आप कितनों को लाने में?
2: देखिए, अभी तक मैंने पहले भी बोला कि आपको लगभग 1000 इंडस्ट्री को हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, और इसके साथ साथ अभी तक इंटरनेशनल मार्केट हमारे पास नहीं थे, इंटरनेशनल विंडो नहीं था। अभी हम दरभंगा के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मानक पर ले जा रहे हैं, हम पूर्णिया के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मानक पर ले जा रहे हैं, पटना के एयरपोर्ट पर VGF देकर हम प्रमोट कर रहे हैं, हम गया जी के एयरपोर्ट को VGF देकर, क्योंकि हमारा छोटा रनवे होता था जिसके चलते उनको कुछ सीटें खाली रखना पड़ता था, इंडोनेशिया नहीं जा सकते, यहां से दुबई नहीं जा सकते, गल्फ नहीं जा सकते, तो हमने यहां पर एक मैकेनिज्म किया कि VGF देना शुरू किया। हमने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट यहां से उड़ाइए, हम दुनिया के मार्केट में जाना चाहते। आज मखाना आप देखिए 20 टन मैट्रिक टन जो है हमारे यहां से मखाना ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू कर दिया, यहां के ड्राईपोर्ट से। हम इसी तरह के 12 टाउनशिप हम बना रहे हैं, हमने कहा है कि 12 टाउनशिप में हम ड्राईपोर्ट बनाएंगे जिससे कि दुनिया के मानक के हिसाब से हम एक्सपोर्ट करने का रास्ता खोल पाए।
5: लक्ष्य इतना बड़ा है आपका, आपने टाइमलाइन दे दिया है 2029
2: 30
5: पलायन रोकने के लिए।
2: देखिए, मैंने इसलिए कहा कि बिहार के लोग जो गरीब हैं, जब वन नेशन वन राशन कार्ड आया तो भारत में आप जैसे लोग भी यहाँ से पलायन किए हैं, लेकिन आप समृद्धि के ओर रास्ते की ओर गई।
5: नहीं, मैं तो
2: मैं कह रहा हूं, आप बाहर गई तो आप हमारी प्रतीक हैं कि आप अच्छे करने गई, लेकिन जो मजदूरी करने गए हैं उनको हम चाहते हैं कि वो बिहार में रहे, मजदूरी करने बाहर नहीं जाए। वैसे 5 लाख लोग हैं पूरे भारत में जो बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि जो राशन कार्ड है वो अनाज उठा रहे हैं दूसरे राज्य में, ये हमारा पैरामीटर है। और लगभग 7 लाख मजदूर हैं जो हमारे यहाँ लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब 12 लाख लोग, दोनों को जोड़ता हूं मैं तो 12 लाख लोग बाहर हैं। हमको इसी को तो वापस लाना है, जो अच्छा करने गए। अनिल अग्रवाल जी वेदांता के मालिक है तो उनको बुला के क्या करूंगा, वो आए इंडस्ट्री लगाए। आप अच्छी एंकर हैं, आप अच्छा दिल्ली में आज तक में कर रही हैं, तो मैं थोड़े चाहूंगा कि आप पटना आ जाए। आप
6: और आइए अब सुनते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं।
7: जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज आप देख रहे हैं हमारे युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है। दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स समिट संपन्न हुई। भारत का प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हर कोई इस पार्टनरशिप का सक्रिय भागीदार बने। इसी सोच के साथ ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स एमएसएमई कोऑपरेशन पोर्टल की भी पहल की गई है। साथियों, भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं, नए मार्केट्स के रास्ते खुलते हैं, और हमारे युवाओं के लिए

कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य की एक और तस्वीर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई देती है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है, यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है। छोटे शहरों के हमारे युवा अपने आइडियाज पर काम कर रहे हैं, नई कंपनीज बना रहे हैं और अपने साथ दूसरे युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ें। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना की मदद से करीब 2 करोड़ युवाओं को पहली बार वर्कफोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं का 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। नए रोजगार पैदा करने वाले एम्प्लॉयर्स को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। यानी देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। साथियों, युवाओं के लिए नए अवसर तभी बनते हैं जब देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं और नए सेक्टर्स का विस्तार होता है। आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है। इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है। आपको अपने कार्यकाल में निरंतर रिफॉर्म्स को और गति देनी है। टैक्स और कंप्लायंसेस को सरल बनाना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना हो, एजुकेशन और स्किलिंग में रिफॉर्म हो या नए सेक्टर्स को इनोवेशन के लिए खोलना हो या ईज ऑफ लिविंग की बात हो, हर स्तर पर देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस का लगातार फुल स्पीड में चलना जरूरी है। और सरकारी कर्मचारी होने के नाते वर्तमान और आने वाले वर्षों में इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले कहा था, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे,

0: लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप सभी की भारत सरकार में रहते हुए ये जिम्मेदारी है कि देश के युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए आप अपने काम को बखूबी निभाएं। मेरा फिर आग्रह होगा, आपका हर निर्णय, हर फाइल पर किया गया सिग्नेचर युवा एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको अपने कार्यकाल में देखना होगा युवाओं के रास्ते की बाधाएं हटे, उनके आइडियाज को आगे बढ़ाने का अवसर मिले, इनोवेशन से इन्वेस्टमेंट बढ़े और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बने। साथियों, अब आप स्वयं सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनना जा रहे हैं, इसलिए आपका प्रयास हो कि जिन परेशानियों से आप गुजरे हैं या जिन परेशानियों से आपके माता पिता को गुजरना पड़ा है, उनसे दूसरे युवाओं को न गुजरना पड़े। जो तकलीफें आपके मां बाप ने सही है, जो तकलीफें कभी आपको सहनी पड़ी है, वो अब हमारे देश के किसी नागरिक को सहनी न पड़े, ये काम आपको सरकारी व्यवस्था में आते ही करना चाहिए। साथियों, आज देश में हर क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आप लगातार सीखते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अब यहां से निरंतर सीखते रहने की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। आपको लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करना है, नई टेक्नोलॉजी और नए सिस्टम को समझना है। मिशन कर्मयोगी इसी उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करता है। आई गॉड कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर आज 1,70,00,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी जुड़ चुके हैं और आप जैसे नए साथियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ को विशेष रूप से तैयार किया गया है। आप जितना खुद को बेहतर बनाएंगे, उतना ही बेहतर देश के नागरिकों की सेवा कर पाएंगे। साथियों, आपको एक और बात हमेशा याद रखनी है, सरकार की असली ताकत देश के नागरिकों का विश्वास होता है। आप किसी भी मंत्रालय में हो, किसी भी विभाग में हो, आपका काम किसी न किसी रूप में देश के सामान्य नागरिक के जीवन को छुएगा। किसी बुजुर्ग की पेंशन आपके काम से आगे बढ़ेगी, किसी विद्यार्थी की स्कॉलरशिप आपकी जिम्मेदारी से जुड़ी होगी, किसी किसान को मिलने वाली सुविधा आपके डिपार्टमेंट हो जाती होगी। हो सकता है किसी नागरिक के लिए आप ही सरकार का चेहरा हो। आपका व्यवहार, आपकी संवेदनशीलता, आपकी एफिशिएंसी, आपकी ईमानदारी, इन सब से तय होगा कि उस नागरिक का सरकार के साथ अनुभव कैसा रहता है। इसलिए साथियों, सरकारी सेवा में हमारा मंत्र होना चाहिए, नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक की सेवा राष्ट्र की सेवा है। आपकी सफलता तब और बड़ी होगी जब आपके काम से किसी नागरिक का जीवन आसान होगा। मुझे विश्वास है आप जहां भी रहेंगे, जिस भी विभाग में रहेंगे, कर्तव्य और सेवा भाव से अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे वर्चुअली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 20वां रोजगार मेला, 51,000 को नौकरी मिली, टारगेट जेन ज़ी। और ये भी कहा पीएम मोदी ने कि सूरज हमारा, समंदर भी हमारा हो, जो नए लोग सरकार में शामिल हुए जिनको सरकारी नौकरी मिली उनसे कहा कुछ लोगों के लिए आप ही हो सकता है सरकार हो, किसी की पेंशन के लिए आप काम करेंगे तो किसी के स्कॉलरशिप के लिए आप काम करेंगे। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
3: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
4: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
5: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार अटूट भरोसा।
7: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
8: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
7: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: In association with
11: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
12: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.

अमरोहा में उपचुनाव को लेकर सियासी तनाव। रेजी नगर से ममता के उम्मीदवार रबीउल चौधरी ने भी नाम लिया वापस। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया। कहा स्टार्टअप में तीसरे नंबर पर भारत। युवाओं के आगे आती बाधाओं को दूर करना मकसद। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम। छात्रों की गूंज। पेपर लीक परीक्षा और रोजगार होंगे मुद्दे। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज। कांग्रेस का आरोप अड़ंगा डालने की कोशिश। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर। दो पदों पर एबीवीपी को बढ़त। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए निर्दलीय ने बढ़त बनाकर चौंकाया। और प्रदूषण पर पीएम मोदी ने विकसित देशों को घेरा। दिल्ली में पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत से 6 गुना ज्यादा कार्बन छोड़ते हैं विकसित देश। सोलर एनर्जी पर भारत का फोकस।

0: मंच पर बिहार के इस पंचायत में चार सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। उम्मीद है कि जो प्रचंड जनादेश के साथ जनता ने उम्मीदें आपके साथ बांध रखी है उस पर आप कुछ जवाब देंगे, जिससे लोगों को भी ये उम्मीद बने कि भाई आखिरकार तो मंत्रालयों का ही काम होता है जिससे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और वहां से तस्वीर बदलती है। तो सबसे पहले डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो कि मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। शैलेश कुमार जी, बुलो मंडल के भी नाम से जाने जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, उनका स्वागत है। और कुमार शैलेंद्र जी, मिनिस्टर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद जमा खान साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी का तो बीजेपी के साथ लंबा सफर रहा है और फिर जब मौका ऐसा आया कि कई फल गिर के भारतीय जनता पार्टी के बगिया में गिर रहे थे तो एक आपके भी झोली में आ गया। लेकिन ये बताइए कि भूमि को लेकर भूमि सुधार राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आप हैं, और ये सीधा जोड़ा जाता है कि भाई जो क्राइम हो रहा है अलग अलग जगहों पर उसके पीछे जमीन भूमि विवाद ज्यादा है, क्या ये सच है? और अपने विभाग से लेकर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उम्मीद जगे कि ये सुशासन 2.0 होगा?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। भूमि विवाद अपराध का जड़ है। बिहार के अंदर करीब करीब 47% ऐसे विवाद होते हैं जो भूमि विवाद के कारण ही अपराध को भी और विभिन्न तरह के मुकदमा को भी उपज करता है। और अगर कोर्ट की बात लें, न्यायालय की बात लें, तो करीब 37% मामले न्यायालय में भी भूमि विवाद को लेकर ही लंबित रहता है, सुनवाई चलता है। तो आपने सही कहा कि भूमि विवाद अपराध का एक कारण है, और यही कारण है कि हमने बहुत ही प्राथमिकता के साथ भूमि विवाद कैसे कम हो इसका सार्थक प्रयास किया है। और भूमि विवाद को समाप्त करने का सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे प्रयास हैं उसमें बिहार के जमीन का सर्वे, आज से 100 वर्ष पहले कैथेड्रल सर्वे सीएस सर्वे हुआ था और 1975 के आसपास रिवीजनल सर्वे हुआ, उसके बाद आज तक बिहार के जमीन का सर्वे नहीं हो पाया। करीब 2-3 वर्षों से सर्वे का काम शुरुआत हुआ है और जैसे ही सर्वे का काम पूरा होगा तो रैयत को यानी जमीन के मालिक को जमीन का पासबुक मिल जाएगा, और जब पासबुक मिल जाएगा तो सभी तरह के विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हालांकि सर्वे कराना इतना आसान काम नहीं है,
0: इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी बीच में आपको टोककर कि वो कैसे कराइएगा, क्योंकि आपके मंत्रालय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है।
1: इसके बाद मैं खुद आऊंगा, मैं उन सब चीजों पर, मैं अगर आप नहीं भी पूछते तो मैं आपको याद करा देता। सर्वे का काम अभी शुरू हुआ है और जब सर्वे करने के लिए हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन बंदोबस्त पदाधिकारी जाते हैं तो अभी करीब करीब 20% जमीन का मामला कहीं ना कहीं न्यायालय में या विभिन्न कोर्ट में जो लंबित है उसको छोड़कर 80% मामले में सर्वे आसानी से अभी शुरुआत किया गया है। और हमने 5 जिला जहानाबाद, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर, 5 जिला के करीब 1300 से ज्यादा हलकों में मौजों में सर्वे का काम पूरा कर लिया और अगले सप्ताह यानी आज से 7 दिन बाद हम उसका प्रकाशन करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बात होगा कि 5 जिला में सर्वे का जो काम जितने मोजा में पूरा हो रहा है, वहां पर जमीन विवाद समाप्त हो जाएगा।
0: ठीक है, अब भ्रष्टाचार पर अगले राउंड में आएंगे, सब लोग एक एक थोड़ा सा अपना अपना बात कर ले। तो आप बोलो मंडल जी, माइक उठा लीजिए, आपके पास अब मैं आना चाह रही हूं। ऊर्जा की बात आपसे होगी तो ये अब बिजली पहले से तो सप्लाई बेटर है और ये दावा लगातार ये नई सरकार कर रही है, लेकिन कई जगहों पर मतलब ऐसा है कि लाइट बल्ब जल भी रहा है, पता नहीं कि इसको कहें कि लाइट है या नहीं है, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है कि नहीं है?
2: नहीं, ठीक बात है, मैं आपके बात से सहमत भी हूं, क्योंकि जो हमारी सरकार है और हमारा विभाग है वो निश्चय ही, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि 2005 से पहले उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 40 से 50 लाख थी, आज उपभोक्ताओं की संख्या 2 करोड़ 20 लाख हो गई है। तो जो हम लोगों ने घर घर बिजली, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो घर घर हर घर बिजली पहुंचाने का जो काम किया उन्होंने, ये तो निश्चय ही इस देश के इतिहास में यह पहला काम था। तो उस समय जो हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया, उसके बाद लगातार हम लोग ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करने का काम किया। हालांकि सब जगह ऐसी शिकायतें नहीं है कि सब जगह लो वोल्टेज की समस्याएं हैं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बात को भी कहता हूं कि जहां भी उस तरह की समस्याएं हैं, सरकार उस पर पूरी तरह से काम करने का काम कर, हम लोग उस पे ग्रिड सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन, जगह जगह पे ट्रांसफार्मर को बदलने का काम कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी 3,39,000 ट्रांसफार्मर हम लोगों का कार्यरत है, और पूरी तरह से जो लो वोल्टेज आपने जो प्रश्न उठाया है, निश्चय ही कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन उस पर हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं, सरकार उस पर पूरी तरह से काम कर रही है। तो वो समस्या है, कहीं कहीं जो भी है उसको हम लोग पूरा करने का काम।
0: ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके लिए भी हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, आप मिनिस्टर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन हैं, एक डेटा ही दे दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने अभी कितना सड़क निर्माण किया है, और आज भी कितने गांव ऐसे हैं, ईमानदारी से नंबर्स रखिएगा, कितने गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी सड़कें नहीं पहुंची हैं?
3: देखिए, हमारे बिहार में 2005 के पहले राजद की सरकार थी, और नीतीश जी जब आए मुख्यमंत्री बने तो सड़क नाम की चीज बिहार में नहीं थी, और पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा। और अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री का ये संभाले हैं दायित्व, तो अभी जो है 2005 तक 14,000 किलोमीटर था सड़क, और अभी ये 26,790 किलोमीटर हो गया, ये सड़क का है। और ऐसे हमारे रिवर जो गंगा रिवर है उसमें 2005 तक में केवल 10 पुल ही था गंगा पर, और अभी 40 पुल अंडर कंस्ट्रक्शन है और 16 बन चुके हैं, ये गंगा पर केवल है, बड़ी बड़ी मेगा ब्रिज है। उसके बाद कोसी में है, कोसी में 5 तक 2 ही था, लेकिन अभी 14 बन के तैयार हो गया है, और 8 अंडर कंस्ट्रक्शन है कोसी पर। उसके बाद गंडक में 2005 में केवल 6 पुल थे, और अभी 11 पुल बन के तैयार हो गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन 10 हैं। ये पूरा डेटा है हमारे बिहार सरकार का। उसके बाद सोन रिवर, इसमें भी 2005 में केवल 4 पुल था, लेकिन 16 बन के तैयार है और 9 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो काफी प्रगति है अभी सड़कों में भी, पुल में भी, और आने वाले समय में भी जो विजन था कि 5 घंटे में पहुंचना है राज्य के किसी जिले से, वो हम लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का विजन है कि हम राज्य के किसी भी गांव से, किसी भी जिले से हम 4 घंटे में पहुंचेंगे। तो कई 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और भी रिंग रोड हमारे
0: कहां पहुंचेंगे, पटना,
3: हाँ पटना के लिए, राजधानी की ही बात हो रही है। अभी एक रिंग रोड हम लोग निर्णय लिया है पटना में, वो 152 किलोमीटर का है, जो 19,000 करोड़ की योजना से ये पूरे पटने के अंदर में 6 एक्सप्रेसवे को जोड़ेगी और पूरे बिहार से आने में ये अभी जो पहुंच रहे हम लोग 5 घंटे में वो अब 4 घंटे में पहुंच जाएंगे।
0: मैंने आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कितने गांव अभी भी हैं जहां सड़कें नहीं पहुंची, ऐसा कोई डेटा है क्या आपके?
3: एक भी गांव ऐसा नहीं है बिहार के अंदर में जहां सड़कें, चूंकि मुख्यमंत्री पहले
0: पक्की सड़कें,
3: पक्की सड़कें, एक भी गांव नहीं है पूरे बिहार के। ये तो मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी ने कर दिया कि छोटी छोटी बसावट भी जो थी वहां भी सड़कें पहुंच चुकी है। अब अभी अभी ओपीआरएमसी में हम लोग 16,000 करोड़ की योजना से मेंटेनेंस जो 7 साल का चलेगा उस पर भी काम शुरू हो गया है। बाढ़ में जो इतने भयानक बाढ़ आया उसका भी डेटा आ चुका, हम लोग सब सर्वे कर चुके हैं, 2 दिन के अंदर सारा काम शुरू हो जाएगा और 5 दिन के अंदर सारे जगहों पर लोग सड़क पर चलने लगेंगे।
0: मोहम्मद जमा खान साहब आप माइक उठा लीजिए अब, और आपसे ये सवाल है, आप मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर हैं, तो क्या अल्पसंख्यकों के साथ सब कुछ सामान्य है? क्योंकि देखिए विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भाई जेडीयू तो अपनी जगह पर है, क्योंकि यहां पर सबसे मजेदार यही है कि 2 जेडीयू वाले मंत्री और 2 बीजेपी वाले हैं। वैसे आप समझ गए होंगे जो जिस मुख्यमंत्री का नाम ले उससे पता चल जाता है, बुलो मंडल जी ऐसे गुस्से में देख रहे हैं, लेकिन खाली नीतीश बाबू का नाम लिए, सम्राट जी का नाम नहीं लिया आप, सबकी गिनती हो रही है यहां पर। जमा खान साहब ये आरोप लगता है, विपक्ष लगाता है हमेशा कि भाई बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम है, एक भी टिकट नहीं देती है किसी भी मुस्लिम समुदाय से किसी को, तो चल रहा है माइनॉरिटी वेलफेयर?
4: सबसे पहले आप सबका दिल की गहराइयों स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जहां तक सवाल है विपक्ष का, मैं बताना चाहता हूं पूरे दर्शकों भाइयों को कि माइनॉरिटी समाज मुस्लिम समाज ने सबसे ज्यादा, सच बात है, वोट सपोर्ट करने का काम किया विपक्ष लोगों का, लेकिन जो काम हुआ है 2005 के बाद सरकार बनी, जो काम हुआ है हमारे माइनॉरिटी समाज का, मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं हुआ होगा, एनडीए सरकार में हुआ। कुछ बात को बताना चाहता हूं, जब जमाना विपक्ष का था उस समय कब्रिस्तान को लेकर हर जगह विवाद होता था, अतिक्रमण था, लड़ाइयां होती थी, हिंदू मुसलमान होता था। जब एनडीए सरकार आया, जब हम सबके नेता जनाब नीतीश कुमार जी आए, तो गौर किए और देखे, चूंकि जो कब्रिस्तान होता है मुस्लिम का आस्था होता है, लड़ाइयां होती थी, लेकिन एनडीए सरकार ने, जनाब नीतीश कुमार जी ने उसको घेराबंदी कराने का काम किया, लगभग 10,000 से ऊपर कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग विपक्ष के लोग कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके जमाने में मात्र बजट 3,53,00,000 था, उनके जमाने में जो लोग हितैषी बनते थे मुसलमान भाइयों का, माइनॉरिटी के हितैषी बनते थे, उनके जमाने में 3,53,00,000 था, सोचिए उससे क्या विकास होगा। लेकिन जब एनडीए सरकार आई, हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी जब आए, उसको बढ़ाकर 1,100 करोड़ करने का काम किया, उससे विकास होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके द्वारा विपक्ष को बताना चाहता हूं, जो मेरी सरकार ने काम किया है माइनॉरिटी के लिए, फिर मैं कहता हूं कहीं भी किसी देश में, किसी प्रदेश में ऐसा काम नहीं हुआ है जो हमारे नेता ने किया, एनडीए सरकार ने किया।
0: आप दिलीप जी को बार बार देख रहे हैं,
4: वो बड़े भाई हमारे हैं।
0: है?
4: एक और बताना चाहूंगा आपको, ये सरकार,
0: सुनिए, यूसीसी लाने वाले हैं, खुश है ना आप, तैयार है ना उसके लिए?
4: जो निर्णय लेगा एनडीए सरकार बिहार में, निश्चित तौर पर बिहार के हित में लेगा, बिहार के विकास में लेगा, बिहार में सौहार्द भाईचारा के साथ होगा।
0: और आप सपोर्ट करेंगे अगर यूसीसी लेकर आते हैं बिहार में? तो
4: हम बता ही रहे, सीनियर लीडर लोग हैं, जो लीडर है उस पर हम साथ हैं।
0: वाह क्या बात है, हैं दिलीप जी,
5: एनडीए 5 पांडव है।
0: वो तो ठीक है, 5 पांडव है, ये तो जमा खान साहब मंत्री बन गए तो कुछ और बोल रहे हैं, जेडीयू के बाकी नेता तो कुछ और ही बोल रहे हैं। लेकिन दिलीप जी उस पर भी आप जवाब दीजिएगा, माइक उठा लीजिए, आप ही के मंत्रालय पर वापस आ रही हूं। देखिए मंत्री जी, ये एक चिंता बहुत है, जितना मैं बिहार को जानती हूं या लोगों से बात करती हूं, कि भाई जमीन पर कब्जा दबंगों का होता है, कई बार आप लोग जमीन बांटते भी हैं, जो आप लोगों ने बांट की है बांटने की, भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, और ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग आप डिपार्टमेंट में मंत्रालय में रहते हैं उनकी मिली भगत से दबंग कब्जा करते हैं और ये करते हैं, उसका कुछ निवारण है या नहीं, आप लोग कुछ बदलिएगा या नहीं कि खाली बस बीजेपी का सीएम बन गया?
1: देखिए, बहुत बहुत ही कम शब्दों में आपको बताता हूं, जो राजस्व विभाग के जमीन को दबंग के कब्जा की बात है, यह हमें लगता है कि बहुत पहले जमाने में इस तरह की बात होती थी। आज के जमाने में अगर कोई कब्जा करता है तो हम लोग उसको दबंग नहीं, भू माफिया बोलते। शब्द थोड़ा सा लेटेस्ट हो गया, क्योंकि उनका भी अच्छा शब्द का चयन होता है। तो वो भू माफिया लोग हैं जो कभी कभी इस तरह का खेल करते हैं। और सही कहा कि आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अब इन माफिया की खैर नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज है बिहार के लिए कि माफिया को सम्राट चौधरी जी के निर्देश पर चिन्हित करके अब हम लोग उसका या तो जेल के अंदर उनको डाल रहे हैं या फिर उनके जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग सीज कर रहे हैं।
0: ऊर्जा क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि भाई लोगों में ये कॉन्फिडेंस जागे कि हम अगर आकर यहाँ पर बिहार में अपना निवेश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि शाम में बिजली चली जाएगी, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। आप इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? और एक सवाल और पूछ लेती हूँ, नीतीश जी जब सीएम थे और अब जब सम्राट जी सीएम है, कुछ बदला है या कम्फर्ट लेवल वही है?
6: आपने पूछा कि अब निवेश जो है वो बाहरी इन्वेस्टर
0: नहीं, मैंने पूछा किसके साथ ज्यादा आराम है, कंफर्ट लेवल वही है या बदला है?
6: नहीं, अब जो नीतीश जी का जो कार्य था,
0: हाँ,
6: उन्होंने हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब जो हम लोगों का, जो आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, हाँ, उनके नेतृत्व में और बराबर सम्राट जी कहते रहते हैं कि अभी आपने जो पहला सवाल पूछा कि लो वोल्टेज चाहे और अन्य तरह की बातें या कोई गांव कस्बा अगर छूटा हुआ हो, तो उनका स्पष्ट निर्देश है कि अब बिजली घर घर पहुंच गई है। अब लोग बिजली आने का खबर या बिजली है कि नहीं ये नहीं पूछता है, अब पूछता है कि बिजली का वोल्टेज सही है कि नहीं है, आज कितना बार ट्रिपिंग करने का काम किया है, आज कितना बार ट्रिप किया बिजली, अब ये समस्याएं ये लोग पूछते हैं, अब इसको आप करने का काम करिए। तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग 24 घंटा 24 गुना 7 घंटे और गुणवत्तापूर्ण बिजली हर घर में समाज के अंतिम पायदान के लोगों को कैसे मिले, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की सपना थी कि सामाजिक न्याय, चूंकि हर घर में बिजली देकर सामाजिक न्याय की बात उन्होंने करने का काम किया, अब कैसे उसको गुणवत्तापूर्ण बिजली दे, ये आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं, उस पर कार्य करने का काम कर रहे हैं। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो आप उद्योग की बातें कर रहे थे, उद्योग बिना बिजली का नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने 15 वर्ष आगे की बात सोचकर, जो अभी हमारा पीक आवर में 9400 मेगावाट की खपत है, उसको हम लोग कैसे अगले 5 साल में 15000 मेगावाट 20000 मेगावाट का उत्पादन करें, अब उस पर हम लोग कार्य करने का काम।
0: तो जितने बच्चे हैं अपने नोट्स में लिख लीजिए, 15000 से 20000 मेगावाट ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार ने कहा है 5 साल के अंदर हमारा बिजली का उत्पादन होगा। नजर रहेगी कि आप लोग क्या अचीव करते हैं। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ अभिनंदन कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का इस मंच पर आने के लिए और अपने अपने मंत्रालय पर सवाल का जवाब देने के लिए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: आगे आगे,
10: अरे उधर
9: उधर, करेक्ट करेक्ट,
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: और वही कहां गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
4: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
5: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
4: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.
6: समाजवादी पार्टी के 2027 के चुनावी रथ तैयार है और उसमें पीडीएफ यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के, सर पीडीएफ को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
7: अरे पीडीए का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीए तो कुछ उनका है ही नहीं, उनका पीडीए तो फर्जी है। वो बदलते रहेंगे और वो बदलने का नाटक करते रहेंगे, लेकिन नाटक करने से असलियत नहीं आती है। असलियत के लिए असली दिल चाहिए।
6: पी से पछड़ा हो जाता कभी पंडित हो जाता, ए से अगड़ा हो जाता कभी अल्पसंख्यक।
7: कोई उनका, मैंने बार बार कहा कि पीडीए पूरी तरह से फर्जी है, सत्ता पाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, जो पूरा ही नहीं होगा 2047 तक।
6: पीडीए का फॉर्मूले से निपटने के लिए तैयार
7: भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाने, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार।
6: तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का चलने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार आज तक।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: और वही कहां गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
1: चंबा के सांच पास से आई ये तस्वीरें, जहां सितंबर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या सड़कें, हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। बर्फ से ढकी वादियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बर्फबारी ने खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ाई। चंबा को जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी से जोड़ने वाले सांच पास मार्ग पर बर्फ जमने से कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर बर्फ होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आए। सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद सांच पास मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अब चंबा और पांगी घाटी के बीच आवाजाही एक बार फिर सुचारू है। सांच पास में मौसम बेहद तेजी से बदलता है, यहाँ अचानक बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखकर ही सफर करने की अपील की है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सितंबर की इस बर्फबारी ने सांच पास की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद रास्ते यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबा से विशाल आनंद आज तक।

0: चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है। पेड़ों पर कुदरत ने श्रृंगार किया है। सितंबर के दूसरे सप्ताह के साथ ही पहाड़ कुदरत के सफेद गहनों से सज गए हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर लेह हाईवे पर जो जिला के जीरो पॉइंट की है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है।
1: कश्मीर में वैसे भी ऑटम का सीजन अब शुरू हो रहा है 21 सितंबर से, और अब धीरे धीरे दिन के साथ साथ रात में भी ठंड बढ़ेगी।
0: अब मनाली की तस्वीरें देखिए। मनाली के ऊपरी हिस्सों में देखिए कितना सुंदर नजारा है। यहाँ भी सीजन की पहली बर्फबारी ने मनाली को मोहक बना दिया है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही होटल व्यवसायियों की आंखों की चमक बढ़ गई है, क्योंकि होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है।
2: सब जगह पता लग गया है कि आज पहली बर्फबारी जो है वो सर्दियों की शुरुआत की आज से हो गई है, और इस बर्फबारी से

0: और संजय सिंह टाइगर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री। ज्ञान, दर्शन और मेधा हमेशा से बिहार की पहचान रहे हैं। ज्ञान की इस भूमि पर बैठ के हम शिक्षा की जब बात कर रहे हैं तो ये समझना चाहते हैं कि क्या हम उस गौरवशाली जो अतीत हमारा रहा है, हमारी जो विरासत रही है, आज के शिक्षा तंत्र को हम उसके रूप में ढाल पा रहे हैं या नहीं, और जितना भी ढाल रहे हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं उसको सही करने का, सुधारने का आगे क्या उसका रास्ता हो सकता है। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत करते हुए, आप दोनों बिहार में, हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा त्योहार नहीं होता है जहां पर माएं अपने बच्चों के ज्ञान की, उनकी बुद्धि की वृद्धि की बातें कर रही होती हैं जब छठ पर्व, महापर्व हमारा मनाया जाता है, क्योंकि आम तौर पर आप कुछ भौतिक चीजें मांगते हैं, बिहार और बिहारी बुद्धि, शिक्षा, ज्ञान मांगता है, तो जिम्मेदारी बड़ी है। पहला, एक एक करके मैं आप दोनों से जानना चाहती हूं कि आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अपनी प्राथमिकताएं क्या रखकर चल रहे हैं।
1: आज मैं सबसे पहले आज तक को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने बिहार की राजधानी पटना में ये पंचायत बिहार की रखा है, और साथ में बिहार की बेटी श्वेता सिंह को यहां हम लोगों से सवाल पूछने के लिए ये अवसर दिया है। इसके लिए मैं आज तक की पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल श्वेता जी से ये है कि आप बिहार की बेटी हैं, आपने उस बिहार को भी देखा होगा और अभी के भी बिहार को आपने देखा है और देख भी रही हैं, तो जवाब मैं दूंगा, लेकिन एक सवाल है, क्या बिहार बदला है कि नहीं?
0: बिहार बदला है, प्रत्यक्ष रूप से बहुत बदला है। शिक्षा व्यवस्था में जरूर कहूंगी कि मेरे समय में तो 5-5 साल में ग्रेजुएशन होता था, आज मोटे तौर पर 3 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है, लेकिन आप भी समझेंगे कि खामियां ऐसी हैं कि चुनौती मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी है बिहार में।
1: नहीं, बिल्कुल, चुनौती इसलिए है कि अपेक्षाएं ज्यादा है, और हमें इस बात का अनुभव है कि बिहार एक ज्ञान की भूमि है। प्रभु श्री राम ने भी अपने जन्म के लिए अयोध्या को चुना, लेकिन ज्ञान के लिए बक्सर को चुना, और इसीलिए चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की बात करिए या बौद्ध और जैन की बात करिए, तो ज्ञान परंपरा की शुरुआत की धरती है ये। और जब शिक्षा मंत्री के रूप में मैं यहां बैठा हूं तो मुझे अपनी जिम्मेवारियों का भी एहसास है, चुनौतियां भी सामने हैं, और उन चुनौतियों को कैसे हम ठीक करें ताकि किसी को उंगली उठाने का अवसर हम पे न आवे, इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और आधारभूत संरचना की बात हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो, या टीचर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, और आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा, और हम लोग लगे हैं, आप निश्चिंत रहिए, आप भी देश और दुनिया में जाती हैं और कहीं ना कहीं लोग आपको बिहारी समझ करके यहाँ की अच्छाइयों को और बुराइयों को आपके सामने भी लाते होंगे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हम लोगों ने बड़ी तैयारी की है। अभी मैं आपके कार्यक्रम में आने के पहले हम लोग कायाकल्प अभियान, जो विद्यालय हमारे या सरकारी परिसंपत्तियां हैं या कॉलेज के बिल्डिंग हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी चीजों को मिशन मोड में, और 30 नवंबर तक हम लोग इसको पूरी तरह चमकाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा अभियान आज से शुरू किया है।
0: संजय जी, आपकी प्राथमिकताएं।
2: देखिए, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत, शैक्षणिक विरासत बहुत मजबूत रही है, और सचमुच में नालंदा, विक्रमशिला, जहां दुनिया के लोग ज्ञान पिपासु आते थे, ज्ञान लेकर जाते थे, यह बिहार की धरती है जिसने कपिल वस्तु के एक युवराज को, जो ज्ञान के खोज में बोध गया है, और उनको सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बना दिया, ये ताकत बिहार की धरती में है। गुजरात से एक व्यक्ति चंपारण आता है, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी बनकर आता है, और यहां से महात्मा गांधी बनकर जाता है, ये हमारी ताकत है। लेकिन बीच के कालखंड में हम भटके, हमसे चूक हुई, और जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, ये जबर भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, लेकिन हम वर्तमान को संजोने में और भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, बताते हुए खुशी हो रही है कि आजादी के बाद अब तक बिहार में 272 अंगीभूत डिग्री कॉलेज थे। मुख्यमंत्री जी के संकल्प से, उनके प्रेरणा से हम लोगों ने पिछले जुलाई में 15 जुलाई को एक साथ 211 प्रखंडों में नई डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया, ताकि लोगों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई नजदीक सुलभ हो सके। और खासकर बच्चियां, यह हम लोगों ने एक मूल्यांकन किया कि इंटर पास करने के बाद बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं, आगे की पढ़ाई जारी रहे इसके लिए उनके गांव के नजदीक महाविद्यालय जाए। और हम यह भी जानते हैं कि केवल समान शिक्षा से काम नहीं चलेगा, अब शिक्षा को तकनीक से जोड़ना पड़ेगा, शिक्षा को कौशल से जोड़ना पड़ेगा और शिक्षा को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, तभी हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे जो पाना चाहते हैं। और इस नाते हम लोगों ने यह शुरुआत की है, आप कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हमने की है। एआई और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे विश्वविद्यालय खोलने की योजना पाइपलाइन में है। जुबा साहनी के नाम पर शिल्पकला विश्वविद्यालय खुले। तो विभिन्न विशिष्टता के क्षेत्रों में केवल सामान्य विशिष्ट ज्ञान उनको प्राप्त हो सके, समय के मांग के अनुसार उनको ज्ञान प्राप्त हो सके, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज जो कंपटीशन का दायरा है भूमंडलीकरण के दौर में वो बढ़ा है, अब सामान्य ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अब हवाएं ही तय करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिया में दम रहेगा वही दिया टिक पाएगा। इसलिए हम उसको हुनरमंद बनाना चाहते हैं, उसको कौशल का ज्ञान देना चाहते हैं और उच्च शिक्षा में उनके लिए आर्थिक स्रोत आड़े नहीं आए। 4 लाख तक हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको सहायता दे रहे हैं।
0: आपने कहा कि इंटर के बाद लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि वो पढ़ें, लेकिन मिथिलेश जी ये बताइए कि सेकेंडरी स्कूल से हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है इस समय बिहार का, उसको कैसे ठीक करने की कोशिश है आपकी?
1: देखिए, हमने इसको जब हम क्लास 1 से प्लस 2 तक का पूरा अध्ययन करते हैं, हाँ, तो हमें ध्यान में आता है कि कुछ बच्चे 5 क्लास के बाद ड्रॉप आउट होते हैं, फिर 6 और 8 में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, फिर 9th में ड्रॉप आउट होते हैं और 12th में ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम लोगों के साथ वाले बहुत सारे गांव में ही रह गए, हम लोग यहां आ गए। अब चूंकि बतौर शिक्षा मंत्री जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं 3-4 कारण दिखते हैं। एक कारण तो ये दिखता है कि एक बच्चा ऐसा है जो स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके घर में जितनी समस्याओं का अंबार है उसको लेकर के जैसे ही वो थोड़ा आत्मनिर्भर होता है पढ़ाई से विमुख होकर के फिर अपने घर के चीजों में लग जाता है। दूसरी बात होती है ये कि स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कहीं कमियां हैं इसको लेकर के भी ये समस्या आती है। और तीसरी बात, सभी बच्चे तो आईएएस आईपीएस मेडिकल इंजीनियर हो नहीं सकते, तो बच्चों के लिए जैसा संजय जी ने कहा वोकेशनल कोर्स को लेकर हम लोग अब गंभीर हो रहे हैं कि एक बड़ी संख्या बच्चों की है कि प्लस 2 के बाद ही उन्हें किसी न किसी फील्ड में और लर्न टू अर्न की ओर उनको बढ़ाना पड़ेगा। और इसको लेकर हम लोगों ने बहुत सारे अभी योजनाएं बनाई है। हमारे बिहार में लगभग अभी आज के डेट में जो हमारे फंक्शनल स्कूल हैं उसमें 95,195 हमारे फंक्शनल स्कूल हैं, उसमें बड़ी संख्या हमारे प्राइमरी स्कूल की है। हम लोगों ने पिछले दिनों बहुत सारे प्राइमरी स्कूल को मिडिल कर दिया, मिडिल को हम लोगों ने हाई स्कूल कर दिया, चूंकि बच्चों की संख्या बढ़ी। कई हमारे विद्यालय आज भी हैं जो 2 बार उनकी कक्षाएं चलती है, एक मॉर्निंग क्लास चलता है, एक इवनिंग चलता है। इन सभी चीजों को लेकर के हम लोगों ने एक अपना जो आगे के दिनों में एक्शन प्लान तैयार किया है। तो हम एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे वहीं टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग ठीक करेंगे और साथ ही साथ बच्चों को हम लोगों ने तय किया है कि क्लास 6 से ही बच्चों की ब्रेन मैपिंग करेंगे।
0: पर ये भवनहीन स्कूलों के लिए आप लोग का कोई कैलेंडर है, तय किया है कब तक सबको भवन मिलेगा?
1: नहीं, आज ही हमने जो एक समीक्षा की है तो 1200 से ऊपर, लगभग 1200-1300 के बीच में हमारे ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अभी तक भूमि ही नहीं है। मतलब स्कूल किसी न किसी प्रेशर में स्वीकृत तो हो गया, किसी ने कहा कि हम जमीन देंगे और बाद के दिनों में नहीं मिला, या कहीं जमीन थे अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। इसको लेकर के अभी जो हमारा भूमि सुधार राजस्व विभाग है, इन्होंने एक्शन प्लान बनाया है। अगले मुख्यमंत्री जी ने कहा है 6 महीने के अंदर भूमि सुधार राजस्व विभाग उन स्कूलों को भूमि उपलब्ध कराए जो आज भी भूमिविहीन है। और 2014 स्कूल ऐसे हैं हमारे जहां हमारे पास भूमि तो है लेकिन किन्हीं कारणों से वहां या तो वहां सड़क नहीं है, पहुंच पथ नहीं है, या फिर उस पर कोई अतिक्रमण है। ऐसे विद्यालयों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और हम लोगों ने तय किया है कि 31 मार्च तक हम जिन जहां पे भवन है और अगर वहां भवन खराब है तो 30 नवंबर तक ठीक करेंगे।
0: अच्छा,
1: जहां पे अगर हमारे पास भूमि है भवन नहीं है तो 31 मार्च तक उसका हम निर्माण कराएंगे। हाँ। और जहां लैंड नहीं है, लैंड मिलते ही तुरंत उस पे हम बनाएंगे
0: और इस कैलेंडर का पालन करेगी सरकार।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: संजय जी, ये एक बड़ा फैसला रहा कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज को लेकर भी आप लोगों की तरफ से, पर डॉक्टर इंजीनियर के अलावा आज का युवा बहुत सारी और चीजों की तरफ देख रहा है, बहुत सारे स्किल्स की तरफ देख रहा है, रिसर्च की तरफ देख रहा है, क्या ये भी सरकार की योजना में है? क्योंकि उसकी कमी नजर आती है जमीन पर।
2: देखिए, सरकार जो है इसके प्रति गंभीर है और मैं बता रहा था आपको कि उस शिक्षा के विस्तार के लिए हम कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए हुनरमंद और स्किल्ड जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनकी नियुक्ति भी हम कर रहे हैं। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बेटियां शोध करें, इसके लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें हम 50,000 तक से लेकर के 2,00,000 तक उनको आर्थिक सहायता देंगे ताकि उनके उद्यमता को बढ़ावा मिले। और पीएचडी करने वाली जो बच्चियां हैं, मुख्यमंत्री पीएचडी फेलोशिप योजना के तहत प्रति वर्ष 1,000 बच्चियों को, विद्यार्थियों को हम देने वाले हैं 10,000 रुपया प्रति माह 4 वर्षों तक, जब तक वो पीएचडी की पढ़ाई पूरा ना करें। तो ये बढ़ावा देने का काम हो रहा है। और शैक्षणिक सत्र जो है उस समय पर चले, नामांकन समय पर हो, परीक्षा समय पर हो, परिणाम समय पर आए, इसके लिए भी शैक्षणिक कैलेंडर हम लोगों ने जारी किया है। और समर्थ पोर्टल के माध्यम से ताकि पारदर्शिता रहे, विश्वसनीयता रहे और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके, एक साथ कई मोर्चों पर हम काम कर रहे हैं। निकट भविष्य में उसका परिणाम भी दिखेगा। निजी विश्वविद्यालय बिहार में खुले, इसके लिए जो हम लोगों ने 2013 में एक अधिनियम बनाया था, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, उसका सरलीकरण किया है ताकि आसानी से लोग प्रतिष्ठान खोल सकें। और हमारा लक्ष्य है, आज बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। हमारे लिए चुनौती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम वह समय लाना चाहते हैं कि जो बिहार के बच्चे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, वह दिन आए कि बाहर के बच्चे बिहार में शिक्षा और रोजगार पाने के लिए आए। उस दिशा में सरकार काम कर रही है, समावेशी विकास हो, संतुलित विकास हो।
0: नहीं, क्योंकि संजय जी, रोजगार के लिए कोई बाहर जाता है तो मैं समझ सकती हूँ कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी, कई बार जरूरी नहीं है कि मजबूरी में ही जा रहा है वो व्यक्ति, लेकिन शिक्षा के लिए तो इस ज्ञान की भूमि पे आना चाहिए। एक समय था जब पूरी दुनिया से छात्र आते थे इधर।
2: मैंने कहा कि स्कूली शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, तकनीकी पढ़ाई हो, समय के साथ एआई की पढ़ाई हो, और आज चूंकि कंप्यूटर साइंस का जमाना है, आज जमाना ये है कि तकनीक में जो पीछे छूटेगा वो बहुत पीछे छूट जाएगा। तो तकनीक के क्षेत्र में हमारे आगे जाएं, हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी, तो सरकार सब प्रयास कर रही है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि छात्रों को, विद्यार्थियों को अगर कोई सुझाव देना है, शिकायत देना है, तो हम लोगों ने विद्यार्थी पोर्टल भी शुरू किया है। उसको ये विद्यार्थी, वहां एक स्वीर लगता है उसका कॉलेजों में, और उसमें आप अपनी शिकायत भी, अपना सुझाव भी, दोनों दर्ज करा सकते हैं। उस पर कार्रवाई होती है। तो पूरे बिहार के लिए सहयोग शिविर लगता है जिसमें लोग अपने विभिन्न योजनाओं की शिकायतें करते हैं, 30 दिनों के अंदर उसका निपटारा होता है। और आपको मैं बता दूं कि बड़ी संख्या में 96% मामलों का निपटारा 30 दिन के अंदर हो जाता है।
0: जेन जी, जेन अल्फा जो अब स्कूलों को लेकर एकदम मुखर हैं, आंदोलन के लिए भी सड़क पर उतरते हैं, ये आपके लिए अच्छा है बुरा है?
1: देखिए, मुझे ये लगता है कि समाज अगर सही चीजों के लिए जागृत हो,
0: आप प्रोत्साहित करते हैं ऐसे विरोध को जो बेहतरी के लिए हो।
1: मैं कह रहा हूँ वही, समाज अगर सही चीजों के लिए जागृत हो तो उसका स्वागत।

0: अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी को कोई भड़का करके दूसरे रास्ते पर ले जा सकता है। इसको लेके हम लोग पूरी तरह सजग हैं, और इसीलिए श्वेता जी एक बड़े आंदोलन के लिए बिहार को लोगों ने एक कर्मभूमि बनाने का सोचा जरूर था, लेकिन हम लोगों ने 12 घंटे में उसकी हवा निकाली।
1: आप लोग सुन रहे हैं छात्रों की बात?
0: बिल्कुल सुन रहे हैं, हर चीज सुन रहे हैं।
1: हाँ।
0: और एक बात और आपको बताएंगे जो बिहार के माध्यम से पूरे देश में जाना चाहिए। हम लोगों ने बिहार में एक नया परिवर्तन किया है। हम लोग अपने 4 लाख बच्चों को हम लोगों ने मॉडल स्कूल में सरस्वती विद्या निकेतन में हम लोगों ने उसका एडमिशन लिया है, और आज हमारे 700 प्रधानाध्यापक की ट्रेनिंग चल रही है ज्ञान भवन में, मैं वहीं से आया हूं। हम लोगों की पूरी प्लानिंग है कि जो बच्चे हमारे मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में अव्वल हों, और वो विद्यालय में उनकी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कोचिंग के लिए कोटा न जाना पड़े, सीकर न जाना पड़े, दिल्ली नहीं जाना पड़े, उसके लिए उन्हें फिलो ऐप के माध्यम से और लर्निंग क्लास, लाइव क्लास और स्मार्ट क्लास सब चीजों से जोड़कर, और उन्हें साथ साथ हमारे जो अपने शिक्षक हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उन्हें बेहतर शिक्षक प्रदान करके और उन्हें वो मटेरियल भी देकर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं अपने बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं।
1: चलिए, ज्ञान की भूमि से छात्रों को बाहर शिक्षा के लिए न जाना पड़े, आप दोनों जो ने जो बातें की हैं मुझे उम्मीद है कि उन तारीखों के साथ हम अमल में देखें, और जो भी सुधार की आवश्यकता हो आप लोग करते रहे सुधार।
0: मैं एक मिनट रोकूंगा आपको, श्वेता जी आप सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं कभी?
1: नहीं, तो मैं बिहार में रहते हुए मैं कॉन्वेंट स्कूल में।
0: आपके मम्मी पापा जरूर पढ़े होंगे
1: जी, गांव के स्कूल।
0: तो हमारा एक कार्यक्रम आज लॉन्च हुआ है,
1: हाँ।
0: मेरा विद्यालय मेरा स्वाभिमान,
1: हाँ।
0: और ये उनके लिए है जो कभी न कभी किसी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, तो जिस विद्यालय में भी पढ़े हैं वो उनके उस विद्यालय की तरफ एक बार मुड़ के देखें, उससे अपने को जोड़ें, क्योंकि वहीं से बिहार का भविष्य तैयार हो रहा है, उनकी भी भागीदारी वहां होनी चाहिए, इसका मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा।
1: चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
1: बातचीत करने के लिए
2: धन्यवाद।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: दो हजार 21 LJP के दो टुकड़े, 2022 NCP के दो टुकड़े, 2023 शिवसेना के दो टुकड़े और 3 साल बाद 2026 के बंगाल चुनाव के बाद TMC पर बगावत का ऐसा हथौड़ा पड़ा कि 18 साल की बुनियाद और 15 साल की हुकूमत की निशानी जोड़ा फूल फ्रीज हो गया।
3: But we feel today is a black day in our democratic history. What is happening in our country that is very unfortunate, unconstitutional, illegal, undemocratic and totally political bias vendetta.
4: हिंदू धर्म के गंदा धर्म बोला, महाकुंभ के मृत्यु कुंभ बोला, राम मंदिर उद्बोधन दिन राम मंदिर मानिना बोले मिचिल करा आछेन तो भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराजेर अभिशापे सब ध्वंस हो गया। विरोधी
2: चुनाव आयोग की फुल बेंच ने TMC पर दावा कर रहे दोनों धड़ों की दलीलों की सुनवाई की और आयोग ने 14 पन्नों के आदेश में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों फ्रीज कर दिए। आयोग ने कहा कि ये अंतरिम कदम है, पार्टी के नाम और प्रतीक का अंतिम फैसला चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत नाम और निशान पर रोक रहेगी और फैसला विस्तृत जांच और सुनवाई के बाद लिया जाएगा। 2026 विधानसभा चुनाव में BJP की जीत के बाद TMC में बगावत हुई, दोनों धड़े पार्टी का दावा लेकर आयोग पहुंचे। इसी बीच सुवेंदु अधिकारी की खाली सीट नंदीग्राम और हुमायूं कबीर की खाली सीट रेजी नगर पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव है। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह में खींचतान को देखते हुए आयोग ने दोनों दलों से 3-3 पसंदीदा विकल्प पूछे थे। उसी के आधार पर ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम और फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी निशान मिला, जबकि बागी धड़े को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफे का निशान दिया। ये नाम और निशान 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए लागू रहेंगे। विवाद की वजह विधानसभा चुनाव में BJP की जीत के बाद नजर आई। जब BJP जीत गई, तो TMC के 58 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के साथ मिलकर बागी हो गए। उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता चुन लिया, स्पीकर ने मान्यता दे दी। ऋतव्रत बनर्जी गुट ने अरूप रॉय को पार्टी अध्यक्ष और अखरुजमा को मुख्य सचेतक चुन लिया। उधर लोकसभा में TMC के 28 में से 20 सांसद टूटकर NCPI में चले गए। राज्यसभा में 13 में से 3 सांसदों ने इस्तीफा देकर BJP की सदस्यता ली। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से लेकर चुनाव आयोग के पास अब भी TMC पार्टी और ममता अध्यक्ष है। एक तो TMC के अंदर ममता के परिवारवादी राजनीति के खिलाफ बगावत का विवाद है, दूसरे केंद्र से लेकर राज्यों तक विपक्ष के आरोप हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, पार्टी और जनादेश की चोरी में मदद कर रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके, कभी EVM में गड़बड़ी करके, कभी SIR में गड़बड़ी करके चुनाव चोरी हो रही है और जहां विपक्ष सत्ता में आ रहा है वहां नेता विधायक सांसद साम दाम दंड भेद से तोड़े जा रहे हैं और तो और पार्टी भी तोड़ी जा रही है। और हालात ये हैं कि शिवसेना के दो टुकड़े हुए, नाम निशान बागियों को मिल गया। NCP दो टुकड़े हुई, नाम निशान बागियों को मिला और दोनों ही मामलों में चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब आसान नहीं है। शिवसेना वाले मामले में अदालत ने एक दिन पहले ही चुनाव आयोग से पूछा है कि जब दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट पैमाने तय नहीं थे तो चुनाव आयोग ने शिवसेना के मूल तीर कमान को फ्रीज क्यों नहीं किया। क्या आयोग ने मूल असली दल और सदन के भीतर के विधायी दल के फर्क पर ठीक से विचार किया? क्या आयोग ने फैसला लेते वक्त सोचा कि वोटर ने पार्टी को वोट दिया था या विधायक को निजी हैसियत पर? कोर्ट ने पूछा कि विधायक सांसदों की संख्या से दल के अंदर भी बहुमत का पैमाना कैसे मान सकते हैं? क्या आयोग ने विचार किया कि मूल संगठन का नियंत्रण किसके पास है? बागियों के खिलाफ मामला लंबित था तो संख्या बल को निर्णायक कैसे मान लिया गया? अब चुनाव आयोग को इन सवालों के जवाब 22 सितंबर से पहले दाखिल करने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख 22 सितंबर है, जिस पर शिवसेना ही नहीं NCP से लेकर TMC तक टूट फूट से पीड़ित सभी दलों की नजर है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बंगाल में उपचुनाव पर फुल ड्रामा। रेजी नगर से नाम वापस लेने वाले ममता के उम्मीदवार ने फिर लिया यूटर्न, पुलिस से मांगी सुरक्षा। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। का सूरज भी हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव भी हमारा हो, नाविक भी हमारा हो। यूपी में नौकरी को लेकर जुबानी जंग, योगी बोले पहले भर्ती बोर्ड में भाई भतीजों को बिठाया गया। अखिलेश बोले देश में नौकरी नहीं दियो की चल रही है प्रतियोगिता। इंदौर में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम, छात्रों की गूंज, पेपर लीक, परीक्षा, रोजगार होंगे मुद्दे। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज, कांग्रेस का आरोप, अड़ंगा डालने की हुई कोशिश। और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर, दो पदों पर एनएसयूआई आगे, एबीवीपी निर्दलीय को एक एक पर बढ़त।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दोपहर के 2 बजे हैं और बुलेटिन में बात सियासत की बड़ी खबरों की करेंगे। पहली खबर होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई, जहां सुबह से काउंटिंग जारी और कांटे का मुकाबला है एबीवीपी एनएसयूआई के बीच में। खासतौर पर अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच बहुत बराबरी की टक्कर देखी जा रही है। बात पश्चिम बंगाल की सियासत की भी होगी, जहां नंदीग्राम के बाद रेजीनगर सीट के प्रत्याशी ने नाम वापस लेने की बात कही, हालांकि थोड़ी देर में यू टर्न लिया। इसके साथ बात पंजाब की राजनीति की भी होगी, जहां बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दूसरे दिन आज फतेहगढ़ साहिब से यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। और हम ये भी आपको बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए ऑनलाइन तरीके से और क्या कुछ कहा है उन्होंने। साथ ही शुरुआत करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना की खबरों से। डीयू में एनएसयूआई बड़ा उलटफेर करती हुई दिख रही है, अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 12वें राउंड की गिनती के नतीजे आ गए हैं, इसमें अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई 424 वोट से आगे है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लगभग अजय बढ़त बना चुके हैं, यानी लगभग जीत पक्की है। 18,943 वोट इंडिपेंडेंट को मिल चुके हैं और ये करीब 10,000 की लीड है। समझिए आप कितनी बड़ी लीड है, कितनी बड़ी जीत है। सेक्रेटरी पद के लिए एबीवीपी आगे चल रही है, तो वही संयुक्त सचिव पद पर समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई में टक्कर है। 12वें राउंड के नतीजे ये हैं कि एनएसयूआई अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर आगे चल रही है। अनमोल बाली डीयू कैंपस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनमोल, जैसा आपने बताया था कि इससे पहले भी आपने कई इलेक्शन कवर किए छात्र संघ के, लेकिन ये जो मुकाबला है ये कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। हर एक राउंड की वोटिंग के साथ पता नहीं चल पा रहा है कि एनएसयूआई आगे होगी या एबीवीपी आगे होगी। अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास?
1: हिमांशु, मैं इस समय देख रहा हूं कि जो चुनावों का नतीजा है बहुत रोचक हो चुका है। बात करूं 12 राउंड हो चुके हैं, तकरीबन देखा जाएगा 20 से 22 राउंड होने की यहां पर जो उम्मीद है, और उसी भी देखा जा रहा है कि जो एनएसयूआई है उन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर भी लीड डाल दी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर भी लीड डाल दी। जहां देखा जा रहा है विजय शंकर मीना वो 424 वोट से आ गए, वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पर गोपाल चौधरी इस समय 337 वोटों से आगे, और वहीं सेक्रेटरी के पद पर रिया छावड़ी एबीवीपी की जो है 2600 से ज्यादा मतों से आगे हैं। उसी बीच वाइस प्रेसिडेंट दीपांशु जिस हिसाब से उन्होंने अभी अपनी लीड डाल दी है तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो जीत ही गए। तकरीबन 10,000 के आसपास 9,290 जो वोट है उससे वो आगे चल रहे हैं। चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है, 12 राउंड हमने देखा और जिसमें देखा गया कि तकरीबन पहले जो 5-6 राउंड थे उसमें देखा जाता है कि एनएसयूआई आगे होती है, फिर 10 राउंड आते आते 5 से 10 राउंड तक देखा जाता है कि एबीवीपी आगे होती है, और जब 10वां और 12वां अभी राउंड चल रहा है तो अब देखा जा रहा है कि एनएसयूआई फिर जो प्रेसिडेंट की पोजीशन पर है वो आगे हो चुकी है। उसी बीच जो देखा जा रहा है जो कार्यकर्ता है एबीवीपी एनएसयूआई से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो कैंपस में आना शुरू कर चुके हैं। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं लिंगदो कमेटी का जो पालना करने के लिए कैंपस में कहा गया उसको देखते हुए इस बार कोई जो प्रोसेशन है, विक्ट्री मार्च है, जो विजय जुलूस है वो नहीं निकाला जाएगा, ना ढोल पटाखे बजेंगे। पर हाँ, शाम को जो देखा जाएगा जो भी सियासी दल जो चुनाव जीतता है तो उनके जो मुख्यालय है सेंट्रल दिल्ली में वहां देखा जाएगा ढोल भी बजेंगे और पटाखे भी जलेंगे। पर अभी हाँ, अभी एक लंबा देखा जाएगा, अभी 3 से 4 घंटे अभी हिमांशु हम देखने को मिलेंगे कि जिसके बाद जो फाइनल नतीजे आएंगे 20 से 22वें राउंड तक ही पिक्चर क्लियर होगी, फाइनल पिक्चर क्लियर होगी। पर हाँ, अभी जो देखा जा रहा है कि जो मुकाबला है बहुत फंसा हुआ लग रहा है,
0: फंसा हुआ है, नहीं कहा जा सकता कि किस तरफ झुकाव देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात मिशन जेन जी की करेंगे। यूपी समेत 5 राज्यों में अगले 6 महीने में चुनाव होना है और उससे ठीक पहले सभी पार्टियां जेन जी को लुभाने में जुटी हैं। बता रहे हैं आपको, समझिए कैसे। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, सीएम योगी मैदान में हैं, रोजगार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। लखनऊ में सीएम योगी ने भी नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं राहुल गांधी छात्र गुंज करने के लिए इंदौर पहुंच रहे हैं। आज शाम को इंदौर में राहुल गांधी की छात्र गुंज रैली होगी। इन कार्यक्रमों में जेनजी शामिल है और दल चाहता है कि जेनजी उसके साथ में जुड़ जाए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से पोस्ट भी किया गया है और इंदौर के युवा से पूछा है कि बताइए आज पोहा खिलाएंगे, जलेबी खिलाएंगे या फिर क्या खिलाएंगे। इस तरह से छात्रों से संवाद करने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र उनकी तरफ से दिए गए। अब ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में हुई है। रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। पीएम मोदी नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित भी करते दिखे। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। अब सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि युवाओं को विकसित भारत के लिए काम करना होगा। भारत सरकार लगातार युवाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है।
0: जनजी को लुभाने के लिए कौन दल क्या कर रहा है तो ये भी आप समझ लीजिए। पीएम मोदी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये रोजगार मेला कई सालों से चल रहा है और दावा है कि अब तक इसमें 52 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटते हैं और देते रहे हैं। अभी 16 सितंबर को उन्होंने घोषणा की कि अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। राहुल गांधी छात्र गूंज मिशन पर निकले हैं। कोटा से देहरादून, प्रयागराज, पुणे और अब इंदौर में छात्रों से संवाद वो कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना तरीका है।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
0: सबकी नजर भी जेंजी पर है और जेंजी को लेकर सब घिराव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कैसे निशाना साधा गया, क्या कहा गया है, वो आपको सुनवाते हैं।
4: महंगाई का मुद्दा है, आज हर चीज महंगी होती चली जा रही, जरूरत की चीजें महंगी हो रही हैं। जो लोग कहते थे कि डॉलर कहां पहुंच गया, रुपया कहां पर है, उन्हें आज दोबारा मुड़ करके देखना चाहिए कि रुपया और डॉलर में क्या अंतर आ गया है। हर खाने पीने की चीज महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, कीटनाशक दवाइयां महंगी और ये स्थिति पैदा हो गई है कि पेट्रोल महंगा ना हो उसके लिए इन्हें एथेनॉल मिलाना पड़ रहा है, E20 बना करके बेचना पड़ रहा है पेट्रोल, जिससे माइलेज भी जा रहा है, मेंटेनेंस भी हो रहा है गाड़ी का। नौकरियां है नहीं, जॉब्स है नहीं, आय दोगुनी की बात की गई थी।
0: बात राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की कर रहे हैं, जिसका आयोजन आज इंदौर में होने जा रहा है और राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का 5वां संस्करण है। और राहुल गांधी इंदौर पहुंच चुके हैं, ये भी आपको बता दें, तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी के इंदौर पहुंचने की तस्वीरें, उनका स्वागत किया जा रहा है। और तो राहुल गांधी के स्वागत सत्कार के लिए बहुत से युवा, देखिए जीतू पटवारी उनके ठीक साथ में है। इंदौर में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से अनुमति और वेन्यू को लेकर विवाद बना हुआ था। पहले नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन परमिशन नहीं मिली। फिर 12 से बढ़ाकर 19 सितंबर तारीख की गई। आईडीए ग्राउंड को फाइनल किया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण प्रशासन और इंदौर पुलिस ने 31 शर्त रखी हैं। अब इनमें पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए गठित जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं।
5: क्या तैयारी क्या है, हमने देखा
6: पूछा। मैं सभी सभी देशवासियों को, जो राहुल गांधी का पवित्र कॉज है, दलगत राजनीति से ऊपर शिक्षा की सुरक्षा, अफोर्डेबल एजुकेशन एंड करप्शन रहित एजुकेशन, हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, ऐसी शिक्षा को राहुल जी बल देना चाहते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर। इंदौर राहुल जी की इस भावना के 100% साथ हो गया है। बीजेपी पीड़ित है, दुखी है,
5: फिर भी लोग होने वाला है ये वार, मोहनलाल को लेकर जीरो जीरो काफी क्रिटिकल है,
6: जीरो पॉलिटिकल, देश की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जिसको देश को एकजुट होना है और राहुल गांधी उसको लीड कर रहा है।
5: ये पुशअप्स का माजरा क्या है?
6: बच्चों ने कहा कि पुशअप लगाना है। जब मैं फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के पास गया, नेता तोंद वाले होते हैं, पेट वाले होते हैं, लगाओ तो फिर राहुल गांधी के सिपाही को लगाओ।
5: फुटबॉल बहुत खेल रहे नितिन नवीन और सारे लोग खेल रहे हैं फुटबॉल।
6: फुटबॉल खेलने के लिए फिट होना जरूरी है। नितिन नवीन को वजन कम करना।
0: बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। दो सीटों पर उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लगा। पहले चुनाव आयोग ने टीएमसी सिंबल को सील कर दिया, फिर नंदीग्राम की प्रत्याशी संचिता प्रधान डे ने अपना नाम वापस लिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन दिया, तो पुराने केस में उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। और अब रेडीनगर सारा ट्विस्ट आ गया। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने फिर से ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। पहले कह दिया था कि नहीं लड़ेंगे, अब कह रहे हैं कि लड़ेंगे। सुबह 11 बजे के आसपास खबर आई थी कि रबीउल नहीं लड़ेंगे, नाम वापस ले लिया, लेकिन फिर कह दिया कि नहीं हम तो लड़ेंगे। दरअसल ममता गुट के प्रत्याशी ने कहा था कि डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़े, लेकिन अब सुरक्षा की मांग की और कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ लेंगे। तो नंदीग्राम रेजीनगर गजब का थ्रिल इन दो सीटों पर देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा चुनाव उपचुनाव, ये दो सीटों का उपचुनाव इतना दिलचस्प हो गया है, इतना रोमांचक हो गया है कि बाकी के चुनावों पर भारी पड़ रहा है। पहले टीएमसी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं नंदीग्राम में, ममता बनर्जी कांग्रेस को सपोर्ट करती है तो वो गिरफ्तार हो जाते हैं। रवनीत बिट्टू, उन पर हमले को लेकर पंजाब की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। और इसी बीच रवनीत बिट्टू आज लुधियाना के पंजाब खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर हाथ में टमाटर लेकर पहुंचे। दरअसल खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे, इस दौरान ही रवनीत सिंह बिट्टू वहां टमाटर लेकर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद बिट्टू ने सीएम के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और बिट्टू काफी देर तक बहस हुई और फिर हिरासत में ले लिया गया रवनीत बिट्टू को। क्योंकि देखिए रवनीत बिट्टू का यह कहना था कि कल उनके काफिले पर अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, मारने की कोशिश की गई उन्हें। राघव चड्ढा की तरफ से भी यह कहा गया था कि 100 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे और अब टमाटर लेकर पहुंचे रवनीत बिट्टू सीएम के काफिले पर फेंकने के लिए, लेकिन पुलिस ने रोका, हिरासत में ले लिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
5: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
6: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
13: इन एसोसिएशन विद
14: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: There is a very famous quote ki history repeat itself.
16: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
17: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
16: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
4: चंबा के सांच पास से आई ये तस्वीरें, जहाँ सितंबर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या सड़कें, हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। बर्फ से ढकी वादियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बर्फबारी ने खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ाई। चंबा को जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी से जोड़ने वाले सांच पास मार्ग पर बर्फ जमने से कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर बर्फ होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आए। सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद सांच पास मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अब चंबा और पांगी घाटी के बीच आवाजाही एक बार फिर सुचारू है। सांच पास में मौसम बेहद तेजी से बदलता है, यहाँ अचानक बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखकर ही सफर करने की अपील की है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सितंबर की इस बर्फबारी ने सांच पास की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद रास्ते यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबा से विशाल आनंद, आज तक। मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक छात्र छात्राओं और कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी। अलग अलग वार्ड में रह रहे लोगों को पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द और दूसरी परेशानियों की शिकायत हुई। एक साथ कई लोगों की तबीयत खराब होने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आनंद फानन में उन्हें सदर अस्पताल भेजना शुरू किया। शाम करीब 6 बजे से सदर अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। लगातार एम्बुलेंस से मरीजों के पहुंचने के कारण अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी भीड़ बढ़ गई। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सभी मरीजों के इलाज में जुटे रहे। कॉलेज कर्मियों के अनुसार करीब 50 छात्र और कर्मियों के प्रभावित होने की सूचना है।
5: इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट लोग आए थे, कंप्लेन था, सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का केस था। मैंने सभी को देखा है, सभी बच्चे स्टेबल हैं। वो लोग बता रहे थे कि प्रसाद खाए थे, जिसके कारण ऐसा हो गया है, तो लेकिन सभी लोग ठीक है।
4: अब सवाल घटना की वजह को लेकर है। 17 सितम्बर को कॉलेज परिसर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन हुआ था। बताया जा रहा है कि पूजा में शामिल कुछ लोगों ने प्रसाद का सेवन किया था। इसके बाद शुक्रवार को कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई। ऐसे में प्रसाद को संभावित वजह माना जा रहा है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
6: मतलब उसमें बहुत लोगों को फ्लू का भी शिकायत है, सर्दी खांसी फीवर भी आ रहा है, कई लोगों को उल्टी दस्त भी है। तो अब एग्जैक्ट रीजन तो जांच जब हो जाएगा तो उसमें हम लोग बता पाएंगे डिटेल में।
4: कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही बीमार छात्र छात्राओं और कर्मियों को अस्पताल भेजा गया। कारणों की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम की रिपोर्ट के बाद ही फूड पॉइजनिंग की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल कॉलेज परिसर की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिल्कुल ड्रामा। रेडी नगर से नाम वापस लेने वाले ममता के उम्मीदवार ने फिर लिया यू टर्न। पुलिस से मांगी सुरक्षा। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे, ममता का हल्ला बोल। पंजाब में टमाटर बनाम टमाटर की जंग में बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में लिया। भगवंत मान के काफिले के सामने टमाटर लेकर आए थे। कल बटाला में काफिले पर हमले का लगाया आरोप। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। कहा सूरज भी हमारा हो, समुन्दर भी हमारा हो, नाव भी हमारी हो, नाविक भी हमारा हो। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए इंदौर पहुंचे राहुल गांधी। पेपर लीक, परीक्षा और रोजगार पर जेंजी पर चर्चा। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज। और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। अध्यक्ष समेत दो पदों पर एनएसयूआई आगे। एबीवीपी निर्दलीय को 1-1 पर बढ़त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

इस हफ्ते पॉल्यूशन का सॉल्यूशन में हम उन समाधानों के बारे में बात कर रहे हैं जो दिल्ली के प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट में काम आ सकते हैं। बड़े एयर फिल्टरिंग ट्यूब से लेकर ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके लिए प्रदूषण के खतरे को कम कर सकती है।

0: मेरा नाम राजन हांडा है और मैं MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज द एक्सक्लूसिव पार्टनर टू मैन एंड हमल जर्मनी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड सर्विसिंग ऑफ देयर एयर फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया। मैन एंड हमल एक 85 साल पुरानी जर्मन MNC है जो 80 विदेशों से भी ज़्यादा में इस समय काम कर रही है। एयर पोल्यूशन इज नाउ एक्चुअली द प्राइस दैट वी पे फॉर डेवलपमेंट। जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रोड बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, मेट्रो है, कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, रेजिडेंसेस बन रही हैं, ये सब पोल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। द फैक्ट इज दैट वी आर डूइंग दिस कैंपेन इज रियली रियली रिमार्केबल बिकॉज वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इट इज जस्ट नॉट द गवर्नमेंट विच हैज टू डू दिस, इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन वेयर वी ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द ए द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोल्यूशन एंड बी हाउ वी कैन मिटिगेट दोज रिस्क। ये जो प्रोडक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसको फिल्टर क्यूब बोलते हैं। ये फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन के टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हवा आती है, फोर्स की जाती है, जो हार्ट कोई भी इक्विपमेंट का है वो फिल्टर्स। और मैन एंड हमल के पास जो फिल्टर्स की टेक्नोलॉजी है, जो फिल्टर्स किस तरीके से बन सकते हैं फ्रॉम मीडिया टू देयर कोटिंग टू देयर लेयरिंग इज ऑल the technology they have developed over 85 years and not only developed they have also tested it across the globe. to ye jo technology hai koi nayi nahi hai jo ki bahar ki hawa ko saaf karti hai, ye road ki dust ko dekhti hai, smoke ko dekhti hai, uske ilawa kuch jo gases hain jaise NO2 hai ya SO2 hai jo ki harmful hoti hain, ye usko bhi capture karti hai. aur ye technology IIT Delhi ne bhi validate kari hai aur ye tab kari hai jab 2 mahine सितंबर से नवंबर तक 2024 में इन द पीक पोल्यूशन पीरियड हमने एक स्कूल जो IIT का अंदर है प्रमाइसिस में उसको पूरा प्योर अपने इक्विपमेंट लगाया था और पूरे के पूरे हवा को साफ किया था। 60-70% की रिडक्शन आ जाती है इससे, जिससे कि एक नॉर्मल सिटीजन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सारा सामान जो इसके अंदर लगता है वो चाहे इंजीनियर जर्मनी में हुआ है लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है, असेंबल इंडिया में हो रहा है। इससे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत रीजनेबल हो जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया हो जाती है। देयर इज नो एक्सपेरिमेंटेशन गोइंग ऑन, देयर इज नो सच थिंग दैट वी हैव कम अप विद अ न्यू इनोवेशन। वी कैनॉट अफोर्ड अ न्यू इनोवेशन, वी आर फाइटिंग अ वेरी वेरी रियल प्रॉब्लम एंड वी हैव टू एड्रेस द रियल प्रॉब्लम बाय द रियल सॉल्यूशन व्हिच विल बी In my opinion, this is not an exercise that you could carry for scientific development. It is an exercise that you have to carry keeping the health of the citizens in mind.
1: I am Priyanka Manocha, founding team of MRH Technologies Private Limited. And on my right is Pranav Kaushik from our partner company, Mann and Hummel. And he is Steven, another employee colleague from Mann and Hummel. So together we bring to you the pollution ka solution that you see behind us, which is called as Filter Cube. Mother of a 9-year-old daughter, and she is today living in Delhi and smoking equivalent to 80 cigarettes a day. Mere bacche ka school band ho jata hai jab pollution badh jata hai. Most of the time usko ghar pe apna padhai karna hota hai aur ye jo uske early learning years hai jo uske shape kar rahe hai personality mein, उस वजह से उसको अपना घर पे अधिकतर टाइम बिताना होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टुडे व्हेन आई स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ यू, आई मे अपीयर टू यू एज अ यंग पर्सन, बट माय इनर हेल्थ टुडे हैज डिटेरियोरेटेड टू अ लेवल दैट आई हैव लॉस्ट 12 इयर्स ऑफ माय लाइफ।
2: इस एक मशीन से जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 17,500 मीटर क्यूब ऑफ क्लीन एयर एवरी आवर डिलीवर करते हैं। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट इन लीटर्स और इफ आई वॉन्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ इट, एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जितनी हवा भर सकती है उतनी हवा हर घंटे ये एक मशीन क्लीन करके एरिया में डालती है। तो ऐसी मल्टीपल मशीन्स जब हम यूज करते हैं, सो वॉट वी ट्राई टू डू एक हम एक क्लीन एयर जोन क्रिएट करते हैं उस एरिया के लिए, ताकि वहां का जो लोकलाइज पोल्यूशन है वो लोगों के ब्रीदेबल लिमिट्स में आ जाए।
3: ये डिवाइस इतनी इंटेलिजेंट है, जब बारिश होती है दिस डिवाइस स्विचेस ऑफ, मीनिंग व्हेन इट रेन्स वी डोंट वांट द एयर प्यूरिफायर्स टू बी वर्किंग, सो द डिवाइस स्विचेस ऑफ ऑन इट्स इटसेल्फ व्हेन इट्स रेन्स, एंड ऑल्सो व्हेन द रेन स्टॉप्स द डिवाइस स्विचेस ऑन इट्स ओन। ये डिवाइस में कई सारे ऑप्शन है, लाइक वी ऑल्सो हैव अ नाइट मोड, मीनिंग एट नाइट व्हेन वी डोंट हैव एनी डेंस पॉपुलेशन अराउंड वी कैन ब्रिंग डाउन द speed of the fan to around minimal, where we don't need much clean air coming out of the system. ये भी है, it does all on its own. Also अपने पास एक centralized dashboard रहेगा, meaning when we have 100 installations at different places, Connaught Place, A block, B block, C block, कई सारी area में हम लगा सकते हैं, तब हम एक area में कैसा perform कर रहा है उसका भी dashboard हम दे सकते हैं. We can give your data on every product level, zone level and also as a city level.
4: अब सवाल यह है कि क्या हम ऐसे समाधान ढूंढ सकते हैं जो पूरे साल काम करें, खासकर उन प्रदूषण वाले इलाकों में जहां लोग प्रदूषण के संपर्क में ज्यादा आते हैं। गुरुग्राम के रहने वाले इनोवेटर राजीव चनन का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसका इस्तेमाल पूरे साल किया जा सकता है।

0: मेरा नाम राजीव चानन है और मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ह्यूमेंडस टेक्नोलॉजीज का, जो 2018 में हम लोगों ने फॉर्म की थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। तो दिल्ली का 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, करीब 1,00,000 लीटर पेट्रोल, डीजल और CNG एवरी डे कंज्यूम होता है। तो जनरली दिल्ली की डायमेंशन इज वेरी बिग इफ यू लुक इट फ्रॉम पोल्यूशन स्टैंड पॉइंट। तो नॉट ओनली कंट्रोलिंग AQI बट कंट्रोलिंग एक्सपोजर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इन इफेक्ट दिल्ली रिक्वायर इन अवर ओपिनियन ए परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन विच इज कमिंग। तो हम लोगों की टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एक्सपोजर रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी थ्रस्ट, न्यू पॉलिसीज आर वेरी गुड टू कंट्रोल ओवरऑल एम्बिएंट टू रिड्यूस पोल्यूशन। APS स्टैंड फॉर एम्बिएंट प्योरिफिकेशन सिस्टम। इट इज पार्टली मेंट फॉर पार्टिकुलेट मैटर। एन आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट वी आर सपोज टू मेक ए सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी फॉर आउटडोर वेयर यू इंस्टॉल इट वंस and it should continue to run without any attention intervention for 15-20 years, because the minute you put something in outdoor it has to be sustainable and it should not require frequent attention. And we designed the storage capacity to be roughly 3-5 years so that nobody needs to go in and service the equipment, you know, every now and then. It would once required in one in 3 years or one in 5 years. And then particulate matter, safe disposal of the material. So we still need to figure out what does it contain. It may contain many other particles, many other elements which may not be good for human health. So it has to be disposed. So idea behind was that we should reduce exposure to the people, and hence the machine should come closer to the people wherever in outdoor. There are large people like ISBT, railway station, marketplaces. We should bring equipment closer to the people, reduce their exposure. APS में किसी भी तरह का कोई भी फिल्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आउटडोर में जो सबसे बड़ी समस्या आती है फिल्टर की, कि वो ये 2 या 3 दिन में चोक हो जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस एयर डिलीवरी कम हो जाती है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 15 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है सभी पोल्यूशन लेवल पे और सभी वेदर कंडीशन में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बारिश में इसकी परफॉर्मेंस कम हो गई या समर में बढ़ गई या विंटर में बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रिंसिपल हम लोगों ने यूज किया वो बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल था कि आपका जो पार्टिकुलेट मैटर होता है दैट इज हैवियर देन एयर मॉलिक्यूल्स। तो आप इसमें एयर सक करते हैं इन ए पर्टिकुलर वेलोसिटी विद ए पर्टिकुलर एंगल, सो दैट जो हैवियर मेटल होते हैं, हैवियर पार्टिकल होते हैं PM2.5 एंड PM10, दे कैनॉट ट्रेवल द पाथ ऑफ द एयर बीइंग टेकन इनटू द सिस्टम, सो दे टेंड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बैलेंस एयर। सो ये इसका, और वो एग्लोमरेट भी होते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने विंड टनल डिजाइन की है उसमें 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो वो एग्लोमरेट करती है और दूसरा उन हैवी पार्टिकल की वेलोसिटी को रिड्यूस करती जाती है और एक जगह पे आके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो अपने आप सेटल हो जाते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है जिसमें हैवी पार्टिकल को बिना किसी फिल्टर के हम सेपरेट कर पाते हैं।
1: अब जरा सोचिए, अगर दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अलावा और भी कुछ कर सके तो क्या हो? अगर अपने आसपास प्रदूषण बढ़ाने के बजाय ये गाड़ियां असल में हवा को साफ करने में मदद कर सके। दिल्ली की एक NGO ऐसे ही डिवाइस पर काम कर रही है जिसे कार की छत पर लगाया जा सकता है।
2: मेरा नाम संजीव कुमार यादव है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूं और मैं शुद्ध वायु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टेक्नोलॉजी हेड एंड founding member. मैं इसमें काम कर रहा हूँ.
3: I am Deepti Bhatnagar. I am biotechnologist and masters in business administration. I am a co-founder of Chudvayu Technologies. Me and my team, headed by Mr. Amit Bhatnagar, who is an ex-IITN, we are working for air pollution problem.
2: जब हमने शुद्ध वायु व्हीकल माउंटेड एयर प्यूरिफायर पे काम करना शुरू किया तो हमारे ध्यान में यही था कि हमें एक डिप्लॉयबल, एक फिजिबल और एक स्केलेबल सोल्यूशन पे काम करें. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये डेवलप किया है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी, बिना किसी बिजली के और बिना किसी परमानेंट स्ट्रक्चरल या किसी भी फिटिंग के ये रेट्रोफिट डिवाइस हमने बनाया है जो कि गाड़ी के ऊपर आप खुद से लगा सकते हैं और खुद से उतार सकते हैं. जब दिल्ली में पॉल्यूशन है तो उस टाइम पे आप खुद से लगा सकते हैं, जब पॉल्यूशन नहीं है तो आप उतार के अपने स्टोर में रख सकते हैं जो कि हार्डली एक 1 square feet का स्पेस लेगा. कि हमने पायलट किया था गुरुग्राम म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 50 cars पे हमने इसको लगाया था. जो अगर BS4 व्हीकल की बात कर रहे हैं तो उसका जो PM emission norm होता है वो 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर होता है और हमारा डिवाइस जो है वो 50 मिलीग्राम पर किलोमीटर कैप्चर कर रहा है. तो कहने का मतलब जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि व्हीकल पॉल्यूशन फैलाता है, व्हीकल पॉल्यूटर है, लेकिन विद द शुद्ध वायु डिवाइस व्हीकल एक नेट एयर प्यूरिफायर में कन्वर्ट हो जा रहा है. कहने का मतलब हम केवल व्हीकुलर एमिशन को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी भी सोर्स से पॉल्यूशन हो रहा हो, क्योंकि दिल्ली में व्हीकल से पॉल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली 20% है. उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद रोड डस्ट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल बर्निंग है, उसके बाद रेसिडेंशियल बर्निंग है. तो सब मिला के तो हम लोग सबको टारगेट कर रहे हैं, केवल व्हीकुलर एमिशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं. तो हम कहने का मतलब यही है कि एक पॉल्यूटर को हम एयर प्योरीफायर में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि दिल्ली के लिए बहुत कारगर हो सकता है.
3: टेक्नोलॉजी में हम कोई भी फैन, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, बैटरी कुछ यूज नहीं कर रहे हैं. ये जो ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर, एयर काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है. जब गाड़ी चलती है तो अगर इवन वो गाड़ी 40 की स्पीड से भी चल रही है तब भी अगर आप अपना हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको एयर प्रेशर फील होगा. तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वो एयर प्रेशर अवेलेबल है. तो उसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने ये एयर फिल्टर इनोवेट किया है. इसको जस्ट गाड़ी के ऊपर लगाना है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है. उसी एयर प्रेशर से एयर अंदर जाती है, कार्बन पार्टिकल्स को कैप्चर करती है, जिसमें डस्ट प्री फिल्टर भी लगाया हुआ है जिसमें जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर किया जाता है. मेन फिल्टर में जब एयर आती है तो PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स जो सबसे ज्यादा हजार्डस हैं उनको कैप्चर करती है और क्लीन एयर बाहर निकलती है.
2: जब व्हीकल से एसोसिएटेड कोई भी सॉल्यूशन आता है या टेक्नोलॉजी आती है तो व्हीकल ओनर्स अपनी व्हीकल से इमोशनली अटैच हैं क्योंकि वो कोई भी चीज़ उसमें फिट करने से 10 बार सोचते हैं. तो हमने उस सोच के साथ इसको डेवलप किया है कि इसमें हमने ऐसा प्रोविजन रखा है बॉटम में अपने डिवाइस के कि ये एक सिंगल स्क्रैच, एक सिंगल पिन भी गाड़ी के छत पे कोई एक सिंगल, हम ना तो कोई छेद कर रहे हैं, ना कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं फिटिंग के लिए, ना तो इससे कोई हम स्क्रैच आने का कोई भी उसमें चांस रख रहे हैं.
3: इट इज सेल्फ इंस्टॉलेबल, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे लेडी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी इसको लगा सकता है. और ये एम्बिएंट एयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सॉल्यूशन जो है वो स्टैटिक है, ये हम एग्जिस्टिंग जो गाड़ियां ऑलरेडी रोड पे चल रही हैं हम उन गाड़ियों को एयर प्यूरिफायर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इट इज अ वेरी वेरी नोवल एंड बिगर इनोवेशन देन एनी अदर अवेलेबल टेक्नोलॉजी.
2: अप्रोक्सीमेटली हम लोग 7000 रुपीज का जो कॉस्टिंग है वो हम लोगों कर रहे हैं और हम टारगेट जो कर रहे हैं कि जो हम इसको दूर करने के लिए हम सेल प्राइस जिसको बोल सकते हैं या जो भी, तो वो अप्रोक्सीमेटली हम 10K के आसपास अभी रखते हैं क्योंकि इसके साइजेज वेरी करते हैं गाड़ी के साइज के हिसाब से. तो हम इसको 8000 में, 10000 में और 12000 में अभी कार्स के लिए रखे हुए हैं और बसेस में हम अप्रोक्सीमेटली इसको 22000 का अभी कर रहे हैं.
3: जब मूविंग होगा तो लोगों में अवेयरनेस आएगी और पॉल्यूशन इज समथिंग जो लोगों की हेल्थ को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं और लोगों को अभी रियलाइज नहीं है, तो उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भी ये सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाड़ियों में लगे और लोगों तक पहुंचे।
2: अगर दिल्ली की एयर को साफ करना है तो हमें एक डेमोक्रेटिक और एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन पे जाना होगा।
1: एरोबोस ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर विंड पैनल तैयार किया। ये छत पर लगने वाली एक फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसे गाड़ी के चलते समय हवा को साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक खास बात और है, ये सिस्टम सोलर विंड, सोलर फिल्म और विंड टर्बाइन दोनों का इस्तेमाल करके हवा को साफ करने और रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का काम करता है। यानी प्रदूषण से निपटने के साथ साथ साफ ऊर्जा भी मिल सकती है।
2: गंगेश है, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड इंजीनियर, आई हैव डन माय मास्टर्स इन एनर्जी एंड पावर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो यहाँ की पोल्यूशन की प्रॉब्लम से तो मैं बचपन से ही देखता हुआ आ रहा हूँ। इसको ठीक करने के लिए आगे वाली जनरेशन को एक हवा, साफ हवा देने के लिए हमने सोल्यूशन बनाया जिसका नाम है विंड पैनल। ये आइडिया मेरे को अपनी मास्टर्स करते टाइम, व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन यूनिवर्सिटी लिवरपूल, वहाँ से पढ़ते समय ये आइडिया आया कि बसेस के ऊपर भी एक ऐसा प्रोडक्ट लगा सकते हैं जिससे सिटी का पोल्यूशन साफ हो। मैंने और मेरे को फाउंडर अक्षांश ने साथ में मिलके पिछले 6-7 साल से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं हम।
4: दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पास विद्युत एक चैलेंज है, लैंड एक चैलेंज है, वहाँ हम ना विद्युत यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग विद्युत बना रहे हैं जो फिल्टर को सप्लाई दे रहा है, और लैंड जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो भी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा डिवाइस पूरा का पूरा मोबाइल माउंटिंग है जो कि बस के रूफटॉप के ऊपर लगा हुआ है।
2: इट इज़ अ रेट्रोफिटेड डिवाइस, तो बस पे हम लोग ये प्रोडक्ट अपना प्लेस करते हैं और मेंटेनेंस के लिए हम लोग को इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स हैं जिससे हम लोग ब्रश से साफ कर सकते हैं। इसमें कोई फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट या कोई मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग को 2-3 हफ्ते में एक बार ब्रश से इसके फिल्टर साफ करने पड़ते हैं और वे प्रॉपर से अगले जर्नी के लिए तैयार हो जाती है बस साफ करने के लिए। ये प्रोडक्ट लगभग

0: एक प्रोडक्ट क्षमता रखता है 5 सोलर पैनल के, अगर हम बराबरी से कंपेयर करें तो 5 सोलर पैनल 1 विंड पैनल के बराबर में आता है। अभी तो सिर्फ 2-3 बसेस पे, अभी बहुत लिमिटेड पायलट स्कोप में लगा है। मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये प्रोडक्ट स्केल पे 5,000-10,000 जितनी भी बसेस हैं दिल्ली में सब पे लगे, ताकि पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करें और इस पोल्यूशन के सोल्यूशन को हम जल्द से इम्प्लीमेंट करें बसेस पे।
1: तो अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और अब एक दिल दहला देने वाली खबर। दिल्ली के तीमारपुर इलाके में एक 18 महीने के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बच्चा गली में खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ता सामने से आता है और हमला कर देता है। कुत्ते ने बच्चे के चेहरे पर हमला किया है, बच्चा बुरी तरह घायल है।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
2: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: पंजाब की इन तीन तस्वीरों ने सियासत की नई स्क्रिप्ट शुरू कर दी है। एक ओर बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमले की तस्वीर सामने आई। इस बीच एएसआई के मर्डर ने एक बार फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पंजाब में नशा मुक्त यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो नशे को लेकर मान सरकार पर जोरदार हमला किया।
5: मैं आज यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों ने केवल नारा गहरा था, आप लोगों ने केवल सत्ता की चाबी समझी थी, आपने कभी नशा का दर्द नहीं समझा। और जिस परिवारों ने अपने को खोया, उनसे मिलने के बजाय, उनके पीड़ा को समझने के बजाय, उनको सुसाइड करने के लिए, उनको आत्महत्या करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं।
6: तो किस मुंह से बात कर रहे हैं नशे की बात? 2007 से लेकर 2017 के बीच जिस पार्टी ने पंजाब में नशे का कारोबार किया, जिसके मंत्री, जिसके नेता नशे की तस्करी करवाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में रखे, वो पार्टी आज कह रही है कि पंजाब को नशे से मुक्त कराना है, किस मुंह से कह रही है?
4: पंजाब में बीजेपी की नशा मुक्त रथ यात्रा शुरू होने

से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हो गया। बिट्टू अमृतसर से पठानकोट यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जहां रास्ते में हमला कर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उन पर टमाटर और अंडे फेंके गए। अमृतसर में हमलावरों ने एक एएसआई को निशाना बनाया, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई और हमलावर वहां से फरार हो गए। पंजाब में चुनाव से पहले नशा और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर विपक्ष मान सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।

0: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने ये दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि ये शव सुरेंद्र कोहली का है। सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है। अब सवाल यह है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2000 रुपए भी लिए थे। 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंढेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया, उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

बंगाल उपचुनाव में फुल ड्रामा, रेजी नगर से नाम वापस लेने वाले ममता के उम्मीदवार ने फिर लिया यू टर्न, पुलिस से मांगी सुरक्षा, नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे, ममता का हल्ला बोल।

नेता रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में लिया। भगवंत मान के काफिले के सामने टमाटर लेकर आए थे कल बटाला में, काफिले पर हमले का आरोप लगाया। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र, कहा सूरज भी हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव भी हमारी हो, नाविक भी हमारा हो। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए इंदौर पहुंचे राहुल गांधी। पेपर लीक, परीक्षा और रोजगार पर जेन ज़ी पर चर्चा भी। पुलिस के कहते शर्तों पर सियासत तेज। और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। अध्यक्ष समेत दो पदों पर एबीवीपी आगे। एनएसयूआई निर्दलीय को एक एक पर बढ़त।

0: नमस्कार, मैं हूँ राजीव ढोंडियाल। अब समय हो गया है आपके शहर की खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको बताने का, 100 शहर 100 खबर में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे, नए चुने गए कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं के टैलेंट और स्किल ने पूरी दुनिया पर का भरोसा जीता है, दुनिया को हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीद है। पीएम मोदी नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए, सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने एनजीटी मोबाइल ऐप भी किया लॉन्च और बोले विकासशील देशों पर कार्बन उत्सर्जन का आरोप गलत है। पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले कि भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने COP21 समिट के लिए वादों को समय से पूरा करके दिखाया है। यूपी में आज से 1,00,000 सरकारी भर्ती नौकरियां भर्ती का महाअभियान शुरू। पहले दिन मुख्यमंत्री योगी ने 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए और इस दौरान विपक्ष पर भी बरसे सीएम। सीएम योगी ने कहा कि जब भर्ती बोर्ड और आयोग शासन किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं तो परिणाम बिल्कुल इसी तरह दिखाई पड़ते हैं। सीएम योगी ने 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रिया पर भी बयान दिया, कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर पहले सवाल उठाने वाले लोग इस आंकड़े को नोट कर लें। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार ने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट पैदा कर दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर, दो पदों पर एनएसयूआई आगे एबीवीपी, निर्दलीय को एक एक पर बढ़त। बंगाल उपचुनाव में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है, ममता के टीएमसी के उम्मीदवार ने अपना फैसला फिर बदला, दोबारा उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का विरोध, आज पूरे बंगाल में नंदीग्राम चलो अभियान। मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस, चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं है, ये राजनीतिक प्रतिशोध है, बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव का में बीजेपी को भरोसा नहीं है। लिफाफा चुनाव चिन्ह पर ISF के अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी बोले कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। IIT बॉम्बे प्रशासन ने छात्र की सुसाइड वाली घटना पर दी प्रतिक्रिया, कहा कि छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। IIT बॉम्बे प्रशासन ने पूरी घटना पर बात करते हुए कहा कि छात्र का काउंसलिंग किया गया था, उसे भरोसा दिलाया गया इस घटना का उसके करियर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। संस्थान ने कहा कि छात्र की मौत से जुड़ी हुई परिस्थितियों की जांच संबंधित अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। असम में एक मेडिकल छात्रों और स्थानीय युवकों के बीच में एक समूह के बीच में झड़प के बाद से तनाव, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला है। हमले के बाद से बड़ी संख्या में छात्र अस्पताल परिसर के बाहर जमा हो गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, दरअसल बढ़ गई जमीन मामले में रांची की PMLA कोर्ट ने उन्हें अब सोमवार को 4 बजे तक कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है। याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक PMLA कोर्ट के चार्ज फ्रेम को स्थित की मांग की गई थी और हाईकोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली में नाबालिग से रेप हत्या पर भड़के प्रियंका गांधी, महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में ठोस कार्रवाई और जवाबदेही मिलना जरूरी है, सिर्फ महिला विकास की बातें काफी नहीं है। बांदा चित्रकूट से BSP को लग सकता है एक और बड़ा झटका, मयंक द्विवेदी समाजवादी पार्टी में आज होंगे शामिल। इंदौर में आज राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम, लगभग 1.5 घंटे के कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर छात्रों से होगी चर्चा। कतई शर्तों के साथ पुलिस ने दी मंजूरी। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। आसपास के इलाके में निगरानी के लिए कम से कम 40 सीसीटीवी कैमरे लगे। प्रयागराज में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल से लगभग 1.5 लाख की साइबर ठगी। पुलिस कर रही है जांच। संत कबीर नगर में पप्पू निषाद पर जानलेवा हमले को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा कि आप स्वजातीय हैं तो सम्मान मिलेगा, नहीं तो डराया धमकाया जाएगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार जनता उनको उतार कर वहां भेजेगी जहां पर ये खुद नहीं जानते। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब से दूसरी नशा मुक्ति यात्रा को दिखाई हरी झंडी। जमकर मान सरकार पर भी साधा निशाना। बोले कि बिना राजनीतिक संरक्षण के नशा नहीं फैल सकता। सीएम रेखा गुप्ता ने नशे से प्रभावित परिवार वालों से की मुलाकात। कहा केजरीवाल की पूरी फौज पंजाब को लूट रहे हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा कि मोदी सरकार ने आम आदमी की रसोई पर चौतरफा हमला किया। रसोई का बजट पूरी तरह ध्वस्त। जयराम रमेश ने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने की बजाय केवल सच्चाई छिपाने में जुटी हुई और करोड़ों परिवार पीड़ित हैं। आज मसूरी में कैफे पर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई। डंडों के साथ कैफे के मालिक पर बदमाशों ने किया यह हमला। घटना के दौरान कैफे के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और दूसरे सीसीटीवी कैमरे में भी हाथापाई बाहर करते हुए लोग कैद हुए। संत कबीर नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एसपी सांसद पप्पू निषाद की गाड़ी में भीड़ की तोड़फोड़। पुलिसिया कार्रवाई से नाराज लोगों ने गाड़ी में यह हमला किया। भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया और उसका शीशा तोड़ दिया। पुलिस सांसद को भीड़ से बचाकर सुरक्षित बाहर ले गई। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बड़े स्तर पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर लोगों को समझाया। मेरठ में पहली बार भव्य एयर शो का आयोजन। 9 हॉक एम की 132 विमान ने रोमांचक करतब दिखाए। तिरंगे के रंगों से सजा दिखा आसमान। कल भी एरोबैटिक प्रदर्शन। सूर्य किरण के पायलट दिखाएंगे सटीक तालमेल। आसमान में बनेंगे शानदार एरोबैटिक परफॉर्मेंस और फॉर्मेशंस। बरसाना में धूमधाम से मनाई जा रही है राधाष्टमी। जन्मोत्सव पर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राधाष्टमी पर बरसाना में पूरे ब्रज में भक्तिमय माहौल नजर आया। दूर दूर से उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे भक्त। नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने मां नंदा के किए दर्शन, सुनंदा के दर्शन और ये महोत्सव 23 सितंबर तक जारी रहेगा। कानपुर में केडीए का बुलडोजर एक्शन। 500 वर्ग मीटर सरकारी जमीन से ज्यादा का कब्जा ध्वस्त। मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी ने सरकारी जमीन पर यह कब्रिस्तान बनाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस पीएसी और महिला सुरक्षा बल की तैनाती रही और नोटिस के बाद यह एक्शन हुआ। कब्रिस्तान पर केडीए की कार्रवाई के बाद हंगामा। मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति। का नोटिस के बावजूद बिना पर्याप्त सूचना के कार्रवाई कर दी गई। कानपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर केडीए की कार्रवाई का विरोध। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कई सालों से यहां पर कब्रिस्तान मौजूद है। केडीए की कार्रवाई के बाद से कब्रिस्तान पहुंचा मुस्लिम पक्ष और कहा कि कार्रवाई गलत है और कोर्ट का रुख स्पष्ट करेंगे। नोएडा सेक्टर 10 के एक फर्नीचर कंपनी में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग बुझाई। रोहतास में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। ट्रक की टक्कर से 2 लोगों की मौत और 5 से ज्यादा घायल। और हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक ही जला दिया। बिजौर में कंबल ओढ़कर बैंक में घुसा चोर। स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ा। अलमारी का ताला नहीं टूटा तो खाली हाथ भागा। घटना सीसीटीवी में कैद। गुना में वीआईपी ड्यूटी से नाराज होकर शराब पीने का आरोप है। पुलिसकर्मी ने किया हंगामा। वायरल वीडियो के बाद से कांस्टेबल पर कार्रवाई। पुणे में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। 3 ट्रकों की टक्कर। 1 व्यक्ति के फंसे होने की आशंका। दिल्ली के संगम विहार में 2 साल के मासूम पर कुत्ते का हमला। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मासूम पर हमले के बाद से एमसीडी की कार्रवाई। कई कुत्तों को का रेस्क्यू किया गया और हमला करने वाला कुत्ता हालांकि अभी भी पकड़ से बाहर है। समस्तीपुर में दवा की दुकान से महंगा आईफोन हुआ चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से चोर तक पहुंचा दुकानदार। आरोपी पुलिस के हवाले। महाराष्ट्र के यवतमाल में कार में फंसे 4 साल के मासूम के इलाज के दौरान मौत, घर के बाहर खेलते समय कार में ये अंश चला गया था। बिहार के जमुई में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस पर पथराव, थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। डीजे पर गाना बंद कराने को लेकर विवाद होगा, पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट कर लिया है। आंध्र प्रदेश के चिलकल रिपेट में पटाखे दुकान में भीषण आग, 1 की मौत, 1 घायल। ग्रेटर नोएडा में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, लात घूंसे चले, डंडे भी चलाए गए। मघा में शराबबंदी की पहरेदारी करने वाले 2 पुलिसकर्मी नशे में धुत मिले, वीडियो हुआ वायरल और ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। उदयपुर में शिवलिंग खंडित करने का मामला गरमाया और दिल्ली गेट चौराहा जाम कर दिया गया। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन उदयपुर बंद की चेतावनी भी दी गई। सड़क पर जानलेवा होड़दंग ग्रेटर नोएडा में गोल गोल घूमती कार ने 4 से 5 लोगों को रौंद दिया और रोंगटे खड़े कर देने वाला यह वीडियो हो वायरल। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुई और कई छात्रों को चोटें आई हैं और गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस पर कार्रवाई का दबाव। आगर मालवा में बरसाती नाले में श्रद्धालुओं की कार बह गई, 8 लोगों की मौत, मृतकों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल। झांसी में नशे में एक सिपाही का हंगामा करते हुए वीडियो वायरल, कार के शीशे पत्थर से मारकर तोड़े, घटना सीसीटीवी में कैद। तेलंगाना में पालवंचा में गणेश प्रतिमाओं पर सजे 2 करोड़ से ज्यादा के नोट और देखने के लिए उमड़ रही है भीड़। गुरुग्राम के सेक्टर 90 मॉल में 18 स्पा सेंटर पर छापेमारी, 40 से ज्यादा लोग मामले में हिरासत में लिए गए। महिला आयोग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई इसमें और कुछ युवतियों के नाबालिग होने की भी आशंका है। हैदराबाद के हफीजपेट रेलवे स्टेशन पर महिला के साथ मारपीट का आरोप, बाल पकड़कर घसीटने का वीडियो वायरल हुआ। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रूस की यात्रा, सेंट पीटर्सबर्ग में ऐतिहासिक तोप चलाने का विशेष सम्मान मिला। जम्मू कश्मीर की रियासी में 2 दिवसीय खेलों इंडिया अस्मिता विमेन विश्व लीग का आयोजन, 300 से ज्यादा महिला एथलीट्स ने लिया भाग। लद्दाख में पहले इंटरनेशनल सीबकथॉन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, लद्दाख के उपराज्यपाल ने इसका शुभारंभ किया। उधमपुर में ग्रामीण विकास को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विकास का काम किया जा रहा है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में पुरतासी शनिवार को विशेष आयोजन किया गया और भगवान पेरुमल की विशेष पूजा अर्चना हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान जंग के जल्द खत्म होने का दावा किया, कहा कि लोग नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और पास के पूर्वी शहर अलखर्ज में सुबह सुबह हमले का अलर्ट जारी हुआ और सऊदी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम के बाद फैसला। ईरान जंग पर अमेरिकी सेना का खर्चा बढ़कर $43 बिलियन के पार हुआ और 3 सितंबर तक खर्च पर अमेरिकी सेना का ऐसा अनुमान है। पाकिस्तान के कोहाट पुलिस लाइन धमाके में मरने वालों की यह संख्या अब 3100 से ज्यादा लोग घायल, हमले के समय मस्जिद में नमाज के लिए जुटे थे पुलिस अधिकारी और उनके परिवार वाले। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एयरपोर्ट पर आगवानी के लिए स्वयं मौजूद रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, 1 दशक से ज्यादा समय के बाद चीनी राष्ट्रपति का पहला राजकीय दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने CNN, MS Now और पॉलिटिको पर लगाया प्रतिबंध, सोशल मीडिया पोस्ट पर फर्जी खबर देने के आरोप लगाए। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन और नेशनल प्रेस क्लब ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की निंदा की थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस प्रतिबंधित बिल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी संसद का धन्यवाद दिया और शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस प्रतिबंधित बिल पर दस्तखत किए हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनकी बहन किम यो जोंग ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पर लगाए आरोप, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर आंखें मूंदने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिका और डेनमार्क में सहमति का किया ऐलान, डेनमार्क में पीएम ने भी समझौते से आर्कटिक में सुरक्षा मजबूत होने की जताई उम्मीद।

0: और अब बात करते हैं शहर शहर आवारा कुत्तों के आतंक की। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। सोनीपत में 6 महीने के एक मासूम पर हमला हुआ और उसकी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। तो दिल्ली से भी हैरान करने वाली तस्वीर आई है, जहां तिमारपुर में संगम विहार में 18 महीने के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और पूरी तरह से जख्मी कर दिया है। इससे पहले सोनीपत में 6 महीने के बच्चे पर पिटबुल डॉग ने हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। महाराष्ट्र के जालना और बीड में भी आवारा कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। बीड में एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने 47 लोगों को निशाना बनाया।
1: शहर शहर कुत्तों का कहर, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं आवारा कुत्ते। आवारा कुत्तों को लेकर एक बार फिर से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। देश के अलग अलग इलाकों से कुत्तों के हमले की तस्वीरें सामने आने के बाद कुत्तों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां तिमारपुर के संगम विहार में अपने घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर अचानक आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से बच्चे का चेहरा बुरी तरह घायल हो गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
2: बच्चा हमारा खेल रहा था बाहर, तो उसको कुत्ते ने जो काटा था तो उसके सारे चेहरे, मतलब चेहरा देखा नहीं आ रहा, खून इतना था उसके चेहरे पे, उसके कपड़े भी सारे खून में सन गए थे और जमीन पे भी खून था। उसके बाद बच्चे हमें बुलाने गए, जब हम आए थे तो हमने देखा उसका चेहरा देखा नहीं गया, वैसे ही सब लेके चले गए उसे हॉस्पिटल।
1: अच्छा, आवारा कुत्तों को लेकर अब इलाके के रहने वाले लोग भी दहशत में हैं। वहीं इससे पहले हरियाणा के सोनीपत से आई कुत्ते के हमले की तस्वीर पूरे देश ने देखी थी, जहां सोनीपत के सिक्का कॉलोनी में एक 6 महीने के मासूम पर पिटबुल ने हमला कर दिया। पिटबुल का ये हमला तब हुआ जब 6 महीने के मासूम को उसकी बुआ गली से लेकर जा रही थी। तभी अचानक पिटबुल कुत्ता बच्चे की तरफ दौड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पिटबुल के चंगुल से छुड़ाया जा सका। हमले में मासूम और उसकी बुआ घायल हुए हैं। गंभीर हालत में बच्चे का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है।
3: मुंह छील रखा है पूरा, जैसे उसने गली में उसको छिजोड़ा था ना, तो उसको काफी सारी चोट आई हुई है, पेट वगैरह पे, हाथ वगैरह पे, बहुत सारी जगह चोट आई है।
4: कभी पहले भी देखा गली में घूमता?
3: एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उस दिन बच्चा बच गया था, उनके बच्चे को काट रही थी वो उस दिन में, लेकिन उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था।
1: दिल्ली और हरियाणा ही नहीं, महाराष्ट्र में भी आवारा कुत्तों का कहर जारी है। जालना की गीतांजलि कॉलोनी में 2 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्ची का चेहरा और हाथ बुरी तरह घायल हो गया। जालना ही नहीं, महाराष्ट्र के बीड में आवारा कुत्तों के चलते लोग काफी दहशत में हैं। बीड के परली शहर में एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने अलग अलग इलाकों में 47 लोगों को काटा। क्या बच्चा क्या बड़े, कुत्तों ने कई लोगों पर हमला किया। आवारा कुत्तों को लेकर शहर में हड़कंप मचा हुआ है और लोग अपने बच्चे को अकेले घर से नहीं निकलने दे रहे हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं नासिक में आवारा कुत्तों से परेशान होकर यूबीटी शिवसेना के युवा नेता विक्रम रंधावे ने नगर पंचायत में अलग ही तरह से विरोध किया। विक्रम रंधावे बोरियों में भरकर ले गए आवारा कुत्तों को नगर पंचायत के चीफ ऑफिसर धीरज भामरे के दफ्तर में छोड़ दिया। विक्रम रंधावे ने आरोप लगाया कि शहर के लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं और अधिकारी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। तो साफ है, दिल्ली हो या महाराष्ट्र, हर जगह आवारा कुत्तों के आतंक के चलते लोग परेशान हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात ग्रेटर नोएडा हिट एंड रन केस की करेंगे। यूपी पुलिस ने एक्शन ले लिया है, आरोपी कार चालक मनीष को गिरफ्तार किया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में आरोपी ने एक इंस्टीट्यूट के बाहर 5 लोगों को टक्कर मारी थी, रौंदा था आप कह सकते हैं, वीडियो इसके सामने आया है। टक्कर मारने के बाद आरोपी मनीष मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी मनीष और कुछ लोग इंस्टीट्यूट के बाहर स्टंट कर रहे थे, तभी गाड़ी उसे संभली नहीं और 5 छात्रों को उसने टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्र के पैर में गंभीर चोट आई है।
5: और मैं इस समय उसी स्पॉट पे खड़ा हूँ। ये देख सकते हैं कि जो वीडियो 18 सेकंड का जो वायरल हुआ है ये बिल्कुल उसी स्पॉट का वीडियो है। इस पेड़ के पास जो कुछ छात्र खड़े होते हैं कॉलेज के, और एक टाटा पंच गाड़ी आती है और उनको टक्कर मारती है। हालांकि कुछ सेकंड के लिए रुकती है लेकिन फिर आगे बढ़ जाती है। और मैं उसी जगह मौजूद हूँ, देख सकते हैं कि उस वीडियो में ये वाला जो GN ग्रुप्स इंस्टीट्यूट है उसका भी एक जो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो एग्जैक्टली वो इसी जगह की घटना है। बताया जा रहा है कि जो जो एल्टो सवार युवक है वो काफी देर से इसी सड़क पर, ये जो सड़क है इस सब पूरी सड़क पे दोनों तरफ कॉलेज ही है, यहाँ पे सब इंस्टीट्यूट है, और इसी सड़क पे काफी देर से वो स्टंट कर रहा था। और स्टंट करने के दौरान जब उस पर गाड़ी नहीं संभली तो जो सड़क किनारे कुछ स्टूडेंट खड़े हुए थे और उनको टक्कर मार के फरार हो जाती है। हालांकि इस पूरी घटना में चार जो स्टूडेंट है, चार जो छात्र है अलग अलग कॉलेज के, उनको चोटें आई हैं। जिस
0: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफिल जूस।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
11: जेके मैक्स पेंट्स।
10: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक छात्र छात्राओं और कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी। अलग अलग वार्ड में रह रहे लोगों को पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द और दूसरी परेशानियों की शिकायत हुई। एक साथ कई लोगों की तबीयत खराब होने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल भेजना शुरू किया। शाम करीब 6 बजे से सदर अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। लगातार एम्बुलेंस से मरीजों के पहुंचने के कारण अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी भीड़ बढ़ गई। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सभी मरीजों के इलाज में जुटे रहे। कॉलेज कर्मियों के अनुसार करीब 50 छात्र और कर्मियों के प्रभावित होने की सूचना है।
1: इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट लोग आए थे, कंप्लेन था, सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का केस था। मैंने सभी को देखा है, सभी बच्चे स्टेबल है। वो लोग बता रहे थे कि प्रसाद खाए थे, जिसके कारण ऐसा हो गया है, तो लेकिन सभी लोग ठीक हैं।
0: अब सवाल घटना की वजह को लेकर है। 17 सितंबर को कॉलेज परिसर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन हुआ था। बताया जा रहा है कि पूजा में शामिल कुछ लोगों ने प्रसाद का सेवन किया था। इसके बाद शुक्रवार को कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई। ऐसे में प्रसाद को संभावित वजह माना जा रहा है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
2: मतलब उसमें बहुत लोगों को फ्लू का भी शिकायत है, सर्दी खांसी फीवर भी आ रहा है, कई लोग को उल्टी दस्त भी है। तो एग्जैक्ट रीजन तो जांच जब हो जाएगा तो उसमें हम लोग बता पाएंगे डिटेल में।
0: कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही बीमार छात्र छात्राओं और कर्मियों को अस्पताल भेजा गया। कारणों की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम की रिपोर्ट के बाद ही फूड पॉइजनिंग की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल कॉलेज परिसर की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक। चंबा के सांच पास से आई ये तस्वीरें, जहां सितंबर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या सड़कें, हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। बर्फ से ढकी वादियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बर्फबारी ने खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ाई। चंबा को जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी से जोड़ने वाले सांच पास मार्ग पर बर्फ जमने से कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर बर्फ होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आए। सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद सांच पास मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अब चंबा और पांगी घाटी के बीच आवाजाही एक बार फिर सुचारू है। सांच पास में मौसम बेहद तेजी से बदलता है, यहाँ अचानक बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखकर ही सफर करने की अपील की है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सितंबर की इस बर्फबारी ने सांच पास की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद रास्ते यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबा से विशाल आनंद, आज तक।
3: समाजवादी पार्टी के 2027 के चुनावी रथ तैयार है और उसमें पीडीएफ यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के, सर पीडीएफ को लेकर के डेफिनेशन रोज बदल रहे हैं अखिलेश यादव।
4: अरे पीडीएफ का बदल रहे, सपा ही खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। पीडीएफ तो
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बंगाल उपचुनाव में फुल ड्रामा। विजयनगर से नाम वापस लेने वाले ममता के उम्मीदवार ने फिर लिया यूटर्न। पुलिस से मांगी सुरक्षा। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोला।

टमाटर के जंग में बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में लिया। भगवंत मान के काफिले के सामने टमाटर लेकर आए थे, कल बटाला में काफिले पर हमले का लगाया। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र, कहा सूरज भी हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव भी हमारे, नाविक भी हमारा हो। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए इंदौर पहुंचे राहुल गांधी। पेपर लीक, परीक्षा और रोजगार पर जेन जी से चर्चा, पुलिस की कथित शर्तों पर सियासत तेज। और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। अध्यक्ष समेत दो पदों पर एबीवीपी आगे, एनएसयूआई निर्दलीय को एक एक पर बढ़त।

0: और अब शुरुआत करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों की मतगणना की खबरों से। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार इस समय आगे चल रहे हैं। 17वें राउंड की गिनती के नतीजे आ गए हैं, 17th राउंड के, और इसमें अध्यक्ष पद पर इस समय एबीवीपी आगे है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार लगभग अजय बढ़त बना चुके हैं। आप मतलब उनका जीतना लगभग तय समझिए। सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी इस समय आगे चल रही है। तो ये 17वें राउंड की काउंटिंग की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें एबीवीपी के प्रेसिडेंट पद के लिए यश डबास, जो कि इस समय 20,151 वोट के साथ सबसे आगे हैं। हालांकि एनएसयूआई बहुत पीछे नहीं है, बढ़त बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, क्योंकि वो 19,651 पर विजय मीणा है, तो डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि जबरदस्त टक्कर है। वाइस प्रेसिडेंट पर भी एबीवीपी आगे है, लेकिन यहाँ डिफरेंस काफी ज्यादा लग रहा है। हमारे संवाददाता अनमोल बाली इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, 17वें राउंड के बाद कितनी बढ़त बनाए हुए है एबीवीपी और कहां किस किस पद के लिए ज्यादा फाइट दिख रही है?
1: राजीव, अभी देखा जा रहा है कि 17वें राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो गई और तकरीबन 20 से 22 राउंड तक की जो काउंटिंग है इन चुनावों के मतगणना को लेकर देखा जाएगी। उसी बीच मैं आपको बताऊं, 500 वोटों की बढ़त बना रखी है इस समय एबीवीपी के यश डबास ने, और वहीं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर दीपांशु शुकीन की जो बढ़त है वो 12,000 प्लस वोटों की, यानी दीपांशु शुकीन अजय जीत ही गए हैं कहीं ना कहीं। और वहीं देखा जाए सेक्रेटरी के पद पर 4,000 प्लस वोटों की बढ़त पर रिया चावड़ी जो एबीवीपी की कैंडिडेट है वो चल रही है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए विशेष यादव इंडिपेंडेंट हैं, जिनको समाजवादी पार्टी के छात्र सभा का सपोर्ट है, वो तकरीबन 4 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस बार बड़ा रोचक इस बार देखने को मिल रहा है राजीव, कि पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में देखा जाएगा कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आएगा, क्योंकि अभी तक देखा जाता था चुनाव थे दलों को देखकर जो छात्र थे वोट डालते थे, पर इस बार दलों से ऊपर उठकर जो इंडिविजुअल जो देखा जा रहा है देखकर छात्र को वोट पड़ी, और उसी का परिणाम है कि वाइस प्रेसिडेंट पर दीपांशु शौकीन जो एनएसयूआई के बागी थे, जब उन्होंने एनएसयूआई से वीपी के लिए टिकट मांगी, वाइस प्रेसिडेंट के टिकट नहीं उनको मिलती, वो अपना निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है विशेष यादव, ये भी जो एनएसयूआई के ही कहीं ना कहीं बागी कैंडिडेट हैं, फिर देखा जाता है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अपने कागज भरते हैं और ये भी लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव इस बार बड़े रोचक हो चुके हैं एबीवीपी एनएसयूआई के लिए भी, और कहीं ना कहीं बड़े दलों को
0: अनमोल ऐसे लगता है कि एनएसयूआई से बड़ी चूक हो गई, एनएसयूआई से बहुत बड़ी चूक होगी कि अपने इतने बड़े जिनको बहुत पसंद किया जाता है, सब ये मान भी रहे थे कि उनको तो एनएसयूआई टिकट देगी नहीं, लेकिन आखिरी मोमेंट पर क्या हुआ वो तो इंटरनल स्टोरी आप बताएंगे ही, तो एक बहुत बड़ा लॉस एनएसयूआई के लिए, और उनकी परफॉर्मेंस दिख रही है अब।
1: राजीव, जैसे कि आप जानते हैं एनएसयूआई जब अपनी टिकट अनाउंस करती है तो बहुत से हम ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर देखते हैं और अपने सूत्रों से भी बात करते हैं कि इंटरनल फैक्शनिज्म के कारण जो एनएसयूआई को एक नुकसान है झेलना पड़ा, पर कहीं ना कहीं जो विजय मीणा है उन्होंने एनएसयूआई की इज्जत बचाते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा गया कि आज जब 17 राउंड की हमने वोटिंग देखी, काउंटिंग देखी, तो उसमें देखा गया कि मीणा तकरीबन ज्यादातर राउंड्स में लीड ही कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एनएसयूआई ने प्रेसिडेंट की पोजीशन पर एक बड़ी टक्कर तो दी, पर कहीं ना कहीं वीपी को खोकर, वीपी कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट लड़ाकर उन्होंने कहीं ना वीपी की पोजीशन को खो दिया है। तो एनएसयूआई को विचार करना होगा, कहीं ना कहीं उनको सोचना होगा कि उनसे जो चूक हुई वो उनको कैसे भारी पड़ी है, पर कहीं ना कहीं एबीवीपी को भी विचार करना होगा, क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं। देखा जा रहा है कि पहले पिछले पैनल में 3 पर वो जीते हुए थे, 1 पर एनएसयूआई जीती हुई थी, पर अब कहीं ना कहीं एबीवीपी का खुद का कहना है कि 2 से 3 पैनल तक वो जीत हासिल कर लेंगे, पर अभी जो मुकाबला है राजीव बहुत फंसा हुआ नजर आ रहा है।
0: बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, नजर आप बनाए रखें, तो जो जो अपडेट आएगा लगातार आप तक पहुंचाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की, जिसका आयोजन आज इंदौर में होने जा रहा है। राहुल गांधी का यह कार्यक्रम छात्रों की गूंज का 5वां संस्करण है और राहुल गांधी इसके लिए इंदौर पहुंच चुके हैं, लेकिन इंदौर में होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से अनुमति और वेन्यू को लेकर काफी विवाद बना हुआ था। पहले नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम प्रस्तावित था लेकिन अनुमति नहीं मिली, उसके बाद तारीख 12 से बढ़ाकर 19 सितंबर कर दी गई, फिर आईडीए ग्राउंड का नया वेन्यू जो है बनाया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण प्रशासन और इंदौर पुलिस ने 31 शर्तें रख दी, इनमें पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए गठित जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया, उसका हवाला दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं।
2: राहुल गांधी इंदौर पहुंच गए हैं अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए। पीछे आप देखिए कि तमाम कांग्रेस नेताओं से यहां पे मिलते हुए ये वही सीन एक तरीके से रिप्ले हो रहा है। इससे पहले पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था और एक तरीके से इन टैंडम कभी जो कांग्रेस है लगातार बीजेपी शासित राज्यों में इस तरीके के कार्यक्रम कर रही है। यहाँ पे जो शुरुआत की थी वो कोटा राजस्थान से की थी और देहरादून से होते हुए प्रयागराज से होते हुए राहुल गांधी इंदौर पहुंचे हैं। ये वो वक्त है जब इंदौर को लेके लगातार तमाम बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आरएसएस का ये एक गढ़ है। जाहिर तौर पे जिस तरीके से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन लगातार राहुल गांधी के सियासी जो वार हैं वो एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाई, उसके बाद प्रयागराज से जब वो पुणे आए तो उन्होंने पूरी मनुस्मृति को लेके अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत से लेके प्रधानमंत्री पर हमला किया और कहा जा रहा है कि उसी अटैक को वो एक आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है ये इंदौर, ना सिर्फ ट्राइबल आउटरीच और यूथ आउटरीच करेंगे बल्कि उसी अटैक को और इंटेंसिफाई करते हुए मोदी और मोहन यादव सरकार पर हल्ला बोलेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ मौसमी सिंह, इंदौर आज तक।
0: रवनीत बिट्टू पर हमले को लेकर पंजाब में सियासत गरमाई हुई है और इस बीच में रवनीत बिट्टू आज लुधियाना के पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर हाथ में टमाटर लेकर पहुंचे। दरअसल खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे, इसी दौरान रवनीत बिट्टू वहां पर टमाटर लेकर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद बिट्टू ने मुख्यमंत्री के काफिले पर टमाटर फेंकने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को बिट्टू को हिरासत में लेना पड़ा। तो टमाटर अंडर लेकर पहुंचे थे और फिर उसके बाद रवनीत बिट्टू को हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें, जब पुलिस के साथ पुलिस ने उनको रोका और फिर आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी नेता और कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर हमला हुआ। बिट्टू का दावा है कि लगभग 200 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को निशाना बनाया और इस दौरान उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। बिट्टू ने पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही बिट्टू ने भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी पर हमले का आरोप भी लगाया। तो आज तक से बातचीत करते हुए इस बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू ने कहा कि पूर्व नियोजित यह हमला था और 200 से ज्यादा लोग एकत्रित होकर हमला करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के गृहमंत्री के कार्यालय के दखल के बाद मेरी जान बच पाई।
3: बिट्टू साहब, हुआ क्या था, आप कहां पर थे और अचानक से हुआ क्या, अगर आप बताएं।
4: मैं जो कहां
3: पर
4: जब जीटी रोड से निकल रहा था तो एक गांव आता है जहां पे बहुत बड़ा स्टॉल लगा था एक लंगर का। लंगर के कारण पुलिस के डीएसपी वहां के और एसएचओ खुद पुलिस के, उन्होंने ये कॉन्वॉय पायलट आगे लगा के इसको रोका और उसी जो लंगर प्रसाद जहां पे चल रहा था उसमें से ये 200 लोग निकले जी। जो आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज और एक प्रेसिडेंट, जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर, सरपंच, सबने पहली गाड़ी जो जिप्सी थी उसके ऊपर पत्थर एक इंस्पेक्टर के लगा, एक शीशा तोड़ा तो वो गाड़ी रुक गई। फिर दूसरी गाड़ी सीएसएफ की थी, सीएसएफ की गाड़ी भी पत्थर मारा और वो उसका शीशा टूटा रुका। तो जैमर वाली गाड़ी थी उसके इतने अंडे लगे जहां फूम ऐसी जमा हो गई, वो डिरेल हो गई दूसरी साइड। उसके बाद मेरी गाड़ी थी, तो मेरी गाड़ी में इस तरीके से मतलब पत्थर, आंडे, पता नहीं क्या क्या था, इतना भयंकर अटैक, भी ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। तो उसके बाद जो जोवन और एक सरपंच, मैं ही अपने आप से, ये सब रिकॉर्डिंग्स है, तो वो जब वो मेरे गाड़ी के पास बढ़ने लगा तो डीएसपी एक वहां के वर्मा नाम के डीएसपी और एक एसएचओ उसको साथ लेके आ रहे हैं मेरी तरफ। फिर मैंने डीजी को फोन किया, डीजी के एक घंटे बाद कोई असर नहीं। आखिर में मैंने अपने देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऑफिस में फोन किया, जब देखा भी ये यहां पे और मॉब इकट्ठी हो जाएगी जहां हमें गोली चलानी पड़ेगी, जहां ये हमारे ऊपर, क्योंकि तीन लोग थे जो पुलिस के हाथ से निकल के जिनके पास वेपन थे। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के जब मैंने ऑफिस में बात कही भी आप डीजी से बात कीजिए नहीं यहां कुछ भी हो जाएगा, उसके बाद मेहताब सिंह आईपीएस ऑफिसर है जो बटाला का, वो मेरे पास फिर आया।
3: आप बड़ी बात बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के इंटरवेंशन के बाद वहां पर सिचुएशन संभली वरना कुछ भी हो सकता था, ऐसा
4: मैंने कहा जी। एक अटेम्प्ट हुआ फिर अंदर चले गए, फिर लोग आए, तीसरी बार फिर लोग आ गए, हम अंदर
3: मतलब ये प्री प्लान था पूरा
4: टोटल पी, और पीछे से पूरा उनको डायरेक्शंस दी जा रही थी सीएम हाउस से जा केजरीवाल की तरफ से।
0: अब बात पश्चिम बंगाल के सियासत की, जहां पर दो सीटों पर उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पहले चुनाव आयोग ने टीएमसी सिंबल को सील कर दिया, फिर नंदीग्राम की प्रत्याशी संचिता प्रधान डे ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन दे दिया तो पुराने केस में उनकी गिरफ्तारी हो गई। और अब रेजीनगर सीट पर ट्विस्ट आ गया है, यहां से ममता बनर्जी के ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने फिर से ऐलान कर दिया है कि वो तो चुनाव लड़ेंगे। सुबह 11 बजे के आसपास खबर आई थी कि रबीउल इस्लाम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने नाम वापस ले लिया है, लेकिन अब फिर से उन्होंने ये कहा कि वो तो चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ममता गुट के प्रत्याशी ने कहा था कि डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में चुनाव कैसे लड़ें, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे।
5: আর সিম্বল পাচ্ছে না কর্মীদের কে যদি আমি না পাই তা ভোটটা করবো কেন? সিম্বলটাও তো ফ্যাক্টর। হ্যাঁ সিম্বল ফ্যাক্টর, সিম্বল চিনাবো কি করে এখন নতুন সিম্বল।
6: কোনো কি চাপ আছে বাইরে থেকে আপনার?
5: না না বাইরে চাপ আছে
6: কর্মীদের উপর কোনো চাপ?
5: হ্যাঁ কর্মীদের উপর চাপ আছে আপনার। আর সিদ্ধান্ত সেগুলো বলছি তো নতুন প্রতীক কর্মীদের, তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল, এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না।
6: সিদ্ধান্ত নিয়েছেন
5: মোটামুটি তাই।
0: एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद नंदीग्राम सीट से प्रत्याशी संचिता प्रधान ने अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद से बंगाल में जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।

0: something that we are going to give our support to from this party.
1: टीएमसी में टूट के बाद साग की जंग बने नंदीग्राम सीट पर सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा।
0: To strengthen the Indian alliance. पहले से डिसाइड किया था कांग्रेस को ऐसी में आप सपोर्ट करेंगे, उसका कैंडिडेट अच्छा है।
1: लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल है।
2: हमारा डिमांड है तुरंत उसको तुरंत रिलीज करना चाहिए, रहा करना चाहिए। कल स्क्रूटिनी है, ये क्या हो रहा है? इतना डर। सीएम बोल रहा है हम जीतेंगे, अरे कैसे जीतेंगे? आप इलेक्शन कमीशन को मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस को मिसयूज कर रहे हैं, एक पार्टी को तोड़ने के लिए पूरा ताकत दे रहे हैं।
3: ये जब माने बंगाली में कहावत है ना, अंगूर फॉल टॉक, ग्रेप्स आर सावर, तो ममता बनर्जी का भी ग्रेप्स बहुत सावर हो गया है।
1: आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि जो नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी की सियासी उभार के सबसे अहम केंद्रों में रही, वहां उपचुनाव से पहले ऐसा क्या कुछ हुआ कि बात दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन तक पहुंच गई और कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी में नई जंग छिड़ गई। दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया।
4: इसको मैं क्या बोलूंगा, अभी तक अरेस्ट दिखाया नहीं, पुलिस आके लेके गया बट अभी तक अरेस्ट शो नहीं किया, पता नहीं चल रहा है क्या है।
5: हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो आज गुंडागर्दी करने वाला के गुंडा दमन बिल भी लाया है, कोई यहाँ पे किसी का कोई यहाँ बंगाल में कोई करप्शन करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, किसी का कोई दुष्कर्म करने वाला कोई रहेगा तो किसी को रियायत नहीं किया जाएगा।
1: नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही से लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। साफ है कि नंदीग्राम सीट पर ये लड़ाई और आगे बढ़ती दिख रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
6: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: नोएडा के जिस निठारी कांड ने पूरे देश को चौंका दिया था, आज उसी निठारी कांड से जुड़े सुरेंद्र कोहली की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। हरिद्वार में इस चाय की दुकान के अंदर सुरेंद्र कोहली का शव फंदे से लटका मिला। 3 दिन पहले ही सुरेंद्र कोहली ने ये दुकान ली थी। जब पुलिस ने शव की तलाशी दी तो आधार कार्ड से पता चला कि ये शव सुरेंद्र कोहली का है। सुरेंद्र कोहली इससे पहले हरिद्वार में ही एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था, जिसके बाद उसने ये चाय की दुकान ली। सबसे बड़ी बात ये कि सुरेंद्र ने अपना नाम सदाराम बताया था। ऐसे में किसी को शक ही नहीं था कि ये नोएडा निठारी कांड वाला सुरेंद्र है। अब सवाल यह है कि अगर ये सुसाइड है तो आखिर सुरेंद्र ने सुसाइड क्यों किया? दुकान मालिक का कहना है कि वो बड़ी परेशानी की हालत में उसके पास आया था, जहां उसने बच्चे के जन्मदिन की बात कहकर 2000 रुपए भी लिए थे। 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी इलाके में मनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से 8 बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। इसके बाद घर के आसपास के नालों की तलाशी और खुदाई की गई, जिसमें कई और कंकाल मिले। इस मामले में मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। पंढेर को इनमें से 2 मामलों में सजा हुई, जबकि सुरेंद्र कोहली को निचली अदालत ने कुल 13 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन 2025 में कोहली को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये नोएडा के निठारी की वही D5 कोठी है जो अब सुनसान पड़ी हुई है। निठारी कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल सुरेंद्र कोहली की मौत से हर कोई हैरान है, और सवाल ये कि 19 साल जेल में रहने के दौरान जिस शख्स ने सुसाइड नहीं किया, उसने जेल से बाहर आने के बाद अपनी जान क्यों ली? आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Chandigarh, we are going to give our support to Congress Party.
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बने नंदीग्राम सीट पर सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा।
0: To strengthen the Indian alliance. पहले से डिसाइड किया था कांग्रेस को ऐसी में आप सपोर्ट करेंगे, उसका कैंडिडेट अच्छा है।
1: लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल है। आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि जो नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी की सियासी उभार के सबसे अहम केंद्रों में रही, वहां उपचुनाव से पहले ऐसा क्या कुछ हुआ कि बात दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन तक पहुँच गयी और कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी में नई जंग छिड़ गयी। दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। साथ ही से लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। साफ है कि नंदीग्राम सीट पर ये लड़ाई और आगे बढ़ती दिख रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।

पश्चिम बंगाल उपचुनावों में फुल ड्रामा। रेजी नगर से नाम वापस लेने वाले ममता के उम्मीदवार ने फिर लिया यू टर्न। पुलिस से मांगी सुरक्षा। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे और ममता बनर्जी का हल्ला बोल। पंजाब में टमाटर बनाम टमाटर की जंग तेज। बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में लिया। भगवंत मान के काफिले के सामने टमाटर लेकर पहुंचे थे कल। बाटला में काफिले पर हमले का लगाया आरोप। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। कहा, सूरज भी हमारा, समंदर भी हो हमारा, नाव भी हमारी और नाविक भी हो हमारे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए इंदौर पहुंचे राहुल गांधी। पेपर लीक, परीक्षा और रोजगार पर जेंजी पर चर्चा। पुलिस की 31 शर्तों पर सिया 37।

0: वोटों की गिनती जारी, अध्यक्ष समेत तीन पदों पर एबीवीपी आगे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।

नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान का युद्ध अभी ठंडा भी नहीं हुआ, अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब अमेरिका के लिए एक और मोर्चे पर मुसीबत खड़ी हो गई, जिसका नाम है हूती वर्सेस सऊदी अरब। भले ही ये दोनों लड़ रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खड़ी हो गई। आलम यह है कि सऊदी मदद के लिए अब अमेरिका का रुख नहीं कर रहा, वो ईरान का रुख कर रहा है, जो ट्रंप की साख और अमेरिका का विश्वास दोनों पर भट्टा लगा रहे हैं। आज रणभूमि में बात करेंगे हूतियों के इसी बढ़ते आतंक और इसी बढ़ती चुनौती को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज रणभूमि में आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। दरअसल दो देशों की ओर से शुरू हुई जंग अब खाड़ी के कई देशों को अपनी चपेट में ले ली है। फिर सीज़फ़ायर भी हुआ अमेरिका और ईरान के बीच, इक्का दुक्का हमलों की खबरें भी आती रही और लगा कि बाकी देशों की सरहदें अब महफूज हो गई हैं। लेकिन लेबनन में हिजबुल्ला और इधर हूतियों के अचानक सक्रिय हो जाने के बाद युग और ज्यादा महायुद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हूती और सऊदी अरब के बीच घमासान और तेज हो गया है। अब तक हूती सऊदी अरब की समुद्री सीमाओं के आसपास लगातार अटैक करते थे, लेकिन अब उन्होंने राजधानी रियाद पर भी दो हमले कर दहशत को बढ़ा दिया। पिछले 24 घंटे में धमाकों के बाद रियाद के साथ साथ कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिए गए और स्थानीय नागरिकों के लिए कई नए दिशा निर्देश जारी भी किए गए। आज भी अलर्ट और सायरन का सिलसिला जारी रहा। इस बीच सऊदी अरब ने ईरान से यमन और उनके बीच मध्यस्थता करने की अपील की है। हालांकि ईरान पर मामले में अपना रुख कई बार साफ कर चुका है ईरान कि हूती किसी का आदेश नहीं मानते। इधर दक्षिणी लेबनन पर भी इजरायली फौज ने एक बार फिर से स्ट्राइक की है। उसका दावा है कि ये हमले हिजबुल्ला के ठिकानों पर निस्तनाबूद करने के लिए किए गए। हमलों की बौछार यूक्रेन पर भी लगातार हो रही है, जहां कीव के आसपास और ओडेसा के इलाके में जबरदस्त बमबारी कर उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार ये हमले कैसे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी जुड़े होंगे, लेकिन आपको सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार इस समय क्या कुछ चीजें चल रही हैं। दरअसल सऊदी अरब और हूतियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रियाद में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार तड़के धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। स्थानीय लोगों को मोबाइल ऐप के जरिए हवाई सुरक्षा संबंधित अलर्ट भी जारी कर दिए गए। सऊदी सिविल डिफेंस ने शुक्रवार देर रात और शनिवार सुबह राजधानी रियाद समेत कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी कर रखी थी। रॉयटर्स और AFP के मुताबिक राजधानी में धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई और हालांकि बाद में अधिकारियों ने बताया कि खतरा टल गया है। लोगों को सावधानी बरतने और भीड़ में इकट्ठा ना होने की सलाह दी गई है। इन घटनाओं की जानकारी ऐसे समय पर आई है जब सऊदी और हूतियों के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। इन टकरावों में यह पहला मौका है जब हूती सऊदी अरब की राजधानी तक पहुंच चुके हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। सऊदी अरब के किन जिलों में लोगों को पिछले 24 घंटों में दहशत के अलर्ट जारी कर दिए हैं, ये भी आपको बताते हैं। सिर्फ राजधानी रियाद ही नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े शहर हैं जिन पर चिंता के बादल मंडराने लग गए हैं, बल्कि कई जिलों में सावधानी के अलर्ट भी जारी कर दिए गए। एक बार फिर सऊदी एवियन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि सिर्फ रियाद ही नहीं बल्कि कई इलाकों के अंदर इस तरीके के अलर्ट भेजे गए हैं। और देखिए अब सऊदी का विश्वास अमेरिका से उठता जा रहा है। अमेरिका से अलग अब सऊदी कई लोगों से, कई देशों से मदद की अपील कर रहा है। इस बीच सऊदी अरब ने और हूतियों के संघर्ष के बीच अंसार अल्लाह से दावा किया है कि सऊदी अरब यमन से बातचीत के लिए ईरान से अपील कर रहा है। अंसार अल्लाह ने पॉलिटिकल ब्यूरो के एक वरिष्ठ सदस्य ने अब्दुल अल नामी का दावा है कि यमन के लोगों अब तक इसके लिए राजी नहीं हो पाए हैं और सऊदी अरब अब यमन से नाकेबंदी खत्म करने की सबसे पहले अपील की गई है। इसके बाद ही ईरान साफ कर दिया है कि वो इसके बाद बातचीत करेगा। दरअसल अब सऊदी की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि चाहे वो यमन के कई गुट हो या फिर अंसार अल्लाह हो या फिर आप कह सकते हैं कि ओमान, इन तमाम देशों से मदद और बातचीत के लिए अपील कर रहा है। और चलिए अब आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हूती यमन के कौन कौन से इलाकों में लगातार अपना कब्जा बना चुके हैं, क्योंकि ये कंसर्न सिर्फ यमन के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब के लिए भी है। और कैसे लगातार जो यमन की सरकार के साथ साथ अब उनका ज्यादा फोकस हो गया कोस्टल एरियाज में। अब तक दरअसल अगर आप देखिए जो नॉर्दर्न एरियाज हैं ऊपर के, वो करीबन 30 से 35
परसेंट का जो यमन का पूरा इलाका है वो हूतियों के कब्जे में आता था, लेकिन अब कहा जाता है कि 5-7% और लैंड जो है उन्होंने कब्जा लिया है। सबसे पहले अगर आप देखें ये रेड सी का कोस्टल एरिया, दरअसल 220-222 किलोमीटर का रेड सी का कोस्टल एरिया है जहां पर हूतियों की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। सबसे पहले अल खोफा, खोखा का ये इलाका है, फिर मोका सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है जो इस समय हूतियों के कब्जे में है, उसके बाद पेरिब। ये दोनों द्वीप जो है दरअसल ये एक तरीके के बड़े शहरों में यमन के माने जाते हैं और ये जो रेड सी का इलाका है डोमिनेट भी करते हैं। अब तक करीबन इन 35-40% के यमन के एरिया में 70% से ज्यादा यमन की जनसंख्या रहती है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब बड़े इलाके पर हूतियों का कब्जा हो चुका है। और अगर आप मेरे दूसरी तरफ देखें यह है बाब अल मंदेब का वो इलाका यानी वो स्टेट जो इस समय हूतियों के पूरे कब्जे में आ चुका है। यह अदन की खाड़ी है और माना जा रहा है कि देखिए ये पूरा इलाका जो है धीरे धीरे जो है वो हूती इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सना ऑलरेडी इनके कब्जे में है और अब इसके बाद जो मुख्य अल खोका और मोका और पैरिम ये वो द्वीप है जो इस समय अब हूतियों के कब्जे में आ चुके हैं। दरअसल ये बड़ा कंसर्न इसलिए भी है कि उन इलाकों के अंदर अगर ऐसे ही हनीश द्वीप, क्योंकि देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, हनीश द्वीप के ऊपर भी कहा जा रहा है कि हूतियों ने अपना कब्जा या फिर यहां पर आना शुरू कर दिया, वो लगातार इन इलाकों में अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि देखिए अब तक नॉर्थ के इलाकों में यानी ऊपरी इलाकों के अंदर लगातार हूती रहते थे, लेकिन अब वो कोस्टल एरियाज में आ रहे हैं। 220 किलोमीटर का ये कोस्टल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यहां तक हूती आकर बैठ गए तो ना सिर्फ आप पूरे रेड सी को डोमिनेट या फिर आप कह सकते हैं इस पूरे बाब अल मंदेब को डोमिनेट कर सकते हैं, बल्कि वो सऊदी के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया कि आखिरकार कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस समय हूती मौजूद हैं, हूतियों का हाहाकार कैसे लगातार इन इलाके में बढ़ता जा रहा है। और ये इसलिए कंसर्न है क्योंकि देखिए अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो फिर हूती लगातार आगे बढ़ेंगे, यानी कोस्टल एरिया के साथ साथ वो अपने बॉर्डर एरियाज पर भी पकड़ बनाते जा रहे हैं। अब इसराइल एक तरफ हमास और हिजबुल्ला से निपटने में लगा है तो उधर हूतियों ने सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है। पिछले कई दिनों में समुद्री मार्गों पर उनके कब्जा जमा लिया है। अब उसकी पहुंच सऊदी अरब की राजधानी रियाद तक पहुंच चुकी है। रियाद में दो धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई जिसके बाद रात भर कई इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिए गए। स्थानीय नागरिकों से दहशत का माहौल है। इस बीच ट्रंप के लगातार बदलते बयान भी किसी तरह के स्थानीय या स्थायी सीजफायर की तमाम संभावनाओं को दरकिनार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जल्द ही वो युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि यह युद्ध का डी एंड होगा या किसी डील के जरिए होगा या फिर एक विनाशकारी हमले के जरिए होगा। देखिए सबसे पहले एक रिपोर्ट।

0: सऊदी की राजधानी तक पहुंचे हुती, रात भर अलर्ट। हुती मचा रहे हड़कंप, कैसे होगा युद्ध का अंत? ट्रंप के बदलते बयान भी मचा रहे घमासान। हॉर्मुज में जहाजों पर हमले से मचा कोहराम। हूती लगातार सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। अब तो ये हमले सऊदी अरब की राजधानी तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों से सायरन बज रहे हैं, अलर्ट जारी की जा रही है। उधर हूती विद्रोहियों का साफ कहना है कि जब तक सऊदी अरब उन पर हमले नहीं रोकेगा, वो किसी भी सूरत में जवाब देना बंद नहीं करेंगे। उनका आरोप है कि सऊदी अरब ने गुरुवार को उनके कब्जे वाले इलाकों पर 26 हमले किए हैं। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते उनके ठिकानों पर सऊदी हमलों की संख्या 300 तक पहुंच गई थी और इन हमलों में हूती नियंत्रित यमन के कई इलाकों को निशाना बनाया गया। उधर होर्मुज में जहाजों पर मिसाइलें बरस रही हैं। ईरान लगातार अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हमले के दावे कर रहा है। दूसरी तरफ सैन्य नीति के बाद कूटनीति के मोर्चे पर भी जंग तेज हो गई है, लेकिन ट्रंप के हर रोज बदलते बयानों ने हड़कंप मचा दिया है। दो दिन पहले उन्होंने ईरान के साथ एक बार फिर डील की कोशिशें तेज होने जैसे बयान देकर ये संकेत दिए कि कुछ ही दिनों में जंग खत्म होने वाली है।
1: They want to make a deal and we'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
0: इसके एक दिन बाद ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला शुरू करने के फैसले के करीब है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस से बातचीत में ट्रंप ने कहा, मुझे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। क्या मैं अंदर जाकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दूं या नहीं, ये एक बड़ा फैसला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ट्रंप का यह हाहाकारी बयान ऐसे वक्त पर आया है जब वो न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के दौरान खाड़ी के 6 देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। ये मीटिंग अगले हफ्ते होनी है। हालांकि ट्रंप ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि वो ईरान पर अगले चरण के हमले का फैसला नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले करेंगे या बाद में। अब ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है। बढ़ती महंगाई के बीच उन्होंने फिर भरोसा दिलाया है कि जंग खत्म होने वाली है और गैस की कीमतें भी गिरना तय है।
1: People don't want to have Iran have a nuclear weapon, and you know what? They won't. And the war is going to end soon. And when it ends, your gas prices are going to drop to a level that they were before, maybe even lower.
0: इस बीच होर्मुज में हाहाकार जारी है। ईरान ने होर्मुज में टोगो के झंडे के नीचे चल रहे एक तेल टैंकर पर हमला किया है। इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। लगातार हमलों का सीधा असर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर पड़ रहा है। आवाजाही पर निगरानी करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को सिर्फ 4-4 कार्गो शिप ही वहां से गुजरे हैं, जबकि उससे पहले बुधवार को 6 शिप गुजरे थे। औसतन हर रोज 10 जहाजों के गुजरने का आंकड़ा तेजी से गिर रहा है, जिसका नुकसान तेल बेचने और खरीदने वाले देशों पर पड़ रहा है। अमेरिका की होर्मुज में नाकेबंदी और हर हाल में उस पर नियंत्रण बनाए रखने की ईरान की कोशिशों की वजह से ही अब तक दोनों देशों के बीच कोई डील नहीं हो पाई है। तमाम दावों के बावजूद एक भी सुरक्षित रूट इस इलाके में नहीं बन पाया है और जहाजों पर खतरा 24 घंटे मंडरा रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: और देखिए, लगातार अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खतरा निपटा भी नहीं था, लेकिन अब बाबल मंदेब का संकट गहराता जा रहा है और शायद यही अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ इस समय मेजर जनरल एके सिवाज सर है और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर भी हैं। सबसे पहले जनरल सिवाज, अगर हम ये देखें कि ये तो माना जा रहा था कि देखिए हूती लगातार वहां पर अग्रेसिव हैं, वो लगातार उनकी प्रेजेंस है, लेकिन एकाएक लगातार हूतियों का इतना ज्यादा पावरफुल हो जाना कि वो रियाद तक पहुंच रहे हैं, रियाद तक हमले कर रहे हैं, ये सरप्राइज ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी है।
3: हाँ बिल्कुल, देखो सुमित ये मानना पड़ेगा कि जो होती रेबल हैं ये ईरान की प्रॉक्सी हैं, जिस प्रकार से हिजबुल्ला भी हैं और हमास भी है। हमास जो है सुनी मिलिटेंट ग्रुप है, जबकि हिजबुल्ला और जो होती रेबल हैं ये एक प्रकार से शिया मिलिटेंट ग्रुप है, और इसको फाइनेंस भी ईरान करता है, ट्रेन भी करता है, मोटिवेट करता है, और ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। और ये सच्चाई है, शुरू में इन्होंने युद्ध के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, मगर अब जो क्योंकि इसकी जो लड़ाई है वो सऊदी सिराया 2015 में जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर जो सऊदी अरेबिया इसमें इन्वॉल्व था, 2022 में एक प्रकार से ट्रूस हुआ, सीज फायर हुआ, मगर अब जो लड़ाई हो रही है बहुत ज़्यादा भयंकर हो रही है। और जिस प्रकार से होती रेबल ने पूरा का पूरा यमन की जो कोस्ट लाइन है रेड सी को डोमिनेट करती है उसको कब्जा कर लिया है और वो सटीक हमले कर रहा है। सऊदी की जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जहाँ से वो यानबू पे रेड सी से ऑयल एक प्रकार एक्सपोर्ट करता था वो भी बंद हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरेबिया अपना पूरा ऑयल ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन से बेच पा रहा था रेड सी से, मगर उसको अब बंद कर दिया है। और आज की तारीख में जो हमले कर रहा है होती रेबल वो आपके जो रियाद है इनकी कैपिटल वहां तक मार रहा है, ड्रोन मिसाइल रॉकेट का उसके बाद भंडार है, वो ज्यादा ट्रेन है, मोटिवेटेड है, और ऐसा लगता है ये युद्ध ने एक नया मोड ले लिया है। 10-12% यहां से वर्ल्ड की शिपिंग होती है, यहां से 20% जो ऑयल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यहां से भी 10-12% जाता है। तो इससे देखें इकोनॉमिकली कितना नुकसान होने वाला वर्ल्ड की इकोनॉमी।
2: बिल्कुल,
3: और सबसे स्ट्रेंज बात है कि अमेरिका सऊदी की हेल्प के लिए नहीं आया है।
2: सर मेरा सवाल
3: लगता है क्योंकि क्या ऐसा रीजन है कि सऊदी आने वाले टाइम में अकेला क्यों पड़ गया है? उसकी वजह दो है, एक तो अमेरिका जो है वो इस लड़ाई के अंदर दोबारा दाखिल नहीं होना चाहता, वहां पब्लिक ओपिनियन इस लड़ाई के अगेंस्ट है, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, वो नहीं चाहेगा कि इस लड़ाई में दोबारा अंदर दखल दे। दूसरा कि जो आप देखें मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था वो टर्की भी है उसमें पाकिस्तान भी और सऊदी, अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर अटैक ऑन ऑल थ्री, तो क्यों चुप है पाकिस्तान, क्यों चुप है टर्की, क्यों नहीं मदद करे सऊदी की? ये भी एक विडंबना है सऊदी अरेबिया के लिए। सऊदी अरेबिया करीब करीब $80 बिलियन खर्च करता है अपने डिफेंस बजट में, और मगर इसके बावजूद आज ऐसा लगता है पलड़ा जो भारी है वो होती रेबल का है, क्योंकि होती रेबल एक एस्मेट्रिक वॉरफेयर के
2: बिल्कुल जनरल सिवाय बात यही है कि देखिए हूती से ज्यादा ये पल्ला भारी है ईरान का। हमारे साथ डीके पांडे सर, डीके पांडे सर, हम जब ये बात कर रहे हैं कि हूतियों को कंट्रोल करना है, सबसे पहली बात तो ये कि जो बात कही जा रही थी कि ईरान तो खत्म हो गया है, ईरान के प्रॉक्सी खत्म हो गए, यहां तो प्रॉक्सी ने ही इतना गदर मचा रखा है कि अब ना तो अमेरिका से संभलता दिख रहा है और ना ही इसराइल से, और ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए दिक्कत पैदा हो गई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि सऊदी का विश्वास अमेरिका पे कम होता जा रहा है, क्योंकि अब सऊदी रुक कर रहा है सीधे तौर पर ओमान का, वो सीधा बात करना चाहता है ईरान से, तो ऐसे में अमेरिका का वजूद, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में जो वजूद है उसके लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है।
4: जहन धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए महत्वपूर्ण है कि जो यमन एक पहाड़ों में छोटे से पहाड़ों में एक छोटा सा मिलिशिया था वो आज एक बहुत बड़ा रीजनल थ्रेट बन रहा है।
2: पांडे सर माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों को लेकर, एक बड़ी खबर आ रही है। पहले अपने दर्शकों को बता दे कि अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की जीत हो गई है। देखिए जो खबरें मिल रही हैं वो ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार एबीवीपी को 3 सीटें हाथ लगी है। छात्र संघ चुनावों के अंदर 4 सीटों में से अध्यक्ष पद, सचिव पद और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की जीत हासिल कर ली गई। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु की जीत हुई है, यानी एनएसयूआई के हाथ में उनके खाते में कोई सीट नहीं लगी है। चारों सीटों का हम आपको बता रहे हैं परिणाम आ चुके हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के यश की जीत हुई है, सचिव पद पर एबीवीपी की रिया छावड़ी की जीत हुई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में निर्दलीय उपाध्यक्ष की जीत हुई है, यानी चारों सीटों पर परिणाम आ चुके हैं, जिसमें एनएसयूआई को कोई जीत हासिल नहीं हुई है। एबीवीपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही जो उपाध्यक्ष पद पर है वो निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। और चलिए एक बार फिर से रणभूमि का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान डीपी पांडे सर भी। सर पांडे सर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। पांडे सर
4: जी देखिए, हूती के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो हूती जो है 1922 में जब सीज फायर हो गया था उसके बाद शांति हो गई थी इस इलाके में, लेकिन किस प्रकार से उसने लड़ाई को अंजाम किया, इसके तीन फेज हुए। पहला फेज सदर्न सऊदी सिटीज में गया 8 और 9 सितंबर को, जहां पर उसने एयरफील्ड्स को निशाना बनाया, आर्मो की फैसिलिटीज को निशाना बनाया। उसके बाद दूसरे फेज में स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव ऑन रेड सी किया कोस्ट में, जैसा जिसका आप जिक्र कर रहे थे मोखा और उन इलाकों का, उन पर अटैक किया गया 9 से 12 के बीच में। और तीसरा अटैक किया गया पाइपलाइन सबोटाज में, जिसमें कि 1200 किलोमीटर की जो ईस्ट वेस्ट लाइन थी रिहाद से मदीना रीजन में आने वाली, उसको निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर जिस प्रकार से उनके ऊपर ये अटैक इधर अटैक होते रहे, ये इसके पीछे निश्चित रूप से ईरान ने पूरा समर्थन देने का प्रयास किया। उसके बाद जो है सऊदी अरेबिया ने जब अमेरिका को अप्रोच किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हुती ने मुझे अप्रोच किया है, और कह रहे हैं भाई आप लड़ाई बताइए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, और चाहते भी हैं कि हम लड़ाई जो है आपसे नहीं करेंगे और हमें इसको संभालने दीजिए, हम कर लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अगर मिड टर्म जो होने वाले हैं उसके पहले मैं और कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि जो ईरान के साथ उनका युद्ध चल रहा है वो ऑलरेडी लगभग 45 बिलियन के आसपास उसका खर्च चला गया है। तो इस इतने सारे दबाव के बाद अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया कि अभी स्थिति में नहीं है कि किस प्रकार की हेल्प करे, और इसीलिए जो है सऊदी अरेबिया ने हेल्प मांगा है यूके से, इसराइल से, इवन भारत से की बात चल रही है। हालांकि बीच में 6 सितंबर को एक ईरान के प्रतिनिधि जो सैन्य प्रतिनिधि थे वो भी गए थे वहां पर रियाद में, लेकिन उसके पर क्या बात हुई, क्या शांति की बात कोई हो नहीं पाई। लेकिन जिस प्रकार से ईरान हेल्प कर रहा है हुती का, तब तक हुती आक्रमण करते रहेंगे जब तक ईरान का सपोर्ट रहेगा। हमें देखना होगा कि ये जो कनेक्शन है इसको रोका जाए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक डेवलपमेंट और हो रहा है वो ये है कि इस लड़ाई में पूरा का पूरा ध्यान इस एक्सिस पर आ गया है, और ईरान अपने आप को दोबारा
2: रिवाइव
4: करने का प्रयास कर रहा है।
2: बिल्कुल सर, ये बात आपने बिल्कुल एक मिलिट्री स्ट्रेटजी से बिल्कुल सटीक बात कही कि देखिए ईरान को ये समय मिल गया। ईरान हमेशा ऐसा करता है कि अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करता है, अपने आप को रिवाइव करता है, फिर डायरेक्ट वॉर में जाता है, और फिर दोबारा से जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनको भी रिवाइव करने की कोशिश करता है, और शायद यही स्ट्रेटजी ईरान की बहुत बखूबी काम भी आ रही है ईरान के। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि ईरान के हमलों से कुवैत में भी अमेरिकी बेसिस को कई ज्यादा बड़े नुकसान की खबरें मिल रही है। जी हां, आरिफजान को भारी नुकसान पहुंचने की तस्वीरें भी अब सामने आ गई। इसमें साफ देखा जा सकता है कि इस हमले में यूएस आर्मी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। देखिए साख के साथ साथ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अमेरिका को नुकसान पहुंचा, आर्थिक रूप से भी लगातार अमेरिका को नुकसान पहुंचा। मिडास न्यूज नेटवर्क के हवाले से 5 तस्वीरें जारी की गई है, और यह कहा गया है कि अमेरिकी बेस पर ईरानी हमलों में नतीजे के बारे में नई जानकारियां सामने आई हैं। तस्वीरों में बेस के अहम हिस्से जैसे स्टोरेज सुविधाओं को, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचने की तस्वीरें सार्वजनिक की गई है। हमलों में एक मजबूत शेल्टर यानी बंकर को भी निशाना बनाया गया था। ये बंकर आपातकालीन स्थितियों में अमेरिकी सैनिकों के सुरक्षित जगहों पर उनको शेल्टर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेस पर मौजूद एक बहुमंजिला इमारत और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबरें और उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। और देखिए सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि अन्य सैन्य ठिकानों को भी ईरान के युद्ध में या लगातार 40 दिन के युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा है। यह खुलासा अमेरिकी मीडिया द्वारा ही किया गया है। एबीसी न्यूज नेटवर्क के हवाले से खबर मिल रही है और वीडियो और तस्वीरें भी जारी किए गए हैं। ईरान के हमलों में मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने की गई, और कहा गया है कि पेंटागन उस युद्ध के नुकसान का आकलन अब तक कर रहा है जिसे अमेरिका ने 6 महीने से भी ज्यादा समय लगना पहले ही लग चुका है। अमेरिकी मीडिया ने इन तस्वीरों को संघर्ष के दौरान अलग अलग पलों को दिखाया। इसमें कुवैत के मौजूद 3 अमेरिकी ठिकानों, सऊदी अरब के एक ठिकाने और अमेरिकी सैन्य साजो सामान को नुकसान पहुंचने की खबरें भी और उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की है। और देखिए अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उसका खामियाजा ना सिर्फ अमेरिकी सेना को बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की साख को भी पहुंचा, और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन रणभूमि में बात करेंगे और दूसरे रणभूमि के मोर्चों की भी। आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोफ्ट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
5: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।

0: मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक छात्र छात्राओं और कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी। अलग अलग वार्ड में रह रहे लोगों को पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द और दूसरी परेशानियों की शिकायत हुई। एक साथ कई लोगों की तबीयत खराब होने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल भेजना शुरू किया। शाम करीब 6 बजे से सदर अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। लगातार एम्बुलेंस से मरीजों के पहुंचने के कारण अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी भीड़ बढ़ गई। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सभी मरीजों के इलाज में जुटे रहे। कॉलेज कर्मियों के अनुसार करीब 50 छात्र और कर्मियों के प्रभावित होने की सूचना है।
1: इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट लोग आए थे, कंप्लेन था, सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग का केस था। मैंने सभी को देखा है, सभी बच्चे स्टेबल हैं। वो लोग बता रहे थे कि प्रसाद खाए थे, जिसके कारण ऐसा हो गया है, तो लेकिन सभी लोग ठीक हैं।
0: अब सवाल घटना की वजह को लेकर है। 17 सितंबर को कॉलेज परिसर में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन हुआ था। बताया जा रहा है कि पूजा में शामिल कुछ लोगों ने प्रसाद का सेवन किया था। इसके बाद शुक्रवार को कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई। ऐसे में प्रसाद को संभावित वजह माना जा रहा है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने इसकी पुष्टि नहीं की है।
2: मतलब उसमें बहुत लोगों को फ्लू का भी शिकायत है, सर्दी खांसी फीवर भी आ रहा है, कई लोगों को उल्टी दस्त भी है। तो एग्जैक्ट रीजन तो जांच जब हो जाएगा तो उसमें हम लोग बता पाएंगे डिटेल में।
0: कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही बीमार छात्र छात्राओं और कर्मियों को अस्पताल भेजा गया। कारणों की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम की रिपोर्ट के बाद ही फूड पॉइजनिंग की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी। फिलहाल कॉलेज परिसर की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से जो यूक्रेन और रूस के जंगी मोर्चे से आ रही है। दरअसल इंग्लैंड और जर्मनी ने अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। दोनों देशों ने अपने नागरिकों से खाने पीने का सामान जमा करने और देश की रक्षा के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि ये खबरें लगातार मिल रही थी कि अब रूस का बड़ा अटैक, खासतौर पर देखिए ये कहा जा रहा था यूरोपियन देशों की तरफ से कि रूस तैयारियां कर रहा है, लेकिन इस बीच जो जंगी तैयारी है वो इंग्लैंड और जर्मनी के कई देशों ने शुरू कर दी और अपने नागरिकों से खाने पीने के स्टॉकिंग करने के लिए भी कहा जा रहा है। ये खबरें लगातार यूरोप के कई मीडिया हाउस द्वारा आ रही है जिसमें अपने नागरिकों से खाने पीने का सामान जमा करने और देश की रक्षा के लिए तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। और सिर्फ पैनिक जो है यूरोपियन देशों से ज्यादा बाल्टिक स्टेट्स में भी हो गया है। दरअसल लिथुआनिया रूस के साथ बड़े पैमाने पर संघर्ष की स्थिति में अपने नागरिकों को पोलैंड पहुंचाने की तैयारियां कर रहा है। देखिए बाल्टिक स्टेट्स को यह डर है कि आज नहीं तो कल रूस लगातार कई जगहों पर अटैक करेगा और इसी वजह से लिथुआनिया हो या बाकी के बाल्टिक स्टेट्स हैं वो भी अपनी तैयारियों में लगे हैं। और लिथुआनिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने संघर्ष की स्थिति में अपने नागरिकों को पोलैंड पहुंचने यानी पोलैंड के सीमावर्ती इलाकों में पहुंचने की तैयारी के लिए कहा है। और एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि हमारे की विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के मकसद से $2.7 अरब की मिलिट्री सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस बयान से पता चलता है कि अगर ये डील पक्की हो जाती है तो यूक्रेन इसके लिए यूरोपियन लोन और बाइडेन प्रशासन के समय से पहले से तय अमेरिकी फंड का इस्तेमाल करेगा। यानी आपको यह भी बता दे कि पहले से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने लिए नए फंड रिलीज करने, नए हथियारों की खेप देने की बात कहते आए हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने $2.7 अरब के पैकेज को मंजूरी दे दी है। देखिए यूक्रेन के लिए तो अच्छी खबर है लेकिन नाटो के लिए एक बड़ी खबर मिल रही है। ट्रंप और नाटो के बीच लगातार रिश्ते तल्खी के और बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका यूरोप में तैनात अपने 40,000 सैनिकों को कम करने पर विचार कर रहा है और इसको लेकर बड़े एक्शन, बड़े कदम भी उठा सकता है। फिलहाल यूरोप में करीब 80,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद है। हालांकि पेंटागन ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है लेकिन इस पर अंतिम सिफारिश नवंबर की शुरुआत तक आने की उम्मीद है जिसके बाद अमेरिका इस पर बड़ा फैसला ले सकता है। इसके बाद ही ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से नाटो देशों से अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए, उस पर पैसा खर्च करने के लिए मांग करते आए, उसको लेकर सवाल भी खड़े करते आए हैं। उनका कहना है कि यूरोप को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर कम निर्भर होना चाहिए और पेंटागन ने जून में ही यूरोप में अमेरिकी सैनिक सैन्य ठिकानों और हथियारों की तैनाती की समीक्षा भी करना शुरू कर दिया था। अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों की या सैनिकों की कमी शुरू कर दी जाती है तो फिर यूरोप के देशों के लिए ये दिक्कत एक परेशानी का सबब हो सकता है। दरअसल अमेरिका के लिए फैसला लेना मजबूरी भी है क्योंकि अमेरिका इस समय ईरान के साथ जंग में फंसा हुआ है। इसके अलावा लगातार यूक्रेन को मदद करने की जिम्मेदारी भी इस समय अमेरिका पर है। ऐसे में अमेरिका ये सोच रहा है कि वो खासतौर पर यूरोप के देशों से अपनी सैन्य क्षमताओं को कम करे। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करते हैं कि इस समय किस किस देश में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती कहां कहां पर कितनी है। देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें कि अमेरिका की जो टोटल तैनाती है वो करीबन 80,000 सैनिक अलग अलग यूरोप के देशों में मौजूद है, चाहे वो जर्मनी हो या बाकी के मुल्क हो, लेकिन अब अमेरिका इनको आधा करने की कोशिश करेगा। अमेरिका का कहना है कि वो सिर्फ 40,000 सैनिकों की वापसी करेगा और सिर्फ 40,000 सैनिक ही बाकी यूरोप के इन देशों में इन बेसिस पर छोड़ेगा क्योंकि अब यूरोप के इन देशों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, इस पर खर्च भी यूरोप के इन देशों को खुद करना पड़ेगा। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं और इसको लेकर समीक्षा भी जून के महीने से शुरू हो चुकी है। आपको यह बताया कि आखिरकार कहां कहां पर, सबसे पहले आप ये देखें कि कहां कहां पर कितने सैनिक मौजूद हैं। सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती इस समय जर्मनी में, दरअसल जर्मनी में 36,500 है। इसके अलावा कई दूसरे विश्व युद्ध के बाद तैनाती एयरबेसिस भी है, नौसैनिक ठिकाने भी और सैन्य ठिकाने भी है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि ये सेना तैनाती के बाद यूरोप के कई देशों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। अब यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में चलाए जाते हैं सैन्य ऑपरेशन, इसी वजह से अमेरिका ने अपने जो बड़े सैन्य बेड़े जो है जिसको आप सेंट्रल कॉम भी कहते हैं, अब उनको दूसरे नामों से कई कमांड्स को इस तरीके से बनाया हुआ है
कि वहां पर लगातार इनकी तैनाती की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तैनाती अगर आप देखें तो इस समय जर्मनी में मौजूद है। इधर रूस और यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही और ज्यादा भीषण होती जा रही है। ना पुतिन रुकने को तैयार है और ना ही जेलेंस्की झुकने को राजी है। आज सुबह भी रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ कई मिसाइलें दागी, बम और ड्रोन से हमले भी किए, उसे मौका तक नहीं दिया गया। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के कीव, ओडेसा, सुमी, खार्किव जैसे बड़े इलाकों पर हमले किए। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो यूक्रेन को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। देखिए रूसी हमले के बाद यूक्रेन का ओडिशा शहर कैसे खंडहर सा दिखाई दे रहा है। रूस ने ओडिशा की इस 11 मंजिला इमारत को निशाना बनाया और जब चीख पुकार मचने के बाद फायर फाइटर वहां रेस्क्यू करने पहुंचे तो रूस ने दोबारा बम बरसाकर बर्बादी का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, इनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। गंभीर रूप से जख्मी लोगों में 2 फायर फाइटर भी शामिल हैं। गनीमत रही कि पहले रूसी हमले के समय ज्यादातर लोग शेल्टर में थे जिससे उनकी जान बच गई। जेलेंस्की ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर इसे आतंकवाद करार दिया। अब रूस के हमले में सुमी शहर में बर्बादी का मंजर देखिए। सुमी के इस रिहायशी अपार्टमेंट पर रूसी सेना ने हवाई हमले में बम सीधे तीसरी और चौथी मंजिल पर गिराए। मलबे के नीचे एक बच्चे समेत 4 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, जबकि इस हमले में 2 यूक्रेनी नागरिकों की दर्दनाक मौत हो गई। रूस ने ताजा हमले में यूक्रेन के कीव, ओडिशा, सुमी, खार्कीव, जीतोमीर और कई शहरों में ड्रोन, मिसाइलों और बम बरसाकर यूक्रेन पर सरेंडर करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि रूस की ओर से पावलो हराद शहर में एक क्लिनिक पर भी हमला हुआ, साथ ही क्यू इलाके में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने एक बार फिर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। जेलेंस्की ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। जेलेंस्की ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बिल आखिरकार कानून बन जाएगा और इसके असर से रूस को शांति का रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। 19 सितंबर की सुबह हुए हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और भीषण हो गया है, जहां रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल, बम और ड्रोन से हमले कर उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने भी रूस पर जोरदार पलटवार करते हुए सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाते हुए लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी सेना ने रूस की यारोस्लाव तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश की जो मॉस्को से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि राजनयिक प्रयासों और युद्ध विराम समझौतों की कोशिशों से अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। आज तक फिरो।
1: और देखिए हमने आपको लगातार रणभूमि की तमाम बड़ी खबरें तो बताई, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वो डूसू चुनावों के नतीजों को लेकर आ रही है। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनावों के नतीजे आ गए हैं जिसमें 3 पोजीशंस पे, 3 पोस्ट के ऊपर एबीवीपी की जीत हासिल की गई है, लेकिन उपाध्यक्ष पद के ऊपर एक निर्दलीय जीता है। आपको यह भी बता दें कि अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के ऊपर एबीवीपी का कब्जा हुआ, बल्कि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु की जीत हासिल की है, लेकिन एनएसयूआई के खाते से कोई सीट हासिल नहीं हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी इस जुड़ गए हैं, हमारे साथ सुशांत हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, पिछले 10 सालों को अगर आप देखें तो 2 ही ऐसे मौके आए हैं जब एनएसयूआई को अध्यक्ष पद पर जीत हासिल हुई, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा, 2017 में और 2024 के अंदर, लेकिन हमेशा से एबीवीपी की जीत ही हासिल हुई है। और एक बार फिर से एनएसयूआई के परफॉर्मेंस ना के बराबर या बहुत ही खराब इस समय दर्ज की गई है।
2: देखिए सुमित, जिस तरीके से नतीजे सामने आया पिछले एक दशक की अगर बात करें तो एबीवीपी का एक अच्छा खासा दबदबा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में देखने को मिला है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि ये आर्ट ऑफ फैकल्टी की विवेकानंद की तस्वीर है, जहां से अब तो थोड़ी देर में तमाम जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो यहां पहुंचेंगे और विक्ट्री साइन के साथ जो है जीत का जश्न मनाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से आदेश है कि जश्न जो है वो नहीं मनाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जीत हासिल हुई है एबीवीपी की, वो कहीं ना कहीं जो जेंजी का प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से देश भर के अंदर देखने को मिला और उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना, उसके बाद राहुल गांधी का जिस तरीके से छात्रों को लेकर के छात्रों की गूंज बोलना, लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए उसमें 3 सीटों पर जिस तरीके से अध्यक्ष पद पर, उसके साथ साथ सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर एबीवीपी ने एक बार फिर से अपना कब्जा जो है जमाया है। लेकिन पिछले 2024 में अगर बात करें तो एनएसयूआई ने लीड हासिल की थी। पिछली बार भी अगर देखा जाए तो डूसू को जब इलेक्शन हुआ था तीन पदों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार भी एनएसयूआई अपना एक भी खाता जो है वो नहीं खोल पाई। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर दीपांशु जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो उन्होंने जबकि जीत जो है वो दर्ज कराई है। ऑब्जेक्शन इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है।
1: सुशांत आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे ये डूसू चुनावों को लेकर नतीजों के बारे में समीक्षा करेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस जीत के ऊपर कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
3: मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया ना कि देश का युवा और खास करके यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उन्होंने अपना मत दिया है, अपना आवाज अपना विचार को क्लियर कट दे दिया है।
1: एक बार फिर से हमारे सहयोगी सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत देखिए ये बात और आप और हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए दो बार ही पिछले 10 सालों के अंदर एनएसयूआई जीत हासिल कर पाई है प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर, हमेशा से उसका परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में खराब ही रहा है, लेकिन इस बार तो उम्मीद की जा रही थी कि देखिए जेनजी बहुत ज्यादा विश्वास जता रहा है खासतौर पर एनएसयूआई के अंदर, यहां तक कि कई बड़े आंदोलन भी करने की कांग्रेस ने कोशिश की और एनएसयूआई छात्र संगठन ने भी कोशिश की, लेकिन फिर भी रिजल्ट हासिल नहीं लगा।
2: देखिए सुमित, जिस तरीके से जब शुरुआती नतीजे आए थे लगभग अगर कहा जाए तो 15 राउंड तक एनएसयूआई जो है वो प्रेसिडेंट और उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर लीड करती हुई नजर आई थी, लेकिन जैसे ही 16 राउंड शुरू हुआ उसके बाद छात्रों का एक अलग मत जो है वो सामने नजर आया एबीवीपी को लेकर के, और यही वजह है जिसके तीन पोस्ट पर एबीवीपी ने अपना कब्जा जो है वो जमाया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों श्रीराम कॉलेज और कॉमर्स के अंदर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने जेनजी की बातें रखी, उनका मुद्दा रखे, देश के पिछले 10 सालों का पूरा कामकाज जो है वो अपने युवाओं के सामने रखा, नाराज फूफा का भी उन्होंने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं एक युवाओं का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो हर बार नजर आता है। पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर एक महीने तक देश भर के अंदर देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं जेनजी दूसरी तरफ कहीं ना रुख ना करे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के खास इस चुनाव के अंदर जो मुकाबला होता है वो एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में होता है, और इस बार एनएसयूआई का खाता भी जो है वो नहीं खुल पाया, ये एक बड़ी बात। और
1: बिल्कुल बिल्कुल सुशांत आप हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।
1: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा, अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है।
1: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर किया कब्जा। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के जीत। एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल उपचुनाव में फुल ड्रामा। रेजी नगर से नाम वापस लेने वाले ममता के उम्मीदवार ने फिर लिया यूटर्न। पुलिस से मांगे सुरक्षा। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे। ममता का हल्ला वो। पंजाब में टमाटर बनाम टमाटर की जंग में बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में लिया। भगवंत मान के काफिले के सामने टमाटर लेकर आए थे। कल बटाला में काफिले पर हमले का लगाया आरोप। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र। कहा सूरज भी हमारा हो, समंदर भी हमारा, नाव भी हमारी हो, नाविक भी हमारा। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए इंदौर पहुंचे राहुल गांधी। पेपर लीक, परीक्षा और रोजगार पर जेंजी पर चर्चा। पुलिस की 31 शर्तों पर सियासत तेज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। बंगाल है जनादेश की जमीन, लेकिन यहां सियासत सिर्फ वोटों से नहीं तो टकरावों से भी लिखी जाती है। कभी नंदीग्राम की जमीन पर संघर्ष, तो कभी सड़कों पर राजनीतिक हिंसा, कभी पाला बदलते नेता, तो कभी चुनाव से पहले बदलते सियासी समीकरण। बंगाल की राजनीति में टूट फूट और उठापटक कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इस बार नंदीग्राम और रिजी नगर में जो कुछ हो रहा है उसने पुराने जख्मों को, नए सवालों को एक बार फिर कुरेद दिया है। नंदीग्राम में नाम वापसी, उम्मीदवारों का बदलना, उसके बाद बदलते राजनीतिक समीकरण और आखिर में गिरफ्तारी। रिजी नगर में पहले नाम वापसी और फिर यूटर्न। सवाल यह है कि क्या बंगाल में चुनावी लड़ाई अब मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक जोड़तोड़ के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। जिस नंदीग्राम ने कभी सत्ता की चूल्हे हिला दी थी, क्या वही आज एक नए सियासी चक्रव्यूह का एक गवाह बनता जा रहा है। बंगाल में सत्ता बदलती रही, सियासी चेहरे बदलते रहे, लेकिन राजनीतिक सत्ता का मिजाज कभी नहीं बदला। दो सीटें, दो उपचुनाव, कई सियासी दांव, और सबसे बड़ा सवाल कि इस बार बंगाल के जनादेश की पटकथा कौन लिखेगा। 6 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे, 9 अक्टूबर को उसके नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही बंगाल पूछ रहा है कि क्या यह चुनाव है, क्या इस तरीके से ही इस देश में चुनाव लड़े जाएंगे, सियासी शतरंज क्या इसी तरीके से खेला जाएगा, या लोकतंत्र के मैदान में बिछा कोई एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसकी हर चाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: बंगाल में उपचुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन दो सीटों पर सियासत का ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसने चुनावी मैदान से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। 18 सितंबर नंदीग्राम में ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी से पहले उनकी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया।
1: Nandigram, we are going to give our support to Congress party. It is for the greater interest of the country to strengthen the Indian alliance. पहले से decide किया था कांग्रेस को ऐसी में आप support करेंगे। उसका candidate अच्छा है इसी के लिए।
0: लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के क्राइम के पुराने पन्ने शुभेंदु की पुलिस ने पलट दिया और ममता के समर्थन के महज चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया।
2: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
0: इस बीच सियासी पटकथा एक और जगह लिखी जा रही थी। रेजी नगर सीट पर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। सुबह नॉमिनेशन वापस लेने की बात करने वाले रबीउल आलम चौधरी ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो उपचुनाव लड़ेंगे लेकिन शर्तों के साथ।
3: ভেবেছিলাম যে এই অবস্থা দলের এই অবস্থা নতুন প্রতীক খেলতাম, তাই এই জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা নিয়েছিলাম। এখন আমরা এই নতুন প্রতীকে মানুষকে বুঝিয়ে ভোটটা করাব।
0: एक तरफ नाम वापसी, दूसरी तरफ यू टर्न। जिस चुनाव में अभी वोटिंग भी नहीं हुई वहां उम्मीदवारों के फैसले ही सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये महज इत्तेफाक है या बंगाल में कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है। क्या नंदीग्राम और रेजी नगर में उम्मीदवारों का नाम वापस लेना सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है? क्या बंगाल में उपचुनाव की लड़ाई अब सीटों से आगे बढ़कर राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है? आखिर इन दो सीटों पर उपचुनाव की नौबत क्यों आई? अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों सीटें 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुई। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी और रेजीनगर से हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की थी। दोनों नेताओं ने दो दो सीटों से चुनाव जीता और बाद में एक एक सीट छोड़ दी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम छोड़कर भवानीपुर अपने पास रखी, जबकि हुमायूं कबीर ने रेजीनगर छोड़कर नाउदा सीट अपने पास रखी। इसी वजह से दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 6 अक्टूबर को मतदान और 9 अक्टूबर को मतगणना होनी है, लेकिन इन दोनों उपचुनावों का महत्व सिर्फ दो सीटों को भरने तक सीमित नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद ये दोनों सीटें बंगाल की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में एक अहम चुनावी परीक्षा बन गई है।
4: मिलन प्रधान के जेले এটুকু যদি ভাবে যে কংগ্রেসের উপরে চাপ তৈরি হচ্ছে, এই বিধানসভা এমনি আলাদা কিছু হবে। নন্দীগ্রামের মানুষ তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।
0: নন্দীগ্রাম বঙ্গাল কি সিয়াসত কা ও অধ্যায় হ্যায় জিসে মিটাকর কোই নই কাহানি নহি লিখি আ সকতি। 2007 का भूमि आंदोलन, तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ विरोध और उसी आंदोलन से ममता बनर्जी के राजनीतिक उभार को ताकत मिली। कभी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी इसी राजनीतिक संघर्ष के सहयोगी थे, लेकिन वक्त ने करवट ली, रिश्ते बदले और नंदीग्राम दोनों नेताओं के बीच सियासी प्रतिष्ठा का मैदान बन गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। 2026 में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से जीत दर्ज की, लेकिन भवानीपुर अपने पास रखने के बाद ये सीट खाली हो गई। अब सवाल है कि नंदीग्राम में होने वाला उपचुनाव क्या उस राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय बनेगा, या फिर पुराने प्रतीकों और पुराने संघर्षों के बीच मतदाता कोई नई कहानी लिखेंगे? इतिहास रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जरा देश की इबारत हमेशा वर्तमान में लिखी जाती है। वहीं रेजी नगर की लड़ाई सिर्फ पार्टी की नहीं, पहचान की भी है। तो बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर की कहानी अब सिर्फ दो सीटों की कहानी नहीं रह गई है। एक तरफ इतिहास का बोझ है, दूसरी तरफ भविष्य की चुनौती। एक तरफ पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का विवाद है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने से पैदा हुए सवाल। एक तरफ सत्ता का दावा है, दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप है। लेकिन इन तमाम सियासी शोर के बीच एक आवाज ऐसी है जिसे दबना नहीं चाहिए, वो आवाज है मतदाता की। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर आवाज किसी मुख्यमंत्री की नहीं होती है, किसी मंत्री की नहीं होती है, किसी पार्टी अध्यक्ष की भी नहीं होती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
5: तो कुछ ही महीने बंगाल में आम चुनाव हुए हैं, दो जगह पर बाईपोल्स हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। लग रहा था कि आम तौर पर ये बाईपोल्स निपट जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी में टूट पड़ चुकी है और वहां की कैंडिडेट भी भागना शुरू कर दिए। तो बंगाल की सियासत क्या कभी बदल पाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, ममता तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने इन्हें एक अलग गुट का नाम दिया हुआ है। प्रसून बनर्जी विधायक है डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और चंदन घोष चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल इस चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर इस चर्चा में हम लाने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, क्या बंगाल के चुनाव में जाति के सवाल जो उठ रहे हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने के जो सवाल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं? दूसरा सवाल, वोटिंग से पहले कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी क्यों की गई? और जाहिर से बात है, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने, ममता तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस क्यों लिया, यह भी एक सवाल उठ रहा है। और तीसरा सवाल, ममता अपने कुनबे को क्यों नहीं बचा पा रही है? एक महीना बीत चुका है, कुछ ही महीने पहले उनकी पार्टी में टूट पड़ी है, लेकिन बार बार ये दिखाई दे रहा है कि वो अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है। डॉक्टर अजय आलोक, ये बड़ा दिलचस्प टाइमलाइन है। एक क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो गुरुवार को नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस ममता की उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, जो मुख्यमंत्री है, उनसे मिलती है, फिर पर्चा वापस लेती है। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के भीतर टूट मान लेती है इलेक्शन कमीशन, दोनों धड़ों को अलग अलग चुनाव चिन्ह, एन चुनाव के पहले दो धड़ों को अलग अलग चुनाव चिन्ह, अलग अलग नाम दिया जाता है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देती है और उनके उम्मीदवार को भी शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है अचानक। ये टाइमलाइन देखने के बाद क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक दृष्टि से रीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की जगह पर होती तो क्या तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप नहीं लगाती कि जाति हो रही है इस पूरे मामले में?
6: भारतीय जनता पार्टी कभी भी व्यर्थ के आरोप नहीं लगाती है। हम अगर कोई आरोप लगाते हैं तो उसके पीछे तर्क होता है, उसके पीछे तथ्य होते हैं, एविडेंस के साथ लगाते हैं, और इसीलिए हमारे आरोप तमाम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज जो ये जिस कैंडिडेट की बात हो रही है नंदीग्राम की, मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी आपको बताता हूं साहिल जी। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के तहत इस व्यक्ति पे चार मुकदमे हुए थे, चार मुकदमे जिसमें तीन हत्या एक अटेम्प्ट टू मर्डर, चारों पे वारंट निकला 2007 में, ठीक है ना, 2007 में। ये व्यक्ति उस वक्त सीपीएम में था। 2011 के चुनाव में उन वारंटों को तामील नहीं किया गया। 2013 में यही व्यक्ति आ जाता है टीएमसी में। 2016 का चुनाव भी दिया, 2019 का चुनाव भी दिया, 2021 का चुनाव भी दिया, 2024 का चुनाव भी दिया, 2025 का चुनाव भी दिया। बंगाल में पांच चुनाव बीत गए, चारों मुकदमों पे, इन चारों वारंटों पे कभी तामील नहीं हुआ। नियम क्या कहता है चुनाव का? चुनाव का नियम कहता है कि चुनाव घोषणा के साथ लंबित वारंट जितने हों उनको तामील करके वारंटियों को अरेस्ट कीजिए। ये क्लियर कट नियम है, नहीं तो वो अपना बेल दिखाएं। इनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और सरकार इंटरफेरेंस नहीं कर रही है पुलिस के काम में, और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया तो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया। अरे आप सोचिए क्या लॉ एंड ऑर्डर था 2007 से लेकर अभी तक 25-18 साल तक किस बदहाली में बंगाल था, और आज पुलिस काम कर रही है तो ये सरकार की जाति हो गई। अगर पुलिस का काम करना एक अपराधी को पकड़ना जिसके ऊपर लंबित वारंट हो, अगर वो सरकार की जाति है तो ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता पे छोड़िए ना, देश की प्रबुद्ध जनता पे छोड़िए। भगदड़ आप में मची हुई है, हर चीज का दोष उठा के आप हम पे लगा दे रहे हो। गजब साहब, आपकी अपने पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है और आप हमें कह रहे हो कि हम गड्ढा खोद रहे हैं आपके लिए।
5: जो टाइमलाइन मैंने बताई वो आपको बड़ी नेचुरल टाइमलाइन नजर आ रही
6: है। टाइमलाइन एब्सोल्युटली पॉलिटिकल।
5: मेरी टाइमलाइन पर भी बात करिए, क्योंकि आज आखिरी दिन था
6: आपकी टाइमलाइन मुझे बड़ी।
5: गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी को मिलता है, अपना पर्चा वापस ले लेता है, उसी दिन चुनाव आयोग ये कहता है कि भाई दोनों धड़े अलग अलग है, दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। उसके बाद तब तक गिरफ्तारी नहीं होती है जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया जाता, और उसके बाद शुक्रवार को गिरफ्तारी भी हो जाती है। ये भी बड़ी दिलचस्प टाइमलाइन है ना, मेरी टाइमलाइन आपको लगती है बड़ी नेचुरल है, ये नेचुरल कोर्स में ये हुआ ये सारी चीज, हमें कोई चीज अलग तरीके से इसमें पढ़नी नहीं चाहिए, यही आपको लगता
6: है? नहीं, आपकी टाइमलाइन मुझे आपकी टाइमलाइन मुझे नेचुरल नहीं लगती है। आपकी टाइमलाइन मुझे पॉलिटिकल ओरिएंटेड टाइमलाइन, जिसका नेचुरल है कि आपको कहना भी है, विपक्ष की आवाज आपको बनना भी चाहिए, आपको कहना भी चाहिए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कानून का पालन हो रहा है। अब मुझे एक अपनी टाइमलाइन में से एक चीज ऐसा बता दीजिए जिसमें कानून का उल्लंघन हुआ हो। अब मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपको बताऊंगा तो नंदीग्राम से सुबंधु अधिकारी या उनके पिताजी आज से नहीं जीत रहे, पिछले 40 साल से जीत रहे हैं। नंदीग्राम में कौन नेता बनता है, कौन उभरता है, क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शुभेंदु अधिकारी से परिचित न हो, ये तो आप मानेंगे। तो बड़ा स्वाभाविक है कि नंदीग्राम से जब किसी कैंडिडेट को, अगर वो तृणमूल से भी लड़ रहा हो, अगर वो शुभेंदु जी से मिलने गया हो, क्योंकि टीएमसी के 99.9 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 100% लोग शुभेंदु अधिकारी से परिचित है हमारे मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो खुद टीएमसी के थे, नंबर टू थे, जब तक ममता के साथ थे नंबर टू थे टीएमसी में, उनसे लोग मिलने गए और अपने किसी कारणों से उन्होंने अगर पर्चा वापस ले लिया तो इसमें मुख्यमंत्री की सहभागिता कहां होगी? लोग राजनीति में फैसला आपका हित देख के करते हैं या अपना हित देख के करते हैं? बस मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कोई कैंडिडेट वो अपना हित देखेगा या शुभेंदु अधिकारी का हित देखेगा, किसका हित देखेगा? राजनीति में सब कोई फैसला अपने हित के लिए करते हैं, ये राजनीति की पहली बाध्यता होती है कि जिसने अपना हित नहीं देखा वो राजनीति नहीं करेगा, ये सच्चाई तो यही है। लोअर लेवल पे और ज्यादा होता है,
5: आपको
6: उसपे भी उसका भी ठीक है, हमारे ही सर पे छोड़ देना,
5: उसका आपको जवाब देना है स्वयं प्रकाश पुरोहित कि आपको क्या गलत लग रहा है उसमें। वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव के पहले अगर पेंडिंग वारंट है किसी केस में, उसमें गिरफ्तारी होती है, तो आप उसको अलग तरीके से क्यों ढूंढ रहे हैं? लेकिन चूंकि अजय आलोक ने मेरे कहने पर तंज किया है तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा काम है कि आप अगर बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, इतना कोइंसिडेंस राजनीति में कभी नहीं होता है। अजय आलोक जी, आप भी बहुत सालों से राजनीति देख रहे हैं और मैं भी बहुत सालों से राजनीति देख रहा हूं, इतनी समझ तो इस पैनल पे बैठे हुए हर किसी व्यक्ति को है कि इतनी सारी घटनाएं अगर दो दिन के भीतर हो जाती है तो उसका कोई ना कोई, जिसे कोरिलेशन कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के भीतर, कोई ना कोई कोरिलेशन तो जरूर निकलता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित, जरा आप उसका जवाब दीजिए, जो टाइमलाइन आ जाए लोग बता रहे हैं उसका भी जवाब देना आपके लिए जरूरी है।
6: मैंने तंज नहीं किया था, मैंने तंज नहीं किया था साहिल जी, आप पे तंज नहीं किया था
7: साहिल जी। देखिए चार मई को आपके साथ
6: तंज नहीं किया था,
7: अजय आलोक जी भी थे और हमने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे, चुनाव की प्रक्रिया एसआईआर की प्रक्रिया के समय भी हमने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उसकी वजह देखिए, 11 मई 2026 को एक अपॉइंटमेंट होता है, चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर जो थे पश्चिम बंगाल के अंदर, उनका एक्सटेंशन भी किया जाता है 6 महीने का, और उनको बना दिया जाता है अग्रवाल जी को चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो अभी अमित शाह के इशारों पर पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार के चीफ सेक्रेटरी है मनोज अग्रवाल, जो जिन्होंने ये एसआईआर की प्रक्रिया और पश्चिम बंगाल का चुनाव करवाया। अब मैं बात करता हूं वेनिस कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी के लिए। ज्ञानेश कुमार जी ने क्या किया, देखिए 6 जुलाई को उनके पास में एक मैटर आता है, वो मैटर क्या है कि तृणमूल कांग्रेस का अगर कोई एक धड़ा टूट करके कुछ लोग जाते हैं, वो उन पर अपना हक मांगते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के हम मालिक हैं। 6 जुलाई के बाद में उन्होंने इंतजार किया, 7 तारीख को जब सिनेजी नगर और नंदीग्राम का चुनाव डिक्लेयर करती है इलेक्शन कमीशन, तब इनकी रिप्लाई जाती है और उनको टाइम दिया जाता है बीच बीच में बार बार, जो दूसरी पार्टी है उनको बोला जाता है अभी अभी रहने दीजिए, अभी हमको और टाइम दीजिए, 2 बार 3 बार उनको टाइम एक्सटेंड किया गया है। क्यों भाई, क्यों? आप अगर टाइम एक्सटेंशन दे रहे हैं तो एक तरफ एनसीपीआई के जो हमारे सांसद है उनको भी लोकसभा के स्पीकर ने एक्सटेंशन दे दिया है, इतना क्यों प्रेम है बॉबी यकीम से? अजय आलोक जी मिनी पाकिस्तान पर बहुत सवाल करते थे, उनके ऊपर कितनी एफआईआर है। ऋतुव्रत बनर्जी पर अभी बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, ऋतुव्रत बनर्जी पर रेप केस है, उस महिला ने शीलताहानि का आरोप लगाया, उस एफआईआर के बारे में क्या बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या एक्शन ले रही है ऋतुव्रतों पर? और ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, ये जो आंदोलन था 18 से ज्यादा किसानों की निर्मम हत्याएं हुई थी। इस आंदोलन के जो मुखिया थे उसमें शिशिर अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, इन लोगों ने आगे बढ़ करके जब वामपंथी शासन में 4000 हेक्टर जमीन किसानों की छीन करके और गोलियां चला करके छीनने की कोशिश की गई थी, उस आंदोलन के समय में वामपंथी सरकार में रजिस्टर किया हुआ यह केस है। और उस केस के अंदर में आज तक सुनवाई नहीं हुई, 15 साल तक नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी तो मंत्री थे, 10 साल मंत्री थे, इसके पहले भी थे और आज भी आप मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। सोचिए,
8: आप ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं, आप ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं।
7: अरे बीच में मत बोलिए ना, मैं बता दूं।
8: अरे ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं ना।
7: अरे अजय आलोक, अगर ममता बनर्जी आंदोलन में थी किसानों के लिए तो आज भी रहेगी, और उस पर आपको आरोप लगाना तो लगाइए। हम तो आंदोलन से उठे हुए लोग हैं, हमें सिंबल।
8: अरे आप ममता बनर्जी पे आप आरोप लगा रहे हैं,
7: से उठे हुए लोग हैं। अरे सुनिए ना, आंदोलन से उठे हुए जो लोग हैं ना, उनको लिए ममता बनर्जी के बारे में अगर आप सवाल कर रहे हैं, आज सिंबल को लेके ममता बनर्जी के कैरेक्टर को उनको छोटा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि अपना के रास्ते होते हो ना,
5: स्वयं प्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल बड़ा स्पेसिफिक था। एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट होल्ड ऑन, मुझे जरा प्रसून बैनर्जी के पास भी जाना है, क्योंकि आप वो कह रहे हैं कि वो असली टीएमसी है, तो अगर वो असली टीएमसी है तो जिस आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, नंदीग्राम के आंदोलन की, किसानों के आंदोलन की, उसमें तो वो टीएमसी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो असली टीएमसी है। तो अगर उस टीएमसी के किसी कार्यकर्ता पर उस वक्त के सीपीएम के सरकार ने कोई केस किया था तो उसके बारे में प्रसून बैनर्जी की पार्टी ने शिकायत की हुई है, ये असलियत है। लेकिन फिर भी उनके पास जाने से पहले स्वयं प्रकाश जी, जरा आप इस बात का तो जवाब दीजिए ना, जो अजय आलोक ने पूरी टाइमलाइन बताई इस पूरे मामले में कि 2007 में केस रजिस्टर होता है, 2024 तक 3 चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता वारंट। आज जब चुनाव लड़े जा रहे हैं, वो कैंडिडेट हैं, तब चुनाव आयोग के तरफ से जो रिमेनिंग वारंट है वो उसको एग्जीक्यूट किया गया, उनके खिलाफ वो वारंट वैसे के वैसे पड़ा हुआ था, वो एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि वो प्रोसीजर है, वो कह रहे हैं वो प्रोसीजर है इसके लिए किया गया, उसका जवाब दीजिए ना।
7: नहीं,
5: इसका पहले जवाब दीजिए, उसके बाद में प्रसून जी के पास।
7: इंस्टीट्यूशन देश के जितने हैं वो भारतीय जनता पार्टी का पिट्टू बनकर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। गणेश कुमार जी तो पहले कहां थे, अमित शाह जी के यहाँ, उन्होंने गणेश कुमार जी कर रहे हैं, उनके इशारों पर सारा काम हो रहा है, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी प्रणाली गणेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के मैटर में क्या कहा था, आप बताइए कि बाल साहब ठाकरे जी का जो सिंबल है, आप लोग दोनों अपना सिंबल बना लीजिए, शिवसेना के दोनों गुटों को कहा, क्योंकि ये सिंबल तो बाला साहब ठाकरे का बनाया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये स्वयं प्रकाश पुरोहित की या अजय आलोक की आपकी टिप्पणी नहीं है, ममता बनर्जी के द्वारा बनाए हुए सिंबल पर। अभी प्रसून बनर्जी, ऋतुव्रतो जो कल सीपीएम में थे, उस समय में तृणमूल वालों को मार रहे थे, उनके साथ में बैठ करके बहुत आनंद आ रहा है प्रसून बनर्जी।
5: लगता नहीं है कि कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में उतर पाएंगे, क्योंकि अभी अभी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि 3 अक्टूबर तक कांग्रेस के उम्मीदवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह इस वक्त की खबर है, बड़ी खबर है कि नंदीग्राम में कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, जिनको तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन दिया था, उस उम्मीदवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 3 अक्टूबर तक मिलन प्रधान को न्यायिक हिरासत दे दी गई है। 4 अक्टूबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, यानी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक कांग्रेस के उम्मीदवार जेल के भीतर रहेंगे, तब मतलब वो प्रचार ही नहीं कर पाएंगे, और नंदीग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार अब चुनाव प्रचार में नहीं दिखेंगे। इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रजीत, सवाल यह उठ रहा है कि ये जो वारंट है वो अभी एग्जीक्यूट क्यों किया गया है, क्या ये चुनाव आयोग की तरफ से एक रूटीन कार्यवाही की तरफ किया जाता है कि किसी उम्मीदवार पर अगर पेंडिंग वारंट है तो उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, और दूसरी बात, जो उन्होंने पर्चा भरा था उसके एफिडेविट में क्या इस पूरे केस का जिक्र किया गया था? इंद्रजीत,
9: देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और हमने इसकी जानकारी लेने की कोशिश की है, और ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि उनके एफिडेविट में ये कहा जा रहा है कि जो पेंडिंग केसेस है उसका जिक्र किया गया था, और यही कारण है कि उसके बाद इसका पता चला, और पुलिस एक्शन क्यों इतने देर से हुई इसका कोई उत्तर अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं मिला है। हालांकि अब उनको 14 दिन के न्यायिक हिफाजत में भेजा गया, इसका मतलब है 4 अक्टूबर को कैंपेनिंग खत्म हो रही है, 3 अक्टूबर तक वो जेल के अंदर रहेंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे, सिर्फ एक ही दिन का वक्त उन्हें मिलेगा कैंपेन करने के लिए मिलन प्रधान को, तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं। ये जो 4 केस उनके खिलाफ थे, पेंडिंग वारंट थे, उसको एग्जीक्यूट किया गया है और उसको उनको जेल में डाला गया है। तो पूरे जो फेज है कैंपेन का, उस फेज में मिलन प्रधान तो नंदीग्राम में कैंपेन नहीं कर पाएंगे।
5: इंद्रजीत, एक और एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया हुआ है। जो चुनाव आयोग ने 2 गुटों को स्प्लिट की मान्यता दी है और उसके स्प्लिट कहते हुए दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह फिलहाल के लिए इंटरिम ऑर्डर के तहत दिया हुआ है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ममता बनर्जी ने खटखटाया हुआ है। हालांकि यह इंटरिम ऑर्डर है, तो ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोई अर्जेंट हियरिंग की बात भी उसमें कही गई है इंद्रजीत?
9: बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने कहा है कि क्यों, चूंकि ये एक इंटरिम ऑर्डर है, अब इस पे कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस, जब भी वो इंटरिम ऑर्डर इसी का आया परसों, उसके बाद ही ममता बनर्जी के पार्टी ने ये कह दिया था कि ये उनको नामंजूर है। कल्याण बनर्जी जो खुद इसी के सामने जो जब हियरिंग हुई थी वो खुद पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल इरेगुलरिटीज है, कुछ लीगल पॉइंट्स है जिसको चैलेंज करना जरूरी है, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ममता बनर्जी ने। यह एक लॉन्ग पेंडिंग प्रोसीजर होने वाला है, क्योंकि अगर 20 सांसद की बात करें, जो बागी सांसद जो एनसीपीआई के साथ जुड़े हैं, या 60 विधायक जो रेबल कैंप बागी खेमे के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, दोनों को ही चैलेंज करके कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पहले ही पिटीशन डाल चुकी है, तो उसके साथ इस संदर्भ में ये फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है।
5: ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि शिवसेना के मामले में भी यही हुआ था। महाराष्ट्र के भीतर टूट के बाद में एक उपचुनाव आया था और उसके बाद शिंदे गुट ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया, और उसके बाद इंटरिम ऑर्डर के तहत चुनाव आयोग ने तब भी शिवसेना के 2 गुटों को अलग अलग नाम और अलग अलग सिंबल दिए गए थे, जब तक अंतिम आदेश इस पूरे मामले पर नहीं आया। प्रसून बैनर्जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रसून जी, क्या आपको नहीं लगता इस पूरे मामले में, जिस तरीके से ये मामला चल रहा है नंदीग्राम में, खास करके जो टाइमलाइन मैंने आपको बताई और उसके साथ अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी ममता बनर्जी खटखटा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए? आपकी ही पार्टी, आप ही के एक सहयोगी के खिलाफ जो इस आंदोलन में शामिल था, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी, उसके खिलाफ आप गए और आपने शिकायत की और उसके तर्ज पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया?
10: देखिए, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा जहां से बीजेपी का प्रवक्ता, आदरणीय प्रवक्ता, बताया कि बीजेपी ऐसे आरोप नहीं लगाते हैं, जब भी लगाते हैं एविडेंस के साथ लगाते हैं, ऑन रिकॉर्ड इवेंट ऑन सही। अच्छी बात है, आप ही का स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकांत मजुमदार कुछ महीने पहले, चुनाव से पहले, अलीपुरद्वार जिला में ये बताया कि प्रकाश चिक बराइक एक कैटल स्मगलर है, और अगर हम सत्ते पे आएंगे तो प्रकाश चिक बराइक को अंदर कर देंगे, ये गैंग का हिस्सा है और ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग करता है, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप कहीं पे भी देख लीजिएगा है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट मान लेते हैं कि जब भी बीजेपी का, खास करके सुकांत मजुमदार जैसी बड़ी नेता आपका, वो जब बोल रहे हैं कि कोई कैटल स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, तो आपके पास तो एविडेंस था। तो अगर आपके पास एविडेंस था तो इस 3-4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आप ही ने एक ही आदमी प्रकाश सिंह बराइक को दोबारा बीजेपी का राज्यसभा का सांसद बना दिया, और वो भी 3 घंटे के अंदर। हालांकि मैं जानता हूं प्रकाश सिंह बराइक को, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, पहले तृणमूल में थे। सुकांत मजुमदार का जो स्टेटमेंट था उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन प्रकाश सिंह बराइक के बारे में ज्यादातर लोगों का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये मत कहिए कि बीजेपी जब भी बात करते हैं वो एविडेंस के साथ करते हैं।
5: आप जिस जमाने में हैं प्रसून जी, बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, उन पर भी तो आरोप लगाए गए थे ना, आप कहां पर लेके जा रहे हैं इस पूरे डिबेट को? आपको मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है आज की तारीख में?
10: कहीं पे लेके नहीं जा,
5: जो आपके नेता है ऋतव्रत बैनर्जी, उनके खिलाफ भी क्या आरोप लगाए गए थे आपको नहीं पता है? आप कहां, कौन सी डिबेट में लेकर जा रहे हैं? मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, आपकी पार्टी नंदीग्राम के इस पूरे आंदोलन में शामिल थी कि नहीं थी? तृणमूल कांग्रेस के तौर पर आपकी पार्टी शामिल थी कि नहीं थी? थी ना आपकी पार्टी शामिल? और आप उस आंदोलन में जो शामिल थे उनके खिलाफ जाके आप शिकायत कर रहे हैं, या आपकी ये राजनीति आपको कैसे दिखती है, ये मेरा सवाल है प्रसून जी आपसे।
10: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पॉइंट मार रहा हूँ। देखिए इलेक्शन एक्चुअली जो बोला जाता है कि वारंट एग्जीक्यूशन के बारे में, वारंट एग्जीक्यूशन शुरू होता है राउंड द ईयर ही चलता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खास करके इसके ऊपर ध्यान देता है जब से एमसीसी लागू होता है। और एमसीसी कब लागू होता है, जब इलेक्शन का फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है, यहाँ पे 7 सितंबर में हुआ था, तो उसके बाद अचानक इसको अरेस्ट किया गया। डेफिनेटली इसके खिलाफ कुछ गंभीर आरोप है, वारंट ऑफ अरेस्ट था। सवाल ये है कि
5: कौन से तारीख को अरेस्ट किया, 17 सितंबर को इलेक्शन अनाउंस होता है, उनको अरेस्ट किया जाता है 18 अक्टूबर को, एक महीने के बाद।
10: तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर इसको पॉलिटिकली देखा जाए, पॉलिटिकली यह है कि कांग्रेस की तरफ से गलती हुई है, क्योंकि आप किसी कैंडिडेट बनाएंगे पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए, हो सकता है आपका अच्छा नेता है, बड़ी नेता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर करवाइए। ये हमेशा होता है पॉलिटिक्स पे, हम सोच रहे हैं कि एक को बनाएंगे उम्मीदवार उसके खिलाफ केस है, हम पहले हाईकोर्ट से जमानत अपील करेंगे और कुछ करेंगे। मतलब कांग्रेस काफी अंडर प्रिपेयर्ड है बंगाल में, हमेशा अंडर प्रिपेयर्ड रहा, और उसको बना दिया जिसके खिलाफ 2-3 वारंट है, उसने डिक्लेयर ही कर दिया कि हमारे खिलाफ वाला डिक्लेयर तो करना ही, तो नहीं तो कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो पॉलिटिकल
5: जवाब दीजिए, आपकी गलती का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं प्रसून बैनर्जी, आपकी गलती का ठिकरा आप बीजेपी पर फोड़ रहे हैं।
11: नहीं बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये डायमेंशन से जो जो सुसुंदा फॉर सेकेंड
5: प्रसून जी जवाब दे रहे हैं, चंदन घोष जवाब दे रहे हैं।
11: मेरा बोलने का मतलब तो ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है, इतना सारे जो फैक्ट सुने हैं ये फिक्शियस लगता है, जो बोले ये फिक्शियस लगता है, क्योंकि पहला सुनिए, अभी अभी जो स्थिति है इसमें क्या है, इसमें है एक उम्मीदवार कोई एक पार्टी से जो ये चुनाव पे खड़ा हुए वो अपना प्रचार करेंगे, उसी टाइम वक्त तभी मिलता है जब ये विरोधी है तो रूखा हुआ। एकदम सिंपल फैक्ट, कोई एक सिंपल आदमी को जाके पूछिए ये फैक्ट ऐसे ही आएगा। एक बात सुनिए पहले, इसका पहले जब जब जब तब भी आप लोग फायर टूटे नहीं हुए थे, जब आप लोगों का मतलब जो बंगाल का रिजल्ट निकला उसके बाद सुरेंद्र अधिकारी का पहला स्टेटमेंट था ऐसे, ये तृणमूल कांग्रेस को कोई एक पार्टी, ये कांग्रेस बोल के मैं नहीं बोलूंगा ये बात नहीं है, तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे पार्टी करने नहीं दूंगा, उसका सिंबल भी नहीं। आज 4 महीना बाद अगर ऐसा प्रूव करते हैं ऑन द ग्राउंड, इट डज साउंड समथिंग। पॉलिटिक्स इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन में चलती है। आपको ये सब ये पहले आपको यू मस्ट फील, आपको ये सोचना पड़ेगा शुभेंदु अधिकारी मेरा पूरा कनेक्शन है, हाउ दिस मूवमेंट इन 2006 और 2007 जब ये ग्रो किए, पहला ग्रो कैसे किए, रंजन दासमुंशी वहीं पे विजिट किया, अगर वो इतिहास जस्ट मिनट, जितना बड़ा डिस्कशन हो ये साफ से नहीं, मिलान प्रधान ऐसे उसके बाद ममता जी गई थी, तो बात ये बनता है ही इज दैट ओल्ड। अभी 19 इयर्स बाद अगर चुनाव का एकदम मुंह पे वो एक दिन मतलब क्या 3 अक्टूबर मतलब ये इलेक्शन इज ओवर, अगर ऐसा कुछ हालत बंगाल में दिखाई जाते तो ये क्लियर स्टेटमेंट बंगाल में डेमोक्रेसी बिंग स्लो पॉजन, जिसका
10: ये पॉलिटिकल
11: आपका फ्रैक्शन भी इसका साथ
10: है। आज ये हाल हो गया, सुनिए
11: वेरी क्लियर, मेरा कुछ नहीं हाल हुआ।
10: मैंने सुन लिया आपकी बात, आप इसलिए एटीट्यूड की वजह से
11: समाप्त कर दीजिए,
10: आप लोग कानून को
11: प्रसुंदा एक बात बोलूंगा खाली, आप ये सोचिए बंगाल का कांग्रेस इंडिया का कांग्रेस से अलग नहीं है, बंगाल का कांग्रेस के बारे में आप बोलते हैं अंडर प्रिपेयर्ड है, कैसे अंडर प्रिपेयर्ड है, आप कितना प्रिपेयर्ड है 4 महीना के एक टीम लेकर,
12: आपको लगता है
10: दो कैंडिडेट हमने दिया था और अभी भी मैदान में है
12: क्या? तो डीएनए से क्या होगा?
10: डीएनए से कुछ नहीं होता है। हमने दिए हैं रेडी नगर और नंदीग्राम में, किसी ने भागा नहीं,
12: चार महीना का चार महीना का एक पार्टी 140 ईयर्स एक पार्टी के साथ कंपेयर
10: छोटा हो सकता हूँ लेकिन छोटा हो सकता है लेकिन सोच बड़ी
12: है। बात ये है
5: ठीक है चंद्र जो जवाब देने दीजिए।
10: उम्र कम है, उम्र कम है लेकिन
5: जवाब जवाब जवाब जवाब देने
12: चंदन
10: जी। जवाब ये है
12: आप
5: यानी मानसर
10: कितना दिन चलेगा? ये कितना दिन चलेगा? आपका जो हाईकमांड है सुपर हाईकमांड है तो दिल में बैठा रहता है
5: चंदन जी। चंदन
10: होल्ड
5: ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन
12: शुभेंदु अधिकारी
10: चंदन दा कितना दिन चलेगा? ऊपर से ट्वीट करके ममता बनर्जी को सपोर्ट करने में आपका जो ग्राउंड लेवल
5: हुआ है अपने अपने समय पर एक मिनट चंदन घोष चंदन घोष चंदन घोष चंदन घोष चंदन घोष ठीक है योर पॉइंट इज टेकन।
10: आपका आपका सुन लिया चंदन दा, आपका
5: आपका पॉइंट समझ में आ गया है चंदन घोष जवाब सुन लीजिएगा।
10: समझ में आ गया है
5: उनको जरा
10: शांत करिए कि हम चार महीने का पार्टी है चलिए मान लेते हैं चार महीने का पार्टी है लेकिन दो उम्मीदवार खड़ा किया है नंदीग्राम और रेड्डीनगर में, एक भी भागा नहीं, मैदान से भागा भी नहीं और किसी ने अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ है, होगा भी नहीं।
12: अगर होगा
10: तो होगा तो हम लोग जानते हैं कैसे लड़ होता है कानून तरीके से। हम लोग कांग्रेस से ही है चंदन दा कि ऐसे ही छोड़ देंगे।
12: आपका
10: प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि
5: कांग्रेस
10: जब से चंदन दा
5: चुप कराइए प्लीज, जरा दोनों को चुप कराइए प्लीज, जरा दोनों को चुप कराइए प्लीज, जरा दोनों को चुप कराइए प्लीज प्लीज। चंदन जी प्लीज, प्रसून जी प्लीज प्लीज। नो आप, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, अब जरा मेरी आवाज सुनिए आप। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, चार मेरे गेस्ट बैठे हुए हैं, उसमें से तीन गेस्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और अजय आलोक वहां पर हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी यहां पर, प्रसून जी हैं डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस पार्टी से और चंदन घोष है असली कांग्रेस पार्टी से। तीनों कांग्रेस के धड़े एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं और अजय आलोक वहां पर हंस रहे हैं। ये है बंगाल की राजनीति आज की स्थिति में। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित, ये सब होते हुए मुझे आपसे एक बात जाननी है और जरा आप मुझे सही सही जवाब दीजिए, जो सवाल पूछ रहा हूं उसी का जवाब दीजिएगा, यहां वहां मत घूमिएगा। क्या यह बात सही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास ममता बनर्जी एक प्रपोजल लेकर गई थी कि रेजीनगर और नंदीग्राम के चुनाव हम एक साथ लड़ते हैं, आप रेजीनगर से कैंडिडेट वापस लीजिए, हम नंदीग्राम से कैंडिडेट वापस लेते हैं। क्या यह पहले से बातचीत हो रही थी या नहीं हो रही थी?
13: नहीं, देखिए इस विषय में ये सूत्र के माध्यम से जो सब खबर है इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो आप सूत्र के माध्यम की खबर बता रहे, सूत्र का जवाब नहीं है। मगर आपने कहा तीन,
5: चलिए कोई बात नहीं, मतलब आप अगर डिनाई कर रहे हैं, अगर आप डिनाई कर रहे हैं,
13: नहीं नहीं तीन को
5: अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो मेरा दूसरा सवाल है ना, सुनिए तो, अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो मेरा दूसरा सवाल है ना, अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो मेरा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल पूछ रहे हैं।
13: इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस विषय में
5: ठीक है कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि नंदीग्राम के भीतर पहले तीन तीन उम्मीदवार थे, तृणमूल कांग्रेस एंड कांग्रेस पार्टी। जब आपके उम्मीदवार ने पर्चा वापस लिया तब आपने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, अब रेजीनगर में तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार आप लोग भी आपस में तय कर लीजिए ना कि आप एक दूसरे के खिलाफ हैं, साथ में हैं, साथ में चुनाव लड़ेंगे कि अलग चुनाव लड़ेंगे, ये भी आप जरा बता दीजिएगा। और आप अपने कुंबे को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि चार महीने के भीतर आपका एक कैंडिडेट पर्चा वापस ले लेता है, दूसरा कैंडिडेट डिक्लेयर करता है कि मैं वापस लूंगा, दूसरे दिन अपनी भूमिका बदल देता है, क्या हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? उसके बाद अजय आलोक जवाब देंगे, पहले आप बताइए।
13: पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो आपके सामने कि किस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार को ममता बनर्जी के समर्थन देने के एक घंटे के अंदर उठा लिया गया, एक घंटे के अंदर जाग गई पुलिस। तो ये होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में है बंगाल की? शुभेंदु अधिकारी की रिपोर्ट से चल रही है। धोरे ना हो तुले ना हो, अमित शाह जी ने बैठ के बंगाल का चुनाव कराया था। तो मैं बंगाल के चुनाव की बात नहीं करता हूं, आपने तीन कांग्रेस की बात की, एक कांग्रेस जो हमारी आइडियोलॉजी को लेके हम चलते हैं, हमने जब अलग हुए 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सिंबल की मांग नहीं की, ममता बनर्जी आंदोलन उनके विचार नहीं मिले स्थानीय नेताओं से, उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, अपना दल बनाया, सिंबल बनाया अपनी लड़ाई। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीठ में छुरा, ये डी लिखा हुआ है ना आगे में, इनका सिंबल क्या, देखिए इनका सिंबल है लिफाफा, क्योंकि इसके पहले इनका वीडियो आया हुआ है इनके नेताओं का, फिराद हकीम का, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का, ओपन रुपए लेते हुए। तो अब ऐसे जो दलाल टाइप के लोग हैं, ये लोग को लिफाफा सिंबल मिल गया है कि अब हम रुपया लेंगे लिफाफे में। तो इनकी बात करना मैं अभी तक उचित नहीं समझता। इनका जवाब तो पश्चिम बंगाल की जनता देगी। प्रसून बनर्जी अगर अपने इलाके में जाए और कौंसिलर इलेक्शन में खड़े होकर के अपनी जमानत बचा ले तो मैं बात करूंगा। तो ये सब बात में देखिए असलियत है विचारधारा की लड़ाई
14: का। कभी छोड़ता नहीं हूं, मैं अपने इलाके में ही बैठा हूं।
13: अरे हमारे इलाके में बैठे हैं, छाड़े नहीं मालूम साहब तक के, आप तक डीप छाड़े नहीं कह
14: रहे हो। आप मैं आदि चाचर में बैठा हूँ, आप जैसा कलकत्ता में बैठ के मलबा का बात नहीं कर रहा हूँ।
13: सुनिए, कल एक प्रोग्राम में देखा हूँ फिराद हकीम और उमेश राय बीजेपी के जो मंत्री है साथ में, मैं ऑन टीवी चैनल बोल रहा हूँ एक किसी कार्यक्रम में, दोनों साथ में है। मेरी बात सुनिए, तृणमूल के लोगों को 60-70 लोग अपनी पीठ बचाने के लिए चले गए हो और बाकी कर्मियों को 14,000 कर्मी जेल में है, एफआईआर है, शर्म नहीं आती है? ऑफिस में बैठा हूँ, क्या किया कर्मियों के लिए, कितने कर्मियों की
14: जेल में जा नहीं पा रहे हैं, ऑफिस इलाका में रहे तो कहां बैठे, आप तो घर में जाके बैठो क्या?
13: कितने कर्मियों की जेल करवाई है ऋतु व्रत?
14: आप तो घर में जाके बैठो क्या? ऑफिस में है तो कहां पे
13: अपने द्वारा
14: कहीं कभी कर रहे हैं? आप आइए, आपका बजाते हैं यहाँ पे
15: टीएमसी का झगड़ा।
14: आप आइए, आपको बजाते हैं यहाँ पे।
15: चला एक मिनट, एक एक मिनट, स्वयं प्रकाश जी एक मिनट, स्वयं प्रकाश जी ठीक है ठीक है ठीक है। आपके लिए चुनाव का मैदान है नंदीग्राम में नहीं, लेकिन रजी नगर में आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे के सामने लड़ लीजिएगा, पता चल पाएगा कि कौन से तृणमूल कांग्रेस को कितने वोट पड़ते हैं। इस उपचुनाव में यह साफ हो जाएगा कि कौन सी तृणमूल कांग्रेस पार्टी असली तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। चांद कराइए जरा प्लीज, इन्हें प्लीज प्लीज प्लीज, ये बंगाल की राजनीति में किसी को छुप कराना बड़ा मुश्किल हो गया आज की स्थिति में। अजय आलोक जी आप बड़े स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए दोनों टीएमसी के धड़े पहले एक दूसरे आपके खिलाफ थे, अब देखिए एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ये यहां तक पहुंचा दी है राजनीति। अभी
6: देख लीजिए, अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह का समर्थन दिया था नंदीग्राम में, अब समझ में आ गया ना ममता जी ने? यही बात तो मैं कह रहा हूं, रेजी नगर में आज सुबह से फिर ब्लेम गेम शुरू हो गया था कि बीजेपी के कहने पर रबीउल चौधरी ने नामांकन वापस ले लिया, आज रबीउल चौधरी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा कहां से आ गई? अब तमाम न्यूज चैनल जो चला रहे थे कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर रेजी नगर से भी कैंडिडेट ने नामांकन वापस कर लिया, अब क्या बोलेंगे वो लोग? अरे सब कांग्रेस पार्टी इनहेरेंट वीक पार्टी है, ना होमवर्क करती है ना कुछ करती है, खाली ब्लेम गेम करना है, आरोप लगाना है, झूठे आरोप। आपको याद नहीं 2026 चल रहा है, ले चलता हूं जून में, याद कीजिए जून में राज्यसभा चुनाव क्या हुआ था, राजस्थान मीनाक्षी नटराजन कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट में उनकी राज्यसभा की उम्मीदवारी चली गई थी, तब भी कांग्रेस ने इल्जाम लगाया चुनाव वो गड़बड़ कर रहा है, बिक गया है, ये अपना होमवर्क करते नहीं हो, काम करना आता नहीं, चुनाव लड़ना आता नहीं है, झूठ मूठ का भारतीय जनता पार्टी, आप भारतीय बीजेपी से लड़ने लायक ही नहीं हो।
15: आप बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं
6: लायक ही नहीं हो
15: आप बेसिकली।
6: दूसरी बात, जनता की ठिकरा हम पे मत फोड़िए भाई साहब,
15: आरएसएस है,
6: बीजेपी
15: नहीं है। ठीक है, आप बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की कैंडिडेट को, जो तैयार हो गई थी कि चुनाव लड़ना है बीजेपी के खिलाफ में नंदीग्राम की सीट पर, जहां पर शुभेंदु अधिकारी जीत चुके हैं, 10,000 वोट से जीते थे पिछले चुनाव में, वहां पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी, पर्चा भर दिया था, सब कुछ कर दिया था, उन्हें प्यार से बस समझा दिया बुला के कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जनता के फैसले के खिलाफ क्यों जा रहे हो, और वो अपने आप मान गई तुरंत कि नहीं नहीं आप मुझे चुनाव मैदान में नहीं उतरना है। इसी तरीके से हुआ है ना, मतलब आप उन्होंने एकदम शांति से उनको समझा और वो मान गई तुरंत, ऐसा ही हुआ ना?
6: तो लगता है मुझे तो
15: यही होता है ना राजनीति में,
6: मुझे तो उल्टा लगता है, नहीं नहीं मुझे उल्टा लगता है, हाँ। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी, हाँ। मुख्यमंत्री जी की छवि है नंदीग्राम और उसके इलाकों में, वो कैंडिडेट तैयार होने के बाद उनका आशीर्वाद लेने गई होगी और उन्होंने कहा होगा कि तुम बिल्कुल मजबूती से लड़ो, तब उसको समझ में आया होगा कि नहीं लड़ना चाहिए, तो उसने खुद जाकर वापस ले लिया। राजनीति में लोग अपना हित देखते हैं पहले,
15: अच्छा वो डर के वापस ले लिया।
6: कैंडिडेट ये सोच के अपना नामांकन वापस नहीं लेगा, डर के नहीं, अपना हित में,
13: क्योंकि आपने अपना हित लंबी राजनीति जैसे आप जेडीयू से आए हैं बीजेपी में अपना हित देखकर।
8: अरे मेरे हित का छोड़िए ना, मेरा हित तो है ही, मैं तो कहा था पहले
13: व्यक्ति का छोड़िए,
15: किसी की पॉलिटिकल यात्रा पर व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिएगा प्लीज।
13: नीतीश बाबू की याद दिला दी आपको,
8: टेंगा की तरह इधर बैगन के ढंडा की तरह घूम रहे हैं।
13: अभी नीतीश बाबू आपको ठेगा दिखाने वाले हैं, तैयार रहिए। आप जो छटपटा रहे हैं ना, केंद्र में जो सीट चल रही है आपकी, जैन जी जो जाग गया है,
15: ये चलिए बिहार की चर्चा कभी और कर देंगे स्वयं प्रकाश जी।
8: अभी कांग्रेस चर्चा की बात नहीं
13: है, ये तो राष्ट्रीय पार्टी है ना,
15: फिलहाल पार्टी की चिंता करिएगा। आज की स्थिति में कौन सा तृणमूल कांग्रेस का धड़ा है वही समझ में नहीं आ रहा,
8: कुछ नहीं हो सकता है।
13: इनके जो कुकर है सभी राज्यों में,
15: चलिए
13: वो तो बताने पड़ेंगे ना, ये बहुत बड़ी राजनीति
8: में।
15: चलिए चंदन घोष कुछ कहना चाह रहे हैं, चंदन घोष कुछ कहना चाह रहे हैं, चंदन घोष जल्दी से आपका जवाब।
12: इतना इतना सारे बात आपका सुने अलग जी, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा ये बीजेपी अभी का जो बीजेपी है, आज का जो बीजेपी है वो क्या है। आप इतना बड़ा बड़ा बात कहते हैं लेकिन ये बीजेपी क्या है देख लीजिए। लोकसभा का जितना सारे मेंबर्स है, लोकसभा के जितना सारे मेंबर्स है, ये मेंबर्स 67% एक्स कांग्रेस, इसे कांग्रेस हो या बीजेपी, 62% बंगाल
15: का वीडियो चला गया,
12: पसुंदा बैठे है यहाँ पे, पसुंदा यहाँ पे बैठे हैं, पसुंदा ये पसुंदा आपका कैलकुलेशन थोड़ा बता दीजिए। 62% अभी का जो बीजेपी जो सरकार बनाया जिसके एमएलए है एक तृणमूल एक कांग्रेस पसुंदा को लेकर, मेरा बोलने का मतलब ये है जो आप सोचते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ये बीजेपी का अपना प्रोडक्ट नहीं है।
15: चंदन घोष आपका वीडियो नहीं आ रहा है, जरा चंदन घोष को वीडियो लेकर आइए, उसके बाद जरा उनके पास चलेंगे। लेकिन जल्दी से मुझे जरा तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों से पूछना है कि अभी असली लड़ाई किसके किसकी खिलाफ होगी यहाँ पर, क्योंकि अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे 2026 में, उसमें शुभेंदु अधिकारी 10,000 वोट से वहां से चुनाव जीते हैं, काफी जबरदस्त लड़ाई वहां पर हुई थी। शुभेंदु अधिकारी को 1,27,301 वोट पड़े थे, जबकि पवित्र कार जो तृणमूल कांग्रेस के वहां के उम्मीदवार थे उनको 1,17,636 वोट पड़े थे। तो अब तो स्वयं प्रकाश जी आपका तो कैंडिडेट है नहीं वहां पर, कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट है वो तो जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे और आखिरी दिन शायद बाहर निकल कर आ जाए, एक दिन भी प्रचार करने को मिले नहीं मिले। तो क्या लगता है आप असली आप इनको ही समर्थन दे दीजिए प्रसून बैनर्जी की पार्टी को, वो भी तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, वही बचे हैं बेसिकली।
13: देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति चल रही है चार महीने से यहाँ के लोग देख रहे हैं और बंगाल की जनता देख रही है। ये जो डर है ना उठा लेना कांग्रेस के उम्मीदवार को, ये डर है इनका, इस डर की वजह से तो उठाया है कि ममता बनर्जी के समर्थन देते ही जो कांग्रेस के वोट है 10,000 की मार्जिन खत्म हो गई, तो सीधा सीधा गणित है, इस पे कुछ पूछने की बात नहीं है, ये हारे हुए हैं। अब सोचिए उम्मीदवार कौन है, सबसे बात
15: नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: आगे आगे करेक्ट
4: करेक्ट
5: मिल गया।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबां केसरी।
4: There is a very famous quote ki history repeat itself.
5: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
6: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
5: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: बंगाल में उपचुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन दो सीटों पर सियासत का ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसने चुनावी मैदान से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। 18 सितंबर नंदीग्राम में ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी से पहले उनकी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के क्राइम के पुराने पन्ने शुभेंदु की पुलिस ने पलट दिया और ममता के समर्थन के महज चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सियासी पटकथा एक और जगह लिखी जा रही थी। रेजी नगर सीट पर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। नॉमिनेशन वापस लेने की बात करने वाले रबीउल आलम चौधरी ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो उपचुनाव लड़ेंगे लेकिन शर्तों के साथ।
1: ভেবেছিলাম যে এই অবস্থা দলের এই অবস্থা নতুন প্রতীক্ষা, তার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা নিয়েছিলাম। এখন আমরা এই নতুন প্রতীকে মানুষকে বুঝিয়ে ভোটটা করা।
0: एक तरफ नाम वापसी, दूसरी तरफ यू टर्न। जिस चुनाव में अभी वोटिंग भी नहीं हुई वहां उम्मीदवारों के फैसले ही सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये महज इत्तेफाक है या बंगाल में कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है। क्या नंदीग्राम और रेजीनगर में उम्मीदवारों का नाम वापस लेना सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है? क्या बंगाल में उपचुनाव की लड़ाई अब सीटों से आगे बढ़कर राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है? आखिर इन दो सीटों पर उपचुनाव की नौबत क्यों आई? अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं।

0: बंगाल में उपचुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन दो सीटों पर सियासत का ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसने चुनावी मैदान से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल मचा दी है। 18 सितंबर नंदीग्राम में ममता बनर्जी की पार्टी की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे ने नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी से पहले उनकी शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात हुई। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के क्राइम के पुराने पन्ने शुभेंदु की पुलिस ने पलट दिया और ममता के समर्थन के महज चंद घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सियासी पटकथा एक और जगह लिखी जा रही थी। रेजी नगर सीट पर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। नॉमिनेशन वापस लेने की बात करने वाले रबीउल आलम चौधरी ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन शर्तों के साथ।
1: ভেবেছিলাম যে এই অবস্থা দলের এই অবস্থা নতুন প্রতীক হ্যান্ডার, তার এই জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা নিয়েছিলাম। এখন আমরা এই নতুন প্রতীকই মানুষকে বুঝিয়ে ভোটটা করা।
0: एक तरफ नाम वापसी, दूसरी तरफ यू टर्न। जिस चुनाव में अभी वोटिंग भी नहीं हुई, वहां उम्मीदवारों के फैसले ही सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बन गए हैं। अब सवाल उठता है कि ये महज इत्तेफाक है या बंगाल में कोई बड़ा सियासी खेल चल रहा है? क्या नंदीग्राम और रेजी नगर में उम्मीदवारों का नाम वापस लेना सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है? क्या बंगाल में उपचुनाव की लड़ाई अब सीटों से आगे बढ़कर राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है? आखिर इन दो सीटों पर उपचुनाव की नौबत क्यों आई? अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों सीटें 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद खाली हुई। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी और रेजीनगर से हुमायूं कबीर ने जीत दर्ज की थी। दोनों नेताओं ने दो दो सीटों से चुनाव जीता और बाद में एक एक सीट छोड़ दी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम छोड़कर भवानीपुर अपने पास रखी, जबकि हुमायूं कबीर ने रेजीनगर छोड़कर नाउदा सीट अपने पास रखी। इसी वजह से दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 6 अक्टूबर को मतदान और 9 अक्टूबर को मतगणना होनी है, लेकिन इन दोनों उपचुनावों का महत्व सिर्फ दो सीटों को भरने तक सीमित नहीं है। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद ये दोनों सीटें बंगाल की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में एक अहम चुनावी परीक्षा बन गई है। नंदीग्राम बंगाल की सियासत का वो अध्याय है जिसे मिटाकर कोई नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। 2007 का भूमि आंदोलन, तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ विरोध और उसी आंदोलन से ममता बनर्जी के राजनीतिक उभार को ताकत मिली। कभी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी इसी राजनीतिक संघर्ष के सहयोगी थे, लेकिन वक्त ने करवट ली, रिश्ते बदले और नंदीग्राम दोनों नेताओं के बीच सियासी प्रतिष्ठा का मैदान बन गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। 2026 में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से जीत दर्ज की, लेकिन भवानीपुर अपने पास रखने के बाद ये सीट खाली हो गई। अब सवाल है कि नंदीग्राम में होने वाला उपचुनाव क्या उस राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय बनेगा, या फिर पुराने प्रतीकों और पुराने संघर्षों के बीच मतदाता कोई नई कहानी लिखेंगे? इतिहास रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जरा देश की बारात हमेशा वर्तमान में लिखी जाती है। वहीं रेजी नगर की लड़ाई सिर्फ पार्टी की नहीं, पहचान की भी है। तो बंगाल में नंदीग्राम और रेजी नगर की कहानी अब सिर्फ दो सीटों की कहानी नहीं रह गई है। एक तरफ इतिहास का बोझ है, दूसरी तरफ भविष्य की चुनौती। एक तरफ पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का विवाद है, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने से पैदा हुए सवाल। एक तरफ सत्ता का दावा है, दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप है। लेकिन इन तमाम सियासी शोर के बीच एक आवाज ऐसी है जिसे दबना नहीं चाहिए, वो आवाज है मतदाता की। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर आवाज किसी मुख्यमंत्री की नहीं होती है, किसी मंत्री की नहीं होती है, किसी पार्टी अध्यक्ष की भी नहीं होती है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव

0: हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआईस को आधुनिक बनाया जा रहा है।
1: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल में, क्योंकि डूसू चुनाव पर भी चर्चा होगी। डूसू चुनाव में क्या एबीवीपी बाजी मार रही है, और अगर मार रही है तो जंतर मंतर के आंदोलन का क्या हुआ। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर किया कब्जा। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत। एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल उपचुनाव में पुलरामा रेजीनगर से नाम वापस लेने वाले ममता के उम्मीदवार ने फिर लिया यूटर्न। पुलिस से मांगी सुरक्षा। नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर खड़ गए राहुल। ममता का हल्ला बोल।

पंजाब में टमाटर बनाम टमाटर की जंग में बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू को पुलिस ने हिरासत में लिया। भगवंत मान के काफिले के सामने टमाटर लेकर आए थे, कल बटाला में काफिले पर हमले का लगाया आरोप। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, आत्मनिर्भरता का दिया मंत्र, कहा सूरज भी हमारा हो, समंदर भी हमारा, नाव भी हमारे, नाविक भी हमारा। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, पेपर लीक परीक्षा, रोजगार पर जेन जी से चर्चा, पुलिस की कथित शर्तों पर सियासत तेज।

0: नमस्कार, मैं हूं राकेश ढोंडियाल और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। जेन जी की सियासत, राहुल गांधी का युवा कार्ड और डूसू में एनएसयूआई का सुपड़ा साफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के सियासी दावों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी का छात्र संघ एबीवीपी ने तीनों ही पदों पर कब्जा जमाया तो कांग्रेस का छात्र संघ एनएसयूआई का खाता तक नहीं खुला, जबकि उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में चला गया। जिस युवा पीढ़ी की आवाज बनने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, उसी के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक में एनएसयूआई क्यों पिछड़ गई? राहुल गांधी का जेंजी नैरेटिव कैंपस में वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाया? क्या एनएसयूआई छात्रों के असल मुद्दों से कट गए, या फिर जेंजी की सियासत को समझने में कांग्रेस से कोई बड़ी चूक हुई है? क्योंकि नई पीढ़ी सिर्फ चेहरे नहीं देखती है, काम का हिसाब किताब भी मांगती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी कि डूसू चुनावों का नतीजा पूरे देश की जेंजी का फैसला भले ही ना हो, लेकिन कांग्रेस के छात्र संगठन के लिए आत्ममंथन का अलार्म जरूर है। तो सवाल यह है, राहुल गांधी की युवा राजनीति में आखिर वो कौन सी कड़ी कमजोर पड़ गई जो छात्रों का भरोसा वोट में बदल नहीं सका? अब आज राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे में वहां से क्या बयान आते हैं इस पर भी नजर रहेगी। युवाओं के बीच में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक सभी युवाओं के मुद्दों को समझ रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के दावे सिर्फ हवा हवाई है? क्या बीजेपी ही युवाओं की असली आवाज है? आखिर डूसू चुनावों के नतीजे क्या कहते हैं? आज इन्हीं के सवालों के इर्द गिर्द बहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट।
1: राहुल गांधी की छात्रों की गूंज दिल्ली यूनिवर्सिटी में खो गई। इंदौर में राहुल के कार्यक्रम में आज छात्रों का जमावड़ा है, लेकिन दिल्ली में छात्रों ने कांग्रेस के छात्र संघ एनएसयूआई को नकार दिया। डूसू में एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने अपना दबदबा दिखा दिया।
2: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
3: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो, और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
4: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटर से जीता हूँ।
1: डूसू चुनाव में एबीवीपी ने तीन पदों पर जीत हासिल कर ली है। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के यश डबास ने एनएसयूआई के विजय शंकर मीना को हरा दिया। सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह विजयी रहे। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत हासिल की। ये सिर्फ एक छात्र संघ चुनाव का नतीजा है, ये छात्रों के बीच कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है।
5: मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया ना कि देश का युवा और खास करके यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं उन्होंने अपना मत दिया है, अपना आवाज, अपना विचार को क्लियर कट दे दिया है।
1: जिस जेन जी को साधने के लिए राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे, जिस युवा आक्रोश को कांग्रेस अपना सियासी ताकत बनाना चाहती थी, उसी युवा मतदाता ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कांग्रेस के छात्र विंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया। छात्रों के बीच पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी ने 17 जून को कोटा से छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये कार्यक्रम देहरादून, प्रयागराज, पुणे में हो चुका है, आज इंदौर में है। राहुल गांधी लगातार छात्रों के बीच इस कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ हवा बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जहां राहुल गांधी रहते हैं वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने उन पर भरोसा नहीं जताया। तो क्या राहुल गांधी का छात्रों की गूंज वाला नैरेटिव डूसू चुनाव में गूंज पैदा नहीं कर पाया? दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू चुनाव में हॉस्टल, कैंपस सुरक्षा, फीस, परीक्षा और छात्र सुविधाओं जैसे मुद्दे भी अहम रहे, लेकिन NSUI इन मुद्दों को वोट में बदलने में नाकाम रही। डूसू के नतीजे के जरिए बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ABVP को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ये जीत युवाओं के नेशन फर्स्ट की नीति में अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि ABVP छात्र हितों, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ इसी समर्पण से कार्य करती रहेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद देश की सियासत में काफी उतार चढ़ाव रहा है। जो आंदोलन नीट परीक्षा लीक के खिलाफ शुरू हुआ वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ही खत्म हुआ, लेकिन सियासत में युवाओं का स्पंदन पिछले चंद महीनों में बढ़ गया है। विपक्ष की धार को कुंद करने के लिए PM खुद मोर्चे पर उतर आए, छात्रों से लगातार संवाद बनाए हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता युवाओं के बीच जा रहे हैं।
6: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: वहीं यूपी चुनाव से पहले CM योगी ने 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है।
7: 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: मोदी योगी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, राहुल छात्रों के बीच आवाज उठा रहे हैं, लेकिन युवा वोटर आखिर किस आधार पर अपना फैसला कर रहा है? क्या NSUI जमीन पर छात्रों का भरोसा जीतने में नाकाम रही? क्या राहुल गांधी की अपील संगठन की कमजोरी को ढक नहीं पाई? डूसू का संदेश साफ है, जिनजी किसी की अस्थाई सियासी जागीर नहीं। नारा कितना भी ऊंचा हो, अगर कैंपस में भरोसा कमजोर है तो चुनावी नतीजा पूरी कहानी बदल सकता है। आज तक ब्यो।
0: इन नतीजों पर बीजेपी की तरफ से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं।
8: चंड बहुमत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में मिली है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है। यह जनादेश बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र, देश का युवा, वो राष्ट्रवादी विचार के साथ प्रचंड बहुमत के साथ खड़ा है, वो परिषद के सेवा भाव के साथ खड़ा है और वो नकारात्मकता, नेगेटिविटी की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है। परिणामों में एक बड़ी विशेष चीज हुई है, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके छात्र संगठन NSUI को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक बड़ा शून्य देने का काम किया है और जिस पद पर अभाविप नहीं भी जीत पाया वहां पे भी छात्रों ने NSUI को पसंद ना करके इंडिपेंडेंट के साथ जाना प्रेफर किया। यह साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी की जो झूठ, फरेब और प्रोपागेंडा की राजनीति, देश के युवाओं के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की जो राजनीति लंबे समय से चल रही थी, उस राजनीति की दुकान का शटर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने डाउन कर दिया है। यह एक बहुत बड़ा जनादेश है। दिल्ली विश्वविद्यालय मिजाज बता रहा है वो देश के छात्रों का, देश के युवाओं का मिजाज है, और ये मिजाज राहुल गांधी की नेगेटिविटी की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करने का मिजाज है। ये जनादेश राहुल गांधी की राजनीति को कैंसिल करने का, प्रोपागेंडा की राजनीति को कैंसिल करने का जनादेश है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह था, जिस लिटमस टेस्ट को राहुल गांधी ने बुरी तरीके से फेल कर लिया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए आज का दिन एक रियलिटी चेक।
0: और हल्ला बोल में खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थ यादव, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जुड़े हैं। हमारे साथ एबीवीपी प्रवक्ता अर्जुन आनंद जुड़े हैं। एनएसयूआई प्रवक्ता राहुल सिंह काजला हमारे साथ हैं। एआईएसएफ कन्वीनर मोहित हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक रोहित सिंह हमारे साथ हैं। लेकिन आलोक शर्मा जी, आज चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं कि छात्रों की गूंज का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, जो प्रभाव है, वो तो इन्हीं इलेक्शंस में दिखना था लेकिन दिखाई नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन छात्रों ने, इन स्टूडेंट्स ने आपको रिजेक्ट किया? रिजेक्शन के प्रमुख कारण आपको क्या लगते हैं?
9: देखिए, मुझे लगता है कि छात्रों की अपनी सोच है। एक कारण तो यही है कि उनको उन्होंने किस रूप में देखा, लेकिन छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है वो अपने आप में सफल रहा और उसने ही एक ट्राइबल को जिस तरह से हमने मौका दिया, हो सकता है कि बहुत सारे कारण इस तरह के रहे हों, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी फाइट हुई और एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर लड़ाया। बहुत अच्छी फाइट हुई, 18 राउंड तक वो आगे रहे। आखिर के 2 राउंड में केवल मात्र वो 1000 वोट से हारे हैं, उसका क्या कारण है क्या नहीं है उसके भी जांच की और आकलन की आवश्यकता है। हम जरूर आकलन भी करेंगे और सोचने की बात है कि 18 राउंड तक आगे रहने के बाद क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, ये बहुत सोचने की बात है। और जहां तक बात
0: आपकी, इस बात में कुछ संदेह झलक रहा है आलोक जी?
9: देखिए, मैं तो फैक्ट्स केवल सामने रख रहा हूं, और कि क्या 18 राउंड तक हम आगे रहे कि नहीं रहे, क्या ये गलत है? मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। दूसरी चीज है कि रियल इश्यूज जो स्टूडेंट्स के थे वो एनएसयूआई ने पूरी तरह से फोकस किए। सत्यनिकेतन जैसी घटना इतनी बड़ी घटती है और उसके बावजूद अगर एबीवीपी जीतती है तो सवाल खड़ा होता है कि भाई या तो हम उसको, अपनी जो बात है उसको हम वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और आगे और अच्छा लड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर हम इसमें काम करेंगे, एनएसयूआई काम करेगी। जो छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे, चाहे वो जेंजी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो हॉस्टल का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का हो, इन तमाम मुद्दों को एनएसयूआई उठाएगी। और अभी तो जुमे जुमे कुछ ही घंटे हुए हैं रिजल्ट आए, उसके ऊपर भी आकलन करेंगे कहां कमी रही हमसे।
0: आलोक जी, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि एनएसयूआई के जो साथ में जो काम करते हैं वो कहते हैं कि हाँ, टिकट वितरण में आप लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब इंडिपेंडेंट जो लड़का लड़ा, दीपांशु, मतलब अगर आप उसे टिकट दे देते तो ये तो, मतलब आपकी सीट एक ऐसा लगता कि पक्की थी, लेकिन नहीं दिया आप लोगों ने।
9: देखिए, दीपांशु को राजीव जी हमने प्रेसिडेंट लड़ाने के लिए पहले बात की और उन्होंने प्रेसिडेंट लड़ने से मना कर दिया था। अभी तो एनएसयूआई ने कैसे क्या किया है मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है उस बारे में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किसका क्या रोल रहा है, लेकिन उतना जरूर पता चला है कि उसको प्रेसिडेंट चुनाव की पोस्ट के लिए लड़ाने के लिए ऑफर की थी, जिसको उसने डिनाई कर दिया। और एक बात इसमें, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा राजीव, बहुत छोटी सी। पिछले 15 दिन में 3-4 यूनिवर्सिटीज में चुनाव हुए, एक पौड़ी में हुए हैं जहां से आप आते हैं। पौड़ी में एनएसयूआई पूरी तरह से जीती है। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से एनएसयूआई जीती है, वहां पर एक सीट किसी और को मिली। और उसके साथ साथ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी आसाम में जो चुनाव हुए, पिछले 15 दिन के चुनाव की बता रहा हूं मैं, वहां पर भी आसाम में भी डिब्रूगढ़ में पूरी तरह से एनएसयूआई ने एबीवीपी का सूपड़ा साफ किया है। यहां पर अच्छी फाइट भी है, क्या कारण रहे हैं मैं तमाम चीजें बता रहा हूं कि पिछले 15 दिन में 4 यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए, 4 में से 3 में हम जीते, कहां पर कमी रही है उसको भी आकलन करेंगे। 18 राउंड में जीतने के बाद 2 राउंड में आखिर में क्या हुआ है, किसकी क्या भूमिका है, उसकी भी जांच करेंगे।
0: ठीक है सिद्धार्थ जी, मतलब आखिरी दो राउंड में ऐसा क्या हो गया कि एबीवीपी जीत गई, मतलब इसकी तो जांच होनी चाहिए वो कह रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इसे मतलब आप बीजेपी की जीत तो कम से कम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी चुनाव हुए, वहां पर एनएसयूआई ने एबीवीपी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया।
8: राजीव जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि आज के जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के परिणाम हैं, ये परिणाम बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से एक रियलिटी चेक था, और आज मेरे को आलोक जी की बात को सुनकर लग रहा है ये वेकअप कॉल भी होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को जाग जाना चाहिए, आपको छात्र रिजेक्ट कर दें, आपको छात्र बाहर का रास्ता दिखा दें, और आप राउंड गिन रहे हैं 15 राउंड, 18 राउंड, 16 राउंड। हमारी सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो सेक्रेटरी चुनाव में लड़ रही थी वो पहले समय से आगे थी और पहले समय से आगे चल रही थी। हाँ, प्रेसिडेंट पर फाइट चल रही थी। कौन सा कैंपस कब खुलता है अब मेरे को नहीं पता, आलोक जी को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों का कितनी जानकारी है, पर राउंड से खुलता है। सबसे पहले नॉर्थ कैंपस खुलेगा, फिर आउटर पे जाएंगे, फिर साउथ कैंपस आएगा, फिर कालकाजी कैंपस आएगा। हर कैंपस हर कैंडिडेट के लिए कोई स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है। जो लास्ट कैंपसेस खुले वो हमारे लिए बहुत स्ट्रांग कैंपसेस हैं। उन कैंपसेस का जो परिणाम कॉलेज चुनावों में आया है वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए बड़ा मजबूत आया है। तो मुझे लगता है कि आज ये थोड़ा आत्मविश्लेषण करना चाहिए आलोक जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को, कि जिस झूठ प्रपंच की राजनीति ये लोग कर रहे थे उसी झूठ की राजनीति को एनएसयूआई कैंपस में दोहरा रही थी। वही बातें जो राहुल गांधी अपने पीआर इवेंट्स में बोल रहे थे वही एनएसयूआई कैंपस में बोल रही थी, और उसको छात्रों ने रिजेक्ट किया है। यह पहली बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट्रल पैनल को नहीं देखना चाहिए, जो कॉलेजेस के परिणाम आए हैं वो भी हमारे सामने हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव देश का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव है। अरबिंदो कॉलेज का पैनल 6-0 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीता, भारती 8-0 से जीता, शिवाजी कॉलेज 6-0 से जीता, अंबेडकर कॉलेज 4-0 से जीता, एसआरसीसी क्लीन स्वीप हुआ। सभी कॉलेजेस में एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस नेगेटिविटी की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं उसको छात्र पसंद नहीं कर रहा है। एक तीसरी बात मैं राजीव जी और बोलता हूं, आपने बोला कि अगर जो उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते उनको अगर एनएसयूआई चुनाव में लड़ा देती तो शायद वो उनकी सीट पक्की हो जाती। मैं कहता हूं बिल्कुल इसका विपरीत होता। अगर दीपांशु शौकीन एनएसयूआई की टिकट से चुनाव लड़ते तो वो बुरी तरह हारते। वो इंडिपेंडेंट थे इसीलिए छात्रों ने पसंद किया, क्योंकि परिणामों का एक ही मर्म निकल के आया है कि कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है आज देश की युवा पीढ़ी। वो कांग्रेस को नहीं पसंद करती। विद्यार्थी परिषद 3 पे जीता, पर एक जिस पे नहीं जीता उस पर भी कांग्रेस नहीं जीती, उस पर भी जीता कोई इंडिपेंडेंट। अगर वो कांग्रेस से होते तो वो भी हार जाते। ये जो परिणाम है मुझे लगता है कि ये वेकअप कॉल है, रियलिटी चेक है, लिटमस टेस्ट था।
0: मैं आलोक जी आपसे जवाब दूंगा, सिद्धार्थ ये बताएं कि दिल्ली में जंतर मंतर का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ऐसा लगा कि शायद आपकी सरकार या सरकार समर्थित जो छात्र संगठन उनको बड़ा नुकसान होगा, फिर सत्य निकेतन की घटना हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप जीते और बहुत अच्छे अंतर से जीते, अध्यक्ष पद पर फाइट जरूर थी, तो इसीलिए वो कह रहे हैं इस पर संदेह उत्पन्न होता है।
8: नहीं राजीव जी, मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। छात्र अपना जनादेश दे दे, इनको संदेह होता है, होता रहे। अभी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना जनादेश दिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष पद पर विजय निकल कर आया है, एनएसयूआई का सुपड़ा साफ हो गया, तब क्या करेंगे आप? संदेह करते रहिए। छात्र क्लियर मैंडेट बता रहा है, ये पीआर इवेंट नहीं है राजीव जी। कैंपसिस का चुनाव कैंपस में ये मैंडेट, ये पीआर इवेंट नहीं है। ये पैसों पे बुलाए हुए छात्र नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये रील बनाने के लिए बुलाए हुए लोग नहीं है, ये खाने के लालच में लोग नहीं है। ये क्लियर मैंडेट दे रहे हैं, और देश का युवा, देश का जेंजी आपको कैसे बताएगा कि आपकी इस नेगेटिविटी की पॉलिटिक्स को हम पसंद नहीं कर रहे? कैसे बताएगा?
0: आलोक जी बताए क्यों राहुल गांधी का जो जेंजी नैरेटिव है ये वोट वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहा है आपके लिए?
9: देखिए मैं समझता हूं कि अभी 5 यूनिवर्सिटीज की बात हुई, 3 का मैंने नाम लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज नतीजा आया और पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू का 1 महीने पहले लगभग हुआ था चुनाव, 20-25 दिन पहले 1 महीना हुआ होगा लगभग। 2 ही यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर ईवीएम से चुनाव हुआ है, चंडीगढ़ और दिल्ली, बाकी तीनों में बैलेट पेपर से चुनाव है और तीनों में ही बीजेपी हारी है एबीवीपी। ये फैक्ट्स है सब, मैं कोई फैक्ट गलत नहीं कोट कर रहा हूं, इनको चेक कर लीजिए आप। कौन सा ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम था कि एबीवीपी जीती? भाई 12-13 साल में कोई नया एक कॉलेज बना दिया हो तो उसका नाम बता दें, कोई 2 हॉस्टल खड़े कर दिए हो सिद्धार्थ भाई की पार्टी ने तो उसका नाम बता दें आप, तो मुझे बता तो दीजिए ना कौन सा ऐसा कारण था भाई, रोजगार बहुत ज्यादा मिल गए हो, कैंपस इंटरव्यूज बहुत ज्यादा हो गए हो, क्या कारण रहा था? कोई कारण नहीं है, केवल किस तरह से भ्रमित किया जाए। हमने एक ट्राइबल बच्चे को लड़ाया, बहुत अच्छी फाइट हुई, 18 फेज के बाद हम क्यों हारे, 18 राउंड के बाद उसकी भी जांच करेंगे,
0: ठीक है,
9: सारी चीजों की बात होगी।
0: तो लेकिन ईवीएम की तरफ इशारा कर ही दिया आपने, लेकिन अर्जुन हमारे साथ, अर्जुन आप बताइए एबीवीपी क्यों जीते? वो आलोक जी कह रहे हैं कुछ काम तो आपने किया नहीं।
10: हाँ जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्त छात्र शक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दूसरी बार लगातार जो है वो हम पर विश्वास जताया, और 3 सीटें पिछली बार भी हम जो है जीते थे, और इस बार इनकम्बेंट होते हुए भी 3 ही सीटों पे हम जो है वो जीत के आए हैं। 1 सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो जीते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को ये पचाने में मुश्किल हो, पर मुझे लगता है जो भी विद्यार्थी कैंपस जाता है, जो भी विद्यार्थी कैंपस में पढ़ रहा है, डीयू में विद्यार्थी अलग अलग कॉलेजेस में भी पढ़ रहा है, उसको पता है कि 365 दिन वहां पे एबीवीपी के कार्यकर्ता खड़े रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, पिंक बूथ खोलने की बात हो, चाहे सत्यनिकेतन होने के बाद भी तुरंत उस पर एक्शन लेके जो है धरने पे बैठने की बात हो, एमसीडी के विरोध नारा बुलंद करने, दिल्ली सरकार के विरोध नारा बुलंद करने की बात हो, विद्यार्थी परिषद उसमें सबसे आगे रही है। दूसरी बात, मुझे बड़ा बुरा लगा कि इस जो चर्चा है इसकी शुरुआत बीजेपी और कांग्रेस से हुई, ये बीजेपी कांग्रेस की फाइट नहीं थी, कांग्रेस की हो सकती है, परंतु हमें एक छात्र संगठन के नाते ना हमारी मीटिंग है बीजेपी से कोई लेने देना है, ना हमारी वर्किंग में कोई लेने देना है। ये जीत एबीवीपी के एक एक छात्र कार्यकर्ता की जीत है, और ये जीत डीयू के विद्यार्थियों की जीत है, चाहे वो पिछले वर्ष के हमारे जो कार्यकर्ता हो जिन्होंने मेहनत की, दिन रात लगे रहे, और चाहे वो इस वर्ष में यश डबास हो, चाहे वो रिया बहन हो, चाहे वो यीशु मौर्या हो, और चाहे वो लक्ष्यराज सिंह हो, ये हर एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की जीत है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की।
0: अच्छा ठीक है, मतलब बीजेपी का सर कोई जीत से कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। मैं राहुल आपका रिएक्शन कि इतना माहौल बना, मतलब सोशल मीडिया पर तो कम से कम माहौल दिख रहा था, ठीक है। अर्जुन थोड़ा मैं आ रहा हूं आपके पास,
10: मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं बस एक बात क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1949 में, आपको पता है बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। तो हमारी वर्किंग अलग है, हमारा काम अलग है, राष्ट्रवादी स्वर वो भी बुलंद करते हैं, राष्ट्रवादी स्वर हम भी बुलंद करते हैं, परंतु
0: ये वर्किंग तो स्टाइल पता नहीं है बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है ना फिर जीत का। चलो ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ राहुल, इतना माहौल था, मैं राहुल आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास अर्जुन, अर्जुन तो दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है, बस मैं सिद्धार्थ आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन राहुल मतलब इतना माहौल था, मतलब सोशल मीडिया पर तो ऐसा दिखाई दे रहा था, मतलब जंतर मंतर का इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, फिर सत्यनिकेतन की घटना हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी भी थी, उसको अपने पक्ष में एनएसयूआई क्यों नहीं बना पाए, असली कारण क्या थे?
11: राजीव जी, मैं आपको कारण बताऊं, उसके पहले मैं इस चुनाव में दो जो अनोखी चीज हुई है वो आपको बताता हूं। पहली, विद्यार्थी परिषद ने खुल करके, और फिर से अर्जुन जी ने भी उस बात को दोहरा दिया, बीजेपी से पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि इन्हें बीजेपी का चाल चरित्र पता है कि ये बीजेपी को साथ लेकर के अगर चलेंगे तो छात्र इनका साथ नहीं देगा। दूसरी चीज, एनएसयूआई एबीवीपी से चुनाव नहीं लड़ रही थी, एनएसयूआई चुनाव लड़ रही थी प्रधानमंत्री मोदी से, जिन्होंने एबीवीपी के प्रचार का बिगुल बजाया था 5 तारीख को एसआरसीसी आकर के। एनएसयूआई चुनाव लड़ रही थी उन 1000 प्रोफेसर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से, जिन्होंने जिनकी गैर कानूनी तरीके से भर्ती दिल्ली यूनिवर्सिटी में की गई, वो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। एनएसयूआई चुनाव लड़ रही थी उस पुलिस से, उस प्रशासन से, जो एबीवीपी के समर्थन में जो ईवीएम्स थी उनके ऊपर चिन्ह लगा करके और वोट मांग रहा था। एनएसयूआई चुनाव लड़ रही थी इस पूरे तंत्र से जो एक मैसेज भेजने के लिए डेमोक्रेसी को मारने का काम दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर रहा था। आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या जो क्या जो छात्र हैं, हार गए, हार आप लोगों की हुई है, हार आप लोगों की हुई है, एक रिकॉर्ड मार्जिन से, रिकॉर्ड मार्जिन से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो जीत करके आया है। एनएसयूआई ने पहली बार, आप लोग हिम्मत करते ना, जो आप लोगों ने एक मसल और मनी पावर का जो एक टेम्पलेट सेट किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसको तोड़ने के लिए एनएसयूआई को फक्र है, एनएसयूआई को नाज है कि हमने 1954 के बाद में पहली बार
0: जीत दिखाई दे रही है, निर्दलीय जीता उसमें भी आपको अपनी जीत कैसे दिखाई दे रही है, मतलब
11: क्यों हम चुनाव को सिर्फ इसलिए नहीं लड़ते कि चुनाव को किसी भी प्रकार जीता जा सके, चुनाव जो है वो सभी की आवाज होता है, सभी छात्रों की आवाज होता है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25% स्टूडेंट एसटी कैटेगरी के हैं तो उन 25% स्टूडेंट्स की आवाज आज तक क्यों नहीं स्टूडेंट्स यूनियन के अंदर आई है? 2011 के बाद में एक भी एसटी स्टूडेंट क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डूसू पैनल है उसका पार्ट क्यों नहीं हुआ? उसको टिकट दे करके हमने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो यहाँ पर था उसको बढ़ावा देने का काम किया है, इसमें हमें जीत दिखती है हमारी।
0: ठीक है, मोहित भी हमारे साथ हैं, AISF कन्वीनर है। लेकिन मोहित, आप तो द्विदलीय राजनीति को खत्म करने के लिए आए थे, आपका अलायंस, लेकिन आप तो दूर तक 3 में और 13 में भी दिखाई नहीं दिए, तो आपका विचार, स्टूडेंट्स का विचार क्यों नहीं बन पाया?
12: हालांकि AISF अलायंस में नहीं था, मगर इस दूसरे रिजल्ट के बाद मुझे अफसोस हो रहा है लिंगडो कमेटी के लिए, जिसकी NSUI ABBP ने हर रोज धज्जियां उड़ाई। लिंगडो कमेटी जो ये रूल्स बनाती है कि डूसू इलेक्शंस कैसे होंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी में चुनाव कैसे होंगे, उसकी यहाँ पे ABBP, NSUI या ऐसे अन्य धनबल बाहुबल वाले करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी धज्जियां उड़ाई। जहाँ पे ये रूल होता है कि 5,000 का बजट किया जाएगा, तय किया जाता है, मगर 5,000 से ज्यादा तो इनकी गाड़ियों में एक दिन का पेट्रोल जल जाता है जो इनकी कैंपेनिंग में चलता है। उसके बाद प्रिंटेड मटेरियल बांटना और कभी भी विद्यार्थियों के मुद्दों पे बात ना करके यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स करना, कम्युनल बातें करना, ये NSUI ABBP दोनों ऑर्गेनाइजेशन करते आए हैं। और जहाँ पे बात रही है विद्यार्थियों के मसलों की, वहां पे AISF और अन्य जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो उन मुद्दों को ज्यादा आगे पहली कतार में आके उठाती रही है। हॉस्टल का इशू है, अब ABBP इस साल भी जीती है, लास्ट ईयर भी जीती थी, उससे पहले NSUI थी, लेकिन लगातार NSUI ABBP जीते रहे, मगर आज तक क्या सभी स्टूडेंट्स को वो
0: मोहित आप बता रहे हैं कि धन बल का, मस्कुलर पावर, धन बल का इस्तेमाल कैसे हो, क्या स्टूडेंट्स को खरीद लिया उन्होंने, पैसे दे दिया स्टूडेंट्स को?
12: अरे हॉस्टल में इलेक्शन से एक दिन पहले जब शराब पहुंचती है, जब KFC बंटवाए जाते हैं, जब फ्री DJ पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जब ब्यूटी पार्लर कूपन दिए जाते हैं, जब पब में फ्री एंट्री दी जाती है, तो क्या ये धनबल बाहुबल की राजनीति नहीं है? जब कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर फाड़े जाते हैं नॉमिनेशन वाले डे वाले दिन, क्या वो बाहुबल नहीं है? जब आप अपनी जाति का नाम बोल के ये बोलते हो कि मुझे आप वोट दीजिए क्योंकि आप भी इस जाति के हो और मैं भी इस जाति का हूं, क्या ये जाति जात पात की राजनीति नहीं है? इसलिए विद्यार्थियों के मुद्दे हमेशा से इनके लिए सेकेंडरी इशू रहते हैं, इनका प्राइमरी हमेशा सिर्फ जीतना और वोट बटोरना रहता है। क्या इन्होंने एक बार मेट्रो कंसेशन के बाद बात की? ABBP जीत रही है लगातार, MCD में इनके हैं लोग, दिल्ली में सरकार BJP की है और पूरे देश में भी सरकार BJP की है, लेकिन क्या इन्होंने क्या आज तक ये स्टूडेंट्स को मेट्रो कंसेशन दिलवा पाए हैं?
0: ठीक है,
12: क्यों विद्यार्थी को इतनी महंगी मेट्रो हॉस्टल क्यों नहीं दिलवा पा रहे, जबकि रूसा से जो ग्रांट मिलती है मेंटेनेंस के लिए हर साल, उससे हॉस्टल्स की उसारी की जाती है, की जा सकती है।
0: ठीक है अर्जुन, मैं चाहता हूँ इस पर आप जवाब दें, इस पर पर्टिकुलर सवाल पर आप जवाब दें, फिर रोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, रोहित इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा अर्जुन।
10: मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जैसे कोई यदि हारता है तो एक अगली बार जीतने की एक बहुत पहली शर्त होती है कि उस हार का आप अच्छे से निरीक्षण करें, एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में आप जाएं, परंतु जब आप हारने के बाद भी इतने अहंकार से यह बोले कि या तो EVM खराब थी या डूसू के छात्र ही ऐसे थे जो बिक गए, तो मुझे लगता है यह बहुत बड़े तरीके से यह बताता है कि जो हार रहे हैं वो हार क्यों रहे हैं। हार के बाद कम से कम दंभ नहीं होना चाहिए, हार के बाद कम से कम हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि वोटर मूर्ख है, जो कि ये लोग बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत मतलब बता रहे हैं ये लोग यहाँ पे कि हम हारते क्यों हैं। और जहां तक बात है छात्रों से जुड़े रहने की, वहां पे मुझे लगता है कि पूरे देश में आज के समय में अगर वामपंथी राजनीति का
0: ऐसा तो ठीक है, लेकिन वो पब वब टिकट टुकट भिजवाए, वो कह रहे हैं अपने KFC वेब से खूब खेला।
10: देखिए अगर अगर अगर मोहित जी गए होंगे तो मुझे लगता है इनको, मेरे को भी नंबर देना चाहिए, मैं भी जाने का इच्छुक हूँ, परंतु ऐसी मुझे तो कोई जानकारी नहीं।
0: ठीक है रोहित, अब आपके पास आते हुए कि डूसू चुनावों के जो नतीजे आए हैं, क्या राजनीतिक संदेश यहां से मिला?
13: देखिए कुछ दिन पहले जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष के राजनेताओं ने देश के विद्यार्थियों के आक्रोश के आड़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गणनायक, संविधान और लोकतंत्र के संरक्षक माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक कुत्सित वातावरण तैयार करने का प्रयास किया और भारत में बैठकर दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास किया कि भारत के अंदर छात्रों और नौजवानों का दमन हो रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 1974 से 77 के बीच में यह कुकर्म खुद किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य रात्रि आगे आते हैं, विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान होता है और ठीक कुछ दिनों के बाद जवानों और छात्रों के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग में हुई धांधली के खिलाफ आंदोलन होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर दबाव नहीं बनाते हैं कि वो इस्तीफा दें और झारखंड के नौजवानों छात्रों की समस्या का समाधान हो। अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, डिंपल जी नहीं जाती हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं और नए नवेले राजनेता बनने की मनसा रखने वाले अभिजीत दिपके नहीं जाते हैं, तो देश के नौजवान और विद्यार्थियों को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री को घेरने के लिए एक जाल बनाने का प्रयास किया गया और नतीजा क्या निकलता है। दिल्ली का मतलब पूरा हिंदुस्तान, यहां मेघालय भी है, आंध्र भी है, तेलंगाना भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, पौंडिचेरी भी है, गुजरात भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, सारे प्रदेश हैं देश के। सारे प्रदेश के विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कश्मीर से किशनगंज, गुवाहाटी से गोरखपुर और गोरखपुर से गाजियाबाद, गोपालगंज तक के बच्चे पढ़ते हैं। क्या किया देश के विद्यार्थियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में? देश के विद्यार्थियों ने राष्ट्रवादी विचारधारा से समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो विश्व के छात्रों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके प्रत्याशियों को विजय श्री का तिलक लगा दिया और यह संदेश दिया कि देश का नौजवान और विचारधारा, छात्रों का विचारधारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवाद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रवाद के साथ है। देश में कोई मिलावटीपन नहीं चलेगा। 20 सेकंड और श्रीमान, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं भाई, आप हम लोगों के, धोंदियाल साहब, राहुल गांधी जी कोटा में गए थे छात्रों के गुंज का कार्यक्रम लेके, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव चल रहा था, कांग्रेस पार्टी को कोटा की सर्वसम्मानित जनता ने प्रणाम नमस्कार कर दिया और कहा कि आप चमत्कार नहीं कर सकते हैं, घर जाइए। आज इंदौर में शायद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी छात्रों की गुंज का कार्यक्रम ले गए हैं। 2 साल पीछे चलिए, अक्षय कांति बम कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उसी इंदौर से 45 साल के नौजवान थे, राहुल गांधी ने टीका लगाया था, प्रणाम कर लिया था राहुल गांधी को और भाजपा में शामिल हो गए थे। राहुल गांधी के साथ क्यों नौजवान रहेगा और छात्र रहेगा? राहुल गांधी को चिंता रेहान वोद्रा की है, अखिलेश यादव को चिंता अर्जुन यादव की है, तेजस्वी यादव को चिंता अपने बच्चों की है। देश का विद्यार्थी और नौजवान जानता है कि इस देश का आम नौजवान का चिंता कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी।
14: मैं आलोक जी चाहता हूँ कि इस पर आप जवाब दें। ये उनका विश्लेषण है और वो ये कह रहे हैं कि ये रिजेक्शन सिर्फ दूसरे चुनावों का नहीं, ये रिजेक्शन पूरे देश भर से आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि अलग देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं।
9: देखिए, नॉर्थ ईस्ट के अभी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनको लिंचिंग कर दी जाती है दिल्ली में, क्या? एक मिनट रुको ना भाई, रोहित जी रुको ना यार, एक मंच राजनीतिक मंच थोड़ी ना है। कर्नाटक में राजीव जी को रोकिए भाई जी,
14: अभी उनको सुन लीजिए,
9: रोकिए इनको भाई,
14: आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे, उनका जवाब ले लेते हैं।
9: रोहित जी को रोकिए इनको भाई, राजीव जी रोकिए इनको, ये व्यक्ति ऐसे ही बोलता रहता है, कुछ चुप नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का मॉब लिंचिंग होता है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी वोट दे रहे हैं। मणिपुर में जो 3 साल से हालत है, फिर भी मणिपुर के लोग इनको वोट दे रहे हैं। सत्य निकेतन में बच्चे दबके मर जाएं बिल्डिंगों के, तब भी इन्हीं को वोट दे रहे हैं। हमारे युवा अमेरिका से हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आए, फिर भी युवा इन्हीं को वोट दे रहे हैं। नीट का पेपर आउट पाकिस्तान में थोड़ी हुआ था, वो हिंदुस्तान में थोड़ी ना हुआ था, फिर भी वोट दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा जो हुआ है वो तो चीन में हुआ था, हिंदुस्तान में थोड़ी हुआ था, वो यशस्वी प्रधानमंत्री के यहाँ थोड़ी हुआ था। दुर्भाग्य ये है कि आपके पास तंत्र है, आप तंत्र का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हैं। राहुल गांधी तमाम बीजेपी के जो प्रायोजित लोग हैं उन्हीं को गालियां देते रहते हैं, कोसते रहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं आता। ना रोहित जी ने, ना हमारे सिद्धार्थ जी ने एक चीज नहीं बताई कि हमने पिछले 12 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या काम किया जिसकी वजह से वोट मिली। एक काम नहीं बता सकते ये लोग। टीचर्स की जो भर्ती होती है उसमें धांधली होती है, आरएसएस का पूरा वर्चस्व हो जाता है, आरएसएस पूरी तरह से शिक्षा तंत्र को काबू करके बैठी है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं।
14: आलोक जी देखिए, आपकी बातों में विरोधाभास है, मतलब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि 4 में से 3 छात्र संघ चुनाव में हम जीते हैं, अगर तंत्र उनके नियंत्रण में तो फिर वहां कैसे जीते आप?
9: राजीव जी, मैंने बताया ना, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव है भाई, बैलेट पेपर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं कराया चुनाव? इसका जवाब है किसी के पास?
13: 30 सेकंड मुझे दे दीजिए प्लीज।
9: दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव 1 महीने बाद फिर करा लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ कि इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे।
14: रोहित,
9: दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी को कोसने के अलावा कुछ नहीं आता। दुर्भाग्य यह है कि 150 पेपर लीक होने के बाद भी युवा इनको वोट दे रहा है। दुर्भाग्य ये इतना बड़ा देश के अंदर आंदोलन होता है, लाठियों से डंडों से गुंडे मारते हैं और उसके बाद भी युवा इन्हीं को वोट दे रहा है।
14: ठीक है सिद्धार्थ बताएं, मतलब वो कह रहे हैं सिंपल सा है कि बैलेट पेपर और ईवीएम का सीधा सीधा फंडा है, ईवीएम अगर बैलेट पेपर होता तो कह रहे हैं शायद यहां भी जीत जाते एक तरीके से, ईवीएम को फिर से दोष दिया जा रहा है।
8: राजीव जी पिछले दसियों साल से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ईवीएम से वोट हो रहा है, लगभग पिछले 10 साल से एनएसयूआई एक ना एक सीट तो जरूर जीत रही है, 11 साल बाद ऐसा हुआ है कि बिल्कुल कंप्लीट वाइप आउट इनका हो चुका है। क्या बदला है? ईवीएम बदली है, पहला चुनाव हुआ है। अरे मुझे आज कभी तो शर्म करिए, मेरे को दुर्भाग्य लगता है ये राजीव जी कि आज अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत गया तो पूरे चुनाव पर संदेह है, प्रश्न खड़े हैं, तरीके में गड़बड़ थी, सब कुछ था, और अगर ये जीत जाते तो तब ईवीएम बिल्कुल अच्छी थी, सब बिल्कुल अच्छा था। मैं आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आलोक जी मैं नहीं बोला, आज नया नया हारे हैं, थोड़ा सा सुनने की हिम्मत रखिए। अरे आलोक जी थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए, अभी तो अभी मैंडेट आया, एक घंटा नहीं हुआ।
9: सिद्धार्थ इतना बौखला क्यों रहे भाई?
8: अरे आलोक जी आपको, आलोक जी
9: मोदी सरकार ने अरे भैया जिसकी वजह से वो मिला
8: 40 मिनट पूछते ही रहेंगे क्या? आपको बोलना था, आप 4 मिनट बोले, मेरी बारी है, 2 मिनट पे जवाब दीजिए। आप थोड़ी
14: बोलिए, बताएंगे बताएंगे,
8: आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला आपको। अरे आलोक जी आपके लगातार बोलने से नहीं होगा, एक घंटे पहले छात्रों ने मैंडेट दिया, आपकी दुकान का शटर डाउन कर दिया है, जो झूठ राहुल गांधी पूरे दिन रात बोलते हैं ना, सुबह शाम बोलते हैं, उसका शटर डाउन कर दिया है। आपको नहीं पता कि छात्र संघ के चुनाव में क्या होता है? जो जो राहुल गांधी देश में झूठ बोल रहे थे वही बोल रहे हैं एनएसयूआई नीचे। आज यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस चल गई है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चली है, अगर वहां टीचर्स की प्रोफेसर की भर्ती हुई, एडहॉक व्यवस्था खत्म की गई तो हमारी सरकार आने के बाद करी गई, अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई, पिंक बूथ बनाए गए तो हमारी सरकार आने के बाद बनाए गए। आपने क्या किया साहब? कितने हॉस्टल थे आपके, कितने ग्रांट दिए गए थे? छोड़ दीजिए उस बात को। आज आप आज विद्यार्थी परिषद जीत गया तो संपर्क प्रश्न होगा नहीं, राजीव जी ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला,
14: आपका ये सवाल सुन लिया, उनका जवाब जवाब
9: कुछ भी बोल के चले जाएंगे।
8: ये अभद्रता, इस अभद्रता की डिबेट का स्वीकार नहीं करता।
14: आलोक जी प्लीज, मैं आपको समय दूंगा ना, इसके बाद उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, जो जो आपको झूठ लगेगा बाद में आप बोल दीजिएगा ना, उनको कंप्लीट तो करने दें अभी। सिद्धार्थ
8: देखिए इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, और ये बदतमीजी का तरीका राजीव जी मैं नहीं अपना सकता। मैं एक शब्द नहीं बोला किसी के बीच में, अगर उनके हिम्मत नहीं है सुनने की तो आपको डिबेट को मॉडरेट करना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है राजीव जी, आज विद्यार्थी परिषद जीत गई तो सब सवाल पूछे जाएंगे, आपको जीत को जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो नैरेटिव बनाने की मशीन है वो पहले सेकंड से झूठ झूठ झूठ फैलाने लग जाएगी, पहले सेकंड से ईवीएम, पहले सेकंड से बैलेट, पहले सेकंड से अपना प्रोपेगेंडा, केवल झूठ का नैरेटिव। आज अगर आप जीत जाते तो किसी को जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, ये दुर्भाग्य है। ये जीत है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की, ये जीत है उन छात्रों की जो लगातार स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं और डिलीवर करके दिखाते हैं, ये जीत है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, और जीत है देश में राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी छात्रों की। बहुत प्रोपेगेंडा सुना हमने राजीव जी कि देश का विद्यार्थी, देश का युवा तो दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, उनको सबको मैंडेट से ही तो बताएगा युवा, और मैंडेट उसने दे दिया आपकी राजनीति को रिजेक्ट करके, आपको कैंसिल करके, बाहर का रास्ता दिखा के, शून्य दे के।
14: झूठ बोला गया है उस पर आप काउंटर अपनी बात रखें।
9: देखिए सीधा सीधा सवाल था मेरा कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए क्या चार कदम उठाए गए जिसकी वजह से बच्चों ने एबीवीपी को वोट दिया, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कहीं ना कहीं पैनल इन्हीं का बनता हुआ आ रहा है, हमारा एक या दो कैंडिडेट होता है। अब बात ये आती है कि क्या कोई नया कॉलेज खुला? नहीं। क्या कोई नया हॉस्टल बना? नहीं। क्या कोई एडहॉकिज्म खत्म हो गया? नहीं। क्या यूजीसी ने ग्रांट बढ़ा दी? नहीं।
8: अब आलोक जी मैं भी बोल सकता हूं,
9: कोई तो कारण होगा ना ऐसा, मेरे पास 10 कारण ऐसे हैं कि एबीवीपी या बीजेपी हारनी चाहिए थी, उसका बहुत बड़ा कारण पेपर लीक है, उसका बहुत बड़ा कारण ओएमआर शीट है।
15: आपका कारण ले कौन
9: ओएमआर शीट? अरे सुनो ना भाई, आप इतना बकला क्यों रहे सिद्धार्थ जी?
15: आपको तो छात्र जिता नहीं रहे।
9: अरे भाई सिद्धार्थ जी सुनो ना,
14: सीबीएसई
9: का घोटाला इसी साल हुआ था, एक तिहाई बच्चे उससे प्रभावित थे ग्रेजुएशन के, सीबीएसई के कांड हुआ। मतलब कोई तो कारण ऐसा हो कि बच्चे बीजेपी की तरफ झुकेंगे, हमें तो कोई दिखता नहीं।
14: ठीक है,
9: सत्य निकेतन में बच्चे झुक गए, मर गए दबके, उसके बावजूद एबीवीपी को वोट दे रहे हैं। ओएमआर शीट में पूरा कांड कर दे फिर भी दे रहे हैं, 150 पेपर आउट हो जाए तब भी दे रहे हैं।
15: कमाल है,
9: मुझे लगता है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए पर मोदी जी को जरूर पड़ रहा है।
14: आलोक जी बात आगे, मैं अभ्यर्थी हूँ, स्टूडेंट्स को सुनना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं अर्जुन से पूछ रहे थे। अर्जुन, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार पूछ रहे हैं कि भाई आपने कुछ काम तो किया नहीं, तो आप जीते कैसे? तो इस जीत में इसलिए उनका संदेह है कि इतना कुछ नेगेटिव चल रहा था, पेपर लीक हो रहे हैं, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सत्य निकेतन की घटना, और भी बहुत सारे कारण हैं, फिर जीते कैसे आप?
10: ये सबसे पहले तो ये जीत जो है वो यश डबास की जीत है, यह जीत जो है वो रिया छाबड़ी की जीत है, ये जीत जो है वो लक्ष्यराज सिंह की जीत है, तो कांग्रेस वालों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात कि हमने क्या क्या किया, मैं वो तो बताऊंगा, पर मैं पहले इतना बोलना चाहूंगा कि देखिए कोई भी कार्य की सिद्धि होती है तो वो तीन कारणों से होती है, जिसमें से एक ये होता है दैव, कि जो अपने हाथ में नहीं है वो होता है। दूसरा जो होता है वो होता है पुरुषार्थ, जो अपने हाथ में होता है। तीसरा होता है प्रारब्ध। तो आपका पुरुषार्थ है नहीं, आपने प्रारब्ध कुछ अर्जित किया नहीं, अब जो हो चुका है उस पे झल्लाने से कोई लाभ नहीं है आपको, उसको सहने के उपाय करने चाहिए आपको, कोई थेरेपी वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए। जहां तक बात है कि एबीपी ने क्या क्या किया है, तो हमने पूरे कैंपस में फ्री कैंपस बसेस लॉन्च की है, यू कैंपस, हमने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स का जो फैसिलिटीज है वो उसको बढ़ाया है, हमने पूरा साल और पिछले साल भी इंटर्नशिप्स ऑफर की है जो है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, हमने सेल्फ डिफेंस के नाते जो है मिशन साहसी जो है चलाया है, हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जो है वो सेल लॉन्च किया, और उसके साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉ इंटर्नशिप भी दी इस बार सीएलसी स्टूडेंट्स को। और पूरा साल भर हमारे कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं कैंपसों में, अटल कैंटीन हमने शुरू किया कि फायदे खाना मिले उसके लिए। तो दूसू में विद्यार्थी परिषद जो है अपने लेवल पे जो कर सकता है उसने किया है। कॉलेज में एडहॉक हटे या और कॉलेज बने, या दूसू का मैंडेट नहीं होता है, मैं हमारे कांग्रेस के शिक्षित जो यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं उनको बता देना चाहता हूं, वो दूसू का मैंडेट नहीं होता है। जो दूसू का मैंडेट होता है उस पे ना केवल हम खड़े उतरे हैं बल्कि उस पे मोहर भी लगाई है ईवीएम से। जल रहे होंगे कुछ लोग, जलते रहे, पर ईवीएम से उस पे मोहर भी लगाई है छात्रों ने, और वो गूंज साफ है, बस उस गूंज को सुनने के कान हम लोगों के पास शायद कुछ
14: राहुल
10: के पास नहीं।
14: राहुल, ये शराब की तरफ था, आप बताएं कि क्या ये ईवीएम के साथ खेल कर गए क्या, इसलिए जीत गए?
11: अर्जुन जी, राजीव जी, अर्जुन जी से मैं सवाल पूछता हूँ, जिन स्पेशल बसेस की ये बात कर रहे हैं, जिस दिन वोट पड़ने थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस दिन दिल्ली में बसें क्यों नहीं चल रही थी, स्टूडेंट्स वोट देने क्यों नहीं आ पाए? ये जिन कैमरास की बात कर रहे हैं, 54 कॉलेज तो दूसू के अंडर आते हैं, उनमें हर कॉलेज में कितने कैमराज लगवाए हैं, 20-50 कैमरा लगवा करके ये कैमराज का क्रेडिट ले रहे हैं। इन्होंने पिछले साल तक अपने मैनिफेस्टो में मेट्रो कंसेशन पासिस का जो था वो जिक्र कर रखा था, इस बार वो जिक्र भी इन्होंने हटा लिया क्योंकि ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रॉमिस ये बच्चों के साथ पूरा नहीं कर पाए, ये लोग ईवीएम के ऊपर स्याही लगा के और प्रोफेसर के ऊपर प्रेशर करके कि इसको अगर वोट नहीं दिलवाया तो नौकरी जाएगी तुम्हारी, और ये जो रिसर्च स्कॉलर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको अपने जो उनके गाइड्स हैं उनके द्वारा प्रेशर करवा करके और वोट लेने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, यश डबास का चर्चा कर रहे हैं आपके माध्यम से, मैं आपके जो दर्शक हैं उनको ये कहता हूँ, यश डबास की आप मार्कशीट देखिएगा, 6 में से 4 सब्जेक्ट में वो लड़का फेल हो गया था, वो छात्रों का रिप्रेजेंटेशन करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेकर के, 6 में से 4 सब्जेक्ट में वो लड़का फेल हो गया था। आर्यन मान जो इनके पिछले साल के अध्यक्ष थे, उन्होंने खुले में आकर ये कह दिया कि ये पता नहीं कौन सा संगठन है ये बीजेपी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें जोड़ा नहीं जाए। ये कह रहे थे मैंडेट की बात कर रहे हैं ना, ये दूसू के मैंडेट में से इन्होंने कितना पैसा ऑडिटोरियम बुक कराने के अलावा किसी और एवज में खर्च किया है ये बता दीजिए। जो ये सारे जिन चीजों का क्रेडिट ये एबीवीपी को दे रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाए थे, डूसू ने अपने अपने खर्चे से कोई काम नहीं करवाया। डूसू ने जो पिछले साल इनका मैनिफेस्टो था 11 प्रोमिसेस थे, उसमें से जीरो प्रोमिस पूरा किया था। और जब मैंने इनको डिबेट के लिए कॉल आउट किया चुनाव के पहले, तो ये आ नहीं पाए। इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया, नरेंद्र मोदी को बुला लिया और प्रोफेसर्स तक ये मैसेज पहुंचवा दिया कि अगर नौकरी चाहिए, नौकरी बचानी है, तो इस बार चुनाव तो जितवाना पड़ेगा। पिछली बार जो मार्जिन 16,000 का था, वो मार्जिन इस बार लास्ट राउंड तक आकर के रह गया था। यहां तक तो प्रधानमंत्री जी विजय शंकर मीना से चुनाव लड़ करके जीते हैं।
14: ठीक है, समय बड़ा कम है मोहित, इस बार तो नहीं जीते, लेकिन अब क्या सीखेंगे, मतलब आगे क्या नया करेंगे कि रिजल्ट आपके फेवर में आए?
12: एक तो विद्यार्थियों से यही है उम्मीद, जो जीते हुए संगठन है उनसे यही है कि जो उन्होंने पिछले साल दावे नहीं किए या दावे किए और काम नहीं किया, वो इस बार ढंग से करेंगे। और एबीवीपी जो हमेशा से आरएसएस बीजेपी की दलाली करने के अलावा कुछ नहीं करती, वो इस बार विद्यार्थियों के हक में कुछ तो करेंगे, ताकि अगले साल भी उनको मुंह दिखाना है। और जो बाकी विद्यार्थी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर से वो बेशक किसी को भी वोट दें, लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की, चाहे वो उस वक्त AISF दूसरे पैनल में हो या ना हो, तब वो साथ में आएंगे। और जैसे जंतर मंतर पे हमारे साथ आए थे, जैसे सत्य निकेतन में साथ आए हैं, हर उस प्रोटेस्ट में जहां पे प्रशासन के खिलाफ आपको विद्रोह करना हो या आपको सरकार के खिलाफ विद्रोह करना हो अपने हकों के लिए, तब वो जरूर आएंगे। और मुझे उम्मीद है ये जो एबीवीपी छात्र संघ है, जिस तरह से ये अपनी कॉम्युनल विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से ये जात पात और रीजनलिज्म की विचारधारा को आगे थोपते हैं लोगों के ऊपर, उसको विद्यार्थी एक जरूर खत्म करेंगे।
14: विद्यार्थियों को तो पसंद आ रहे हैं ना, विद्यार्थी तो एबीवीपी को जिता रहे हैं। अर्जुन लास्ट 20 सेकंड बोले, उसे रोहित लाला साहब के पास आऊंगा, लेकिन 20 सेकंड में अर्जुन आप बोले, क्योंकि दोनों तरफ से आपके ऊपर बात की गई। हाँ,
10: निर्मल वर्मा एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उन्होंने कहा था, जनवादी बोलते हैं खुद को लेफ्टिस्ट जो होते हैं, कि जो भारत में जन से जितना कटा होता है ना, वो अपने आप को उतना बड़ा जनवादी कहता है। मैं ये बात अभी बता देना चाहता हूँ आपको, इस साल वोटर टर्नआउट बड़ा है, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 40% से ऊपर वोटर टर्नआउट दिल्ली में बहुत सालों बाद हुआ है। और वो वोटर टर्नआउट किसके फेवर में हुआ है, वो विश्वास करिए, आपको नींद नहीं आएगी, परंतु उस पर विश्वास करिए और फिर आत्ममंथन करिए।
12: बाकी के 50% नहीं,
10: नहीं रोया, रोना नहीं
14: रोना नहीं है, नतीजे आ गए हैं, हर दल उसको अपने तरीके से ले रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में और वहां पर इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट के बीच में एबीवीपी का जीत जाना, उसे बीजेपी तो कम से कम अपने पक्ष में देख रहे हैं कि जो जेंजी है जिसे खिलाफ बताया गया था वो तो साथ बना हुआ है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: चौल में घर छोटे होते थे बट लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे। जिस बच्चे की माँ दूसरों के घर पे काम करके जीवन निर्वाह कर रही थी, उस बच्चे को पैसों के बारे में समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
7: शॉर्टकट्स होते हैं क्या पैसा कमाने?
6: वॉरेन बफे का एक रूल याद कर लिया, रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमने जो अनुभव किया है ट्रेडिंग करके लोगों के घर टूटते हुए देखे हैं, ट्रेडिंग करके घर बनता हुआ बहुत कम देखा है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सरस्वती माता का पूजन रोज करना पड़ता है।
8: There is a very famous quote ki history repeat itself.
9: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
10: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर, उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
9: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर, सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।
11: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

0: नमस्कार, आज तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजीव ढौंडियाल। सबसे पहले आपको सीधा इंदौर लिए चलते हैं, जहाँ पर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं।
1: 13% रोक लग जाती है और कोर्ट का बहाना देकर सरकार हर बार रोकती। कोर्ट ने कई बार कमेंट किया कि आप अपना रिजल्ट क्यों नहीं देते, अपना ही कानून क्यों लागू नहीं करते। सर, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था, तब से लेकर आज तक 13% होल्ड है। हम लोग 8 साल से ओवर एज हो गए हैं और यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट हैं पूरे प्रदेश में कि सबकी स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति खराब हो गई है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, नियुक्ति कब होगी। हम जैसे लोग SDM DSP बन सकते हैं, लेकिन आज बेरोजगार बैठे हुए। मैं खुद यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इंदौर में।
2: आपको लगता है कि जो हिंदुस्तान का एवरेज स्टूडेंट है उसको रोजगार मिल सकता है?
1: बिल्कुल सर, मिल सकता है।
2: मिलना चाहिए।
1: बहुत सारी भर्तियां खाली हैं, भर्तियां नहीं होती हैं।
2: तो फिर क्यों नहीं मिल रहा
1: यहाँ पर? सर, सिस्टम ऐसा है, हम लोग आंदोलन करते हैं कि भर्तियां निकालिए, रिजल्ट रोक दिए जाते हैं, बहुत सारे पद निकलते ही नहीं है, संविदा से भर दिए जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो मेन पद है वो भरे नहीं जा रहे। आज भी डाटा बता रहा कि आधे पद खाली है।
3: हेलो सर, सर मेरा नाम सपना गुर्जर है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर, मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हूँ जो मध्य प्रदेश का बाल विवाह में टॉप डिस्ट्रिक्ट है। सर, मेरे लिए वहाँ से निकलकर यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। सर, मार्च 2019 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 14% OBC रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% किया है, जो कि पूर्णतः पूरे मध्य प्रदेश में लागू भी है। लेकिन जैसे ही सर सरकार बदलती है, ये BJP की गवर्नमेंट हमारे 13% पद पर बिना किसी कारण के कोर्ट का हवाला देकर हमारी सारी नियुक्तियां होल्ड कर देती है। और सर, पिछले 8 साल से आज तक लगभग 10,000 पद है जिन पे होल्ड नाम का राक्षस बैठा हुआ है। और सर, लगभग 1,87,000 स्टूडेंट मेरे जैसे, जो सर मैंने खुद ने 2 एग्जाम क्लियर कर रखी है, जिनने सारा प्री मेंस इंटरव्यू बहुत सारी 3-3 स्टेप एग्जाम क्लियर करके और आज यहाँ सभी बेरोजगार बैठे हुए, जबकि सर वो हमको कोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन MP हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। सरकार जानबूझकर हमें गुमराह कर रही है और हमारी नियुक्तियाँ रोक रखी है। सर, इस चीज को लेकर कई बार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई है कि आप कानून क्यों नहीं लागू कर रहे, कानून पर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, आपका कानून है, आप चाहो तो कल सभी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे सकते हैं।
2: ये करते क्यों नहीं है, प्रॉब्लम क्या है
3: सर?
2: कानून बन गया है, इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए सर, ये कर क्यों नहीं रहे?
3: सर, ये सरकार दोहरी नीति अपना रही है। जैसे कि सर, मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022, पटवारी भर्ती 2023 में 27% रिजर्वेशन में ज्वाइनिंग ले ली है, लेकिन उन्हीं भर्तियों में आगे जाके 13% पद होल्ड कर देती है। सर, ये कहाँ का कानून है कि आप एक साल 27% पे ज्वाइनिंग दे रहे, दूसरे साल 13% पे होल्ड कर दे रहे? सर, हम सभी के ज्वाइनिंग लेटर बस बचे हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करके, हमको कोचिंग के फीस के पैसे नहीं मिलते तो हम रात रात भर लाइब्रेरी में पढ़ के एग्जाम क्लियर करते, उसके बावजूद ये सरकार हमें 13% नाम का लॉलीपॉप थमा देती है, जिससे सर हम पिछले 8 सालों से सरकार के खिलाफ सड़कों पे लड़ाइयाँ लड़ रहे, लेकिन पिछले 8 सालों में सरकार ने आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हम जाते हैं, हमसे कोई बात करने तक नहीं आता है। सर, आपको न्याय का योद्धा कहा जाता है और आपने सभी स्टूडेंट को न्याय दिलाया है, तो सर हम उम्मीद करते हैं मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट कि आप हमें भी न्याय दिलाए और ये 13% नाम के दलदल से हमें बाहर निकलवाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बोलिए।
1: सर, एक सवाल है कि सर, मैं सतना जिले के बिंद क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कर, यहाँ ज्यादातर बच्चे इंदौर भोपाल तैयारी करने आते, वहाँ पर सिविल सर्विस या सरकारी तैयारी करने वाले, वहाँ शिक्षा का स्तर बिल्कुल नहीं है कि हम लोग को यहाँ पाए, और हर तरह के बच्चे जो SC ST के बच्चे हैं, जो गरीब है, वोट नहीं कर सकते, वो यहाँ इंदौर नहीं आ सकते कि यहाँ आकर सब बच्चे पूरी तरह से तैयारी करें। तो मेरा ये है कि जो उस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चे पैसे की वजह से यदि कोई इंदौर भोपाल नहीं आ पा रहा तो अपने क्षेत्र में बेहतर तैयारी कर सके, और राज्य में सेवा करना है, देश में सेवा करना, उसका अपना सपना पूरा कर सके। सर, ये बात है।
2: मतलब आपका कहना है कि एजुकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए, कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को एजुकेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब एजुकेशन लग्जरी नहीं है, एजुकेशन हक है, स्टूडेंट्स का हक है।
1: सर बिल्कुल, हम लोगों हम आज तक सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी कॉलेज में पढ़े, यहाँ मेहनत कर कर के आ गए, तो आज तो शिक्षा इतनी सस्ती होगी, आराम से पहुंच सकती है वहां तक। सर
2: ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम याशिका दानी है और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। सर मैंने 2020 में एडमिशन लिया था ये सोच के कि मेरा जो कोर्स है वो 4 साल में हो जाएगा 2024 तक, बट सर अभी सितंबर 2026 चल रहा है, अभी तक मैं थर्ड ईयर में हूँ सर, ना मेरा रिजल्ट आया है, ना हमारी फोर्थ ईयर की एग्जाम हो रही है, ना हमारी डिग्री पूरी हो रही है सर। इससे सर बहुत सारे एमपी के स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं।
2: कितने टोटल कितने अफेक्ट हो रहे हैं?
3: सर हजारों स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं सर एमपी में, कोई एग्जाम नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। और सर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने भोपाल में आंदोलन भी किया, तकरीबन 1 महीना आंदोलन चला, बट सर जो भी सरकार है उसे सर कोई मतलब नहीं है, कोई हमारी सुनवाई में नहीं आया, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घोटाला कर रहे हैं सर। उसके बाद भी सर हम लोगों ने 1 महीना आंदोलन किया। सर मैं बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हूँ कि आप हम लोग की प्रॉब्लम सुने,
2: ठीक है,
3: क्योंकि सर मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ सर। मैंने जब एडमिशन लिया था तब फीस सुन के मेरे पापा ने कहा कि नहीं बेटा अपन नहीं कर पाएंगे अफोर्ड, बट सर फिर भी मैंने 1 साल कॉल सेंटर पे जॉब किया, अपनी फीस के पैसे इकट्ठा किए और मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया ये सोच के कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी, बट सर इसका पूरा उल्टा हो रहा है सर। हम लोग अभी तक बेरोजगार हैं, कोई हमें जॉब पे नहीं रखता, अभी हम 12th पास कहलाते सर, हम जब भी कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो ये पूछते कि आपके पास डिग्री है, हम लोग बोलते नहीं है, वो बोलते कि ठीक है हम आपको 5 या 6 हजार रुपए महीने के देंगे। सर ये बहुत गलत हो रहा है सर हम लोगों के साथ।
2: ओके थैंक यू
3: जी सर,
2: बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू
3: सर। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमारी परेशानियों का जल्द से जल्द कोई समाधान करें।
2: बिल्कुल,
3: थैंक यू सो मच,
2: थैंक यू। तो ये वीडियो में स्टूडेंट ने सिस्टम की बात की और हमारे 3 फ्रेंड जो आए थे उन्होंने भी सिस्टम की बात की। सिस्टम हमारे खिलाफ है, सिस्टम एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। यह सिस्टम क्या है? यह सिस्टम है देश पर सिस्टम का कब्जा। सिस्टम में अलग अलग लेयर्स हैं, टॉप लेवल पर ये 6 लोग बैठे हैं, सिस्टम को चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, धमकाने का काम, स्टूडेंट्स को मारने का काम, कील वाली लाठी के साथ मारने का काम, पैलेट गन मारने का काम अमित शाह जी चलाते हैं, वो इन्फोर्सर है। उस तरफ शायद आप उनको पहचानो या ना पहचानो, ये अजीत डोवल जी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये कहते हैं इनफॉर्मल बातचीत में, ये कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान को कंट्रोल करना है तो सिर्फ 500 लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है। ये अजीत डोवल जी है, ये हिंदुस्तान के टेलीफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, कम्युनिकेशन पर कब्जा किए बैठे हैं, ये फोन टैपिंग कराते हैं और ये इंफॉर्मेशन देते हैं अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को। इस फोन के अंदर डोवल जी बैठे हुए हैं, आपके फोन के अंदर डोवल जी बैठे हुए हैं, बीच में मोहन भगवत जी जो विचारधारा की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, और इनके संगठन को करोड़ों हजारों करोड़ रुपए स्कूल चलाने के लिए, कॉलेज चलाने के लिए, इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए दिए जाते हैं, और एक साइड पे अदानी जी और दूसरे साइड पे अंबानी जी। अदानी जी पूरा फाइनेंस करते हैं, पूरा का पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, उसमें चीफ मिनिस्टर्स हैं, योगी जी हैं, यादव जी हैं, चाहे बिजनेस हो, उसमें अदानी जी अंबानी जी का कैप्चर है, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हर संस्था पर सिस्टम ने अपना एक ना एक आदमी बैठा रखा है। जैसे हिंदुस्तान में इतने क्रिकेटर्स हैं, तेंदुलकर जी हैं, कपिल देव हैं, इतने क्रिकेटर्स हैं, मगर सिस्टम ने अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का पूरा ठेका दे दिया है। तो मेरिटोक्रेसी की बात होती है, मगर फिर जिस सिस्टम अपने लोगों को, अपने बच्चों को हर संस्था के ऊपर बैठा लेता है, अमित शाह अपने बेटे को क्रिकेट, पूरा क्रिकेट दे देगा हिंदुस्तान का, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के संस्थाओं को बांट दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सिस्टम को स्टूडेंट से खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि सवाल पूछता है स्टूडेंट। स्टूडेंट कहता है कि अमित शाह जी के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसे बन गए, यह सवाल स्टूडेंट पूछता है। स्टूडेंट पूछता है कि हिंदुस्तान के पूरे बिजनेस को दो लोगों ने कैसे कैप्चर कर दिया। स्टूडेंट पूछता है कि जुडिशरी और बाकी संस्थाएं क्यों नहीं अपना काम करती हैं। स्टूडेंट पूछता है इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करता, इसीलिए सिस्टम स्टूडेंट नहीं चाहता है, सिस्टम अंधभक्त चाहता है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त एंटी स्टूडेंट है। जहां स्टूडेंट सवाल पूछता है, जहां स्टूडेंट क्यूरियस है, वहां अंधभक्त डेल्यूशनल है, अपनी दुनिया में रहता है। जहां स्टूडेंट मोहब्बत की बात करता है, प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करता है, वहां अनभक्त नफरत फैलाता है, नफरत से बात करता है। जहां स्टूडेंट हम्बल होता है, ह्यूमिलिटी होती है, दूसरों की बात सुनता है, वहां अनभक्त अहंकार से भरा होता है, एरोगेंट होता है। जहां स्टूडेंट डरता नहीं है, निडर होता है, वहां अंधभक्त डरपोक होता है, कावड़ होता है। जहां स्टूडेंट महिलाओं की रिस्पेक्ट करता है, वहां अंधभक्त पेट्रियार्कल होता है, महिलाओं पर आक्रमण करता है, महिलाओं का अपमान करता है। और जहां स्टूडेंट ईमानदार होता है, वहां अंधभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अंधभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है। अब देखिए, हमने आपको स्टूडेंट्स का वीडियो दिखाया, अब अनभक्तों का वीडियो देखिए।
4: भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा की आदत है, आज उनका मंदिर भव्य बन रहा है।
5: ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है।
6: ये जो हमारा आज लीडर है ना, ये विष्णु का अवतार है।
7: कह मोदी मेरी वाले में वोट मोदी दूंगा।
8: भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत।
9: आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता।
10: बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता कि नहीं?
9: बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ।
11: सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए।
12: हेलो,
13: माय फ्रेंड।
12: यस सर।
13: माय फ्रेंड, हाउ आर यू?
12: आई एम फाइन, हाउ आर यू मोदी जी?
13: ग्रेट हैरेसमेंट।
12: My friend. Very nice to meet you, brother.
13: Galgotia.
12: और बताइए, और बताइए थोड़ा।
13: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ। Setting my brand. My brand. Lauren Bajam.
12: तो आपने देखा, अंधबक कहता है हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली, अंधबक कहता है विकास नहीं चाहिए, मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, मगर अंधबक सवाल कभी नहीं पूछता है। अंधबक कभी भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि हमारी स्कूल्स और कॉलेजेस की हालत ऐसी क्यों हो गई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों टूट गया, हमारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। स्टूडेंट ही आवाज पूछता है। एक मैं आपसे, नमस्कार,
14: मेरा नाम रवि वास्केले, मैं धार जिले के मनावर तहसील आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला हूं। सर मैं अभी दिल्ली गया था जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में वहां शामिल होने के लिए। जब मैं लौट रहा था तो ट्रेन में हमारे साथ कुछ 4-5 लोग आए और हमारे साथ बदसुलूकी की और हमें ट्रेन से बाहर उतार दिया। उनको हमने पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कोई जवाब नहीं दिया, और वो लोग, हम ज्यादा थे, 14 लोग थे, तो वो हमको देख के चले गए। दूसरी बात यह है कि सर खरगोन जिला है हमारे यहाँ पे, तो भगवानपुरा तहसील है, वहां पर 350 हेक्टेयर जमीन के पट्टे निरस्त कर दिए गए, उन लोगों को अभी पट्टे नहीं दिए गए। दूसरी बात आती है बालाघाट, बालाघाट मलेरिया का हॉटस्पॉट माना जाता है, और बालाघाट के अंदर वहां पर डायरिया, मिसेल्स, ऐसे भयानक बीमारियां हो रही है। सरकार 25 सालों से है मध्य प्रदेश में बीजेपी की, तो अभी तक उस पर काम क्यों नहीं कर रही, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं करा रहे गरीब लोगों को, वो हमारे आदिवासी लोग है। और हर जगह पे हम स्कूल की बात करें या हम परीक्षा की बात करें, बैकलॉग पदों की बात करें, तो हमें टारगेट बनाया जाता है, हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, इसलिए एफआईआर कर दिया जाता है कि हम इन मुद्दों को उठाते हैं। होता क्या है कि सर अभी बैकलॉग के कम से कम 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं, और उनको 2003 के बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं दी गई है, तो इनको भरना चाहिए जल्द से जल्द सरकार को, लेकिन उस चीज को सरकार संज्ञान में नहीं लाती है और हर बार हमें आश्वासन दे के हमारे टाइम को बढ़ा देती है, पोस्ट कर देती है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करती है। और बहुत सारी ऐसी बातें है, हॉस्टल की बात है,
12: बोलो
14: हॉस्टल की बात है, सरकारी हॉस्टल, नेहरू हॉस्टल जो मध्य प्रदेश इंदौर में शिक्षा का हब माना जाता है, यहाँ पर ना तो उनके लिए रजाई गादी ढंग से है, ना कोई बाथरूम की सुविधा अच्छी से। उनके लिए पर्सनल एक लाइब्रेरी होना चाहिए, उनके लिए खेल का मैदान होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। जैसे कॉन्स्टेबल हुआ, CISF हुआ, BSF हुआ, SSC GD की तैयारी करता है बंदा, तो उसके लिए एक पर्सनल ग्राउंड की सुविधा होनी चाहिए सर।
15: नमस्ते राहुल जी, मेरा नाम रंजित किसानवंशी है, मैं देवास जिले से हूँ। हमारे मध्य प्रदेश में दो भर्ती बोर्ड और आयोग हैं जो यहाँ पर सरकारी भर्तियाँ करने का काम करते हैं। उसमें एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है और दूसरा व्यापम है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपने पिछले साल उसकी भर्तियों की जो समस्या है उसको लेकर हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ लोग ज्ञापन देने गए। उन्होंने हमारा कर्मचारी अधिकारियों ने ज्ञापन नहीं लिया। फिर हमने और स्टूडेंट से बात करी, सबको इकट्ठा किया और लगभग 5000 स्टूडेंट हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जाकर बैठ गए। 3 दिन और 4 रात हम जब बैठे तो फिर उन्होंने बातचीत करने के लिए हमको बुलाया और मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव जी ने हमको कहा कि आप भोपाल आइए, आपकी जो मांगे हैं वो मैं पूरा करूंगा, आप मुझे को आकर बताइए। हम जब वहां गए उन्होंने हमारे को कहा कि आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, हम आपकी मांग मानेंगे। वहां से जब हम वापस इंदौर आए तो हमको पता चला हमारे ऊपर, मैं और मेरे साथी नेहू के राधे जाट जी, उनके ऊपर FIR कर दी गई और उसके बाद हमको उठा के जेल में डाल दिया। 4 दिन हम जेल में रहे और हाईकोर्ट से हमारी जमानत हुई। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जब भी कोई भर्ती की समस्या की बात हम करते हैं, कोई हमारी बात रखने जाते हैं, तो हमारे ऊपर FIR करके हमको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर जो दूसरा है व्यापम तो मुझे लगता है बना ही पेपर लीक और घोटाले के लिए। व्यापम के अंदर आप सामने समझ सकते हैं कि व्यापम लगातार एक के बाद एक पेपर लीक व्यापम में हो रहे हैं। व्यापम के अंदर PMT भर्ती घोटाला हुआ, कृषि भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, TET भर्ती घोटाला हुआ, लगातार एक के बाद एक घोटाले होते हैं। और व्यापम और सरकार ने दो ऐसे घोटाले हैं जिन्होंने खुद ने माना कि हमसे घोटाला हुआ है। कृषि भर्ती घोटाला सरकार ने माना, एग्जाम कैंसिल करी और दोबारा एग्जाम कराई, लेकिन किसी को भी एक व्यक्ति को नहीं पकड़ा। दूसरा
2: कोई सजा नहीं मिली किसी को कोई कन्विक्शन नहीं, कोई पनिशमेंट
15: नहीं। दूसरा पटवारी भर्ती घोटाला, पटवारी में पेपर लीक हुआ, एक ही कॉलेज के 10 टॉपर आ गए, भाजपा के 10 टॉपर आ गए भिंड। तो हमने जब हल्ला किया, हमने प्रदर्शन किया, तो इन्होंने कहा कि हम जांच आयोग बना रहे हैं, जांच आयोग जांच करेगा और उसके बाद भर्ती होगी यदि इसमें सब कुछ ठीक पाया जाता। 2023 के बाद 24 में इन्होंने बिना उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए सारी भर्तियां कर दी और सब लोगों को बचा दिया। तो मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी ये सामने स्टूडेंट हम सब खड़े हैं, ये मध्य प्रदेश इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो हम सबके कारण चलती है। हम घर से पैसे लेके आते हैं तो यहाँ की कोचिंग में पैसा देते हैं तो कोचिंग चलती है, हम घर से पैसे लेके आते हैं हॉस्टल में पैसा देते हैं तो हॉस्टल चलती है, हम घर से हमारे माँ बाप से पैसा लेके आते हैं लाइब्रेरी में पैसे देते हैं तो लाइब्रेरी चलती है। तो यहाँ पर हजारों लाखों लोगों को हमारे कारण रोजगार मिल रहा है पर हमको रोजगार नहीं मिल रहा। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे और हमको जेल मिलती है, रोजगार नहीं मिलता।
16: नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम तनय है और मैं देश की सबसे बड़ी मीडिया यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि सरकार सिर्फ अंधभक्तों को पसंद करती है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हम जब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम डरपोक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एरोगेंट नहीं है, नफरती नहीं है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, उनको अंधभक्त पसंद आते हैं। मैंने 3 साल में पढ़ने के बाद जब मास्टर्स में अप्लाई किया तो मेरा गुड अकेडमिक रिकॉर्ड होने के बाद भी मुझे मास्टर्स में एडमिशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं हूं। जब इंटरव्यू के स्कोर शीट के लिए मैंने RTI लगाई कि मुझे वहां की इवेल्युएशन शीट और स्कोर शीट चाहिए, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हमारे पास कोई भी स्कोर शीट मेंटेन नहीं है। ये बड़ा ही हास्यास्पद बात है। क्यों? क्योंकि अंधभक्त ही VC है और उसको अंधभक्त ही स्टूडेंट चाहिए।
2: बट एक बात, एक इंटरेस्टिंग बात, जो सिस्टम के लोग हैं देश में अंधभक्त चाहते हैं मगर अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनाते कभी।
16: बिल्कुल सही।
2: इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, इनके बच्चे ये काम नहीं करेंगे, ये देश के युवाओं को अनपढ़ बनाना चाहते हैं, बट अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे पढ़ाने के लिए, इंग्लिश सिखाएंगे और सारी की सारी जो बिजनेसेस हैं उनके ऊपर बैठा देंगे।
16: बिल्कुल सही,
2: सही,
16: बिल्कुल सही राहुल जी,
15: विदेश में भेजते हैं पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को।
2: वो स्लाइड दिखाना। आप एक काम कीजिए, ये है सिस्टम के मालिक, ऐसे 300-400 लोग हैं, इनके बच्चों की लिस्ट निकालिए, देखिए उनकी कहां पढ़ाई होती है, इंदौर में होती है, अमेरिका में होती है।
16: राहुल जी आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि इस समय आपको और मुझे, हमारी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी और सारे प्रोफेसर ध्यान से सुन रहे हैं, मैं उनको कान खोल कर कहना चाहता हूं कि जब तक राहुल जी हमारे साथ खड़े हैं हम ना डरेंगे ना दबेंगे और ना झुकेंगे।
2: एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला।
14: मैं एक बात कहना चाहता हूं सर से कि राहें देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो 2029 में आप प्रधानमंत्री बन जाओ या फिर हम ही ठिकाने लग जाए।
2: लव यू। तो हमने शुरुआत में कहा कि स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है, शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट की सरकार का काम। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उल्टा हो रहा है। पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर, आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है, 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम। आइए, हेलो, नमस्कार।
17: नमस्कार सर।
2: नमस्कार, बोलिए।
17: सर मेरा नाम राधा मालविया है, मैं उज्जैन जिले माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले से हूँ। मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। सर पीएचडी में लाखों रुपए खर्च होते हैं, रिसर्च में लाखों रुपए खर्च होते और खर्चा अभी भी थमा नहीं है। जब मैं किराए के रूम में रहती हूँ तो भी लाखों रुपए के खर्च होते हैं। इसी दौरान सर जब मकान मालिक का हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि आप तारीख टू तारीख हमें पैसे दीजिए, अगर नहीं दिया तो आप रूम खाली करके घर चले जाइए। ऐसी कई स्टूडेंट, ऐसी कई गर्ल्स है जो रूम छोड़कर घर चली गई है, जिनकी शादियां हो गई है। सर एक मुद्दा चलता है इनका, एक योजना है आवास भत्ता करके। आवास भत्ते में इनकी है कि हर महीने आपको पे करना है, साल का 24,000 आता है, हर महीने 2,000 आता है। सर मैं 2020 में जिस रूम में रहती थी वहां 2,500 रुपए महीना था, आज उसी रूम का 5,000 रुपए महीना है, परंतु आवास भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हर साल 10% हमारे जो रूम का रेंट है वो बढ़ता है, और 24,000 मिलना है हमें साल भर का, और साल के एंड में मिलता है, महीने टू महीने नहीं मिलता है। महीने हम कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके पैसे किसी से ब्याज से लेके हम उसे पे करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना और मकान मालिक के यहाँ रहना है। सर जब आवास भत्ते की इतनी जटिल प्रक्रिया कर रखी है कि आप हम गाँव से शहर की ओर पढ़ने आते, जब पढ़ने आते तो वहां देखते हम कि हमें आवास योजना का फॉर्म डालने के लिए हमें उनसे रजिस्ट्री चाहिए होती, हमें मकान का किराया तो मिलता नहीं, हमें रूम तो मिलता नहीं, तो हमें वो रजिस्ट्री कैसे देंगे। हम जैसे तैसे रजिस्ट्री भी लेते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, 24,000 रुपए साल भर का आना चाहिए, पर कभी 24,000 एक भी स्टूडेंट के अकाउंट में नहीं डलता। 18,000 आएंगे, 16,000 आएंगे, ये 5,000, 4,000, 6,000 कहाँ गए आज तक हमें पता नहीं है। सर सर हम भी इसी देश के नागरिक है, हमें इसी देश की एजेंसी है, आप दिए में तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं,
2: बिल्कुल
17: हमारे स्टूडेंट की शिक्षा के लिए क्यों नहीं। सर मैं हॉस्टल में रहती नहीं हूँ क्योंकि हॉस्टल में सीट अवेलेबल नहीं है। उज्जैन जिले में 1112 गांव है जहाँ सिर्फ 100 सीट है। सर दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि आज हम इतनी ज्यादा हमारी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इतनी ज्यादा फीस हो चुकी है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। सर जब आप 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन दे सकते तो हमें 1 रुपए में शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती,
2: बिल्कुल
17: ये भी हमारा अधिकार है। सर
18: हेलो, सर मेरा नाम सूरज ठाकुर है और मैं रायसेन जिले के बरेली तहसील छोटा सा गांव अमरावत वहां से आता हूं। सर मैं ट्राइबल कम्युनिटी से हूं। सर 2022 में एक वैकेंसी आती है सिविल जज की, जिसमें से 121 पद ट्राइबल के लिए रहते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ का सिस्टम ने 121 पोस्ट में से किसी एक भी ट्राइबल को पोस्ट नहीं दी। सर मध्य प्रदेश में लगभग 200 करोड़ आदिवासी निवास रहते हैं, क्या उनमें से इनको एक सिविल जज हमारे समाज का नहीं मिला। सर ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, ये लोग नहीं चाहते कि आदिवासी सिविल जज बने और सिस्टम में आए और हमारे ऊपर हुकूमत करे।
2: ये आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, ये लोग नहीं चाहते कि आदिवासी स्टूडेंट्स बने, ये लोग नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट बने, ये चाहते कि सारा का सारा देश अनभक्त बने।
18: यस सर बिल्कुल। सर हमारा यही निवेदन है कि जो आदिवासी के साथ मध्य प्रदेश में जो इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, कम से कम उसको दूर करा जाए। थैंक यू,
2: बहुत अच्छा बोल।
19: सर मेरा नाम दीप्ति सिंह ठाकुर है, मैं इंदौर की निवासी हूँ। मैं वर्ग 2 प्राथमिक शिक्षा और वर्ग 3 मिडिल स्कूल, मतलब माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्कूल में चयनित हूँ, मतलब पास हूँ। 2023 में जो परीक्षा निकली थी पात्रता परीक्षा, उसमें भी पास हूँ, और 2025 में निकली थी जो चयन परीक्षा, उसमें भी पास हूँ, पर मुझे नियुक्ति नहीं दी अपने सिस्टम ने। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा अड्डे में जाए।
2: बिल्कुल।
19: और वो जो अपने सिस्टम है ना, शिक्षा का जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं और ना ही अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें, हम पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, अच्छी अच्छी जगह कोचिंग की है हमने, बाकायदा बीएड डीएड किया है 1.5 लाख रुपए में, पर हमारे लिए सीट नहीं है उनके पास। किसके लिए है? घोटाले के लिए है, भ्रष्टाचार के लिए है। सर, एक साल से हम आंदोलन कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा का और माध्यमिक शिक्षा का। अभी भी हमारा आंदोलन भोपाल में चल रहा है। हमने 17 नवंबर 2025 से आंदोलन शुरू किया था। महीने में एक डेट फिक्स की जाती थी, उस पे हम जाते थे और बाकायदा हर मंथ आंदोलन करते थे, वर्ग 3 के लिए, वर्ग 2 के लिए, पर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई।
2: मुझे भी बुलाओ ना आंदोलन में।
19: सर आइए, आपका स्वागत है। पर सर थोड़े हम समय मांगेंगे आपसे। हमारे हर महीना हम एक डेट फिक्स करते थे, आंदोलन शुरू करते थे, उस डेट में पूरा एमपी, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे भोपाल में इकट्ठे होते थे। बाकायदा हम लोग हर जगह डीपीआई मंत्री जी के यहाँ जाते थे, पर जैसे कुत्ते को भगाते हैं ना, उसी तरह भगाया गया है हम लोग को, उसी तरह भगाया गया। पर हम लोग ने हार नहीं मानी। फिर हम लोग ने डिसाइड किया 21 अगस्त से हमारा आंदोलन आज भी चल रहा है। हम कल भोपाल से ही यहीं आए थे सर। अभी सुनिए सर हमारी कहानी। अब 21 अगस्त से हमारा आंदोलन फिर से स्टार्ट हुआ। आज भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो साथी हैं, वो डीपीआई भोपाल के पास बैठे हैं।
2: कहाँ भागे?
19: और पता है, इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जो 30 दिन चल रहा है। उसमें एक हमारा साथी है नरेंद्र राजपूत, जो 9 दिन से पानी नहीं पिया है, पर कोई मंत्रालय नहीं आया है, ना ही डीपीआई आया है, कोई नहीं आया। आज भी बैठा है वहां पे। मैं जबरदस्ती आई हूँ कि आज के युवा की बात मैं राहुल सर के साथ शेयर करूंगी और इंटरनेशनल बने।
2: मुझे आप बुला लो वहाँ।
19: सर चलिए कल मेरे साथ।
2: मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। और कुछ बोलना? हाँ।
19: सर अभी वो उठ नहीं पा रहा है। अभी अगर आप वीडियो भी देख सकते हैं तो देख सकते हैं उसका। नरेंद्र राजपूत नाम है, वर्ग 3 वर्ग 2 का शिक्षक है, जो 9 दिन से पानी नहीं पिया, खाना नहीं, पानी नहीं पिया, निर्जला हड़ताल है उसका।
2: बाद में मुझे वीडियो दिखा।
19: ठीक है,
2: थैंक यू।
19: ठीक है सर, एक बार और इसमें इधर देखो, इधर जो सीटें हैं वो सिर्फ किसकी है? घोटाले की है, भ्रष्टाचार की है, पर गरीबों की नहीं है। इसलिए मैं राहुल सर से निवेदन करना चाहती हूँ, हमारी आवाज, युवकों की आवाज खासकर इंटरनेशनल तक पहुँचाए। धन्यवाद सर।
2: थैंक यू। बहुत अच्छा बोलिए। हाँ, और बोलो
20: सर, ये मध्य प्रदेश के जितने स्टूडेंट हैं।
0: तो इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आप देख रहे थे, जहां पर राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही हैं। पहले आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे डूसू चुनाव में वोटों की जो काउंटिंग हुई, इस दौरान छात्रों के एक ग्रुप का हंगामा भी देखने को मिला। गेट नंबर 4 पर ये छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जबरदस्त सुरक्षा की वहां पर इंतजाम देख रहे हैं, तैनाती की गई है। ये इस समय बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीयू के छात्रों का एक गुट इस समय प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये गेट नंबर 4 पर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे पुलिस बल तैनात है जो इन स्टूडेंट्स को समझा रहा है। ये देखिए, ये वो छात्र हैं जो एकाएक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, हंगामा करते हुए दिखाई दिए, बैठ गए नीचे, वहीं पर धरना एक तरीके से देना उन्होंने शुरू किया। फिर उसके बाद पुलिस ने उनको एक एक करके उठाया है कुछ इस तरह से। इसमें छात्राएं भी दिखाई दे रहे हैं। मतगणना के दौरान ये छात्र हंगामा करते हुए दिखाई दिए। डीयू के रिजल्ट आए हैं और इसमें एबीवीपी का जलवा एक तरीके से देखने को मिला। एबीवीपी ने अध्यक्ष पद, सचिव पद, संयुक्त सचिव पद जीता है, जबकि उपाध्यक्ष का पद वो निर्दलीय जीतते हैं। लेकिन एक गुट हंगामा करता हुआ आज दिखाई दिया है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी है, जहां पर चार में से तीन पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा, तो वहीं एक पद निर्दलीय उम्मीदवार ने जीता है।
1: ये डूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने चार में से तीन पदों पर जीत हासिल की, जबकि एक पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी एक पद भी नहीं जीत सका।
21: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा, और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो, और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
22: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना, वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
23: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी, तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटर से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
24: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेएनजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेएनजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
25: मैं एबीवीपी के सारा कैंडिडेट जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं, और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
26: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई, और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: मौजूदा समय में देश की सियासत जेंजी के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में लखनऊ से भी इसकी एक तस्वीर सामने आई, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं 6 महीने के अंदर 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया है।
1: यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नौकरी के नियुक्ति पत्र की नई किश्त जारी की, तो वहीं यूपी में अगले 6 महीने में 1,00,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
27: 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं, और अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश राज की भी याद दिलाई और सवाल करने वालों पर पलटवार किया, तो वहीं अखिलेश यादव योगी सरकार पर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगा रहे हैं।
27: ये काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
3: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा है, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। वहीं आज कासगंज और एटा के लोग आए थे समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे।
1: योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश मौजूदा सरकार पर आरोपों की लंबी लिस्ट लेकर जनता के बीच जा रहे हैं।
27: अपनी आदत के अनुरूप इन्होंने हर जगह बिचौलिए पैदा कर दिए थे। वैनदाता किसान का हिस्सा खा जाते थे। पूरे सिस्टम में उस बीमारू मानसिकता ने माफिया पैदा कर दिए थे। कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं नकल माफिया, कहीं कैटल माफिया, और ये माफिया पूरी युवा ऊर्जा को तबाह कर रहा था। आज यूपी माफिया मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है। उत्सव प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक नई पहचान बनाई है।
3: अगर आप उनके स्वजाती हैं तो आपको सम्मान मिलेगा। आप स्वजाती नहीं हैं, पीडीए के लोग हैं, तो आप अपमानित होंगे, आप पर दबाव बनाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे।
1: यूपी में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज है, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात IIT बॉम्बे की, जहां पर सेकेंड ईयर के एक छात्र ने आत्महत्या की, उस पर हंगामा जारी है। कैंपस में छात्रों का गुस्सा देखने को मिला, प्रशासन के खिलाफ यह गुस्सा था, जिसके बाद मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है।
1: IIT बॉम्बे में हंगामे की ये तस्वीरें हैं, जहां प्रदर्शनकारी एक छात्र के सुसाइड को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुंबई के IIT बॉम्बे परिसर में शुक्रवार शाम सेकेंड ईयर के छात्र साहिल वाकोड़े ने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। साहिल महाराष्ट्र के यवतमाल का रहने वाला था, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। घटना से कुछ घंटे पहले वह परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। आरोप है कि उसने क्वेश्चन पेपर की तस्वीर ChatGPT पर अपलोड कर नकल करने की कोशिश की थी।
4: जिसने ये थ्रेट दिया है, धमकी दी है, उसको उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए।
5: एक साल में 4 सुसाइड एंड 0 चेंज अभी तक, और ये 1 महीने हर चीज को हंस के टाल देते। हमें मीडिया के सामने जवाब चाहिए, वरना ये ऐसी टाल देते हंस के कोई भी चीज हो। ये लोग, इन्होंने मजाक बना रखे। 4 सुसाइड हो चुके हैं एक साल में, कोई रिस्पॉन्स नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से।
1: मामले को देखते हुए कैंपस में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, जहां पुलिस और छात्रों के बीच जोरदार धक्का मुक्की हुई।
6: क्या इनके पिताजी की नहीं है IIT? आप भी आ सकते हो, क्यों रोक रहे हैं? ये कुछ छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं? ये बस कुर्सी पे बैठ के खुद को राजा समझते, भगवान समझते, डायरेक्टर टीम लोग।
7: पुलिस वालों को यहाँ पे डंडा अलाउड नहीं, बकायदा ये लोग डंडे लेकर
6: एक लड़की के सर पे डंडे की फेंकी मारी इन्होंने,
7: धक्का मुक्की कर रहे हैं ये लोग।
1: हंगामा बढ़ता देख डायरेक्टर छात्रों से मिलने पहुंचे, लेकिन छात्र शांत होने को तैयार ही नहीं थे। प्रशासन का कहना है कि घटना के बाद छात्र की काउंसलिंग की गई थी और उसे साफ तौर पर आश्वस्त किया गया था कि उसके खिलाफ कोई कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
5: रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, किसी और की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जो भी होगा मैं भुगतूंगा।
1: छात्रों का आरोप है कि सच्चाई छिपाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक नकल के आरोप के बाद छात्र को 1 साल के निलंबन की धमकी दी गई थी।
8: पोलीस स्टेशन
1: साहिल के परिवार ने मामले को लेकर FIR दर्ज कराई है, जिन्होंने IIT प्रशासन पर साहिल को टॉर्चर करने का आरोप लगाया है।
8: कल IIT के एक हॉस्टल में बीटेक सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट करने की एक घटना हुई थी। इसी घटना के संबंध में जो डिसीज स्टूडेंट है उनके पिताजी की कंप्लेंट पे ओवी पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन ओवी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।
1: पिछले 7 महीने में IIT बॉम्बे कैंपस में सुसाइड का यह तीसरा मामला बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से देते हैं। दिल्ली चुनाव आयोग ने दिल्ली SIR प्रक्रिया के तहत अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने अनमैप्ड कैटेगरी के तहत ये नोटिस भेजा है। दिल्ली चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके पिता गोविंद राम केजरीवाल और उनकी माता गीता देवी को नोटिस भेजा है। अरविंद केजरीवाल के बेटे पुलकित को भी अनमैप्ड विद लास्ट SIR कैटेगरी के तहत नोटिस भेजा गया है। पुलकित इस समय 25 साल के हैं, AC-40 यानी कि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के एक खास हिस्से में भेजे गए 110 नोटिस में केजरीवाल परिवार के 5 सदस्यों का नाम शामिल है। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर और SIR प्रक्रिया के तहत ये नोटिस भेजा गया। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: आगे आगे, उधर उधर, करेक्ट करेक्ट।
8: मिल गया।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: एक दो एक
11: इश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ,
4: ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
8: Take a date, not bites.
9: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया की सो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर की ओर।
7: करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: एक तो एक
10: इश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
9: Take a date, not bites.
10: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: तुम्हें झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैर

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
3: There is a very famous quote ki history repeat itself.
4: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
5: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
4: Dekho duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara cover mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

0: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।
1: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा, अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

इंदौर में छात्रों की गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। युवाओं से शिक्षा रोजगार पेपर लीक पर संवाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम, अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जे, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे, ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस, एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज, पीड़ित मां का आरोप, परीक्षा में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के बाद बेटे को प्रताड़ित किया गया।

0: सोफे पर गाए, झूले पर गाए, ये सारी चीजें आपको देखकर अद्भुत लगेंगी, लेकिन इसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया में हम आपको लेकर चल रहे हैं। अगर मैं इनके बीच जाऊं तो आप उस हाइट के डिफरेंस से आप समझ सकते हैं कि ये जो गाय हैं वो कितनी छोटी हैं। पांच तरह के अलग अलग आकार में आने वाली ये नाड़ीपति कैटल के नाम से मशहूर है। दुनिया में इतना छोटी गाय आपको और कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगी, जो आज हम आपको यहां पर हैदराबाद के नजदीक दिखाने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में इसकी सोच विकसित हुई और उसके बाद से ये देश के कोने कोने में लोगों तक जा रही है। क्या खासियत है इसकी, कैसे अलग है, और वो सोच जो प्राचीन परंपरा कहते हैं ना कि गाय घर के भीतर, घर के आंगन में रहे, और जो कुत्ता है वो रक्षा के लिए घर से बाहर, लेकिन घरों का आकार छोटा होता गया, कुत्ते अंदर आए, गाय बाहर गई, और उस सब को बदलने के लिए एक व्यक्ति की सोच का आज ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य है जो हम आपको दिखाने वाले। गोद में गाय, पांचवी मंजिल की बालकनी में गाय, सोफे पर गाय, ड्राइंग रूम के अंदर गाय, बच्चों की दोस्त गाय, कुत्ते की साथी गाय, मैया की लाडली गाय, भैया की दुलारी गाय। चौंकिए मत, जो आप देख रहे हैं वो कोई जादू नहीं, ना आंखों का धोखा है, कोई विजुअल इफेक्ट भी नहीं है, ना ये गाय खिलौना है, ना ये गाय रोबोट है, ना ही ये गाय कल्पना है, ये असली गाय है, दुनिया की सबसे अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय गाय। एक हाथ गाय के माथे पर जाता है तो सदियों की भावनाओं का समुन्दर डोल उठता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ा तो कहते हैं कामधेनु गाय ने ही उनका अभिषेक करके गोपाल से गोविंद बना दिया। गोविंद जिसका अर्थ होता है गायों का रक्षक। कहा जाता है कि जब राम जी वन को गए तो 1000 गायें दान करके गए, जब लंका से लौटे तो राज्य की समृद्धि के लिए फिर 1,00,000 गायें दान की।
1: हैदराबाद में एक नाड़ी वो शोध संस्थान है गाय के ऊपर, उन्होंने वो गाय के ऊपर एक एनिमल रिसर्च किया, और आप देखते होंगे कि छोटी नस्लों की गायें आजकल विकसित हुई हैं, जिनकी हाइट जो है वो 2-2.5 इंच फिट तक की गायों का जो है वो निर्माण किया गया।
0: अद्भुत नाड़ीपति गाय उसी सोच का ऐसा रूप है जिनमें गायों का आकार तो छोटा है लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी है। आज हम आपको दुनिया की सबसे छोटी गाय के नाम से मशहूर नाड़ीपति गाय दिखाएंगे। खुले खेतों में ही नहीं, ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठने वाली गाय से मिलवाएंगे। आखिर क्यों ये गाय विकसित की गई वो भी बताएंगे। दोस्ती करने वाली गाय ही नहीं, शांत और प्यारे सांड से भी मिलवाएंगे। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय दुनिया में हमारे साथ चलने के लिए। इन गायों की सबसे खास बात आपको ये दिखेगी कि ये बहुत प्रेम से आपके पास आते हैं। मतलब यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, आराम से आ रहे हैं, आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, कुछ इनमें सुस्ता भी रहे हैं, लेकिन आप इसको देखकर ये समझ सकते हैं कि एक छोटे एरिया में, यानी कि आजकल जब शहरों में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है रहने के लिए, छोटे फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पर अगर एक छोटी सी गाय रहे तो आपकी किसी भी और पालतू से शायद कम जगह लेकर आपके घर में आपके परिवार का हिस्सा बनी रह सकती है। तो ये आराम से जिस तरीके से मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे से खेलने आ रहे हैं, इनमें से कोई बुल भी है, कोई सांड भी है, कोई गाय भी है, लेकिन आराम से सब, किसी में कोई आक्रामकता नहीं है, कोई अग्रेशन नहीं है, प्रेम से बहुत प्यार से, थोड़ी उत्सुकता से भी ये आपको घेरे रहते हैं हमेशा।
2: एआई के जमाने में जब तक खुद की आंखों से न देख लें, तब तक विश्वास करना मुश्किल होता है। हमने सुना कि डॉक्टर कृष्णम राजू नाम के एक व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश में दुनिया की सबसे छोटी गाय विकसित करने का दावा किया है। यूं तो उनकी गौशाला आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के लिंगमपट्टी गांव में है, लेकिन हैदराबाद के पास विकाराबाद में भी एक गौशाला है।
3: We have cow का
0: shelter है, खटाल जिसको कहते हैं।
3: That is there. अच्छा। And इसमें हम about 3000 cows का accommodate करने के लिए इधर जगह है।
0: अच्छा, 3000 cows। Yeah. अभी आपका एक जो main जगह है।
3: हाँ, खाकीनाडा में वो एलेश्वरम का नाडीपति का गांव है उसका नाम।
0: नाडीपति का गांव ही है
3: उसका। हाँ। तो उधर आके 10000 तक।
0: 10000।
3: Yeah.
0: और यहाँ पर
3: इधर अभी आके 500 से 1000 तक है।
2: तो हम पहुंच गए वहाँ, देखा तो एक नहीं, छोटी छोटी अनेकों गाय थी। क्या ये प्राकृतिक रूप से छोटी है या फिर इन्हें ऐसा बनाया गया? अगर बनाया गया है तो कैसे? सबसे पहले तो यही सवाल मन में आया।
0: कैसे ये आपने डेवलप किया इसको?
4: एक्चुअली माय फर्स्ट रिसर्च इन नाडीपति, सेकेंडरी।
5: असल में मेरी पहली रिसर्च नाड़ी के बारे में थी और दूसरी इंसानों की लंबाई बढ़ने के बारे में। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्राचीन समय में इंसानों की लंबाई कम से कम 10 से 12 फीट हुआ करती थी। मेरा मानना है कि अगर भारत में कोई ऐसा खिलाड़ी हो जिसकी लंबाई कम से कम 10 फीट हो तो वह निश्चित रूप से ओलंपिक में मेडल जीत सकता है। इसी पर रिसर्च चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी लंबाई में आए बदलावों पर। इसीलिए मैंने कुत्तों या बिल्लियों के बजाय ओंगोल गायों पर रिसर्च करने का फैसला किया और उन्हें पालना शुरू किया। एक दो साल बाद लोगों ने कहा कि ये गायें बीफ के लिए अच्छी हैं और इनका वजन ज्यादा बढ़ता है। मैंने सोचा कि इससे नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैंने इसे उलटने और गायों को बचाने का तरीका अपनाया। मैंने नाडीपति पद्धति का इस्तेमाल करके ग्रोथ हार्मोन्स को नियंत्रित करने की तकनीक अपनाई। इसके लिए मैंने छोटी गायों को चुना। उस समय पंगनूर जैसी कई देसी नस्लें मौजूद थीं। मैंने 5 फीट की गायों की लंबाई को धीरे धीरे कम करते हुए उनमें बदलाव किया।
2: दिलचस्प सोच थी। पहले घर बड़े होते थे तो गायें आंगन में पाली जाती थी, कुत्ते बाहर पहरेदारी कर रहे होते थे। समय के साथ घर छोटे हुए, गाय घर से बाहर हो गई और कुत्ता घर के अंदर आ गया। डॉक्टर राजू ने फिर से गायों को घर के अंदर लाने की सोच पर काम किया ताकि घरों के अंदर उन्हें आराम से पाला जा सके।
6: उनका मानना था कि पुराने भारत में या 60-70 के दशक तक हर घर में गाय पाली जाती थी,
7: हर गांव में गाय रहता था। तो अभी किसी का घर पे,
6: लेकिन शहरीकरण और जगह की कमी के कारण अब कोई घर में गाय नहीं रखता। अब हर कोई कुत्ते पालने लगा है। कुत्तों ने गाय की जगह ले ली है और वे घर के अंदर रहने लगे हैं।
0: तो घर में कुत्ता है
7: तो गाय,
0: और गाय बाहर है।
7: हाँ। तो इसको ये काम करेंगे, हम गाय को छोटा करके गाय के जगह पे गाय को लेकर आएंगे।
2: पर क्या सचमुच ये संभव है? क्या सच में घर के अंदर इन्हें पाला जा सकता है, खासकर फ्लैट्स में? हमें यह बताया गया कि पीएमसीएम समेत बड़े बड़े लोग नाडीपति गाय पाल रहे हैं।
7: नाडीपति काउस आर इन मोस्ट ऑफ आवर इंडियन लीडर्स
0: लाइक। अच्छा।
7: हाँ। प्राइम मिनिस्टर का घर पे। हाँ। और ऑल स्टेट्स चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स का,
0: सबके पास नाडीपति।
7: हाँ। और मोस्टली बड़ा बिजनेस पीपल का।
0: हाँ। सब रख रहे हैं। हाँ। पर आप लोगों का ये लक्ष्य है कि घर घर तक पहुंचाएं।
7: एंड दीज नाड़ीपति कोस आर नाउ इन जम्मू कश्मीर एंड इवन इन अगरतला।
0: अच्छा
7: त्रिपुरा।
0: अच्छा
7: एंड सो दिस इज इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर लाइक कर्नाटका केरला एंड इन असम और इन राजस्थान
0: हर जगह
7: पे।
0: okay.
2: पर क्या सामान्य लोग जो फ्लैट में रहते हैं वो भी ये गाय पाल सकते हैं? कहा गया हाँ, लेकिन मन में संशय था। सोचा वहीं जाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले इन गायों की पूरी कहानी तो समझ लें।
0: जब एक नाड़ीपति गाय का बछड़ा होता है तो उसे आप अपनी दो हथेलियों में समा सकते हैं। जब इनका आकार इतना छोटा तो वो छोटा सा बछड़ा गाय का। लेकिन बहुत सारी चीजें जो इनके जीवन की होती हैं, जैसे कितने सालों तक इनकी आयु होती है, कितना खाते हैं, कितने समय सोते हैं, ये सारी चीजें जानना भी बहुत दिलचस्प है। बेबी कितना बड़ा होता है?
4: बेबी
0: 6 inches हैंड पे आ जाएगा।
4: बोथ
0: हैंड्स पे आ जाएगा ऐसे। और उसको अपने पैरों पर खड़ा होने में कितना हफ्ता लगता है?
8: हफ्ता नहीं, एक तीन चार दिन में
0: तीन चार दिन
8: खड़ा हो जाएगा।
0: अच्छा, उसके केयर के लिए अलग जगह है?
8: माँ के साथ रख देते मैक्सिमम, बोलते उसका दूध पीना है ना माँ का, उसके पास धीरे धीरे
0: पूरा नेचुरली चलेगा।
8: टोटल नेचुरली, कोई इंजेक्शन कोई दवाई नहीं, काउ टू काउ नेचुरल ब्रीड पैदा होगा।
0: नेचुरल है पूरा, नेचुरल और सबसे न्यूट्रिशियस हेल्दी आप कह रहे हैं।
2: सोचिए नैनो गाय का बच्चा इतना छोटा होता है कि दोनों हथेलियों में आ जाए, अविश्वसनीय। तो पूरी बड़ी होकर ये कितनी बड़ी होती है, मतलब सबसे छोटी व्यस्क गाय कितनी बड़ी?
0: ये मिनिएचर,
4: ट्वेंटी
0: ये मिनिएचर गाय है जो 28 इंचेस की है। ये 14 इंचेस की है,
4: इसका नैनो है,
0: ये नैनो है। और पुंगनूर गाय से लेकर और ये जो नैनो गाय है, इस तक पांच जो अलग अलग श्रेणियां हैं वो इन गायों की होती हैं, इनकी हाइट के हिसाब से।

0: छोटे छोटे पैरों से चलती नन्ही नन्ही गाय, बगल में खड़ी मैं और मेरे घुटने से भी नीचे खड़ी गायों की पूरी फौज। ये बछड़े नहीं है, ये गाय है, यानी उम्र के हिसाब से व्यस्क हो चुकी गाय। नन्ही टांगे, नन्ना शरीर, लेकिन दावा ऐसा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। क्या सचमुच गाय इतनी छोटी हो सकती है? आंध्र प्रदेश में ऐसी गायों की प्रजाति ने लोगों की कल्पना को चुनौती दे दी। यहाँ गायों को नाम दिया गया मिनी, माइक्रो मिनी और नैनो पुंगनूर गाय। एक गाय को देखकर आपको लगेगा कि अरे इतनी छोटी गाय, तब तक आपको इससे भी थोड़ी छोटी गाय दिख जाएंगी।
1: वाकई ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय भी।
2: कितना टोटल साइज हो गया?
3: टोटल फाइव।
2: फाइव? फिर से एक बार।
3: पुंगनूर से।
2: पुंगनूर?
3: थ्री टू फाइव फीट हाइट।
2: थ्री टू फाइव फीट।
3: मिनिएचर?
2: मिनिएचर
3: 2.5 फीट। हाईएस्ट हाइट बिलो 2.5।
2: बिलो 2.5 फीट।
3: हाँ। माइक्रो से?
2: माइक्रो
3: हाइट 2 फीट। इसमें
2: 2 फीट ये वाली।
3: ये ऑल माइक्रो है।
2: अच्छा ये माइक्रो है। ये माइक्रो है। हाँ।
3: फिर माइक्रो से नीचे नैनो।
2: नैनो। हाँ।
3: एक फीट है।
2: एक फीट।
3: इसमें एक फीट है।
2: हाँ।
3: इसमें एक फीट है।
2: हाँ।
3: इसका व्हाइट वाला एक फीट है।
2: अच्छा।
3: इसका फीमेल का।
2: हाँ।
3: इसका मैच्योरिटी वाला। हाँ। इसका प्रेग्नेंट का एक फीट है।
2: एक फीट का। अच्छा।
1: एक ऐसी गाय जिसे देखकर पहली नजर में ऐसा लगे कि ये अभी पैदा हुई हो, लेकिन ये बछड़ा नहीं गाय है। और अगर आपको लग रहा है कि ये कितनी छोटी गाय है, तो जरा सा ठहरिए, इसमें भी दो लेवल छोटी गायों को हम आपको दिखाएंगे।
0: भारत में गायों की 50 देसी नस्लें हैं। हर एक नस्ल की अपनी एक अलग पहचान और खासियत है। इसी में से एक नस्ल है पुंगनूर, जो अब देश में विलुप्त होती जा रही है। पुंगनूर नस्ल का संरक्षण कृष्णम राजू कर रहे हैं।
2: ये पूरा क्षेत्र आपको अद्भुत लगता है जब आप इस तरीके से घास चरती हुई इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी गायों को देखते हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर कहानी है इसके पीछे कि आखिर नाड़ीपति कैटल को क्यों विकसित किया गया, क्या सोच रही इसके पीछे और क्या प्रक्रिया रही इसकी।
0: एक सामान्य गाय की हाइट कंधे तक करीब 130 सेंटीमीटर या 4.3 फीट होती है, लेकिन हमारे सामने जो गाय थी वो केवल 70 सेंटीमीटर या 2.3 फीट की, यानी एक सामान्य गाय से 2 फीट छोटी, यानी लगभग एक बकरी के बराबर।
2: एक बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे कुत्ते होते हैं उसको घुमाने ले जाते हैं तो वहां पर वो जाके जो भी उसको अपना टॉयलेट करना है वो करता है, पर गाय के साथ एक अपार्टमेंट में कोई कैसे रहेगा?
4: ये अपार्टमेंट के अंदर इसको भी आदत डाले ना, धीरे धीरे बाहर ये भी आदत बन जाएगी।
2: जो ट्रेनिंग कहते हैं,
4: ट्रेनिंग करते हैं ना,
2: गाय की भी ट्रेनिंग हो
4: सकती भी है। हो सकती है, जैसा हम एनिमल से बात करना चाहते ना। हाँ। वो भी हमारे जैसा फ्रेंडली हो जाता, उसका दुख तकलीफ तुम्हारे को बोलने के लिए जब से आ रहा है।
2: अच्छा। हाँ, ये बहुत देर से कुछ तो बोलने आ रही है। ये आप कह रहे हैं प्रेग्नेंट है?
4: प्रेग्नेंट का है। अच्छा। ये
2: कितने?
4: 6 महीने का प्रेग्नेंट है ये।
2: कितने टाइम तक प्रेग्नेंट?
4: 9 मंथ्स का।
2: नॉर्मल होता है।
4: इसके डिलीवरी भी नॉर्मल होगा।
2: अच्छा।
4: डिलीवरी भी नॉर्मल होगा।
0: लेकिन यहाँ कहानी केवल पुंगनूर गाय पर नहीं खत्म होती। यहाँ आता है वो सवाल कि अगर प्रकृति ने छोटी गाय दी है तो क्या इस 2.3 फीट की गाय का कोई मिनिएचर वर्जन भी पैदा किया जा सकता है, यानी इसका आकार और छोटा किया जा सकता है। कृष्णम राजू ने इन गायों को हाइट के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बताया। मिनिएचर यानी 2 से 2.5 फीट तक, माइक्रो मिनिएचर यानी 1 से 2 फीट तक, नैनो यानी 1 फीट के आसपास या उससे भी कम।
5: आपको भारत में पाए जाने वाली गायों की हाइट के बारे में भी हम बताते हैं। गीर गाय जो लगभग 130 सेंटीमीटर या 4.3 फीट ऊंची है। रेड कांधारी गाय जो 128 सेंटीमीटर या 4.2 फीट ऊंची है। कासरगोड ड्वार्फ गाय लगभग 96 सेंटीमीटर या 3.1 फीट। वेचूर गाय लगभग 87 सेंटीमीटर या 2.8 फीट। पुंगनूर मिनिएचर गाय लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर या 2.3 से 3 फीट। पुंगनूर माइक्रो मिनिएचर गाय लगभग 1 से 2 फीट ऊंची। पुंगनूर नैनो गाय लगभग 1 फीट या उससे भी कम।
2: पूरे समय यहाँ पर देखिए चारों तरफ हरियाली है, घास चरते रहते हैं।
4: घास के अंदर ये एक्चुअली इसलिए बना है कि अभी पहला घरों का आकार बड़ा बड़ा था, एक हर घर के अंदर एक कौर रहता था। अभी घर का आकार छोटा हो गया, अपार्टमेंट्स आ गए, इंडिपेंडेंट हाउस आ गए, घर छोटा हो गया। इतना बड़ा गाय लेके जाके घर के अंदर नहीं रह सकते, इसलिए सोचकर इनको छोटा करे तो अच्छा रहता बोल के इसको ब्रीड को डेवलप करके छोटा बनाया था। ये घर के अंदर भी रख सकते अपने कुत्तों की तरह, बहुत से लोग कुत्ता घर के अंदर आ गया गाय बाहर चल गया, कुत्ता बाहर करके गाय को अंदर रखने की सोच से इसको छोटा बनाया था।
5: इन्हें नाड़ीपति कैटल काउ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल गायों को ये रूप देने वाले डॉक्टर पी कृष्णम खुद में नाड़ीपति चिकित्सक हैं। नाड़ीपति एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें पारंपरिक उपचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। दावा है कि ये पारंपरिक प्रणाली 60,000 वर्ष पुरानी है और इसमें बीमारियों का पता नाड़ी देखकर किया जाता है।
6: हमारा इंडियन ट्रेडिशन में पहले हमको आदमी का ऊपर चिकित्सा करते हुए हमको इलाज करते थे, इसको अभी भी केरला में मर्मा बोलता है। उससे पहले ये नाड़ी का परीक्षा करके आदमी का प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करके देन इसको आके हमको ये कहीं कहीं जगह में
7: हमारे शरीर में 14 मेरिडियन ऊर्जा मार्ग होते हैं और इन मेरिडियन पर इलाज किया जाता है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में ऐसी कई थेरेपी हैं जिनमें बिना दवा के इलाज किया जा सकता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने इस चिकित्सा प्रणाली को नाड़ीपैथी के तौर पर रजिस्टर कराया और इलाज शुरू किया।
6: क्यूर द एनी एलिमेंट।
5: कृष्णम राजू का दावा है कि छोटी गायों को ये रूप देने के लिए उन्होंने इसी चिकित्सीय पद्धति का प्रमुखता से उपयोग किया है।
8: इसके जीन्स नहीं बदले हैं। पगनूर गाय असल में चित्तौड़ जिले की जो गाय हैं वहाँ हैं, वहाँ से आई हैं, जो कि आंध्रा का जिला है। और आंध्रा प्रदेश में ये किस तरह से आई, क्योंकि वहाँ पे सूखा था, पहाड़ी इलाका था, खाने के लिए कम था, तो ऐसी गायों का सिलेक्शन किया गया जो कि थोड़े कम पानी में, कम खाने में और उनकी हाइट कम थी। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस ओवर द इयर्स हुआ, तो हमारे पास जो 70 से 80 सेंटीमीटर की जो गाय है पगनूर, वो आई। इनमें कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है।
6: आई वांट टू मेक इट वेरी वेरी,
9: मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि उनके शरीर में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया है। समाज में जो गायें होती हैं ये वही गायें हैं, बस इनका आकार छोटा कर दिया गया है, इनमें और कोई बदलाव नहीं।
4: ये टोटली नेचुरल से पैदा हुई है, कोई इसे इंजेक्शन करके, कोई इंजेक्ट करके इसको ऐसा पैदा नहीं किया।
1: पर अगर सामान्य गाय से कई गुना छोटी ये गाय है तो ये कितना खाती है और कितना दूध देती है?
6: नाड़ीपति गाय का कव मिल्क आप किसी से तुलना नहीं कर सकते है। क्योंकि इसमें फैटी कंटेंट्स है बहुत ज्यादा है।
8: अच्छा,
6: दैट इज आपने साधारण मिल्क में आपको 3% होगा, तो इसमें 8 से 10% कंटेंट ज्यादा होता
8: है। अच्छा, तो न्यूट्रिशन
6: ज्यादा
8: हुआ
6: या
2: नाड़ीपति का अच्छा हाँ। मिल्क का न्यूट्रिशन ज्यादा हुआ,
10: बहुत ज्यादा होता है
2: अच्छा
10: हाँ। और इसका वो व्हेन यू आर कंपेयरिंग आवर ट्रेडिशनल मिल्क व्हाट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड नाड़ीपति का मिल्क का बहुत अंतर है।
8: जो दूध का प्रोडक्शन था वो अच्छा था, दूध का प्रोडक्शन से मतलब जो उनके दूध में जो फैट का कंटेंट था वो मोर देन 8% था, जो बाकी जगह पे नहीं मिलता है, बाकी किसी गाय में मुश्किल से ही मिलता है।
1: सामान्य गाय के दूध में करीब 3% फैट होता है, जबकि दावा किया जा रहा है कि इस गाय के दूध में फैट लगभग 12% तक होता है। तो फिर क्या इसके दूध की कीमत भी आम गाय के दूध जितनी है?
2: कितना लीटर दूध देती है
4: ये माँ? ये दूध इतना देगा, सुबह 1 लीटर देगा, शाम 1 लीटर देगा।
2: अच्छा,
4: इसका मिल्क वैल्यू आके 8-10% वैल्यू है, सबसे बेहतर मिल्क है इसका।
2: अच्छा,
4: इसका कीमत आके 1 लीटर का आके 1200 रुपीज है।
2: अच्छा,
4: 1200 रुपया। 1 kg घी आके उसका 60,000 रुपीज है। 80 लीटर दूध से 1 kg घी बनेगा।
2: कितना?
4: 80 लीटर
2: दूध से 1 kg घी बनेगा। और वो 1 kg घी कितने का है?
4: 60,000 रुपीज से 60,000 रुपया।
2: और बाकी घी का क्या कॉस्ट है आजकल मार्केट में?
4: 1,000 रुपया है, 2,000 रुपया है।
2: जो सबसे अच्छा A2 घी, A2 घी होता है,
4: इस्तेमाल करने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं आएगा, हार्ट में वाल ब्लॉकेज रहते ना वो भी नहीं आएगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ रहते हैं, मसल्स स्टिफनेस हो गए, नर्वस में एक्टिविटी होगा।
1: हमें बताया गया कि एक अकेली गाय नहीं, आप जोड़ा ही खरीद सकते हैं। कमाल की गाय हैं ये, और अद्भुत है इनकी छोटी सी दुनिया। इन्हें तो देखकर ही इतनी शांति मिल रही है, पर रुकिए, इनसे जादू की झप्पी भी मिलती है।
2: तो ये बात अच्छी तरीके से साबित हो चुकी है कि आपके घर में अगर पेट्स हैं या फिर कुछ ऐसे, आमतौर पर तो ये कुत्तों के साथ, पालतू कुत्तों के साथ अटैच किया जाता है, कडल थेरेपी होती है, हग थेरेपी होती है, लेकिन इन गायों के साथ भी ये बताया जा रहा है कि आप कडल थेरेपी कर सकते हैं। आप इनको कडल करके, आप इनको गले लगाकर और वो सुकून, वो चैन महसूस कर सकते हैं। गायों को सांस्कृतिक रूप से, हमारे देश में पारंपरिक रूप से एक ऐसा जीव माना गया है जो आपके जीवन में बहुत शांति, बहुत सुकून लेकर आता है। और जब ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारी गौ माताएं होती हैं तो फिर उसकी बात ही अलग होती है।

0: ये बात तो प्राचीन समय से सिद्ध है, स्थापित है। इंसानों और गायों का रिश्ता ही अद्भुत होता है। वैसे भी किसी को स्वभाव से सीधा कहना हो तो उसे गाय कह दिया जाता है। तो ये सीधी सरल गाय साथ बैठने भर से असीम शांति का अनुभव देती है, शांत भाव से अपना स्नेह प्रकट करती है।
1: कडल थेरेपी लिखा हुआ है, क्या है कडल थेरेपी? हग थेरेपी।
2: जो हग थेरेपी करने से उसको एक एनर्जी पास होगा अपने जिस्म के अंदर।
1: अच्छा,
2: मोहब्बत एक फील होगा करने से,
1: जादू की झप्पी जिसको कहते हैं।
0: सच कहें तो इस जगह से मन ही नहीं भर रहा था, लेकिन कहानी का दूसरा सिरा पकड़ने के लिए हमें आगे भी तो जाना था। हमने एक ऐसे व्यक्ति का पता लिया जो हैदराबाद शहर में रहते थे और उन्होंने ये गाय खरीदी थी, अपने घर पर रखते थे। तो हम पहुंच गए वहाँ।
1: तो हमने वहाँ पर गौशाला में सुना कि कई लोगों ने इसे खरीदा है, नाड़ीपति गाय को। यहाँ पर हैदराबाद हम पहुंचे हैं, यहाँ विनोद जी का घर है। नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: कैसे? बढ़िया।
1: आपने नाड़ीपति कैटल्स में से आपने कितनी गायें ली हैं
3: अभी तक? पूरे पांच।
1: पांच? हम मिल सकते हैं उनसे?
3: जरूर।
1: ये आपका घर है पूरा?
3: ये हमारा ओन घर है।
1: कितना फ्लोर है?
3: जी प्लस टू प्लस।
1: अच्छा, तीन फ्लोर और ऊपर। चलिए चलो। आपके पास ये डॉग है और साथ में गाय को रखने से कोई दिक्कत नहीं होती है?
3: आपको दिखाऊंगा वीडियो, साथ में खेलते हैं।
1: खेलता है ये?
3: साथ में खेलते हैं।
1: नाम क्या रखा है?
0: पांच मंजिल सीढ़ियां चढ़कर हम अपार्टमेंट के भीतर पहुंचे और हमने जो वहां देखा वो अद्भुत भी था, अविश्वसनीय भी और अकल्पनीय भी।
1: वेदिका और नंदिनी।
0: छोटी छोटी गायें घर में घूम रही थी, जहाँ चाहे बैठ रही थी, बच्चों से खुलकर खेल रही थी। घर के लोगों से तो छोड़िए, पेट डॉग से भी उनकी खूब दोस्ती थी। या आंखें बंद कर बस इतना सोचिए कि पांचवी मंजिल पर एक अपार्टमेंट में गायें आराम से रह रही हैं। कल्पना कर पाना मुश्किल है, लेकिन यही तो अद्भुत है।
1: इतना सजा के आप रखते हैं, आपको क्या आपके मन के बहुत करीब है? बहुत
3: बोल तो गाय बहुत प्यारी लगती है हमको, तो हम इसको ऐसे गौ माता एनी टाइम ऐसे रहना चाहिए एक्चुअली सजज के। हाँ। जब माता मानते हैं तो फिर सजा भी होना चाहिए माँ की तरह।
1: और आपका क्यों इतना भावनात्मक जुड़ाव है?
3: चलिए ऐसे तो मैं पशु प्रेमी हूँ, हर टाइप के जानवर मुझे पसंद है। एक टाइम पे हम सबके घर में गाय हुआ करती थी, आजकल शहर में आ गए गाय पालना बहुत मुश्किल हो गया, पर डॉक्टर कृष्ण राजू ने ये नया ब्रीड बनाया नाड़ीपति नैनो। अब इनको अपन घर में आराम से पाल सकते हैं, मतलब कुत्ते की जगह ले सकते हैं।
1: आपके पास, हालांकि आपके पास तो कुत्ता भी है।
3: हाँ।
1: लेकिन मैंने देखा थोड़ा बाहर वो मतलब अपना।
3: हाँ, वो द्वारपाल है।
1: हाँ, द्वारपाल। तो आप उस सोच पे जा रहे हैं जो परंपरा रही है।
3: हाँ।
1: तो आपके पास कौन कौन सी है अभी?
3: अभी मिनीचर गाय है। हाँ, पेयर है।
1: हाँ,
3: माइक्रो मिनीचर अभी हो गई है।
1: अच्छा,
3: नैनो है
1: ये? माइक्रो मिनीचर।
3: ये माइक्रो मिनीचर,
1: वो
3: नैनो है।
1: अच्छा। तो और ये आप इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस भी डालते हैं, तो वो जो सांड है और उसका बच्चे का।
3: हाँ।
1: मतलब वो आपने डाला है, क्या क्या रिश्ता है दोनों का
3: अभी? ये तो उसकी बेटी है।
1: हाँ।
3: ये तो मस्ती कर रहे, तो सोचा चलो क्यों ना इसको शूट कर जाए।
1: हाँ।
3: तो शूट किया।
1: अच्छा, ये है वो?
3: ये है वो।
1: अच्छा अच्छा,
3: तो शूट कर दिया, तो फिर सोचा चलो लोगों को भी दिखाएंगे, तो शायद लोग बहुत लोग देख के इंस्पायर होंगे कि हाँ चलो हम भी गाय पालेंगे। तो जैसे लगा तो वो तो वायरल हो गया, लोगों को काफी पसंद आया।
1: तो अभी जो जैसे इसकी माँ है उसका आप लोग मतलब जो मिल्क है वो दूध है जो घर में आप लोग इस्तेमाल?
3: अभी दो स्तन का दूध इसको पिलाते हैं, दो स्तन का हम निकालते हैं।
1: अच्छा।
3: नहीं तो पूरा दूध इसके लिए हानिकारक है, मतलब फिर लूज मोशन वगैरह लग जाएगा इसको।
1: हाँ, हाँ।
3: ज्यादा दूध भी नहीं पिलाना चाहिए।
1: आप लोग वैसे राजस्थान के रहने वाले हैं?
3: हाँ।
1: सब लोग। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं
3: अभी? हम तो यहाँ बचपन से रह रहे हैं।
1: बचपन से।
3: अच्छा।
0: घर वालों ने कहा कि इन गायों को पालना बहुत आसान है, थोड़ी सी खुराक जो आसानी से मिल जाती है।
1: क्या क्या खिलाते हैं?
3: अभी तो फिलहाल
4: ये
3: तो दूध और घास शुरू कर रही है, वो घास ही खाती है, मक्की की जवारी मक्की की हो गई, जवारी की हो गई, हम छत पे उगाते इसके लिए चारा भी।
1: और ये क्या पायल हमेशा से पहनाई है इसको?
3: हाँ, जब इसका एक जब इसका फंड अमाउंट हुआ इकट्ठा हुआ तो हम लोग ने सोचा कि इसका पैसे इस पे खर्च करना चाहिए।
0: हाँ, फ्लैट में अगर टाइल्स लगी हो तो फिसलन से बचाने के लिए इन गायों को ऐसे स्पेशल जूते पहनाए गए थे।
1: तो ये जूते भी पहनाए?
3: हाँ, जूते ताकि घर में स्लिप ना हो जाए टाइल्स पे।
1: हाँ।
3: ये क्या हल्की है तो ये बैलेंस कर लेती है।
1: हाँ।
3: वो बैलेंस नहीं कर पाती है, वजन बढ़ गया उसका।
1: अच्छा, तो वो भी कंट्रोल में रखना पड़ता है।
3: हाँ, तो फिर कहीं चोट लग जाएगी।
1: पर आप अपना एक्सपीरियंस क्या कहेंगे, ऐसा है कि लोगों को
3: नहीं, अभी सबको पालना चाहिए। अभी अभी किसको सर दर्द होता है तो गोली लेते ना।
1: हाँ।
3: गोली लेने की जरूरत नहीं है, इनके पास अगर बैठ गया तो बस है, सर दर्द ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा। वैसे आराम से सोफे पे बैठते हैं ये सब कुछ? हाँ। भी
3: ये तो अभी घर में कहीं भी घूम सकती है, हम इसको नहीं बैठाते ताकि नीचे गिर ना जाए।
1: आप लोग सबका भी मन लगा रहता है इनसे?
2: बहुत अच्छा मन लगा।
1: हाँ, सबको पसंद है बहुत, सब ख्याल भी रखती है, देख रेख भी करती है।
3: घर की पहली रोटी गाय को जाती है।
1: हाँ।
3: और स्कूल जाने से पहले गौ माता को प्रणाम करके जाती है।
1: अच्छा।
3: मेरी भाई की बेटी।
1: हाँ। अच्छा लगता है इनसे खेलना? हाँ? ऐसे ऐसे इधर रखे, तुम्हारी बात सुनती है ये? हाँ, बोल के तो बताओ, तुम उसकी बात बोलने आती है, उसकी भाषा बोलने आती है? कैसे बोलती है वो?
3: नंदो क्यों बोले, क्यों बोला नंदो?
0: हिंदू संस्कृति में आज भी करोड़ों लोग पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं। जब गाय के प्रति श्रद्धा का भाव इतना मजबूत हो तब गाय का हर रूप माँ को प्रणाम स्वरूप ही हो जाता है। आकार छोटा हो जाने पर भी है तो वो गौ माता ही। सनातन मान्यताओं में गाय का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और गाय को पूजनीय बताया गया है। वेद, उपनिषद, पुराण, हर जगह गाय के महत्व को बताया गया है। स्कंद पुराण में गाय को ईश्वर का उपहार बताया गया है। विष्णु पुराण में गाय की सेवा को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जिसका वध नहीं किया जाए, क्योंकि गाय को सकारात्मक ऊर्जा का भंडार कहा गया है, जिसके पास रहने से सात्विक गुणों का विकास होता है। अथर्ववेद में गाय को सौभाग्यकारी कहा गया है, साथ ही गौ सेवा का उल्लेख मनुष्य की समृद्धि और खुशियों के कारक के तौर पर किया गया है। पौराणिक काल की मान्यताओं में कहा गया है कि द्वापर में भगवान कृष्ण ने गोपालन किया तो गोपाल कहलाए। राजा दिलीप से लेकर भगवान श्री राम तक इक्ष्वाकु वंश की मान्यता ही गौ प्रतिपालक वंश की पड़ गई, जब हर कालखंड में इस वंश के राजाओं ने गायों की रक्षा की। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, कहा जाता है उनमें से एक रत्न कामधेनु गाय ही थी। कामधेनु गाय की सेवा का भार ऋषियों ने ग्रहण किया, गाय के दूध घी से यज्ञ पूजा की विधियां संपन्न की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसके अलावा गाय से मिलने वाला दूध घी वगैरह सामान्य भारतीय जनजीवन का आर्थिक आधार हुआ करता था। गाय ने पोषण दिया, ममता दी, समृद्धि दी, तो गाय सनातन संस्कृति में आस्था का प्रतीक हो गई और दर्जा मिला माँ का। गाय का दूध, दूध से बना दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इन्हें पंच गव्य कहा जाता है, जो प्राकृतिक उपचार के लिए उपयुक्त माने गए।
5: कि आयुर्वेद में पंचगव्य चिकित्सा या जो पंचगव्य आधारित द्रव्य हैं, उनका सदियों से पहले से प्राचीन काल से ही हमारी संहिताओं में, चरक सुश्रुत संहिताओं में इनके बहुत सारे योगों का वर्णन है। पंचगव्य जो है वो मेनली पांच चीजों से, गाय के ही पांच प्रोडक्ट से मिलके बना होता है, जिसमें गाय का दूध है, दही है, घृत है, गोमूत्र है और गोबर का रस जो उसका एक वो निकालते हैं, उन चीजों से मिला करके ये पंचगव्य है। और हमारे यहाँ इसको अमृत के समान माना गया है और इनसे जो सिद्ध औषधियाँ बनाई जाती हैं वो बहुत सारे मानसिक विकारों में प्रयोग है उनका। पंचगव्य घृत का प्रयोग है जो मानस विकारों की बहुत अच्छी औषधि बताई गई हमारे यहाँ आयुर्वेद में।
2: इसका गोबर और मूत्र से दैट आपका एंटीबायोटिक
1: बैक्टीरियल
2: एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फैमिली लाइक एसिड जैसा नहीं। अच्छा। जो हमको कीट है वो कीट को नाश करेगा। गोबर से आप हर दिन आपने ये इफ यू डू होम लाइक घर पे संस्कार करेगा तो उसका वो गोबर से दैट क्रिएट्स दैट इफ यू मिक्स विथ घी एंड दैट गोबर का इट गिव्स ए वेरी गुड एनवायरनमेंट दैट वो जो ऑक्सीजन भी आता है उससे।
4: गो सेवा और गौशाला में सेवा का कॉन्सेप्ट हजारों वर्ष पुराना है, जहां लोग गायों की सेवा करते हैं जिसमें वो गायों को चारा खिलाते हैं। इससे लोग आध्यात्मिक और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं।
1: अपने संस्कारों में जिन्हें हम माँ कहते हैं, अपनी परंपरा में जिनकी पूजा करते रहे, कभी गौ माता के रूप में, कभी नंदी महाराज के रूप में, उनका ये रूप देखकर हम यही कह सकते हैं कि यह है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: और अब जेन ज़ी को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी का डंका बोल रहा है। चार में से प्रेसिडेंट समेत तीन सीटों पर एबीवीपी का कब्जा हो गया है। वहीं एनएसयूआई का खाता तक नहीं खुला है। एक सीट उपाध्यक्ष का निर्दलीय उम्मीदवार जीता है और इस पर हमने जेपी नड्डा से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा।
7: पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जेन ज़ी को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ और आज तो दूसरों के नतीजे भी आ गए जिसमें एबीवीपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और एक तरफ जहां ये जीत हासिल हुई है वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को भी एड्रेस कर रहे हैं। कितना परिवर्तन आप पिछले कुछ दिनों से लेकर अब तक में देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नतीजे आए बल्कि पंजाब में चंडीगढ़ में जो रिजल्ट आए वो भी काफी उत्साहजनक थे पार्टी के लिए।
8: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग यूथ के बारे में बहुत सुपरफिशियल है। उनके वो कार्यक्रम जो रचते हैं, भगवान भला करे उनका, झूठ की गूंज आपने देखी ही, जो वो तो सबको स्पष्ट है। लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ और पंजाब में धमाका हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये सब ने देखा है। साफ है कि भारत का युवा अपने आप को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी की सपनों को साकार करने के लिए आतुर है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो उसमें लगा हुआ है। उसी को वो उसके साथ अपने आप को अलाइन करके चल रहा है। और इसलिए मैं डूसू के जो पदाधिकारी जीते हैं उनको मैं बधाई देता हूं। ये राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, सारे देश के छात्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये देश का मूड युवा का वो भी प्रतिलक्षित करता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूसू में एबीवीपी को, राष्ट्रवादी संगठन को आगे लाने का प्रयास किया है। और ये झूठ की गूंज, आपको मालूम है कि इसका कोई असर नहीं पड़ता है और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं और आप सब लोग मीडिया में विपक्ष के नेता को जो कवरेज देनी चाहिए वो वगैरह आप देते हैं, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है देश के विषयों के बारे में वो बिल्कुल सुपरफिशियल है और उनकी कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने अब जो विपक्ष का नेता 7.8% ग्रोथ रेट पर हम चल रहे हूँ क्वार्टर पे, और वो नेता डेड इकोनॉमी कहे, तो आपके समझ में इतना ही आना चाहिए कि भगवान उनको सुबुद्धि दे, वो इकोनॉमिक्स का ई समझ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा उनको, अगर ये सारी चीजें समझ में आएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा।
7: तो क्या छात्रों की गूंज जब गूंज रही है आपको लग रहा है सर
8: जो धमाका है, गूंज कहाँ है, ये जो जीत है ये धमाका है,
7: तो उनका छात्रों का गूंज और आपका छात्रों का धमाका है।
8: राष्ट्रवादी ताकतों का, राष्ट्रवादी ताकतों ने एक तरीके से रिजॉल्व किया है, उन्होंने अपना मंतव्य बड़ा स्पष्ट किया है।
6: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां चार में से तीन पदों पर एबीवीपी का ही कब्जा रहा तो वहीं एक पद निर्दलीय उम्मीदवार जीता, चुनाव में एनएसयूआई का खाता भी नहीं खुला।
9: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डवास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं, तो यश पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया एनएसयूआई ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
10: देखिए विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन एनएसयूआई को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से डूसू से बाहर कर दिया है।
9: देखा जा रहा है राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
10: देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी, हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
9: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
10: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और एनएसयूआई को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
9: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
10: देखिए विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की, खैर उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
9: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है, जहां एबीवीपी ने तीन पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं, जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं, बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
11: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है, मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और एवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
9: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि एनएसयूआई ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
11: हमारे एबीपी लाइट डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
9: रिया देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, एनएसयूआई और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखते हैं?
11: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
9: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया या बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही
11: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही जो हर बार जीती है। पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
9: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया इस बार, जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
12: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
9: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन हैं, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है
13: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
9: तो दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आप?
13: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है।
9: मैं साथी लेके जाऊंगा। NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
13: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
9: दीपांशु NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
13: अभी हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
9: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 2 रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया है। पहले देखा जाता कि एबीवीपी NSY के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
6: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
2: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
3: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
2: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक लिहाज से राजनीतिक इतिहास भी लिख रहे हैं, क्योंकि भले वो बिहार सरकार का हिस्सा रहे लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बिहार की बागडोर संभाले रहा, बिहार को आगे की दिशा में बढ़ाते रहा। आज उनका विजन, उनकी सोच के बारे में उनसे ही जानते हैं। 150 दिन वो अपने पूरे कर चुके हैं, उससे अधिक पूरे कर चुके हैं। तो हम जानते हैं सम्राट चौधरी से स्वयं कि वो बिहार के बारे में आगे क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का, स्वागत करें तालियों के साथ।

0: तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज हम लोगों के साथ हैं और पंचायत बिहार में मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि बीजेपी इस बात पर बहुत खुश है कि अंग बंग कलिंग अब तीनों जगह भाई हमारा अपना सीएम हो गया। बिहार एकमात्र हिंदी पट्टी का राज्य था जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। बीजेपी का सपना तो पूरा हो गया लेकिन जनता का सपना पूरा करने में 150 दिन के इस सफर में आपने क्या ऐसा किया है जो आप जनता को आज बता सके, अपना 100 दिन तो नहीं 150 दिन वाला रिपोर्ट कार्ड पेश करें।
1: मैं आज तक को पंचायत बिहार के इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि आप बिहार के विकास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जनता की आकांक्षा बहुत बड़ी होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन पिछले दो तीन चार महीने में लगातार विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन लगातार हमें मिलता रहा है और आज मैं बता सकता हूं जरूर कि नीतीश जी ने बिजली और सड़क पर बहुत काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किए, उसको अब तेज गति से बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। हमारे साथी मंत्री वगैरह आपके बीच में आए होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी व्यवस्था को खड़ा कर देना कि बिहार का कोई भी नौजवान बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करे, यहां पढ़े, यहां रोजगार मिले और यहीं पर अपने जीवन को उन्नति का रास्ता दे। और इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं कि पिछले 150 दिनों में मैंने 700 मॉडल स्कूल बनाए और उस मॉडल स्कूल में जो संरचना खड़ा किया वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो लगभग 3.5 लाख बच्चे उस मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका सपना होता था कि हम नेतरहाट में पढ़ाई करें, हम सैनिक स्कूल में जाकर पढ़ें, हम देवघर में रामकिशन मिशन स्कूल में पढ़ें और अभी सिमरतल्ला में हमारा सबसे बेस्ट स्कूल है वहां जाकर पढ़ने का काम करें। हम उस व्यवस्था को हम लोगों ने मॉडल स्कूल में शिफ्ट किया, वहां अच्छे टीचर्स की पोस्टिंग की, साथ ही साथ हमने 2-3 फॉर्मूला वहां क्रिएट कराया। एक, जो बच्चे बाहर जाते थे नीट की तैयारी करने, जेई की तैयारी करने, उनको पूरी व्यवस्था वहां देना शुरू किया और रात के 12 बजे यदि हमारा कोई बच्चा मॉडल स्कूल पढ़ने वाला बच्चा यदि चाहे कि हमको रात के 1 बजे टीचर हमको ट्यूटर की व्यवस्था करे तो सरकार ने विद्यार्थी साथी ऐप दिया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एवरेज रात के 1 बजे 1.5 लाख बच्चे उससे पढ़ाई कर रहे हैं 1 बजे रात को, और संडे के दिन वही बढ़कर 2 लाख बच्चे उससे अटैच हो जाते हैं।
0: रियल डेटा ट्रैक हो रहा है,
1: इसलिए मैं उसका भी पूरा एक मैकेनिज्म हमने बनाया कि वो ओटीपी के माध्यम से उसका पूरा सिस्टम क्रिएट किया है। जब बच्चा उसको ऐप पे जाएगा तो उसको ओटीपी आएगा और 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध होंगे, ये 24/7 उनको शिक्षक उपलब्ध होते हैं। तो ये पूरी संरचना क्वालिटी एडुकेशन देने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड टाइम में बिहार में शिक्षक की कमी रही, जबकि नीतीश जी ने लगभग 7 लाख शिक्षकों की बहाली किया, इसके बावजूद जब हम लोगों ने देखा कि डिग्री कॉलेज ब्लॉक में नहीं थे हमारे, पूरे बिहार में 272 डिग्री कॉलेज आजादी के 80 वर्ष में थे, मैंने 15 जुलाई को लॉन्च किया और एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज खोला पूरे बिहार में। और उसमें जो समस्या होती थी कि टीचर नहीं होंगे, तो हम लोगों ने एक महीने के रिकॉर्ड टाइम में 25 जून को इस पूरी व्यवस्था को शुरुआत किया और एक महीने के रिकॉर्ड टाइम में सभी शिक्षकों की बहाली करके उसको पोस्टिंग देकर, और जब मैं स्वयं गया उनसे मिलने, उन शिक्षकों से, तो मुझे खुशी उस दिन हुई कि कोई दिल्ली से, कोई बैंगलोर से, कोई बॉम्बे से नौकरी छोड़कर बिहार आए।
2: सुनने में भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि बिहार की भूमि में शिक्षा का महत्व इतना है। आपके शिक्षा मंत्री भी यहां पर आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे जो भवनहीन स्कूल हैं उन लोगों के लिए भी आप लोगों का एक प्लान है। लेकिन मैं यहां पर एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। पहले हमेशा ऐसा कहा गया कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से ढाई कदम पीछे चलते हैं, तो एक तो ये कि ढाई कदम क्यों, लेकिन नीतीश कुमार को जब अपना उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तब भी बताया गया कि वो चाहे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहें बिहार के। अब एक 20 वर्ष का शासन एक ऐसे व्यक्ति का हम देख रहे हैं जिनको सुशासन बाबू कहा गया। आखिर में सवाल भी उठे बहुत सारे, सम्राट चौधरी अपने नेतृत्व में बिहार में ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि ये सम्राट अध्याय रहे, नीतीश अध्याय का एक्सटेंशन नहीं?
1: नहीं, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं श्वेता जी, बिहार के निर्माण में श्री बाबू कपूरी ठाकुर और नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान रहा है, इसे मैं डिफर नहीं कर सकता हूं। श्री बाबू ने पूरी संरचना खड़ा किया, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए और गए, नीतीश कुमार जी ने डेवलपमेंट का भी काम किया, सामाजिक न्याय का भी काम किया। नीतीश कुमार जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आज लोग घूम सकते हैं बिहार में, काम कर सकते हैं बिहार में, बिजली गांव में है, पानी गांव में है, सड़क गांव में है। अब क्या है कि हमको तेज गति से बढ़ना है। हम कैसे महाराष्ट्र की गति को प्राप्त करें, हम दिल्ली की गति को प्राप्त करें, कर्नाटक की गति को प्राप्त करें, इसके लिए इंडस्ट्री के सेक्टर में, एडुकेशन के सेक्टर में, और अभी तक राज्य सरकार का लक्ष्य ही नहीं था कि इंडस्ट्री के लिए हम जमीन उपलब्ध करा पाते। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 150 दिन में लगभग 1,500 के आसपास इंडस्ट्री को जमीन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ये काम जब मैं उप मुख्यमंत्री था, नीतीश जी के साथ काम कर रहा था, तो वित्त मंत्री की हैसियत से ये हमें थोड़ा काम करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए लगभग 13,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया। क्योंकि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट मान सकता हूं मैं, क्योंकि हमसे पीछे छूट चुका बांग्लादेश, हमसे पीछे छूट चुका इंडोनेशिया, हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में 14 करोड़ की आबादी है, हमारे पास कोई रेवेन्यू नहीं था। मैं पहली बार विधायक जब बना तो बिहार में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 13% रेवेन्यू यहां से आता था। मैं जब बजट पेश किया श्वेता जी, वो मेरे लिए सबसे गौरव का दिन था, जब मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से मैं उप मुख्यमंत्री था और बजट पेश कर रहा था, जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू, उस झारखंड में का बजट 1,39,000 करोड़ का था और बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। ये बदला हुआ बिहार है। आज हम देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाला राज्य है। सिर्फ बिजली सेक्टर को आप देख लीजिएगा, 23,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी देते हैं बिहार के गरीबों, और हमने कभी नहीं देखा कि ये लालू जी को हम सब्सिडी दे रहे हैं, कि तेजस्वी जी को दे रहे हैं, या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं। हम 2,22,00,000 लोग यहां बिजली कनेक्शन लिए, उसमें लगभग 1,92,00,000 डोमेस्टिक यूजर है, 1,92,00,000 परिवार को हम सबको हम 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। और इसके साथ साथ लगभग 6,000 करोड़ रुपया बिहार के किसानों को उनके कृषि फीडर के तौर पर मात्र 55 पैसा के रेट से हम बिजली उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम सब्सिडी के माध्यम से किसानों को भी मदद करते हैं, गरीबों को भी मदद करते हैं।
3: लेकिन मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार की एक लेगेसी रही है, और खासकर जब तक वो मुख्यमंत्री रहे 15 साल, खासकर पहले जब जनता दरबार किया करते थे, लोगों से मिलते थे, पटना आते थे लोग उनसे शिकायतें लेके, आपने ऐसा क्या अलग कुछ किया है पिछले 150 दिनों में ताकि जनता की समस्याएं जो है वो कम हो सके? क्योंकि बहुत सारी समस्या आज भी है, लोगों के पास शिकायतें आज भी है।
1: इसमें भी एक अच्छा मैकेनिज्म मैंने लाया। मैं नीतीश जी के साथ काम करता था तो मैं देखता था, एक व्यक्ति उनसे साल में 5 बार मिलता था और एक ही काम लेकर आता, और वो पत्र नीचे जाता था। मैंने एक सहयोग कार्यक्रम शुरू किया, और वो भी प्रेरणा तब मिली हमको जब मैं मुख्यमंत्री हुआ। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद 4-5 दिन तो लोग बधाई दिए, 5वें-6वें दिन एक एक कागज थमाते गए, और मैंने देखा कि 5 दिन में मेरे पास लगभग 20,000 लोगों का आवेदन था। ये मेरे लिए चैलेंज था। मैंने एक कार्यक्रम की कल्पना की, सहयोग कार्यक्रम। पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चलाया जाता है, और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक लगभग 8.5 लाख आवेदन आए हैं हमारे राज्य में, और 8.5 लाख आवेदन में से 96% आवेदन का निष्पादन हमने किया। और उस आवेदन में क्या कार्रवाई है, यह सबसे मिराकल है। जैसे आपने कोई आवेदन दिया कि हमारे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, पानी कनेक्शन नहीं है, हमारा जमीन का डिस्प्यूट है, 10 दिन तक यदि ऑफिसर ने कार्रवाई नहीं किया, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन एक नोटिस जारी होता है उस पदाधिकारी को, उस कर्मचारी को, कि इसका आदेश पारित कीजिए आप। उनको मैं सलाह नहीं देता हूं, उनको कहता हूं कि आप आदेश पारित करें। 20 दिन तक यदि उसने आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया, हम दूसरा नोटिस मुख्यमंत्री कार्यालय से देते हैं।
0: चलिए ठीक है, अब इससे तो जनता से बात करेंगे कि कितना
1: पूरा कर लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा 25 दिन के ऊपर उसका तीसरा नोटिस आता है, और अभी तक लगभग 12,000 लोगों को नोटिस गया, लेकिन कोई पदाधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं मिला हमको जो 30 दिन पार करे, क्योंकि 30 दिन के बाद वो स्वतः निलंबित हो जाएगा, किसी को आदेश देने।
0: मुख्यमंत्री जी, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है बिहार में, तो क्या वजह रही कि जो सीट 3 दशक से ज्यादा के वक्त से बीजेपी के पास थी, जो आपके मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट है, बांकीपुर सीट ही बीजेपी हार गई, जबकि सारे लोगों ने ताकत झोंकी। अब विपक्ष कह रहा है कि ये रेफरेंडम है,
1: देखिए
0: सम्राट चौधरी पर रेफरेंडम है
1: बांकीपुर की जनता, ये तो जनता तय करती है। 243 सीट पर चुनाव हुए, 202 सीट हम जीत कर आए, चाहे वो अररिया जिला का वोट हो, भागलपुर जिला का वोट हो, बक्सर जिला का वोट हो, सासाराम का हो, हाजीपुर का वोट हो, ये तो जनता तय करती है। एक सीट चुनाव तय नहीं करता है, लेकिन विधायक जी है, विधायक काम करें, इसमें क्या दुमत है। 243 विधायक है, सबको काम करने का अधिकार है, सब काम करें।
0: लेकिन मुख्यमंत्री जी, बांकीपुर पर अभी 1-2 सवाल और है, छोटा सा ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की जीत वहां बिहार में एक नई दस्तक दे रही है? वजह क्या है कि भाई अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुआ?
1: देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने फिर कहा, ना व्यक्तिगत मेरे इशू है, ना मेरी कोई लड़ाई है। बिहार की जनता के बीच में मोदी जी, नीतीश जी, एनडीए के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, काम करना है। 2030 में फिर चुनाव होगा, फिर पूरी बिहार की जनता देखेगी।
2: पर इत्तेफाक नहीं हो सकता है, जेंजी प्रोटेस्ट उसी समय चलता रहा, छात्रों की नाराजगी एक तरफ नजर आती रही, आंदोलन अलग अलग जगहों पर हो रहा था, उसके बीच में आया तो सबने कहा छात्र नाराज है, युवा नाराज है, आग्रह नाराज है।
1: जिस तरह प्रधानमंत्री जी पूरी तरह हमारे जो नौजवान साथी है उसके साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है। मैं तो सबसे पहला मुख्यमंत्री था जिसने तुरंत उनके ऊपर जितने FIR हुए सबको मैंने वापस लिया।
3: लेकिन सम्राट जी ये बताइए, क्योंकि आप नीतीश कुमार के साथ भी आपने काम किया हुआ है, एक लंबी लकीर उन्होंने खींची है विकास की पिछले 20 सालों में, सम्राट चौधरी को क्या कोई प्रेशर महसूस होता है क्या कि उस लंबी लकीर को मैं कैसे और बड़ा करूं, और क्या आज भी सम्राट चौधरी इस दबाव में है कि भाई मेरे ऊपर भी कोई सुपर CM है?
1: नहीं नहीं, हमारे नेता रहे नीतीश कुमार भाई, इससे कैसे मैं डिफर कर सकता हूं। आज भी NDA के सबसे बड़े नेता वो हैं।
0: सम्राट जी, मैं मानती हूं कि ये संयोग नहीं है कि आपने आज अपने काम की शुरुआत में ही छात्रों की चर्चा बहुत की, क्या इसके पीछे छात्र आंदोलन है? 3 सवाल इससे जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिक है। एक तो अभी ही छात्रों का आंदोलन हुआ, BPSC एग्जाम को वो चाहते हैं रिव्यू हो, जो सब इंस्पेक्टर के लिए BPSSC एग्जाम है उसका भी वो रिव्यू चाहते हैं। इससे पहले भी छात्र आंदोलन पटना में हुआ, उस वक्त पर ज्यादतियों को लेकर सवाल खड़े हुए सिवान में, तो AK-47 के इस्तेमाल को लेकर पूरे देश में एक चर्चा हुई कि भाई छात्र थे, हमारे बच्चे थे, उनको पेपर लीक से समस्या है, उनको एग्जाम करने की पद्धति से, भ्रष्टाचार से समस्या है, हम हल न देकर।
1: इसलिए अंजना जी, मैं पहला राज्य हूं जिस राज्य में मैंने सिटिंग जज, मैंने रिटायर्ड जज के लिए विशेष तौर पर चीफ जस्टिस साहब से आग्रह किया कि एक सिटिंग जज हाई कोर्ट के उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाए कि इस पूरे मामले का रिव्यू, कहीं जो भी गलत जिसने भी किया सब पे कार्रवाई हमारी सरकार करेगा, इससे मैं पीछे नहीं।
0: BPSC एग्जाम पर
1: किसी भी जो भी रिपोर्ट वो देंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी तरह नौजवानों के साथ खड़ी है, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर तौर पर नौजवान जो चाहेंगे वो आवेदन दे, और जो कमेटी बनी है वो जो आदेश करेगा उसके साथ सरकार 100%।
0: ये कमेटी आप किस पर बता रहे हैं, BPSC एग्जाम पर या AK-47?
1: मैंने दोनों चीजों पर नहीं, उस पर तो जो कार्रवाई करना था उस पर कार्रवाई, उनको नहीं जाना था, जिनको नहीं जाना था वैसे पदाधिकारी कर्मचारी वहां गए, सब पे कार्रवाई हुई। लेकिन जो परीक्षा का सवाल है या किसी भी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार का इशू है जो परीक्षा से संबंधित, उसके लिए विशेष कमेटी का गठन मैंने किया है जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी मॉनिटरिंग कर।
2: सम्राट जी, एक युवा की बात और उठनी लाजमी हो जाती है, और वो युवा भरत तिवारी। एक ऐसा एनकाउंटर जो हुआ बिहार में, लेकिन उसकी चर्चा भारत के कोने कोने तक हुई। जो बातें उसके द्वारा कही गई थी, जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, उन चीजों को लेकर आपको लगता है वो रोष, वो गुस्सा उन नौजवानों में है अभी भी?
1: मेरा ये मानना है, मैंने 48 घंटे में उस पर न्यायिक कमेटी बनाई, और न्यायिक कमेटी ने कहा कि पुलिस से वहां चूक हुई, और हमने तुरंत उस परिवार के सहयोग के लिए भी खड़ा हुआ, परिवार से मैं मिला भी उनकी माताजी से, और जो दोषी पदाधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया गया, जेल में भी डाले गए, और तमाम चीजों के लिए अब न्यायालय तय करे कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करके उसको सजा भी देनी।
2: पर कानून व्यवस्था को आप अपना स्ट्रेंथ बताते हैं, ये कहा जाता है कि अब जीरो टॉलरेंस फॉर ऑल क्राइम सब तरह के अपराध के लिए बिहार में है, पर जो कुछ इंसिडेंट्स एक सेना के जवान को लेकर जो मामला अभी आया, इस तरह की चीजों को लेकर आप कैसे हैंडल, क्या हैंडल करना चाहते हैं सम्राट चौधरी का क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर क्या?
1: मेरा मानना है कि कार्रवाई लगातार होते रहनी चाहिए, सुशासन तभी स्थापित होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, अपराधी को सजा दिलाया जाए, और यदि कोई जघन अपराध है उस पर तुरंत अपराध पर कार्रवाई हो और उसको सजा एक टाइम फ्रेम में हो। हम लोगों ने इसके लिए गुंडा एक्ट में पूरा प्रावधान किया, अभी आप कह रही थी ना परीक्षा सुधार के, हमने कहा है कि एक से दो बार यदि कोई व्यक्ति चार्जशीटेड हो इस परीक्षा के हेर फेर करने में, उसको एकदम गुंडा एक्ट में बंद करके 1.5 साल रखना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे कई चीज हैं जो कानूनी तौर पर अपराध को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई।
0: एक आजकल एक सेकंड रोहित, जल्दी से एक सवाल इसी टॉपिक पे चुकी मन में आया, कहते हैं आजकल तीन सीएम में रेस लगी हुई है, योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी।
1: नहीं नहीं, मैं तो रेस में ही नहीं,
0: बुलडोजर एनकाउंटर,
1: मैं तो रेस में ही नहीं हूँ मैं तो रेस में ही नहीं हूँ कहाँ अंजना जी आप हमको
0: बुलडोजर एनकाउंटर का बोलबाला, माफिया का अंत करना है, पुलिस एकदम ट्रिगर हैप्पी हो जाए तो हो जाए।
1: नहीं, अपराध अपराध अपराध के खिलाफ होना चाहिए। मैं ना, मेरी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है ना कोई व्यक्तिगत झगड़ा है, कहाँ मैं इस चक्कर में पड़ू। मेरा काम है शासन को ठीक से चलाना, पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड छोड़ देना।
3: तो मुख्यमंत्री जी, एक चर्चा अभी पिछले कुछ दिनों से चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो यूसीसी को लेकर जब अपनी बातें रखी हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए शासित या बीजेपी शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू हो जाएगा, बिहार में हम देख रहे हैं कि इसको लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू ने इस पर सवाल उठाए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, तो बिहार में सम्राट चौधरी का स्टैंड क्या है या बीजेपी का स्टैंड क्या है यूसीसी को लेकर, और जेडीयू और एलजेपी जो सवाल खड़े कर रहा है इस पे, एक तरीके से कहें तो विरोध में है, उसको फिर कैसे आप लोग मनाएंगे?
1: नहीं नहीं, स्वाभाविक है, हम सबसे बात करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे, तब कोई डिसीजन करेंगे।
2: सम्राट जी, एक चीज जो इस समय बिहार जिससे जूझ भी रहा है, बाढ़, मतलब कभी कभी लगता है कि नियति बनकर लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, क्या बिहार में बाढ़ का कोई इलाज नहीं हो सकता? क्यों हर साल बाढ़ से पीड़ित होना पड़ता है बिहार को?
1: बेसिकली क्या है श्वेता जी, ये अपना पानी नहीं है, उत्तर प्रदेश से 6.5 लाख क्यूसेक पानी आता है, मध्य प्रदेश झारखंड से लगभग 11.5 लाख क्यूसेक पानी आता है, नेपाल के तराई से कोई लिमिट नहीं है, कभी भी 1 लाख क्यूसेक पानी आएगा और कभी 10 लाख क्यूसेक पानी आएगा। ये नेपाल में तय करना है कि नेपाल में कितनी बारिश हुई, वो बेचारे को भी पता नहीं होता है इतनी बारिश का पानी हमारे यहां आता है। अब है कि सबका जंक्शन बिहार है और जो सबसे बड़ा ड्रेन है वो माँ गंगा है, इस गंगा में एक तरह से गाद बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब बिहार के बॉर्डर पर बक्सर में माँ गंगा आती है, वहां पे मात्र 6 किलोमीटर का चौड़ाई है, और यही जब आप बिहार से झारखंड के लिए हम डिस्चार्ज करते हैं, वहां पर लगभग 32 किलोमीटर का ड्रेन है, भागलपुर में 26 किलोमीटर, खगड़िया और मुंगेर में वो 22 किलोमीटर, ऐसे करते हुए पूरे हमारे जमीन को तबाह करते हुए ये पानी समुद्र में जाता है। हमारे लिए चिंता का विषय है, ये बात सही है। अभी तक हम डरते थे कोसी से, कोसी में 6.5 लाख क्यूसेक पानी आते थे तो हमारी डर रात की नींद उड़ जाती थी, इस बार सिर्फ गंगा में 17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, 17 लाख, आप सोचिए उसको कंट्रोल करने में हाईएस्ट लेवल तक का पानी इस बार गया। एचएफएल जो है अभी तक 16 में आया था 1922 के बाद, और 16 के बाद 10 साल के बाद इस बार हाईएस्ट लेवल पर लगभग 1 फीट अधिक पानी, जो 2016 में आया उससे अधिक पानी आया।
2: तो कुछ नहीं हो सकता है?
1: नहीं, इसको करना है,
2: नहीं, किसी की भी सरकार है, कुछ हुआ नहीं, ही नहीं।
1: मैंने इसका वर्कआउट शुरू किया है, कोसी और गंडक पर भी काम शुरू किया था कि नेपाल के तराई में एक जमाना था कि 1.5 लाख क्यूसेक पानी भी आते थे 2008-09 में, तो बिहार के लगभग 7 से 8 जिले पानी पानी हो जाते थे, चाहे वो कोसी हो चाहे वो मथिला का इलाका हो। गंडक में 3 लाख क्यूसेक पानी आता था, पूरा चंपारण और सारण डूब जाता था। अब धीरे धीरे इसको ठीक किया है हम लोगों ने, जहां बिहार में मात्र 21 लाख हेक्टर जमीन सिंचित हुआ करता था, आज वो बढ़कर 44 लाख हेक्टर जमीन सिंचित हो गया है। लेकिन अब जो चुनौती आप कह रही है, हमको हर हालत में, हमने नीदरलैंड भी टीम भेजा था, सबसे ज्यादा नदियों पर काम वहीं हुआ। हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, कोसी से हम शुरू करेंगे और गंगा को हर हालत में बांधने का काम हमारी सरकार करेगा।
0: मुख्यमंत्री जी, एक पूजा देवी है कटिहार की, उनका एक वीडियो है आपके नाम, अगर आपका ये हो तो जरा चला देते हैं, आप उनकी बात सुनिएगा, क्योंकि बाढ़ एक ऐसी विभीषिका है जिस पर हम लोग इतना क्यूसेक पानी, उतना क्यूसेक पानी सब बात कर लेते हैं, साल दर साल कुछ बदलता नहीं है। 15 जिलों में उन घरों में शाम का दिन का खाना नहीं बन रहा है कई दिनों से, तो उनको जो समस्या है एक बार सुनिए। हो क्या
4: दुकान दौड़ी सब कुछ रास्ता बंद छे तो जेबे कथी से, यहाँ वोट मांगे तोरा वोट देबो, देख पानी हमरा देख हमरा तल, तो पानी पी लो जेता पानी, तू सब कलर पानी पिए, हम अपने पानी पिए छे, कल डूबी गेलो छे।
0: ये जो समस्या,
1: देखिए ये कष्ट तो है,
0: बहुत कष्ट।
1: मैं तो ऐसे विधानसभा से पहले जीतता था जिस विधानसभा में 3 नदी गुजरती थी, यहाँ 2 मेरे साथी बैठे हैं बगल के सीटों पर चुनाव लड़ते रहे, कोसी, माँ गंगा और बूढ़ी गंडक, 3 नदी से घिरा हुआ हमारा विधानसभा होता था। उस पीड़ा को मैं जानता हूँ, इसमें कहीं तो मत, प्रत्येक साल जो पीड़ा होती है इसी पीड़ा के लिए मैंने कहा इसको हर हालत में बांधना होगा, अब इसका परमानेंट सोल्यूशन करना होगा, और इस लक्ष्य को हम लोगों ने कबूला है, इसको आगे बढ़ाने का काम होगा।
3: ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं कि रोजगार का जो 1 करोड़ का टारगेट था उसको आप पूरा करें, लोग जो बाहर काम कर रहे हैं पटना से या बिहार से बाहर वो वापस आए यहाँ पर?
1: एकदम रोहित जी, एकदम सही समय है, अब लौट चले बिहार वाला स्थिति। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे। जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो 2025 के चुनाव में जब हम जा रहे थे तो हम लोगों ने हिम्मत बढ़ गया, जब देखा कि बिहार की सरकार ने लगभग 43 लाख लोगों को रोजगार दिया और लगभग 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। अब इस बार इसलिए हम लोगों ने टारगेट किया कि 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, और यह लगातार काम चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा रही
2: है। सम्राट जी, मुझे तो कोसी बाढ़ याद आता है, जब पहली बार एक मुख्यमंत्री को मैंने जमीन पे देखा था, जब पूर्णिया वगैरह उत्तर बिहार के क्षेत्र में नीतीश जी गए थे। इस बार सरकार दिख तो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो त्रासदी मैं बचपन से देखती रही कि कभी स्कूल छोड़कर दूसरी जगह रहो क्योंकि बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, बाढ़ आ गई, वो आज भी न हो, नंबर वन। क्या जो हमारा फरक्का बराज का इशू है और हमारी संधि है जो दिसंबर में खत्म होने वाली है, उसको लेकर वहां से कोई समाधान आने वाले?
1: उसके दो उपाय हैं। इंटरनेशनल टीटी जो बांग्लादेश के साथ है उसमें है कि हमको 4 महीने ही पानी यूज करने का अधिकार है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जिस समय बिहार के पास पर्याप्त पानी होता है। इस समय पानी हमको मांगने की जरूरत गंगा मैया से नहीं है, हम तो उल्टा डिस्चार्ज करना चाहते हैं कि जल्दी से निकले। हम इंटरनेशनल टीटी में हमने यही आग्रह किया है विदेश मंत्री जी से, हमारा पक्ष सुना जाए, राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए। राज्य सरकार के 3 मुद्दे हैं। 1, हमको पानी पीने के लिए कभी नहीं रोका जाए, साल के 12 महीने पानी पीने और खेत में पानी देने के लिए हमको कभी नहीं रोका जाए। आप एकदम बांग्लादेश को पानी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, पानी जाएगा ही, हम जाए, हमको कोई उससे रोक नहीं। हमको यह अधिकार रहे कि जब हम कष्ट में रहें तो हमको पानी पीने के लिए, जो हमारा साउथ बिहार का पूरा इलाका है, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, इधर सासाराम का इलाका, इस पानी को यूज करने का अधिकार, हमारे खेतों को जब जरूरत हो तब हम पानी ले सके, नहीं तो हम जिएंगे कैसे। और तीसरा, उद्योग लगाने के लिए टाइम आप फिक्स कर सकते हैं कि इस समय पानी ले, क्योंकि बिहार में उद्योग नहीं लगेगा तो बाहर हम प्लान करने जाएंगे। आज दुनिया में सेमीकंडक्टर लग रहे हैं, हमारे यहां लगेगा, हमको सबसे पहले पानी चाहिए, और पानी जो सहायक नदियां, इसी से पानी आएगा। हमारे पास मात्र 350 क्यूमटेक पानी आपको उत्तर प्रदेश से आता है और हम डिस्चार्ज करते हैं 1500 क्यूमटेक पानी। आप सोचिए कि हम 5 गुना पानी छोड़ रहे हैं। ये पानी तो मेरा होना चाहिए, दुगुना ले लीजिए आप, 3 गुना ले लीजिए, 2 गुना तो मेरे लिए छोड़ दीजिए, इस बिहार के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी बात, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने फरक्का उठाया। फरक्का इस बार हम लोगों ने शिवेंदु अधिकारी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को मैंने फोन किया। आप सोचिए कि 106 गेट में 97 गेट, मतलब इतिहास के पन्ने में पहली बार है कि जब नेपाल की त्रासदी हुई तो सारे गेट खोल दिए गए और सारा डिस्चार्ज पानी हमारा हुआ। आज भी फरक्का से हमें जो कष्ट है वो मैं बताता हूं। जब फरक्का में पानी रोके जाते हैं तो ऑटोमेटिक रिवर्स होता है पानी, और ये भागलपुर तक, तेल तक हमारे पानी रिवर्स होते हैं और वहां गाद जमना शुरू हो जाता है। मैंने CWC के तमाम ऑफिसर्स को कहा कि आप हमको एक इंजीनियरिंग समझाइए जिससे कि हमको लॉस नहीं हो। इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया कि कहीं 6 किलोमीटर का चौड़ाई है और कहीं 30 किलोमीटर का चौड़ाई है, इसलिए कि गाद जमते हैं तो पानी दोनों तरफ डाइवर्ट हो जाता है। हमको गाद की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। हमने गाद नीति परसों पिछले कैबिनेट में मैंने पास किया और कहा है कि अब गंगा में, मां गंगा या नॉर्थ बिहार के किसी भी नदी में कोई व्यक्ति अपने खेत से मिट्टी काटेगा, 1 मीटर क्यूबिक यदि आप खेत से मिट्टी काटेंगे और जमीन को बेचेंगे तो आपको 300 रुपया मिलेगा। मैंने कहा 10 रुपया में गंगा जी मैया का मिट्टी ले जाओ, 1 क्यूमटक मिट्टी, 1 क्यूबिक मीटर, मीटर जो है मिट्टी ले जाओ, तुमको हम 10 रुपया में देने का काम करें। इसलिए कि गंगा की सफाई करना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसको भी हमने गाद नीति में लाया।
0: अगला सवाल आ रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज अब दिखाई देता है बिहार में वो ये है कि आप निवेश कैसे लाएंगे, आप निवेश करने वालों, निवेशकों का आप विश्वास कैसे वापस लाएंगे, जो लंबे वक्त तक खोया रहा सम्राट जी से इनकार करने में, मतलब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे राज्य हैं जो बड़ी तेजी से आगे बढ़े, आज सोचिए कि 80% मखाना यहां, 40% लीची यहां, लेकिन एक्सपोर्ट में बिहार का कितना योगदान है, 0.5% के आसपास। इसको आप कैसे परिवर्तित करेंगे? सम्राट चौधरी बीजेपी का मुख्यमंत्री ऐसा क्या नया करेगा जिसकी वजह से निवेशक यहां पर आए, और अभी तक आप कितनों को लाने में?
1: देखिए, अभी तक मैंने पहले भी बोला कि आपको लगभग 1000 इंडस्ट्री को हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, और इसके साथ साथ अभी तक इंटरनेशनल मार्केट हमारे पास नहीं थे, इंटरनेशनल विंडो नहीं था। अभी हम दरभंगा के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मानक पर ले जा रहे हैं, हम पूर्णिया के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल मानक पर ले जा रहे हैं, पटना के एयरपोर्ट पर BGF देकर हम प्रमोट कर रहे हैं, हम गया जी के एयरपोर्ट को BGF देकर, क्योंकि हमारा छोटा रनवे होता था जिसके चलते उनको कुछ सीटें खाली रखना पड़ता था, इंडोनेशिया नहीं जा सकते, यहां से दुबई नहीं जा सकते, गल्फ नहीं जा सकते, तो हमने यहां पर एक मैकेनिज्म किया कि VGF देना शुरू किया। हमने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट यहां से उड़ाइए, हम दुनिया के मार्केट में जाना चाहते। आज मखाना आप देखिए 20 टन, मैट्रिक टन जो है हमारे यहां से मखाना ऑस्ट्रेलिया जाना शुरू कर दिया यहां के ड्राईपोर्ट से। हम इसी तरह के 12 टाउनशिप हम बना रहे हैं, हमने कहा है कि 12 टाउनशिप में हम ड्राईपोर्ट बनाएंगे जिससे कि दुनिया के मानक के हिसाब से हम एक्सपोर्ट करने का रास्ता खोल पाए।
2: लक्ष्य इतना बड़ा है आपका, आपने टाइमलाइन दे दिया है 2029
1: 30
2: पलायन रोकने के लिए।
1: देखिए, मैंने इसलिए कहा कि बिहार के लोग जो गरीब हैं, जब वन नेशन वन राशन कार्ड आया तो भारत में आप जैसे लोग भी यहां से पलायन किए हैं, लेकिन आप समृद्धि के ओर, रास्ते की ओर गई।
2: नहीं, मैं तो
1: मैं कह रहा हूं, आप बाहर गई, तो आप हमारे प्रतीक हैं कि आप अच्छे करने गई, लेकिन जो मजदूरी करने गए हैं उनको हम चाहते हैं कि वो बिहार में रहे, मजदूरी करने बाहर नहीं जाए। वैसे 5 लाख लोग हैं पूरे भारत में जो बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि जो राशन कार्ड है वो अनाज उठा रहे हैं दूसरे राज्य में, ये हमारा पैरामीटर है। और लगभग 7 लाख मजदूर हैं जो हमारे यहाँ लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब 12 लाख लोग, दोनों को जोड़ता हूं मैं तो 12 लाख लोग बाहर हैं। हमको इसी को तो वापस लाना है, जो अच्छा करने गए अनिल अग्रवाल जी वेदांता के मालिक है तो उनको बुला के क्या करूंगा, वो आए इंडस्ट्री लगाए, आप अच्छी एंकर हैं, आप अच्छा दिल्ली में आज तक में कर रही हैं, तो मैं थोड़े चाहूंगा कि आप पटना आ जाए, आप वहां अच्छा करें। आप जो अच्छा करने गए हैं उनको वापस नहीं बुलाऊंगा।
0: अब आइए जड़ पर, क्यों जाना पड़ा मुख्यमंत्री जी? जहां टाइम पर डिग्री नहीं मिले, जहां पर नौकरी के अच्छे साधन नहीं मिले, तो आदमी जाता है, कोई खुश होकर थोड़ी अपना घर छोड़ के जाता है। एक आदमी मुझे मिला जो खुश होकर गया, कि हम
1: नहीं एकदम एकदम आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसे कहां दो मत है पूरी तरह। यदि हम लोगों ने सभी काम किए होते तो हम भी बॉम्बे की तरह राज करते होते, हम भी दिल्ली की तरह राज करते होते, चंडीगढ़ के तरह हमारा लेगेसी है सब चीजों में, आप जान के आपको आश्चर्य होगा। एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी था कंकड़बाग, एशिया का, आज हमारे पास लेगेसी नहीं है। इसलिए मैंने टाउनशिप की बात किया, 12 टाउनशिप और 12 ऐतिहासिक तौर पर, पटना का नाम पाटलिपुत्रा था, मैंने लगभग 80,000 एकड़ जमीन पर नया टाउनशिप बनाने के लिए कहा, और 3 फॉर्मूला में। कई किसानों को मैं देखता हूं चिंतित भी होते हैं हमारे खेत चले जाएंगे, 55% जमीन मैं वापस उनको डेवलप करके दे रहा हूं, देश में ऐसा कहीं नहीं है।
0: बड़ी कंपनियां कौन सी आई है निवेश करने?
1: नहीं सब है, आप देख लीजिए बेवरेज में इंडिया के सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट बिहार में लगा है। आप चले जाइए बेगूसराय, आप चले जाइए बक्सर, कई सीमेंट फैक्ट्री आए। देखिए धीरे धीरे मैं कह रहा हूं कि मेरा टारगेट ही नहीं था, बेसिक नीड ही हम पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन 2024-25 के बाद इन चीजों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आगे इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर कह रहा हूं कि 2030 तक बिहारी मजदूरी करने नहीं जाएगा, इतना श्योर करता हूं।
3: सम्राट जी
1: एकदम मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, बिहार की जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हूं, एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार का लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा, इतना जरूर कह सकते।
3: सम्राट जी एक चीज ये बताइए, आरोप ये लगता है कि सरकार के पास वित्तीय संकट है, पैसे नहीं है, तो ऐसे में चर्चा होती है कि शराबबंदी को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि खत्म अगर कर देंगे तो 30-40 हजार करोड़ का आपको रेवेन्यू सालाना मिलना शुरू हो जाएगा।
0: और 100% लागू भी नहीं कर पाते हैं, कहीं पर नकली शराब, कहीं पर नकली शराब
1: अंजना जी,
5: और कहीं तस्करी।
1: श्वेता जी मैं दो चीज बता देता हूँ,
0: शराब ऑन फोन,
1: शराब बंदी हर हालत में बंद रहेगा, पहला, इसमें कहीं दो मत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन दो चीजें जरूर मैं बताता हूं, बिहार की महिलाओं के आग्रह पर यह डिसीजन हुआ है, 2025 में भी मैंने इसका मैंडेट कराया, लगभग 1.5 लाख जगह पर महिला समूह से हम लोगों ने बात कराया, ऑन रिकॉर्ड हमारी महिलाओं ने कहा शराबबंदी बिहार के लिए ऐतिहासिक फैसला
5: है। पर कड़ाई से लागू तो करवा दीजिए सम्राट जी।
1: मैं मेरा ये मानना है शराबबंदी जारी रहेगा, कार्रवाई जारी रहेगी, और बिहार के रेवेन्यू के चक्कर में हम महिलाओं के अस्मिता के साथ नहीं खेल सकते।
0: तो रेवेन्यू कहां से होगा, आखिरी सवाल है, रेवेन्यू का जेनरेशन का आपका मॉडल क्या है? 125 यूनिट फ्री बिजली आप इतने परिवारों को दे रहे हैं, आपने 10-10 हजार रुपया उस वक्त महिलाओं को दिया, और अब आप 2-2 लाख का वादा है जो आपको देना है इतनी महिलाओं, कितनों को दे दिया?
1: 1 करोड़ महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ दूंगा, 1 करोड़, आप लिख के जाइए, 1 करोड़ महिला 2030 तक बिहार में लखपति होंगी, 1 करोड़ महिला।
0: आपका मैं संकल्प पत्र लेकर आई हूँ, आपका संकल्प पत्र जो है इसमें सबसे पहला वाला ही पढ़ के आपको सुनाते हैं, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी।
1: मैं तो 1 करोड़ महिला बोल दिया, एक करोड़ महिला बोल दिया, युवा तो अलग है, एक करोड़ सिर्फ महिला होगी जिसको लखपति बनाएगी।
0: सर हिसाब लगाइए, प्रतिदिन आपको कितनी नौकरी देनी है, 365 × 5
1: महीने महीने,
0: एक करोड़। अंजना
1: जी, अंजना जी गणित आप जोड़ते रहिए, मेरा काम है बिहार की जनता के लिए काम करना। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज लगभग नीतीश जी ने बहुत तेजी से काम किया, 43 लाख महिलाएं लखपति है और ये टारगेट है हमारा। अभी हम लोगों ने पशु दीदी के तौर पर भी, पशु सखी के तौर पर दीदी को जोड़ना शुरू किया। हम दूध उत्पादन में बढ़ रहे हैं, हम उनको अभी जितने पहले सभी के अकाउंट में पैसा जाता था कि हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति के तौर पर, उनको पोशाक के लिए पैसा जाता, हमने कहा नहीं जीविका दीदी को दीजिए, ये रोजगार का कंसेप्ट है। हम यहाँ पर टेक्सटाइल हब भी बनाएंगे और उस कपड़े को जीविका दीदी के माध्यम से ड्रेस भी सिलाई करके हम सीधे स्टूडेंट को देने का काम।
0: मुख्यमंत्री जी मेरा सवाल ये तो था ही नहीं कि आप क्या क्या करेंगे, मैं कह रही हूँ इसका रेवेन्यू, इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि 1 करोड़ नौकरियों की बात है, उसके बाद से 2 लाख तक की सहायता। सुना बाबू, जरा एक सुनिए तो भाई, आपने लिख के दिया है, लिखित है, कोई हम बना के थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है, अब उसके बाद से 2 लाख तक की सहायता आप देंगे, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, किसान सम्मान निधि में शुरुआत करके किसानों को प्रतिवर्ष 3,000, कुल 9,000 देंगे, 1 लाख करोड़ का निवेश व पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों पर।
1: जितने चीज लिख के दिए हैं वो जनता को जवाब देना है, इसमें कहीं दो मत नहीं। मैंने स्पष्ट कहा, अब बिजली में भी मैं आता हूँ, बिजली कैसे मैं इसको ठीक करूंगा। बिजली में अभी हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम बनाया है, अभी 23,000 करोड़ रुपया हम सीधे सब्सिडी में देते हैं और आज हम सीधा थर्मल पावर से बिजली देने का काम करते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है, लगभग सिर्फ कृषि फीडर को यदि हम सोलर युक्त कर दें तो 5,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट हमको अगले 1 साल में होगा, मतलब ये प्रत्येक साल हमको देना, ये 5 साल हम बचाएंगे। दूसरा, इंडिविजुअल हाउसेस पर पीएम सूर्यघर योजना के तहत लगभग 5 लाख घरों को पीएम सूर्यघर योजना के तहत, और लगभग हम लोन लेकर इसलिए लोन लेंगे कि हमको पैसा बचेगा। हम अगले 31 दिसंबर 2027 तक 25 लाख घरों पर सोलर युक्त बिजली देंगे और सोलर युक्त बिजली देंगे 125 यूनिट तक उसका मुफ्त रहेगा और 126वां यूनिट जैसे आएगा उसके अकाउंट में पैसा जाना शुरू कर देगा। हम धीरे धीरे अपने खर्चे को कंट्रोल भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बढ़ रहे हैं, हम एक तरह से हम वहां से लगभग 10,000 करोड़ रुपया का भार धीरे धीरे घटाना भी शुरू करेंगे, क्योंकि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है इसमें इंडस्ट्री नहीं है, तो इंडस्ट्री को फोकस किया है, इंडस्ट्री के साथ साथ अब हम अपने खर्चे को भी लिमिट में लाएंगे।
2: स्कूलों का भवन बन जाएगा जो कहीं मंदिर में कहीं खटाल में चल रहा है, जहां जर्जर है वो इमारतें बन जाएंगी।
1: रोहित जी ने एक न्यूज चलाया था, मैंने तुरंत उसको ऑपरेट भी किया, पता चला कि टीचर का घर था उस गांव में, वो जाकर अपने घर के पास चला रहा था और स्कूल कहीं और था। मैंने तुरंत उस शिक्षक पर सस्पेंड भी किया, वैसे डीओ पे भी कार्रवाई किया और कहा कि स्कूल में पढ़ाई होती, और मैंने एक योजना चलाया है सेवा संकल्प और कायाकल्प। अभी आप देखिएगा दीपावली तक हम लोगों ने टारगेट दिया है, वैसे ये अभियान 30 नवंबर तक चलेगा, लेकिन अभी मैंने सब पदाधिकारी से आग्रह किया कि गांव में स्कूल है, क्योंकि मैं अनुभव से ये कह रहा हूं, मेरे पास सहयोग कार्यक्रम में कई लोगों ने आवेदन दिए हैं कि मेरे स्कूल के बाथरूम में छिटकिनी नहीं है, किसी ने कहा गेट नहीं है, किसी ने कहा कि बाउंड्री टूटा हुआ है। तो मैंने कहा अभी लगभग 20,000 करोड़ रुपया अगले दो वर्षों में हम खर्चा करेंगे विकसित राम विकसित भारत जी राम जी में और 16 फाइनेंस के पैसा में लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। हमने कहा कि उनसे विशेष तौर पर यह अभियान चलाएंगे, हम स्कूल को पूरी तरह व्यवस्थित करेंगे, स्कूल के बाथरूम को ठीक करेंगे, उनके रंगाई पोताई करेंगे, गांव में सामुदायिक भवन की जरूरत है उसको करेंगे।
5: कितना दिन?
1: एकदम, हमने कहा 30 नवंबर ये टारगेट दिया है पहला।
5: अच्छा।
1: और 31 मार्च तक मैंने दिया है जहां नया कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन जहां नया होगा वहां 3-4 महीना चाहिए। जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए कहीं पर गेट लगाना है, कहीं बाउंड्री ठीक करना है, रंगाई पुताई करना है, इसको 30 नवंबर तक।
3: सम्राट जी,
5: तीस नवंबर के बाद फिर रोहित जाकर हम एक बार फिर पूरा फैक्ट चेक करेंगे।
1: इसीलिए रोहित जी को कोट किया, मैंने तुरंत इनको ऑर्डर भी भेजा, पूछ लीजिए।
3: नहीं,
1: मैंने इनको कहा कि आपने जो रिपोर्ट चलाया उसके आधार पर, मैंने इनको, मेरा भाई है।
5: लेकिन सम्राट जी, एक स्टोरी, वो मैंने भी एक स्टोरी की थी, नहीं उस पर एक्शन सरकार की तरफ से किया गया है। 62 से मंदिर में स्कूल चल रहा था,
1: वो भी मैंने एक्शन किया।
5: आपने एक्शन किया है
1: तो मैंने कहा कि अच्छी बात है। आप देखिए, आप स्वतंत्र प्रहरी हैं,
5: पर अब हम
1: आपका काम ही है,
5: करेंगे
1: आप जितना करेंगे उतना अच्छा होगा हमारा, उतना भला होगा मेरा।
3: अच्छा, एक सवाल मैं लाभ, मेरे तरफ से आखिरी सवाल है,
1: वो काम विरोधी नहीं कर पा रहा है।
5: हाँ।
1: वो आप कीजिएगा तो अच्छा लगेगा ना।
3: चलिए, एक सवाल अच्छा मेरा आखिरी मेरे तरफ से सम्राट जी, क्योंकि आप पर कहा जाता है कि भाई आप इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, तो 2030 तक तो आप बने रहेंगे ना मुख्यमंत्री। कोई
1: देखिए, 1952 के बाद एक आदमी इलेक्टेड सीएम बता दीजिए, नाम बोलिए जो इलेक्टेड हो, एक नाम बताइए। सब सिलेक्टेड होते हैं पहला। और जिस भाई ने कहा, उनको पूछिए, उनके पिताजी एक दलित रामसुंदर दास जी दलित समाज से आते, हाजीपुर के रहने वाले थी, श्वेता जी उसी इलाके से, आप पूछिए, दलित समाज का हिस्सा रोक कर लालू जी मुख्यमंत्री बन गए। पूरे राष्ट्रीय जनता दल में कौन जानता है कि राबड़ी देवी कहां से मुख्यमंत्री हो गई, बता दीजिए। 2005 का एक घोषणा बता दीजिए जिसमें यह कहा गया हो कि लालू जी या लालू जी की पत्नी को छोड़कर उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये देखिए, पार्टी का निर्णय होता है। हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, और हमारे एनडीए के यहां सम्मान नेता नीतीश कुमार है। सबने तय किया, 202 विधायकों ने समर्थन दिया, गवर्नर साहब ने हमको वोट कराया।
3: 2030 तक कोई बदलाव तो नहीं होगा?
1: नहीं, ये तो पार्टी को तय करना। मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, कहां आप इसमें फैसला मैं नहीं कर सकता। मेरे को जो जिम्मेदारी मिली है, आप देखिए, मैं विरोधी दल का नेता रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा, पार्टी ने 2-2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, 50 साल के बाद मैं गृह मंत्री बना, भाजपा ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, इससे बड़ा गौरव मेरे लिए क्या हो सकता है। पूरे एनडीए ने मुख्यमंत्री मेरे को बनाया।
6: सम्राट जी, मेरे दो सवाल हैं एक्चुअली। एक तो ये कि आपने श्वेता का जिक्र किया कि वो दिल्ली गई और बड़े चैनल में काम करे, उसी तरीके से नीतीश जी भी बड़े सदन में गए, आप तो चाहते नहीं है कि वो सारे लोग वापस आ जाएं जिस तरीके से ये है।
1: नहीं, नीतीश जी, नीतीश जी बड़े नेता, नीतीश जी ने स्वयं छोड़ा सत्ता,
6: वही बात,
1: तो वो उन्होंने सत्ता छोड़ा, हमने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमें मुख्यमंत्री बनाया था, आप देख लीजिए उनके वीडियो निकाल कर, मैं तो उनके मंचों पर साथ रहा, वो बार बार कहते थे कि अटल जी ने हमें जो मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि इसलिए वो कहते थे कि जब उनके पास 32 विधायक थे और 70 विधायक बीजेपी के पास था, तब उन्होंने को मुख्यमंत्री बनाया। वो कहते थे कि हमको बनाया था, मैंने इनको बनाया।
6: दो सवाल मेरे ये है जो अंजना बार बार आपसे पूछ रही थी कि रेवेन्यू कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे, तो बाढ़ को लेकर भी और पैसे को लेकर भी क्या कोई स्पेशल असिस्टेंस की मांग आप केंद्र से करेंगे, क्योंकि विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि बाढ़ को लेकर राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की जाए, क्या उसकी मांग एक तो आप
1: देखिए लगातार प्रधानमंत्री जी के तरफ से पैकेज भी मिलता रहा, 1,65,000 करोड़ रुपया हमको 2015 में मिला, आज भी 2024 के भी बजट में हमको लगभग 65,000 करोड़ रुपया मिला, आज भी लगभग 2025 के बजट में भी हमको लगभग 13,500 अलग से मिला, और आज कई एक्सप्रेसवे हमको ये तय किया गया है जिसमें लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार देगी।
6: बाढ़ के लिए अलग से मांगे गया,
1: बाढ़ के लिए हमको 13,500 करोड़ रुपया मिला है, कोसी मेची लिंक के लिए 11,500 करोड़ रुपया मिला सिर्फ कोसी मेची लिंक के लिए, और इसके साथ साथ बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने का काम हम लोगों ने पूरा किया। अभी हमने आग्रह किया है कि अभी हम फल्गु नदी जो माँ सीता का लोग कहते हैं कि शराब था और वो नदी सूख जाती है, हम सोन नदी अभी जो आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ समझौता हुआ बिहार और झारखंड का, उस पानी को फल्गु नदी में लाने का काम, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपया हमने भारत सरकार से
6: मांगा। आखिर में
0: ठीक है, इसी के साथ हम अंत करते हैं इंटरव्यू का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए चुनौतियां बहुत सारी हैं, बिहार के एक बड़े हिस्से में बाढ़ है, स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, छात्रों का कई जगहों पर आंदोलन हो रहा है, आपके पास गठबंधन का भी चैलेंज है, यूसीसी की भी तलवार लटकी हुई है, आपको ऐसे में
1: सबको सबको मिलाकर साथ ले जाकर इस बिहार को समृद्ध बनाना है। प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत, बिहार का सपना है समृद्ध बिहार बनाना, इस काम को आगे।
6: सर आखिर में एक आपसे, 35 साल से बिहार में जब भी बात होती है तो हमें जोड़ी की याद आती है, लालू नीतीश या नीतीश लालू, अब तो सम्राट चौधरी आ गए, तो सम्राट की जोड़ी ऐसी कोई
1: नहीं। नहीं एक देखिए मैं क्या कह रहा हूं, भाजपा ने सबको सहयोग किया, लालू जी पहले बार जब मुख्यमंत्री बने तो लालू जी के कृपा से बने, लालू जी ने को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, संघ कार्यालय में सबसे पहले जाके उन्होंने समर्थन मांगा था, नीतीश जी को भी सहयोग किया, नीतीश जी ने पूरे बिहार को बदला, आज नीतीश जी के साथ इसी के लिए गठबंधन है और हम लोग नीतीश जी के साथ खड़े हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट चौधरी जी, हमारे साथ मंच पर आकर हर एक सवाल का जवाब आपने दिया है, लेकिन हम फॉलो अप करते रहेंगे कि कितना हुआ। धन्यवाद,
0: तालियों के साथ थोड़ा अभिनंदन कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुख्यमंत्री।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुर।

0: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
1: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।

0: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
1: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: JK Max.
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: JK Max. Best पुट्टी?
7: JK Wall Max.
5: Best paint?
8: JK Max.
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ
5: JK Max paints.
2: JK Max. JK Max paints. खुशियों के रंग। जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी है।

0: आगे आगे उधर उधर करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।
3: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को सही एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा, अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या।

0: इंदौर में छात्रों की गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। जेपी नड्डा का पलटवार, झूठ की राजनीति करते हैं नेता विपक्ष। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम, अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जे ने सीयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस, एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड, पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर, पीड़ित मां का आरोप, परीक्षा में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के बाद बेटे को प्रताड़ित किया गया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया गया था।
1: हमारे सेना का नुकसान करने के लिए थी तैयारी, उनसे जीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी।
2: मेरे पति का बच्चा लो।
3: किसान है, उसने उसको गोली मार दी।
4: बोलो बताइए
0: हुआ। लेकिन धर्म पूछ पूछ कर कत्लेआम करने वाले आतंकी जिंदा थे।
5: निर्दोष सिविलियंस पर किया गया एक हीनियस अटैक था।
0: देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले दरिंदे छिपे हुए थे बिल में और उनकी आहट भी नहीं मिल पा रही।
5: 5 जुलाई 2025 वो पहला दिन था जब हमें कुछ सटीक खबर आनी शुरू हुई। ठोस जानकारी मिली कि हो सकता है इस एरिया में अभी वो दहशतगर्द मिलिटेंट आ चुके हैं।
6: लगभग सुबह 5 बजे हमें खबर मिल गई थी कि पक्का हो गया था कि वो किस जगह पर है। मैंने अपने ट्रूप से यही कहा कि वो यहाँ से अब बाहर नहीं जाने चाहिए।
0: हिंदुस्तान का कलेजा छलनी था और हिंदुस्तान के रणबांकुरों को तब तक चैन नहीं मिलने वाला था जब तक एक एक गुनहगार का इंसाफ न हो जाए।
7: जो इस तरह से आतंक को बढ़ावा देता है तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा।
5: में हमने जस्टिस को सर्व किया।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पहलगाम की बैसरन घाटी में जहां पर रक्त बहाया गया निर्दोषों का, जहां पर रिश्तों को तार तार किया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया देश की सरहद के पार आतंक के उस ढांचे को खत्म करने के लिए, और ऑपरेशन महादेव जो चलाया गया पहलगाम के उन गुनहगारों का इंसाफ करने के लिए। आज मेरे साथ ऑपरेशन महादेव की टीम है और यह है इनकी कहानी।

0: इंतकाम नहीं, ये इंसाफ की कहानी के नायक हैं। शोर नहीं, ये भारत की संयम वाली ताकत के योद्धा हैं। ये रणबांकुरे हैं भारत के स्वाभिमान के, सम्मान के। उस रोज आधे घंटे तक मौत का खेल खेला गया था। पूरे देश का खून खौल उठा था जब कश्मीर की बैसरन घाटी खून से लाल हो गई थी। छब्बीस हिंदुस्तानियों की जान गई थी। 26 मांग का सिंदूर उजड़ गया था। आज हम आपको उस हाई इंपैक्ट ऑपरेशन की कहानी सुनाने वाले हैं जहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन तो दुनिया की आंखों के सामने चले, लेकिन उन आतंकियों को चुन चुन कर कैसे उतारा गया मौत के घाट जिन्होंने भारत के विरुद्ध ऐसा घिनौना षड्यंत्र रचा था। कैसे आतंकवादियों की पहचान हुई, कैसे बना प्लान, घने जंगलों में कैसे आतंकियों को ढूंढा गया, खुफिया जानकारी कैसे इकट्ठा की गई और कैसे पहलगाम के गुनहगारों को खत्म किया गया, आपकी मुलाकात भारतीय सेना के उन जाबाजों से कराएंगे। उन शूरवीरों की ये कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे जिन्होंने उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया।
1: मैं इसके प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक शामिल था।
2: I was the company commander. I was responsible.
3: मैं टीम कमांडर था। ये सारा प्लान जो कोऑर्डिनेशन है और जो प्लानिंग का पार्ट है वो मेरा रोल था इसमें।
4: इस ऑपरेशन में मैडम मैं सपोर्ट वेपन कैरी कर रहा था।
0: पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के सामने सिर्फ हमलावरों की पहचान नहीं बल्कि उन्हें ढूंढ निकालने की भी चुनौती थी। हमला खौफनाक था, पलटवार भी मिसाल होना चाहिए था। आतंकवादी हमला करके भाग निकले थे। सामने था हजारों वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी इलाका, जंगल, पहाड़, गुफाएं और दर्जनों ऐसे रास्ते जिनसे कोई भी छिपकर निकल सकता था।
1: देखिए 22 अप्रैल 2025 के बाद हम टेररिस्ट की खोजबीन में लग चुके थे। भारतीय सेना हर एक प्रयास कर रही थी मल्टीपल एजेंसीज से मिलकर कि कैसे उनको पहले हमने आइडेंटिफाई किया था, फिर वो कहां कहां पे जा रहे थे उनकी खबरें हमें मिल रही थी। एंड एग्जीक्यूशन फेज चला पूरा 1 महीना। उससे पहले प्लानिंग, कहां खबर है, कहां हमें जाना है, कैसे हमें उनको एक जगह पे आकर बॉक्सिंग करना है ताकि हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए।
0: पहलगाम में हमला हुआ और सुरक्षा बल फौरन हरकत में आए, आतंकियों की तलाश शुरू हो गई। लेकिन ये एक ऐसी तलाश थी जिसमें हर सुराग को पहले परखा जाना था। जंगल में एक गलत सूचना का मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि आहट पाते ही आतंकी सरहद पार निकल जाएं और इंसाफ हमेशा के लिए अधूरा रह जाए।
3: जब हमें पता चला जो 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ है तो वो सभी के लिए वो बहुत ही दुखद न्यूज थी और हमारे अंदर भी इमोशंस जग रहे थे। लेकिन एक सोल्जर होने के नाते हमारा जो सेंस ऑफ ड्यूटी है और जो नेक्स्ट टास्क आने वाला है चाहे वो उसके रिस्पांस में हो या फिर टू फाइंड आउट द कल्प्रिट्स एंड पुट देम टू जस्टिस. सो इन दोनों विचारों में हमारा जो सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ कमिटमेंट टू अवर टास्क वो ज़्यादा ओवर पावर कर रहा था इमोशंस को साइड में रखते हुए. तो उसके लिए फिर हमने अपनी प्रिपरेशन ड्रिल्स रिहर्सल्स वो सब हमने अपना ऑटोमेटिक इट इज़ पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग कि हमने वो स्टार्ट कर दी थी ये सोच के कि टास्क आने वाला है.
0: आतंकियों की तलाश में एक एक सबूत जुड़ता जा रहा था, खुफिया इनपुट जुटाए जा रहे थे, कहां से राशन आया, किसने खाना पहुंचाया, किसने मदद दी, कहां कोई संदिग्ध मूवमेंट हुई, कहां किसी ने हथियार देखे, किस इलाके में अचानक हलचल हुई, क्या जंगल में कुछ ऐसा मिला जो सामान्य नहीं था. दरअसल इन जंगलों में आतंकियों को ढूंढना ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में सुई. जहां पर यह ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया उस पूरे क्षेत्र को हम आपको समझाते हैं. ये जबरवान रेंज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो दाचेगाम फॉरेस्ट रिजर्व है उसका हिस्सा हो जाता है. घाटी का जो क्षेत्र आप देखते हैं, जो पहाड़ों पर आप बर्फ देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जो महादेव रिज का हिस्सा है. और जहां पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ था, आप सोचिए कि कितना कठिन ये पूरा इलाका है, कितनी ऊंची ये चोटियां हैं, किस तरीके से वहां पर उन पेड़ों उन चट्टानों के बीच में हमारे सैनिक दिन रात लगे रहे थे बरसात के उस मौसम में. और आप जब ये सोचते हैं ना कि आप शहर के कितने करीब थे, मेरे पीछे आप डल झील देख रहे हैं, ये डल झील है, ये श्रीनगर शहर है जो आप देख रहे हैं. यानी कि अगर आप एक नजर पूरे इलाके में दौड़ा लें तो कमोवेश आप श्रीनगर के क्षेत्र में ही मौजूद हैं, लेकिन शहर के इतना करीब होकर भी शहर से कितना दूर रहकर न खाने का सुध न नींद, केवल और केवल एक प्रण कि आतंक का खात्मा करना है, पहलगाम के दरिंदों का इंसाफ करना है. किसी भी जंगल में जब कोई ऑपरेशन होता है तो तमाम चुनौतियां अपने साथ लेकर आता है. आतंकियों के लिए अनगिनत ऐसी जगहें थीं जहां पर वो छिपे रह सकते थे और सुरक्षा बलों के सामने केवल एक अवसर उन्हें ढूंढ निकालने का. और ऐसे समय में हमारे सैनिकों की सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी ट्रेनिंग.
1: देखिए जो ऑपरेशन था उसमें ये टेरेन हमारी एक वन ऑफ द डिफ़िकल्टीज, कहीं जंगल है कहीं पहाड़ हैं, उनमें कोई पेड़ पौधे नहीं है. सो हमने इन सब चीज़ों को प्लानिंग में रखा था और कैमोफ्लैज एंड कंसीलमेंट हमारी ट्रेनिंग का एक मुख्य पार्ट है. नेचर के साथ कैसे हमने उसमें रंग जाना है, कैसे हमने नेचर के साथ मिलना है, वो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. अदरवाइज अगर हम नेचर को उसको एडवांटेजेस तरीके में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होगा और हमारा जो प्लानिंग है उसमें फ़र्क पड़ेगा.
2: हम इसी चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, हम यहाँ ऑपरेट करते रहते हैं इन जंगलों में, इन घरों में, इस AOR में. ये AOR मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई वॉज़ दी कंपनी कमांडर, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल. मैं मेरी जिम्मेदारी थी कि जो लोग बाहर से जो ट्रूप्स आ रहे हैं वो नए हैं, उनको दिखाना रास्ते कहाँ से हैं, जंगल में किस तरफ से ट्रैक जाते हैं, कौन सी सड़कें किस तरफ जाती है, कहाँ से कौन सा नाला निकलता है, किस पहाड़ी पे चढ़ा जा सकता है, किस पे नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि मैंने पिछले 1.5 साल से इन्हीं जंगलों को देखा है, इसी एरिया को देखा है.
0: 22 मई 2025 को पहली बार आतंकियों की लोकेशन को लेकर एक ठोस दिशा मिलने लगी थी. 22 मई को इंटेलिजेंस टीमों को दाचीगाम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट मिला. लेकिन किसी भी ऑपरेशन में सिर्फ एक इनपुट के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू नहीं की जाती, खासकर तब जब सामने तीन ऐसे दुर्दांत आतंकी हों जो पहाड़ी जंगलों में छिपे हों, जिनके पास हथियार हों, आसपास गांव हों, नागरिकों की जिंदगी पर भी खतरा. सवाल उठाना बहुत आसान है कि इतने दिन बीतते जा रहे हैं, आखिर आतंकियों का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है. लेकिन जवाब आपको यहाँ कदम कदम पर, कंकड़ कंकड़ में, यहाँ के जर्रे जर्रे में मिलेगा कि कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे सैनिक उस समय भी आतंक से जूझ रहे थे जब देश में आराम से सोफों पर बैठ के आलोचक इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आतंकी आखिर मिल क्यों नहीं रहे हैं. आप इनकी वीरता को देखेंगे तब उस संकल्प को समझेंगे जो ये देश के लिए उठाते हैं. ऑपरेशंस में जब कोई सफलता मिलती है जानकारी के रूप में, तो विफलता भी मिलती है। लेकिन उन विफलताओं के बावजूद अपनी मोटिवेशन को, अपने जोश को चरम पर रखना है, इसमें हमारे सैनिक पारंगत हैं। 22 मई से जानकारी मिलना शुरू जरूर हुई, लेकिन ये क्रम लगातार चलता रहा। इंटेलिजेंस टीमें हर जानकारी को पूरी तरीके से वेरीफाई करती, भारतीय सेना जमीन पर जानकारी को दूसरे इनपुट से मिलाती रही। इस तलाश में ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीक दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। देखने में शायद ऐसा लगे कि समय बीतता जा रहा है और कुछ हाथ नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यह थी कि लगातार हमारे सैनिक कोशिशों में जुटे रहे। इंटेलिजेंस जमा करना हो, सर्वेलांस करना हो, वेरिफिकेशन करना हो, या फिर तालमेल बिठाए रखना।
1: 5 जुलाई 2025 वो पहला दिन था जब हमें कुछ सटीक खबर आनी शुरू हुई। हमने एक लेयर्ड इनपुट बिल्डअप किया था, जो कि सारी सिस्टर एजेंसीज, इंडियन आर्मी पुलिस, जे एंड के पुलिस सीआरपीएफ, सब ने इनपुट्स देके हमने वो इनपुट कोरिलेट की, और उससे हमें कुछ ठोस जानकारी मिली कि हो सकता है इस एरिया में अभी वो दहशतगर्द मिलिटेंट आ चुके हैं।
2: पहली थिंग वॉज के मैंने अपने ट्रूप से यही कहा कि वो यहाँ से अब बाहर नहीं जाने चाहिए। एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि इस जंगल में है, और इस जंगल का चप्पा चप्पा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें पता है उन्हें, वो यहाँ नए हैं, हम यहाँ पुराने लोग हैं, हमें अब वो यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए।

तीन आतंकियों को ट्रैक तो किया जा रहा था, लेकिन सवाल ये भी था कि क्या ये वही तीन आतंकी हैं जो 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने के गुनहगार हैं? और क्या इन तीनों को इस तरीके से घेरा जा सकता था कि वो दोबारा जंगलों से निकलकर किसी दूसरी जगह शरण न ले लें, पहुंच न जाएं, छिप न जाएं? 22 जुलाई को सेंसर्स और सर्वेलांस इनपुट ने आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी और वो समय पास लग रहा था जब महीनों से जुटाई जा रही जानकारी को जमीन पर एक्शन में बदलना था।

0: हर बड़े सैन्य ऑपरेशन का एक नाम होता है। कई बार उस नाम के पीछे सिर्फ एक सीक्रेट कोड नहीं बल्कि उस इलाके की कहानी भी होती है। इस ऑपरेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जिस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट लगातार मिल रहे थे वहां महादेव रिज और महादेव टॉप थे। यही कारण था कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव।
1: देखिए मैम, इंडियन आर्मी जब भी कोई ऑपरेशन करती है तो वो ऑपरेशन उस जगह के नाम से ही जाना जाता है। हमारे एरिया में महादेव रिज है, इसके बीच में एक महादेव टॉप भी है, उस रिज की ही हमें सारी खबरें आ रही थी। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो प्लान था वो महादेव रिज पे ही के बेस पे ही बना और वहीं पे एग्जीक्यूट हुआ। आखिरी दिन कॉन्टैक्ट भी हमारा उसी रिज पे एक नाले के अंदर हुआ जहां हम तीनों टेररिस्ट को हमने मार गिराया। तो ये जो ऑपरेशन था ऑफ महादेव, ये उस एरिया के कारण इसका नाम पड़ा।
0: ऑपरेशन महादेव शुरू हो चुका था लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अब भी टेरेन था। हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला वो जंगल। जंगल में ऑपरेशन हमेशा मुश्किल होता है। न सड़कें होती हैं, हर एक पेड़ दीवार होता है, हर चट्टान एक आड़ है और हर मोड़ एक नया खतरा। दाचीगाम का जंगल खुले मैदान जैसा नहीं, यहाँ सीधी चढ़ाई भी है, कीचड़ भी, और ये बहुत घना है। मौसम भी किसी तय टाइम टेबल पर नहीं चलता, कभी बारिश कभी धुंध। लेकिन जिस चीज को आतंकी अपने लिए कुदरती कवर समझ रहे थे, सुरक्षा बल उसी प्रकृति को अपने पक्ष में बदल रहे थे।
2: तो यहाँ मौसम का भरोसा नहीं है, ये पहाड़ियों की हाइट इतनी ज्यादा है तो आपको उन सब चीजों में प्रिपेयर चलना चढ़ता है। बारिश किसी भी वक्त आ सकती है, अगर आपके रास्ते में जाते हुए बारिश आ गई तो आपको जाने में प्रॉब्लम होगी, आपके रहते हुए अगर बारिश आ गई तो आपको वहाँ बैठने में प्रॉब्लम होगी। यही इश्यूज मैं आर्मी जो फेस कर रही है, हमें ये भी पता है कि यही इश्यूज सेम आतंकवादियों को भी फेस करने पड़ेंगे। तो वी यूज इट एज एडवांटेज ऑल्सो कि अगर हमें ये दिक्कत हो रही है, बारिश से हमें परेशानी हो रही है, दिखने में हमें दिक्कत हो रही है, तो आतंकवादियों को भी वही दिक्कत होती है।
3: क्या होता है कि मिट्टी वगैरह रहती है उसमें कहीं भी चलना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप किसी पहाड़ी रिज पे चढ़ रहे हो तो उसमें काफ़ी सारी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें कीचड़ की इतनी नौबत आती नहीं, पर आपको चढ़ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। कवर कम मिलता है क्योंकि इधर प्लेन पहाड़ियाँ हैं, तो अपने आप को सरप्राइज देने में काफ़ी दिक्कत आती है, आपको समय लगता है, आपका जो एंड्योरेंस है कम होता है, लेवल चलने में काफ़ी स्लो चलना पड़ेगा आपको।
4: ऑपरेशन के दौरान कुछ दिनों का तो रसद, कुछ दिनों का खाना रहता है, उसके आगे क्या क्या खा रहे थे, किस चीज़ पर सर्वाइव कर रहे थे आप लोग?
2: मैम, अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। आपको नहीं पता, आपको ये पता है कि ये होना तो है बट ये कब तक होगा, कितना लंबा चलेगा। ऑल्दो हम अपने सर्वाइवल के लिए कुछ घंटों का 72, 96, 120 घंटों का खाना अपने साथ लेकर के चलते हैं, पानी उसी हिसाब से हम वाटर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, बट ऑल्दो अगर ऐसे रिक्वायरमेंट आती है कि आपका खाना जो है वो कम पड़ रहा है या फिर पानी जो है कम पड़ रहा है और आपकी सर्टेनिटी नहीं है कि कब तक ऑपरेशन चलेगा, तो हम उसी हिसाब से अपना फूड या वाटर डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं कि अभी आज जो है वो इतने पे ही मेंटेन करना है, आज पानी इतना ही पिया जाएगा।
0: आतंकियों को अगर भनक लग जाती तो वो किसी भी दिशा में भाग जाते। इसीलिए सुरक्षा बलों का मकसद सिर्फ एक जगह पर पहुंचना नहीं था, मकसद था चारों तरफ से घेरा बनाना। बताया जाता है कि रात करीब 2 बजे आतंकवादियों ने थोड़ी देर के लिए अपना संचार उपकरण चालू किया। सिग्नल इंटेलिजेंस ने तुरंत दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास लिडवास द्वारा क्षेत्र में उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स का नक्शा तैयार कर लिया।
2: इन्फॉर्मेशन आ गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स से चेक हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये ऑपरेशन वही है, ये उन्हीं लोगों को हमने न्यूट्रलाइज किया है। तब जो सेंस ऑफ क्लोजर था वो हमें लगा कि ऑल्दो ये हमारा रेगुलर टास्क है बट जो सेंटिमेंट्स उभर कर आ रहे थे देशवासियों के, उन फैमिलीज के लिए, तो हमें फील हुआ कि आई थिंक हमने जस्टिस सर्व कर दी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: एक तो एक
8: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: बहुत टायर्ड हो गई।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
12: JK Maxx Paints.
11: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफिल जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: In association with
1: Anmol Biscuits, Swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: Jahan jurm, wahin kahani. Jahan kahani, wahin saazish. Jahan saazish, wahan crime tha. Jurm chahe kitna hi uljha ho, uski parte hum suljhate. Dekhe crime tak YouTube par. और बचिए हर क्राइम से।
4: चंबा के सांच पास से आई ये तस्वीरें, जहां सितंबर में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या सड़कें, हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। बर्फ से ढकी वादियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन बर्फबारी ने खूबसूरती के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ाई। चंबा को जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी से जोड़ने वाले सांच पास मार्ग पर बर्फ जमने से कुछ देर के लिए आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर बर्फ होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन और संबंधित विभाग हरकत में आए। सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद सांच पास मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया। अब चंबा और पांगी घाटी के बीच आवाजाही एक बार फिर सुचारू है। सांच पास में मौसम बेहद तेजी से बदलता है, यहाँ अचानक बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं। ऐसे में प्रशासन ने वाहन चालकों से मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखकर ही सफर करने की अपील की है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सितंबर की इस बर्फबारी ने सांच पास की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद रास्ते यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चंबा से विशाल आनंद आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: इंदौर में छात्रों की गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। जेपी नड्डा का पलटवार, झूठ की राजनीति करते हैं नेता विपक्ष। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम, अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जे, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे, ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस, एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड, पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर, पीड़ित मां का आरोप, परीक्षा में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के बाद बेटे को प्रताड़ित किया गया।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: जुलाई 2025 दाचीगाम के जंगलों में हमारे जवान लक्ष्य को घेरते हुए आगे बढ़ने लगे।
4: अट्ठाईस तारीख की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच में हमारी एक फोर्सेस की टुकड़ी, जो उनको एक टास्क दिया गया था, उस टास्क को पूरा करके पूरे अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स को इम्प्लॉय करके नीचे की तरफ आ रही थी, जहाँ की हमें खबर थी कि हो सकता है शायद यहाँ पे है, और सारी इंटेलिजेंस पिक्चर भी उसी तरफ इशारा कर रही थी। तो हमारी टीम उतनी ही चौकस थी कि अभी हम नीचे उतर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। फाइनली हमें 3 लोग दिख गए।

0: करीब 9:30 बजे तक सैनिक बिना किसी रेडियो संचार के चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ गए। सुबह के कोहरे का फायदा उठाते हुए कमांडोज ने एक मजबूत मल्टीलेयर घेरा तैयार कर लिया। सुरक्षा बलों को एक एडवांटेज था कि ये दिन का वक्त था और वो दुश्मन को साफ साफ देख पा रहे थे।
1: लगभग सुबह 5 बजे हमें खबर मिल गई थी, ये पक्का हो गया था कि वो किस जगह पर है। उस जगह पहुंचने में हमें कुछ टाइम लगा होगा। अब वहां पर हम जब थे तो समय का अंदाजा थोड़ा कम हो जाता है, बट हाँ रोशनी इतनी हो गई थी कि लगभग दिन हो गया था वहां पे उस टाइम पे जब वो कांटेक्ट हुआ उस जगह पर। और हमारी इसमें ये जीत ये थी कि वो रात को नहीं हुआ, वो रोशनी के टाइम था, तो हम उन्हें देख पा रहे थे। हम अपने लोगों को आड़ में लेकर के आए, हम उस पोजीशन में आए, उस डोमिनेटिंग पोजीशन में हम आ सके जिस पे हम उन्हें वार कर सके, और वो जो है हम पर क्रॉस फायर अगर करना भी चाहें तो हमें कोई घात ना हो उससे।
0: घने जंगलों में ये सैनिकों का लगातार 14वां दिन था। कितनी असफलताएं, कितने सेटबैक, कितनी मुश्किलों के बावजूद एक पल ऐसा नहीं निकला था जब वो हताश हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने खामोशी की चादर छोड़ी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आतंकियों की टोह लेना छोड़ा हो। न भूख की चिंता, न प्यास की फिक्र, न घर की बात, बस जुनून देश के उन दुश्मनों को ढूंढ निकालने।
2: अपने तरफ तरीके से वो कैमोफ्लाइज और कंसाइनमेंट के अनुसार एक छोटा सा हाइड आउट, मतलब टेम्पोररी हाइड आउट बना के रखे थे जिससे कि कोई देख ना सके। और मौसम भी बहुत उस दिन ख़राब था और सुबह का मौसम था तो विजिबिलिटी भी थोड़ा कम था, लेकिन हम अपने ट्रेनिंग के अनुसार ही, जैसे हम लोग हमेशा ऑपरेशन को अंजाम देते हैं उसी हिसाब से हम लोग आगे एडवांस करते रहे। जैसे ही हमें लगा कि हाँ आगे कोई हाइड आउट है, फिर हमने अपना ब्रीफिंग लिया और फायर कंट्रोल का जो आदेश होता है उसको फॉलो किया।
0: सुबह के लगभग 10:30 बज रहे थे जब सैनिकों ने अंतिम कार्रवाई शुरू कर दी।
3: सामने से उस बंदे को, एक बंदे की हरकत दिखी तो हमने क्या किया, उधर ही थोड़ा हमने आर्ट पोजीशन ली तो हमने 5-10 मिनट क्या किया, उसको देखते रहे हम उसकी क्या एक्टिविटी है, वो बंदा क्या है। वहाँ से थोड़ा टर्न हुआ और उधर ही जाके अपने हाइड आउट में छिप गया वो। तो हमने पूरे अपने स्क्वाड को पीछे बताया कि भाई सारे बंदे अलर्ट हो जाओ। तो हमने क्या किया, उसके हिसाब से अपने मूव टू मूव करते हुए नज़दीक से नज़दीक जाके हमने प्लान करके कमांडर को बता के तो अभी क्या करना है उसके ऊपर। तो कमांडर ने बताया कि हम ऐसे ऐसे चलना है उसके, मतलब नज़दीक से नज़दीक जाके उसके हाइड आउट के पास पहुँचे हम। तो नज़दीक पहुँच के तो जैसे ही अर्थ हुआ तो उसके बाद में क्लोज,
4: उसके बाद वो ऑपरेशन
3: क्लोज।
0: जंगल का सन्नाटा गोलियों की आवाज से चकनाचूर होने लगा। अब दुनिया की कोई आड़ उन आतंकियों को नहीं छिपा सकती थी।
5: कॉलिंग टू एट अल्फा, टारगेट पॉइंट पे सर फायर हो गई है।

0: कहर था, ये सिंदूर का इंसाफ था। भीषण लेकिन बेहद नियंत्रित मुठभेड़ में विशेष बलों ने 30 मिनट के अंदर तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 2 हफ्ते से जंगल की खाक छान रहे जवान उन दरिंदों से देश के एक एक जख्म का हिसाब ले चुके थे।
1: पहलगाम अटैक के बाद इतना हाई वैल्यू टारगेट जिस पे पूरे देश की नजर थी, ये हाई वैल्यू ऑपरेशन बना। और जब ये हमें साबित हो गया कि भाई ये वही हथियार हैं जो कि पहलगाम अटैक पे फायर हुए थे, तो उसने हमारे अंदर एक सेंस ऑफ क्लोजर दिया। इस सेंस ऑफ क्लोजर ने हमारे सारे ड्रिल्स, प्रोसीजर्स, हमारा प्रिसिशन ऑफ ऑपरेशन को साबित किया।
0: पर हिंदुस्तान के योद्धा निराले होते हैं। एक सफल ऑपरेशन का जश्न नहीं, बल्कि अब भी वो ये निर्धारित करने में लगे कि मारे गए आतंकियों की पहचान क्या है और क्या हथियार वही हैं जो बैसरन घाटी में इस्तेमाल किए गए। सुलेमान उर्फ फैसल जट, हमजा अफगानी, जिब्रान, ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकवादियों के पास से 3 राइफलें मिली थी, 1 M4 कार्बाइन और 2 AK-47 राइफल्स।
2: आखिर में जब इस पूरे ऑपरेशन के बाद ऐसा नहीं था कि आपने एक किल किया और उसके साथ खत्म हुआ, उसमें जो कार्ट्रिजेस मिले थे हमें पहलगाम में वो इन्हीं वेपन्स के निकले, कैसा था वो सेंस ऑफ क्लोजर?
3: मैम जब ये टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, ऑपरेशन वहाँ खत्म नहीं हुआ था, बिकॉज हम अभी भी श्योर नहीं थे क्या ये वही लोग हैं, क्योंकि ये अगर इसके 2 पहलू हैं मैम। पहला चीज़ ये है कि ये हमारे लिए रोज का काम है, ये हो सकता है कोई और ग्रुप भी हो, और दूसरा ये था कि वो उस ऑपरेशन से, उस अटैक से सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा जुड़े थे कि हम चाहते थे कि ये वही लोग। बट देन उसके बाद में हमने उस एरिया को पूरा सैनिटाइज किया, पूरा सर्च किया, चेक किया कि कहीं इनके अलावा कोई और तो नहीं है जो किसी और दूसरी जगह पर हो। उसके बाद वहां से जो रेसिडुअल्स थे वो उठाए गए, उनको थॉरली चेक किया गया।
0: पहलगाम से मिले कारतूस और दाचीगाम में बरामद हथियार दोनों को जांच के लिए भेजा गया। फिर हुई बैलिस्टिक जांच, बरामद राइफलों से टेस्ट फायरिंग की गई और फिर पहलगाम से मिले कारतूसों की तुलना की गई।
3: उनको भेजा गया चेक होने के लिए, टू कंफर्म एंड टू असिस्ट। उस तब तक हमने किसी को ये बताया नहीं था कि जो है ये ऑपरेशन पूरा हो गया है। आफ्टर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स से चेक हो गया, ये कंफर्म हो गया कि ये ऑपरेशन वही है, ये उन्हीं लोगों को हमने न्यूट्रलाइज किया है, तब जो सेंस ऑफ क्लोजर था वो हमें लगा कि ऑल्दो ये हमारा रेगुलर टास्क है, बट जो सेंटिमेंट्स उभर कर आ रहे थे देशवासियों के, उन फैमिलीज के लिए, तो हमें फील हुआ कि आई थिंक हमने जस्टिस सर्व कर दिया।
0: FSL की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि पहलगाम हमले की जगह से बरामद कारतूस, मुठभेड़ के दौरान बरामद 3 राइफलों, 2 AK सीरीज राइफल और 1 M4 राइफल से मेल खाते हैं। जिन हथियारों से गोलियां चली थी वही हथियार आतंकियों के पास से बरामद हुए, और यही वो सबूत थे जिसने 22 अप्रैल को 28 जुलाई से जोड़ दिया। पहलगाम का न्याय पूरा हो चुका था।
4: उनके पास से 3 राइफलें बरामद, 1 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफल है। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से NIA ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में, रात को फॉरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं 3 राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे।
2: बेसरन घाटी में जो कुछ हुआ था वो हमारे देश में सबने देखा, सबका खून खौला था। क्या न्याय की जो एक जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधे पर थी, आप लोगों के कंधे पर थी, वो आपको और ऊर्जा दे रही थी इस ऑपरेशन के दौरान?
1: देखिए, भारतीय सेना इमोशंस से कम और अपने कर्तव्य पे ज़्यादा काम करती है। बैसरन अटैक एक ऐसा अटैक था जो कि न सिर्फ एक आतंकी अटैक नहीं था बल्कि निर्दोष सिविलियंस पर किया गया एक हीनियस अटैक था। इस अटैक के बाद जो देश में इमोशन था काफ़ी हाई था, जैसे कि आपने बताया, परंतु हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमें इमोशन को कर्तव्य में कैसे उसको ट्रांसफर करना वो हमें सिखलाती है। हमने वही किया और लास्ट में हमने जस्टिस को सर्व किया उन 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करके।
0: ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत के अटूट हौसले का सबूत था। दाचीगाम जंगल के घने और अत्याधिक ऊंचाई वाले इलाके में पारंपरिक निगरानी पर्याप्त नहीं थी। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीकी खुफिया जानकारी यानी टेकइंट का उपयोग किया। आतंकवादी बेहद सुरक्षित ऑफलाइन संचार सेट का इस्तेमाल कर रहे थे जो सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क को बाईपास कर देते हैं। लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस ने भी अल्ट्रा सिग्नल इंटरसेप्शन का प्रयोग किया। जानकारी के अनुसार घने जंगलों के पत्तों और पेड़ों को भेदने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और हीट सिग्नेचर इमेजिंग से लैस भारी पेलोड वाले ड्रोन लॉन्च किए गए। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, आतंक की आकाओं को खत्म करना और पाकिस्तान को उसकी साजिश के लिए सबक सिखाना था। जबकि ऑपरेशन महादेव का फोकस उन आतंकियों का खात्मा था जिन्होंने पहलगाम के जरिए भारत को छलनी किया।
2: वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स है ये जो आपकी आर्मी CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, पर ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो बहुत डायनामिक था, चीजें पल पल में बदल रही थी। कैसे इंश्योर होता है कि ये इतना फ्लॉलेस, इतना सीमलेस निकलता है?
1: देखिए, जैसे मैंने पहले भी आई हैव एम्फसाइज्ड मोर ऑन ट्रेनिंग एंड यू नो द कोहेशन बिटवीन द फोर्सेस, और हमारी जो टीम कोहेशन है आपस में, डायनामिक ऑपरेशन है, कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता है, कब क्या होगा वो भी हमें नहीं पता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं कि आज खबर यहाँ पर है, आज हम ये करेंगे, अगले दिन टीम रोटेट भी हो सकती है, या अगर हमारे पास समय की कमी है तो वही टीम स्टेज फॉरवर्ड भी होती है। अब इन सब चीज़ों में आता है आपका लॉजिस्टिक बैकअप, है ना, आपके जवान फिजिकल एंड्योरेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, बारिश भी आ गई, बर्फ भी पड़ गई, नाले भी भर गए, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। तो हमने इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लान किया था, हमने अपनी मैन पावर को, अपने लॉजिस्टिक्स को इस तरीके से प्लान किया ताकि हम उनको समय समय पर आराम दे पाएं, ताकि जब एक्चुअल ऑपरेशन हो तो हमारे पास जो मेरी फोर्स है, फोर्स प्रजर्वेशन इंटैक्ट हो और हम पूरी स्ट्रॉन्ग अपने दस्ते के साथ जाके इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाएं।
0: इस पूरे ऑपरेशन की एक बड़ी कहानी अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय की भी है, तालमेल की है। खुफिया ब्यूरो से मिली मानवीय खुफिया जानकारी, सेना और दूसरे सुरक्षा बलों की जमीनी निगरानी, सेंसर से मिली पुष्टि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच, स्थानीय स्तर से मिली जानकारियां और आखिर में सुरक्षा बलों की जमीनी कार्रवाई, इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक ऐसी श्रृंखला तैयार हुई जिसने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले से 28 जुलाई के दाचीगाम अभियान का रास्ता बनाया।
2: मन में तसल्ली मिली कि जिन लोगों ने हमारे देशवासियों का खून
5: बहाया तो उसका बदला लेना, एक हमारे को क्या है, न्याय दिलाना।
2: जी, जब ये निश्चित हो गया, ये कंफर्म हो गया कि उन आतंकियों की पहचान वही थी जिन्होंने पहलगाम में वो हमला किया था, तब क्या कहा मन में, कैसा महसूस किया आपने उस समय?
6: जिस दिन से ये हमला हुआ वैसरन घाटी में, उस दिन से ही पूरी भारतीय सेना इसके पीछे संलग्न थी कि इस इन आतंकियों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जब ये कंफर्म हो गया, जैसे ब्लास्टिक रिपोर्ट या और सुरक्षा एजेंसियों के तहत ये कंफर्म हुआ कि हाँ ये वही आतंकी हैं, तो एक मन में संतुष्टि हुआ कि जिन आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों के ऊपर हमला किया था उनका, उन नागरिकों का जो भरोसा था हम पे वो आज पूरा हो गया। तो ये कोई बदले का भावना नहीं था बल्कि एक लक्ष्य को पूर्ण करने का भावना मन में खुशी था, और उससे बहुत सबक भी मिला हम लोगों को, और अगले ऑपरेशन के लिए उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगले ऑपरेशन के लिए हम लोग तैयार थे।
0: आज युद्ध बदल रहा है तो आतंक निरोधी ऑपरेशंस भी बदल रहे हैं। भारत पारंपरिक युद्ध भूमि से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी शौर्य और तकनीक का ऐसा संतुलन लेकर चल रहा है जो मिसाल ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन महादेव। ये संकल्प है भारत के हर वीर का कि जब जब देश की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाएगा, खुलेगा त्रिनेत्र, होगा तांडव, जीतेंगे महादेव। ये कहानी है दृढ़ता, विश्वास और न्याय की। आतंक की मंशा कुछ भी हो, उसका अंजाम एक ही होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ, ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट।
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol, signature finest cardamom seeds,
6: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
6: जिंदगी में एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम? कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: भर्ती बोर्ड और आयोग, तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: इंदौर में छात्रों की गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। जेपी नड्डा का पलटवार, झूठ की राजनीति करते हैं नेता विपक्ष। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम, अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जे, ने सीयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे, ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस, एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड, पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर, पीड़ित मां का आरोप, परीक्षा में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के बाद बेटे को प्रताड़ित किया गया।
1: नमस्कार, मैं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल के हो गए, लिहाजा कहानी के इस खास एडिशन में हम आपको दिखाएंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी 76 कहानियां। जी हाँ, वो कहानियां जो उनके बचपन, संघर्ष, पढ़ाई और चाय की दुकान से शुरू होती हैं, देश भ्रमण, आध्यात्म और संगठन से गुजरती हैं और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक पहुंचती है। यानी एक ऐसी कहानी जिसमें एक स्वयं सेवक का सफर प्रधान सेवक तक पहुंचता है। तो आज कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
2: रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है।
3: जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार, आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ही। मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना लेकर के सोता हूं और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं।
4: भारत के युवा एसी के बंद कमरों में बैठकर नहीं सोच रहे, भारत के युवा की सोच का विस्तार आसमान से भी ऊंचा है।
5: आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
6: मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं।
1: वडनगर के एक साधारण परिवार से शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का सफर चाय की दुकान से लेकर संगठन की जिम्मेदारियों और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा। पढ़ाई के साथ काम, देश भ्रमण, आध्यात्मिक झुकाव और आरएसएस के प्रचारक के तौर पर लंबा अनुभव है। इन सभी पड़ावों ने उनके राजनीतिक सफर की नींव तैयार की। 1987 में बीजेपी में जिम्मेदारी मिली, संगठन में कद बढ़ा और 2001 में गुजरात की कमान मिली।

0: नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। वो दामोदर दास मोदी और हीराबेन मोदी की तीसरी संतान थे। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था और एक छोटे से घर में रहता था। बचपन से ही परिवार की चाय की दुकान के काम में हाथ बटाने लगे। पढ़ाई के साथ काम करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा। मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों ने बचपन में ही मेहनत और आत्मनिर्भरता से उनका परिचय करा दिया। वडनगर में बचपन बीत रहा था और स्कूल की पढ़ाई के साथ परिवार की चाय की दुकान पर भी हाथ बटाते थे। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया है कि रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को चाय देने का काम भी किया करते थे। पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारी साथ साथ चलती रही। बचपन का यही दौर उनके जीवन में संघर्ष और मेहनत से जुड़ी यादों का हिस्सा बना। स्कूल के दिनों में नरेंद्र मोदी पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। उनके स्कूल के साथियों के मुताबिक उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था और स्थानीय लाइब्रेरी में काफी समय बिताते थे। बहस और चर्चा में हिस्सा लेने की भी रुचि थी। बचपन से ही पढ़ने, नई चीजें जानने और अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेने की आदत उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती गई। पढ़ाई के साथ नरेंद्र मोदी का झुकाव स्कूल की गतिविधियों की तरफ भी था। नाटकों और वाद विवाद जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। कम उम्र में ही आयोजन करने, साथियों को जोड़ने और किसी काम के लिए लोगों को साथ लाने की क्षमता दिखाई देने लगी थी। बचपन और किशोरावस्था के दौरान नरेंद्र मोदी सेना में जाने का सपना देखते थे। जामनगर के सैनिक स्कूल में पढ़ने की इच्छा भी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण ये संभव नहीं हो पाया। सेना में जाने का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन देश और समाज के लिए काम करने की इच्छा बनी रही।
1: यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता।
0: बचपन में नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के साथ शर्मिष्ठा सरोवर गए थे। वहां से मगरमच्छ का एक बच्चा पकड़कर घर ले आए। माँ हीराबेन ने समझाया कि बच्चे को उसकी माँ से अलग करना ठीक नहीं है। माँ की बात समझ में आने के बाद उसे वापस सरोवर में छोड़ दिया। ये किस्सा उनके बचपन की शरारत और माँ की सीख से जुड़ा है। गुजरात की पतंगबाजी का रंग नरेंद्र मोदी के बचपन में भी दिखाई देता था। उन्हें पतंग उड़ाने का शौक था। इसके अलावा गुजराती में लिखने और कविता करने में भी रुचि रही। आगे चलकर उन्होंने अपने लेखन रुचि को भी जारी रखा। सार्वजनिक जीवन शुरू होने से काफी पहले पढ़ना, लिखना, कविता और पतंगबाजी जैसी अलग अलग रुचियां उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी।
2: उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।
0: लगभग 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। अगले करीब 2 सालों में उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें विभिन्न स्थानों, संस्कृतियों और लोगों को करीब से देखने का मौका मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जीवनी के मुताबिक इस यात्रा के बाद जब वो वापस लौटे तो उनकी जीवन को लेकर सोच और दिशा में बदलाव आया। युवावस्था के शुरुआती दौर में नरेंद्र मोदी का झुकाव अध्यात्म और संन्यास की तरफ भी रहा। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रधानमंत्री मोदी बहुत प्रभावित थे। भारत भ्रमण के दौरान आध्यात्मिक स्थानों पर भी गए। बाद में उनका रास्ता संन्यास की जगह सामाजिक और संगठनात्मक काम की ओर मुड़ गया। आध्यात्मिक चिंतन उनके जीवन में आगे भी दिखाई देता रहा। देश भ्रमण के बाद नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। लगभग 1972 से आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। उनकी दिनचर्या सुबह करीब 5 बजे शुरू होकर देर रात तक चलती थी। संगठन के काम, कार्यकर्ताओं से संपर्क और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच उनकी संगठनात्मक क्षमता धीरे धीरे सामने आने लगी। आरएसएस में प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी की जिंदगी बेहद अनुशासित और व्यस्त रही। संगठन के काम के लिए लगातार यात्रा करना, कार्यकर्ताओं से मिलना और कार्यक्रमों की जिम्मेदारी संभालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। सीमित साधनों से हटकर संगठन के लिए काम करना और अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना इसी दौर में सीखा। प्रचारक के तौर पर बिताए इस समय ने उनके भीतर अनुशासन, संगठन और आत्मनिर्भरता की सोच को और मजबूत किया। 1975 से 1977 के बीच देश में आपातकाल लगा। इस दौरान नरेंद्र मोदी आंदोलन से जुड़े और संगठन के लिए भूमिगत तरीके से काम किया। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और पगड़ी पहनकर सरदार के रूप में काफी समय तक यात्राएं की और काम किया। इस दौर में संगठन के संदेश और साहित्य को लोगों तक पहुंचाने और संपर्क बनाए रखने जैसे काम भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल रहे। आपातकाल खत्म होने के बाद आरएसएस में नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक जिम्मेदारियां बढ़ती गई। कार्यक्रमों की तैयारी, कार्यकर्ताओं से संपर्क और संगठन के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम जारी रहा। मुश्किल परिस्थितियों में काम करने का अनुभव उनके साथ था। धीरे धीरे संगठन के भीतर उनकी पहचान ऐसे कार्यकर्ता के रूप में बनने लगी जो योजना बनाने के साथ उसे जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी भी संभाल सकता था। के दशक में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के भीतर कई जिम्मेदारियां संभाली। कार्यक्रमों की योजना बनाना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और संगठन के काम को जमीन तक पहुंचाना उनकी भूमिका का हिस्सा बना। इसी दौरान उनकी संगठनात्मक क्षमता और ज्यादा उभर कर सामने आई। आरएसएस में हासिल किया गया यही अनुभव आगे चलकर बीजेपी के संगठनात्मक काम में उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब उनकी पहचान एक सक्रिय संगठनकर्ता के तौर पर बनने लगी थी। उन्नीस सौ सतासी में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के संगठनात्मक काम की जिम्मेदारी संभाली। आरएसएस में लंबे समय तक काम करने के बाद सक्रिय राजनीतिक संगठन में ये उनके लिए एक नया पड़ाव था। आधिकारिक जीवनी के अनुसार अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में भी उनकी संगठनात्मक भूमिका रही, जिसमें बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी की संगठनकर्ता के तौर पर भूमिका और स्पष्ट होती गई। 1990 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कई किताबों में नरेंद्र मोदी की संगठनात्मक भूमिका का उल्लेख मिलता है। कार्यकर्ताओं को जोड़ना, चुनावी तैयारियों को व्यवस्थित करना और पार्टी के विस्तार पर काम करना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल रहा। 1995 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 121 सीटें जीती। प्रधानमंत्री कार्यालय की जीवनी में इस दौर में नरेंद्र मोदी के संगठन कौशल का उल्लेख किया गया है। गुजरात में पार्टी संगठन को मजबूत करने के बाद उनकी भूमिका अब राज्य से बाहर भी बढ़ने लगी। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलने लगी। गुजरात से शुरू हुआ उनका संगठनात्मक सफर अब राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ रहा था। 1995 के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में सक्रिय हुए। उन्हें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के काम की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद संगठन महासचिव के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका बढ़ी। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संगठनात्मक अभियान में भी उन्होंने काम किया। गुजरात में संगठन के अनुभव के बाद अब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मैदान में अपनी भूमिका निभा रहे थे। 2001 में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में बड़ा मोड़ आया। गुजरात उस समय कई चुनौतियों से गुजर रहा था और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। सितंबर 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन नरेंद्र मोदी के लिए एक नई जिम्मेदारी का संकेत लेकर आया। कई वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक इसके बाद संगठन की राजनीति से प्रशासन की दुनिया में उनके प्रवेश का रास्ता खुला। सात अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यही वो पड़ाव था जहां वडनगर का लड़का, जिसने बचपन में परिवार की चाय की दुकान पर काम किया था, आरएसएस के प्रचारक से बीजेपी के संगठनकर्ता और फिर राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचा। इसके साथ ही उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ।
3: गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद नरेंद्र मोदी की सियासी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। गुजरात में लगातार चुनावी जीत, विकास और शासन को लेकर बनी राष्ट्रीय पहचान और फिर बीजेपी में बढ़ती भूमिका ने उन्हें देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया। 2013 में बीजेपी ने उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और अगले साल बीजेपी को लोकसभा में बहुमत मिला। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और गुजरात से दिल्ली तक का उनका सफर पूरा हो गया।
4: नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
0: 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उस वक्त राज्य कई चुनौतियों से गुजर रहा था। 2001 का कच्छ भूकंप, सूखा और राजनीतिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां उनके सामने थी। संगठन में काम करने के लंबे अनुभव के बाद अब पहली बार सीधे सरकार चलाने की जिम्मेदारी थी। ये तस्वीर साल 2002 की है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। स्कूलों की पढ़ाई और वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए मोदी अचानक स्कूल पहुंचते और बच्चों के बीच बैठकर क्लास का माहौल समझते थे। कई बार वो आगे नहीं बल्कि बच्चों के पीछे बैठकर चुपचाप पढ़ाई देखते नजर आते थे। मकसद था किताबों में दर्ज आंकड़ों से अलग स्कूल में जाकर जमीनी हकीकत को देखना। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये अंदाज उनकी अलग कार्यशैली की एक तस्वीर पेश करता। गुजरात विधानसभा भंग होने के बाद दिसंबर 2002 में चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी के लिए ये मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी। बीजेपी ने 182 सदस्य विधानसभा में 127 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सरकार चलाने के साथ अब चुनावी राजनीति में भी उनका कद गुजरात में और स्पष्ट हो चुका था।
5: कांग्रेस 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने 117 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस दौर में गुजरात के विकास, निवेश और औद्योगिक विस्तार को लेकर उनकी सरकार का मॉडल राष्ट्रीय चर्चा में आया। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहचान अब सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रह गई थी। दो हजार नौ के लोकसभा चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनकी चर्चा लगातार बढ़ती गई। गुजरात में उनके प्रशासन और विकास मॉडल को लेकर देश भर में बहस होने लगी। बीजेपी के भीतर भी नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर चर्चा बढ़ रही थी। राज्य के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय स्तर के नेता तक उनका सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
6: भाई
5: 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी चौथी बार मुख्यमंत्री बने। लगातार चुनावी जीतों के साथ उनका राष्ट्रीय राजनीतिक कद और बढ़ा। गुजरात में करीब 11 साल सरकार चलाने के बाद अब सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री के अगले कार्यकाल का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका का भी बनने लगा था। दो हजार 2013 नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का निर्णायक साल बना। बीजेपी ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक का ये बदलाव उनकी राजनीतिक यात्रा में बड़ा पड़ाव था। अब उनका चुनावी मैदान गुजरात नहीं बल्कि पूरा देश था। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश भर में चुनावी अभियान शुरू किया। रैलियां, जनसभाएं, लगातार यात्राएं उनके अभियान का हिस्सा बनी। गुजरात में विकास और प्रशासन के जिस मॉडल को उनकी पहचान से जोड़ा गया था वही अब राष्ट्रीय चुनावी अभियान के प्रमुख संदेशों में शामिल हुआ। 2014 का चुनाव उनके लिए गुजरात से निकलकर पूरे देश में जन समर्थन हासिल करने की परीक्षा थी।
7: भारत माता की। देखिए सारे मीडिया वाले उधर मुड़ गए ना, तो यही तो ताकत है दोस्तों आपकी।
5: दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीती और अपने दम पर बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये 30 साल के बाद पहली बार था जब किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। गुजरात के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक नरेंद्र मोदी का सफर अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। छब्बीस मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुआ शासन का सफर करीब 13 साल बाद देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा। वडनगर से शुरू हुई कहानी अब रायसीना हिल्स तक पहुंच चुकी थी। एक प्रचारक, संगठनकर्ता, मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का ये सबसे बड़ा पड़ाव था। मुख्यमंत्री बनने के करीब 2 साल बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात को निवेश के बड़े केंद्र के तौर पर पेश करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की। पहला शिखर सम्मेलन 28 सितंबर 2003 को हुआ। उस समय गुजरात प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक अस्थिरता और 2002 की हिंसा के बाद की परिस्थितियों से निकल रहा था। तत्कालीन मुख्य सचिव पीके लहरी ने बाद में बताया कि मोदी खुद उद्योगपतियों को फोन करके सम्मेलन में आने का न्योता देते थे। यही आयोजन आगे चलकर गुजरात की पहचान का बड़ा हिस्सा बना। मुख्यमंत्री के दौर में नरेंद्र मोदी के पहनावे ने भी अलग पहचान बनाई। खास तौर पर उनकी आधी बाजू वाली कुर्ते की शैली चर्चा में आई, जिसे बाद में आमतौर पर मोदी कुर्ता कहा जाने लगा। लंबी बाजू के पारंपरिक कुर्ते की तुलना में छोटा और असुविधाजनक ये डिजाइन उनके सार्वजनिक लुक का हिस्सा बन गया। राजनीति में जहां नेताओं की पहचान अक्सर भाषण और विचारों से बनती है, वहीं मोदी के मामले में उनका पहनावा भी उनकी सार्वजनिक छवि का एक अलग हिस्सा बना।
8: आपना शहर मां आप सौ साथे जोड़ान साथवा पधार्या छे नरेंद्र भाई।
5: 2012-13 के दौर में नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में तकनीक का एक अलग प्रयोग सामने आया। उनके भाषणों का 3D होलोग्राम तकनीक के जरिए एक साथ कई जगहों पर दिखाया गया, यानी मोदी एक जगह पर मौजूद थे लेकिन उनका डिजिटल रूप अलग अलग स्थानों पर लोगों के सामने दिखाई देता था। 2014 के चुनाव अभियान में तकनीक का ये इस्तेमाल और व्यापक हुआ। पारंपरिक रैलियों के बीच ये प्रचार का बिल्कुल अलग तरीका था और मोदी के अभियान की पहचान बन गया। में नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 3 दिन का सद्भावना उपवास किया। 17 सितंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम को उन्होंने सद्भाव और गुजरात की एकता के संदेश से जोड़ा। उस वक्त यह आयोजन इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि मोदी की राजनीति और गुजरात सरकार की भूमिका को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहस चल रही थी। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस उपवास को सामाजिक सद्भाव के संदेश के रूप में प्रस्तुत किया।
2: तो दुनिया के कई देश जो हमारे बाद आजाद हुए।
5: 2014 के चुनाव अभियान में नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने की कहानी को एक बड़े जनसंपर्क अभियान से जोड़ा। नाम था चाय पे चर्चा। चाय की दुकानों पर बैठे लोगों से तकनीक के जरिए संवाद किया गया और कई शहरों को एक साथ जोड़ा गया। यानी जिस चाय की दुकान से नरेंद्र मोदी के बचपन की कहानी जुड़ी थी, चुनाव के वक्त वही चाय देश भर के मतदाताओं से संवाद का एक प्रतीक बन गई।
9: और कोई साधन ये हमारा रास्ता नहीं।
10: पूर्ण बहुमत से आएंगे, सुंदर भविष्य बनाएंगे। आशा के दीप जले यहाँ, जगमग है ये।
5: प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक संवाद में इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 2014 के चुनाव तक उनकी रैलियों के साथ सोशल मीडिया, ऑनलाइन संवाद और तकनीकी माध्यम अभियान का अहम हिस्सा बन चुके थे। इससे उनका प्रचार सिर्फ मैदान में होने वाली रैलियों तक सीमित नहीं रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक पहुंचते पहुंचते उनके चुनावी अभियान का तरीका भी काफी बदल चुका था।
2: आपका वोट भारत के भाग्य को बदलने के लिए।
3: पहले कार्यकाल में बड़े फैसलों के साथ कुछ ऐसे पल भी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर एक अलग पहचान बनाई। स्वच्छता अभियान से योग तक, नोटबंदी से जीएसटी और सर्जिकल स्ट्राइक तक कई घटनाएं चर्चा में रही। साथ ही चाय वाले से प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई। 5 साल का ये सफर कई बड़े फैसलों और चर्चित किस्सों से भरा हुआ रहा।
5: छब्बीस मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर पूरा हो चुका था। शपथ ग्रहण में दक्षिण एशिया के नेताओं की मौजूदगी ने इसे खास बनाया। अब तक गुजरात की राजनीति के केंद्र में रहने वाले नरेंद्र मोदी के सामने पूरे देश की जिम्मेदारी थी। प्रधानमंत्री के रूप में पहला दिन उनके राजनीतिक सफर की एक नई शुरुआत थी। पंद्रह अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। खास बात ये रही कि उन्होंने परंपरागत लिखित भाषण के बजाय बिना कागज के भाषण दिया। जनधन योजना, स्वच्छता और कई सामाजिक मुद्दों का जिक्र इस भाषण में हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से उनका पहला संबोधन उनके संवाद के अलग अंदाज की शुरुआत भी माना गया।
11: भारत के संविधान के निर्माताओं को इस पर नमन करता हूं।
5: दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की और लोगों से इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री के हाथ में झाड़ू वाली तस्वीर देश भर में चर्चा में रही। राजनीति और सत्ता के औपचारिक मंच से अलग ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक अंदाज की नई तस्वीर पेश की। अक्टूबर 2014 में मन की बात का पहला प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो को लोगों तक सीधे पहुंचने के माध्यम के तौर पर चुना। इसमें सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण, परीक्षा, बेटियों और सामाजिक मुद्दों पर भी बात होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2026 को मन की बात का 137वां एपिसोड किया था।
12: सभी श्रोताजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
5: 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। ये पहली बार था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बना। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की मुलाकातें और सार्वजनिक कार्यक्रम पहले कार्यकाल की चर्चित तस्वीरों में शामिल रहे। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर भी इस यात्रा पर खास फोकस रखा गया। जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिन स्ट्राइप सूट पहना था उसकी खासियत थी। उस पर बारीक अक्षरों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा था। फरवरी 2015 में इस सूट की नीलामी हुई और सूरत के हीरा कारोबारी लालजी पटेल ने इसे 4,31,00,000 रुपए में खरीदा। नीलामी से मिली रकम को गंगा की सफाई से जुड़े कामों के लिए देने की बात कही गई थी। सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए। उनकी यात्रा का एक हिस्सा गुजरात में भी रहा, जहां नरेंद्र मोदी ने उनके साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साबरमती नदी के किनारे दोनों नेताओं की झूला झूलने वाली तस्वीरें सामने आई। कूटनीतिक बातचीत के साथ भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक छवि को सामने रखने की कोशिश भी दिखाई दी। ये मुलाकात मोदी के पहले कार्यकाल की चर्चित विदेशी मेहमान वाली तस्वीरों में रही। दिसंबर 2015 में नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा ने सबको चौंका दिया। अफगानिस्तान से लौटते समय उनका विमान लाहौर में उतरा और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। ये दौरा पहले से घोषित पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा नहीं था। कुछ ही दिनों बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ और दोनों देशों के रिश्तों में फिर तनाव बढ़ गया। मोदी के पहले कार्यकाल का ये सबसे अप्रत्याशित कूटनीतिक पल रहा। जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल के बाद ये दिन वैश्विक स्तर पर मनाया गया। हर साल पीएम मोदी योग दिवस पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। योग को भारत की प्राचीन परंपरा से जोड़ा जाता है, अब अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में ये भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की एक बड़ी तस्वीर बनी।
13: धीरे-धीरे हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें।
5: मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने पारंपरिक तीरंदाजी का अनुभव लिया। मंगोलिया के प्रधानमंत्री चिमेदिन सेखान बिलेग ने उन्हें एक भूरा घोड़ा कंथ का उपहार में दिया। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री का मंगोलिया का पहला दौरा था। मोदी ने घोड़े के साथ तस्वीर भी साझा की।
2: 8 नवंबर 2016
5: की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्य करने की घोषणा की। कुछ ही घंटों में देश की नकदी व्यवस्था बदल गई। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें लगी। सरकार ने इसे काले धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा के खिलाफ कदम बताया। नोटबंदी उनके पहले कार्यकाल का ऐसा फैसला बना जिसका असर आम जिंदगी तक सीधे पहुंचा।
2: यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।
5: सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को लेकर ये घटना लंबे समय तक चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में ये सुरक्षा से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हुई।
1: लोकसभा की अध्यक्षा जी,
5: जून 2017 की आधी रात संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ और 1 जुलाई से GST लागू हुआ। अलग अलग अप्रत्यक्ष करों की जगह नई कर व्यवस्था आई। आधी रात को संसद में हुआ यह आयोजन अपने आप में खास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मौके पर संबोधित किया। देश की टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव अब जमीन पर उतर चुका था। दो हजार सत्रह में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई। नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत में पहली बुलेट ट्रेन का सपना अब परियोजना के रूप में सामने था। आधुनिक परिवहन तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार की सोच की ये एक बड़ी तस्वीर बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचना एक चर्चित परंपरा बन गया। 2018 में उन्होंने उत्तराखंड के हर्षिल में सेना और ITBP के जवानों के साथ दिवाली मनाई। हर साल प्रधानमंत्री और जवानों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात सैनिकों के साथ त्योहार मनाने का यह सिलसिला उनके सार्वजनिक जीवन की अलग पहचान बना।
2: आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य आर्थिक सुविधा देने का।
5: 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। सरकार ने इसे गरीब और कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की बड़ी योजना के तौर पर पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना के दायरे में हैं। पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का एक खास पहलू भारतीय समुदाय से संवाद भी रहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में भारतीय समुदाय के बड़े कार्यक्रम हुए। विदेश यात्रा सिर्फ सरकारी बैठकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रवासी भारतीयों के साथ बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम भी उनकी यात्राओं का हिस्सा बने। विदेशों में मोदी के ऐसे कार्यक्रम उनके पहले कार्यकाल की अलग तस्वीर बने।
0: 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की उम्र में एम्स दिल्ली में निधन हुआ। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार स्मृति स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अटल जी की अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और पार्थिव शरीर के साथ काफी दूर तक पैदल चले। सत्ता के शीर्ष पर होने के बावजूद मोदी का इस तरह अंतिम यात्रा में पैदल चलना कैमरों में दर्ज हुआ। अटल जी के साथ उनके लंबे राजनीतिक और संगठनात्मक रिश्ते की ये एक भावुक तस्वीर बन गई। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 जवानों की मौत हुई। इसके बाद 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई कार्रवाई की घोषणा की। भारत ने बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की बात कही, जबकि करीब 300 का आंकड़ा बाद में अधिकारियों ने बताया। ...2019 में नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल पूरा हुआ। 5 वर्षों में स्वच्छ भारत, मन की बात, नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और बालाकोट जैसे कई पड़ाव उनके कार्यकाल की पहचान बन चुके थे।
2: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
0: 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहला कार्यकाल खत्म हुआ और कहानी दूसरे अध्याय में पहुंच गई।
2: अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
3: ...2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ सत्ता और सियासत तक सीमित नहीं रही। कभी माँ के साथ भावुक पल, कभी गायों के बीच सहज अंदाज, कभी समुद्र के नीचे द्वारका के दर्शन, तो कभी विदेशी मेहमानों को भारत की संस्कृति से रूबरू कराना, उनकी जिंदगी के कई अलग अलग रंग हैं। इस दौरान उन्हें देश विदेश के बड़े सम्मान भी मिले।
0: ...2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। चुनावी जीत के बाद जब वो अपनी माँ हीराबेन से मिलने पहुँचे तो माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी माँ के साथ उनका ये रिश्ता सार्वजनिक जीवन में कई बार दिखाई देता रहा। राजनीति के बड़े मंच से अलग ये तस्वीरें नरेंद्र मोदी की निजी जीवन का एक भावुक पक्ष सामने लाती रहीं।

2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी माँ हीराबेन से मिलने गुजरात पहुँचे। उन्होंने माँ के पैर धोए और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री की माँ के साथ ये निजी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। सत्ता और राजनीति से अलग ये पल एक बेटे और माँ के रिश्ते की साधारण तस्वीर जैसा था। पांच अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने संसद में अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधानों को हटाने का फैसला लिया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त हुआ। नरेंद्र मोदी लंबे समय से जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की राजनीति से जुड़े रहे थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने ये फैसला लागू किया। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए नए दौर की शुरुआत बताया। दो हजार बीस में कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का सार्वजनिक जीवन भी बदल गया। देशव्यापी लॉकडाउन, घर से काम और डिजिटल संवाद के बीच प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बैठकें की। नेताओं और अधिकारियों के साथ संवाद का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हुआ। प्रधानमंत्री का कामकाज पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल स्क्रीन के जरिए दिखाई देने लगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया।

0: इसके करीब 3.5 साल बाद 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया। अयोध्या में हुआ यह आयोजन उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में से एक रहा। भूमि पूजन से प्राण प्रतिष्ठा तक राम मंदिर का सफर मोदी के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की एक प्रमुख कहानी बन गया।
1: ये जो मन में रहता है ना,
0: परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग रूप सामने आता रहा। वो छात्रों से पढ़ाई, तनाव, परीक्षा और सपनों को लेकर सीधे संवाद करते रहे। मंच पर सवाल पूछने वाले बच्चों के साथ उनका सहज अंदाज और बातचीत का तरीका उनकी राजनीतिक भूमिका से अलग तस्वीर पेश करता है। धीरे धीरे ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के सार्वजनिक संवाद का अलग अध्याय बन गया।
2: जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें लगातार नया करते जाना।
0: 2013 की बाढ़ में केदारनाथ में भारी तबाही के बाद नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2017 में उन्होंने केदारनाथ पुनर्विकास के लिए मास्टर प्लान को आगे बढ़ाया और 20 अक्टूबर को कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 2021 में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई काम पूरे हुए और आदि शंकराचार्य समाधि का पुनर्निर्माण हुआ। 5 नवंबर को मोदी ने केदारनाथ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया था।

17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को खुद कैमरे के सामने बॉक्स खोलकर जंगल में छोड़ा। खास बात ये थी कि ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, मोदी ने खुद चीतों की तस्वीरें भी कैमरे से ली। दशकों बाद भारत की धरती पर चीते लौटे और प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी इसी ऐतिहासिक पल का गवाह बना। दिसंबर 2022 में नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 30 दिसंबर की सुबह प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे और मां को अंतिम विदाई दी। इसके कुछ ही समय बाद वो अपने तय सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मां के निधन के बाद प्रधानमंत्री ने उनके जीवन को तपस्या, कर्मयोग और मूल्यों से जोड़कर याद किया। अक्टूबर 2023 में नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा की और आदि कैलाश के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के अनुभव को खुद साझा किया। ऊंचे पहाड़ों, सीमावर्ती क्षेत्र और आध्यात्मिक स्थल की तस्वीरें सामने आई। बाद में उन्होंने कहा कि आदि कैलाश के दर्शन का अनुभव उनके लिए विशेष रहा है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र के नीचे जाकर प्राचीन द्वारका के अवशेषों से जुड़े स्थल पर पूजा की। बाद में उन्होंने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि समुद्र के भीतर द्वारका के दर्शन उनके लिए विशेष अनुभव था। प्रधानमंत्री का समुद्र में उतरकर पूजा करना और उसके बाद सामने आई तस्वीरें इस यात्रा को सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम से अलग बनाती रही।

जनवरी 2024 में नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे। अगत्ति, बंगाराम और कवरत्ती में उन्होंने समय बिताया और समुद्र किनारे सुबह की सैर भी की। उन्होंने लक्षद्वीप की तस्वीरें और अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए। प्रधानमंत्री के इस दौरे में सरकारी कार्यक्रमों के साथ समुद्र, समुद्र तट और द्वीपों की तस्वीरें भी खूब चर्चा में आई।

0: 2023 में भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और 9-10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में मेहमानों का स्वागत किया और अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति बनी। सम्मेलन के दौरान भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली घोषणा पत्र भी सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता देने पर जोर दिया।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
0: 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार भी शपथ समारोह में भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों के नेता मौजूद रहे। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और सेशल्स के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने समारोह को क्षेत्रीय कूटनीति का मंच भी बनाया। जुलाई 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में शामिल ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया। ये सम्मान 2019 में घोषित हुआ था, लेकिन 2024 में मॉस्को में औपचारिक रूप से दिया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नरेंद्र मोदी इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में जानवरों के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आती रही। कभी गायों को चारा खिलाते हुए, कभी वन्य जीवों के बीच और कभी किसी पशु को दुलारते हुए उनकी तस्वीरें चर्चा में आई। राजनीति की गंभीर तस्वीरों के बीच ऐसे छोटे और सहज पल प्रधानमंत्री की सार्वजनिक छवि का अलग पक्ष दिखाते हैं। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई बताया और कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से बातचीत में करीब 25 से 30 साल पहले मिले एक मफलर, टोपी और दास्ताने दिखाए। उन्होंने बताया कि ये सामान उन्हें न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति ने उनकी पहली यात्रा के दौरान दिए थे और इतने साल बाद भी उन्होंने इन्हें संभाल कर रखा है। प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले की ये छोटी सी याद सामने आई, जिसने उनके सार्वजनिक जीवन के एक पुराने अध्याय की झलक दिखाई।
1: पच्चीस तीस साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं।
0: २०२६ में भी नरेंद्र मोदी की विदेशी नेताओं के साथ मुलाकातों में औपचारिक बैठकों के अलावा अनौपचारिक बातचीत और व्यक्तिगत संवाद की तस्वीरें सामने आई। सितंबर 2026 में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और दूसरे नेताओं के साथ उनके अनौपचारिक क्षण कैमरे में कैद हुए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कहीं सेवा कार्यक्रम, कहीं रक्तदान शिविर और कहीं स्वच्छता अभियान चलाए। मंदिरों में पूजा और हवन भी हुए, जबकि दिन भर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां देने का सिलसिला चलता रहा। कई राज्यों में उनके जन्मदिन के मौके पर अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
1: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: सो सॉरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: देखिए ये डरे हुए लोग हैं, दिक्कत ये है ये लोग डर गए और ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने पपेट बना लिया है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की चल रही है और इसके अंदर राहुल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उससे देश के अंदर लोगों की समझ में आ रहा है। अब लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तब ये बचेगा तो सारी चीजें सुधरने का काम करेंगे।
2: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में। और अरेस्ट कुछ केसेस है इसके लिए पुलिस ने अरेस्ट किया है, अगर कुछ गंभीर कुछ नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो बेल मिल जाएगा, अगर गंभीर है तो कोर्ट नहीं बेल देगी, तो कोर्ट ही डिसाइड कर देगी क्या सच है क्या।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पेपर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।

0: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
0: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
2: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है। युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
2: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
3: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा है, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
2: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1,00,000 से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1,00,000 से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
3: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है। सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है न कुछ किताबें हैं उसके अंदर, बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
4: स्टूडेंट ईमानदार होता है, वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
4: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जेन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जेन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
5: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है। कभी बैटमैन और कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
6: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
7: मैं तो पहले बोल चुकी
8: हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट लेट आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
9: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये डूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की, जबकि 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी 1 पद भी नहीं जीत सका।
10: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
11: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
12: काफी टफ था, जो मेहनत मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी,
7: तो उस मेहनत के अंदर, वो मेहनत थी तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
12: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेंजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेंजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
13: मैं AVBP के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
14: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में ABVP का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
9: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
15: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डवास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं सब चीजों को?
12: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से डूसू से बाहर कर दिया है।
15: देखा जा रहा है राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच ABVP की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा ABVP का दिल्ली के अंदर?
12: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
15: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
12: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
15: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो ABVP के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
12: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है जहां ABVP ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने VP की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी ABVP में सेफ चल रही थी।
16: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं ABVP में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से ABVP में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने हम पे और ABVP अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज ABVP 3 सीटों पर जीती हुई है।
15: रिया, आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि एनएसयूआई ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे। अब आखिर बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
16: हमारे एबीपी लड्डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
15: रिया, देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, एनएसयूआई और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखते हैं?
16: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
15: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया या बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही इलेक्शन में।
16: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही जो हर बार जीतती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
15: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया इस बार, जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
7: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
15: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है
17: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
15: तो दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
17: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथी लेके जाऊंगा।
15: एनएसयूआई से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या एनएसयूआई से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
17: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
15: दीपांशु, एनएसयूआई में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
17: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
15: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 2 रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि एबीवीपी एनएसयूआई के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया।
9: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
4: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
18: जिंदगी एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम, कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं।
4: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए। मगर देश में उल्टा हो रहा है, पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है, 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
9: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
19: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर, सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
20: देखिए ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है, पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है, अब दो साइन बोर्ड दो साइन बोर्ड अपने आप को सही एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
1: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधानडे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजीनगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं।
0: আর সিম্বল পাচ্ছে না কর্মীদের কে যদি আমি না পাই ভোটটা করবো কেন সিম্বলটাও তো ফ্যাক্টর হ্যাঁ সিম্বল ফ্যাক্টর সিম্বল চিনাবো কি করে এখন নতুন সিম্বল
21: কোনো কি চাপ আছে বাইরে থেকে আপনার
0: না না বাইরে চাপ
21: কর্মীদের উপর কোনো চাপ
0: হ্যাঁ কর্মীদের উপর চাপ আছে আপনার আর সিদ্ধান্ত সেগুলো বলছি তো নতুন প্রতীক কর্মীদের তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি
21: সিদ্ধান্ত নিয়েছে
0: মোটামুটি তাই।
1: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें? टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
9: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पेपर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है, युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है न कुछ किताबें हैं, उसके अंदर बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जैन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जैन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी बैटमैन कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी
9: हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट नहीं आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां चार में से तीन पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं एक पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये टूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने चार में से तीन पदों पर जीत हासिल की जबकि एक पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी एक पद भी नहीं जीत सका।
10: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है उनको एक होम फील हो।
11: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
12: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
13: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेएनजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेएनजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
14: मैं एबीवीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
15: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
16: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डबास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
13: देखिए विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है। 4-0 से दूसू से बाहर कर दिया है।
16: देखा जा रहा राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
13: देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
16: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
13: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
16: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
13: देखिए विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
16: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है जहां एबीवीपी ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
10: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और एवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
16: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि NSUI ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
10: हमारे एबीपी लाइट डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊं।
16: रिया देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, NSUI और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखते हैं?
10: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
16: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया यह बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
10: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही जो हर बार जीतती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
16: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया, इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
8: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
16: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन हैं, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है।
17: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
16: तो दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए। आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
17: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी, वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथी लेके जाऊंगा।
16: एनएसवाई से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या एनएसवाई से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
17: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
16: दीपांशु, एनएसवाई में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
17: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा, क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
16: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि एबीवीपी एनएसवाई के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
18: एग्जाम में भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम? कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम है। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए। मगर देश में उल्टा हो रहा है, पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता, वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा, स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है, 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
0: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
19: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
1: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधानडे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है।

0: मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजीनगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं।
1: और सिंबल पक्ष ना कुर्मी दर के जुदा में ना पता भुट्टा कुर्बो के नहीं सिंबल तो फैक्टर हां सिंबल फैक्टर सिंबल चिनाबो की करे कोई नूतन सिंबल
2: कोनो की चापा से बाहर तक अपना
1: ना ना बाहर से कुर्मी
2: दर पर कोनो चाप
0: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़े। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर।

0: और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार पेपर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने एक गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे। और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है। युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे, जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है, न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है, न कुछ किताबें हैं उसके अंदर, बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जैन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जैन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं छात्रों के पक्ष में रखने आए और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी हूँ,
9: हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट ले आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी। जहां 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये डूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की, जबकि एक पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी एक पद भी नहीं जीत सका।
10: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
11: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना, वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
12: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी 3 जगह बटी हुई थी, 3 लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
13: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेएनजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेएनजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
14: मैं एबीवीपी के सारा कैंडिडेट जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
15: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
16: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डब्बास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं?
13: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से डूसू से बाहर कर दिया है।
16: देखा जा रहा, राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
13: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
16: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
13: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
16: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
13: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते। उन्होंने उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगे जाते हैं।
16: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है, जहां एबीवीपी ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं, जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
10: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और एवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
16: रिया, आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि एनएसयूआई ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे। अब आखिर बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
10: हमारे एबीपी लड्डूसू ने अपने पिछले 10 में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, बामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर, कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
16: रिया, देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, एनएसयूआई और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखती हैं?
10: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पे जीते हैं।
16: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया रिया बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
10: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही, जो हर बार जीतती है। पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
16: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया, इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
17: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
16: लक्ष्य, मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है
18: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
16: तो 2 रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
18: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथी लेके जाऊंगा।
16: एनएसयूआई से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या एनएसयूआई से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
18: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
16: दीपांशु, एनएसयूआई में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
18: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
16: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि एबीवीपी एनएसवाई के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
19: इंजीनियरिंग एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम, कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं।
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम है। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए। मगर देश में उल्टा हो रहा है, पहले आईआईटीज बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है, 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
0: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
20: कौन सी कौन पहुंच गया
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
20: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
1: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधानडे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजीनगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं।
21: আর সিম্বল পাচ্ছে না কর্মীদের কে যদি আমি না পাই তা ভোটটা করবো কেন সিম্বলটাও তো ফ্যাক্টর হ্যাঁ সিম্বল ফ্যাক্টর সিম্বল চিনাবো কি করে এখন নতুন সিম্বল
22: কোনো কি চাপ আছে বাইরে থেকে আপনার
21: না না বাইরে চাপ আছে
22: কর্মীদের উপর কোনো চাপ
21: হ্যাঁ কর্মীদের উপর চাপ আছে আপনার আর সিদ্ধান্ত সেগুলো বলছি তো নতুন প্রতীক কর্মীদের তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না
22: সিদ্ধান্ত নিয়েছে
21: মোটামুটি তাই।
1: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें? टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पेपर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं, और वहां से पारदर्शी और सुस्तापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है, युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे, जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है, न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है, न कुछ किताबें हैं उसके अंदर, बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है, वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जैन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जैन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी बैटमैन, कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी
7: हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट नहीं आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये डूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की जबकि 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी 1 पद भी नहीं जीत सका।
9: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है उनको एक होम फील हो।
10: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
11: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी 3 जगह बटी हुई थी, 3 लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
12: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेएनजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेएनजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
13: मैं एबीवीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस 1 सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में 1 सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
14: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था, इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
15: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डब्बास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
12: देखिए विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है 4-0 से। दूसू से बाहर कर दिया है।
15: देखा जा रहा है राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
12: देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
15: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
12: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है वो, उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
15: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
12: देखिए विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है, जहां एबीवीपी ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं, जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
9: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने हम पे और एवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
15: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि NSUI ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
9: हमारे एबीपी लेट डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊं।
15: रिया देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, NSUI और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखती हैं?
9: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
15: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया यह बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
9: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही, जो हर बार जीती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
15: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया, इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
8: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
15: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा डूसू के इतिहास इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है।
16: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
15: तो दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आप?
16: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्यनिकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं लेके जाऊंगा।
15: NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
16: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई है। अभी
15: दीपांशु NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
16: अभी हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
15: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि ABVP NSY के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
17: इंडियन एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम, कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट की सरकार का काम। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उल्टा हो रहा है। पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स से स्कॉलरशिप छीनी गई है। 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
0: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बनर्जी को झटका ही लगा।
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा।
18: नंदीग्राम कांग्रेस की सपोर्ट, कांग्रेस ने किया।

0: सियासत में जबरदस्त उबाल।
1: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
0: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधानडे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजीनगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं।
2: আর সিম্বল পাচ্ছে না কর্মীদের যদি আমি না পাই ভোটটা করবো কেন? সিম্বলটাও তো ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, সিম্বল ফ্যাক্টর, সিম্বল চিনাবো কি করে এখন নতুন সিম্বল।
3: কোনো কি চাপ আছে বাইরে থেকে আপনার?
2: না না, বাইরের চাপ আছে।
3: কর্মীদের উপর কোনো চাপ?
2: হ্যাঁ, কর্মীদের উপর চাপ আছে আপনার। আর সিদ্ধান্ত সেগুলো বলছি তো, নতুন প্রতীক কর্মীদের, তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল, এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না।
3: সিদ্ধান্ত নিয়েছেন
2: মোটামুটি তাই।
0: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें? टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
4: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा। एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत। गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल।

इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला।

0: सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज, मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पे पर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं, और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं, और अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है, युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है, न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है, न कुछ किताबें हैं उसके अंदर, बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जैन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जैन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं छात्रों के पक्ष में रखने आए और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी
9: हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट लेट आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां चार में से तीन पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं एक पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये टूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने चार में से तीन पदों पर जीत हासिल की, जबकि एक पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी एक पद भी नहीं जीत सका।
8: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा, और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो, और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
10: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना, वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
11: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी, तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
12: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेएनजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेएनजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
13: मैं एबीवीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं, और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
14: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: टूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई, और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि टूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
15: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डबास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
12: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से डूसू से बाहर कर दिया है।
15: देखा जा रहा है राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
12: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
15: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
12: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
15: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
12: देखिए विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो वहां यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है जहां एबीवीपी ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
8: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और एवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
15: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि एनएसयूआई ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो।
8: हमारे एबीपी लड्डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामे का वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
15: रिया देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, एनएसयूआई और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखती हैं?
8: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
15: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया या बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
8: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही जो हर बार जीती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
15: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
16: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
15: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है
17: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
15: तो 2 रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
17: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्यनिकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथ लेके जाऊंगा।
15: NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
17: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
15: दीपांशु, NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
17: अभी हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
15: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि ABVP NSY के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
18: जिंदगी एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम? कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट की सरकार का काम। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उल्टा हो रहा है। पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा का पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। 2-3 आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है, 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
0: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
19: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
1: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजी नगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे
20: हैं।
1: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पेपर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है, युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है न कुछ किताबें हैं, उसके अंदर बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जैन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जैन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जहाँ कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी बैटमैन कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं, छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी हूँ,
7: हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट नहीं आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये टूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की जबकि 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी 1 पद भी नहीं जीत सका।
9: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
10: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
11: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी 3 जगह बटी हुई थी, 3 लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
12: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेएनजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेएनजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
13: मैं एबीवीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस 1 सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में 1 सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
14: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
15: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डबास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
11: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से डूसू से बाहर कर दिया है।
15: देखा जा रहा है राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
12: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
15: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
12: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
15: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
12: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है, जहां एबीवीपी ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं, जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
9: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और एबीवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एबीवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
15: रिया, आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि NSUI ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
9: हमारे एबीपी लड्डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊं।
15: रिया, देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, NSUI और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखती हैं?
9: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
15: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया या बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
9: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही, जो हर बार जीतती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
15: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया, इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
16: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
15: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन हैं, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है।
17: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
15: दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए। आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
17: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी, वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथी लेके जाऊंगा।
15: एनएसवाई से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या एनएसवाई से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
17: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
15: दीपांशु, एनएसवाई में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
17: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा, क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
15: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि एबीवीपी एनएसवाई के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
18: इंजीनियरिंग एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम? कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम है। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उल्टा हो रहा है। पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है। 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता, वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा, स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है। 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
0: अब आज पश्चिम बंगाल के जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है, नंदीग्राम

0: गांव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
2: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
1: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजी नगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं।
3: और सिंबल पक्ष ना कुर्मी दर के जुदे में ना पड़ता भुट्टा कुर्बो के नहीं सिंबल तो फैक्टर हाँ सिंबल फैक्टर सिंबल चिन्ह बुकी के रेखों नोटों सिंबल
4: कोनो की चापास से बाहर तक अपना
3: ना ना बाहर से अपना
4: कुर्मी दर ऊपर कोनो चाप
3: हाँ कुर्मी दर ऊपर चाप है अपना और सिद्धांत तो शेगला बोल चुका नोटों पोते कुर्मी दर के भालो जगह चले एक उन कुर्मी दर के आठ कोनो जगह नहीं आते पाते
4: सिद्धांत ने जब कुत्ता करा
3: मोटा मोटी ताई।
1: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें? टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा। आज तक
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पेपर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है, युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है न कुछ किताबें हैं उसके अंदर, बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जैन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जैन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी बैटमैन कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी
7: हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान है। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट नहीं आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां चार में से तीन पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं एक पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये डूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने चार में से तीन पदों पर जीत हासिल की जबकि एक पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी एक पद भी नहीं जीत सका।
9: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है उनको एक होम फील हो।
10: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
11: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटर से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
12: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेएनजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेएनजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
13: मैं एबीवीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
14: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
15: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डबास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं?
11: देखिए विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है। 4-0 से
12: दूसू से बाहर कर दिया है।
15: देखा जा रहा राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
12: देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
15: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
12: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
15: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
12: देखिए विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है जहां एबीवीपी ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
9: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और एबीवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एबीवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
15: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि NSUI ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
9: हमारे एबीपी लेट डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
15: रिया देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, NSUI और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखते हैं?
9: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पे जीते हैं।
15: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया रिया बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
9: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही जो हर बार जीतती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
15: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया, इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
8: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
15: लक्ष्य मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है
16: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसु के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसु के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
15: तो दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
16: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथी लेके जाऊंगा।
15: NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
16: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
15: दीपांशु, NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
16: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
15: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि ABVP NSY के जो कैंडिडेट्स थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
17: एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम, कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम है। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उल्टा हो रहा है। पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे अगर वो बजट मेंटेन किया जाता वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा, स्कॉलरशिप्स पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है। 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
0: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा।
18: नंदीग्राम कांग्रेस
1: लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दाम भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ कि ममता बनर्जी का ये दाम भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
19: देखिए, ममता बनर्जी पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
1: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजीनगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे
20: हैं।
1: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पेपर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये 3 तस्वीरें बता रही है कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं, और वहां से पारदर्शी और सुचतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है, युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है न कुछ किताबें हैं, उसके अंदर बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अंधभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जैन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जैन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी बैटमैन कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी हूँ,
7: हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट लेट आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां चार में से तीन पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं एक पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये टूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने चार में से तीन पदों पर जीत हासिल की जबकि एक पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी एक पद भी नहीं जीत सका।
9: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा। मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
10: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना, वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
11: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटों से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
12: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेंजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेंजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
13: मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
14: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
15: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डब्बास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं?
12: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है। 4-0 से दूसू से बाहर कर दिया है।
15: देखा जा रहा है राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
12: देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
15: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
12: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
15: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
12: देखिए विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है, जहां एबीवीपी ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं, जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
9: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और एवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
15: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं के मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि NSUI ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्रीपैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
9: हमारे एबीपी लेट डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊं।
15: रिया देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, NSUI और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखते हैं?
9: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
15: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
9: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही, जो हर बार जीती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
15: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
16: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
15: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन हैं, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है।
17: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
15: दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए। आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
17: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी, वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथी लेके जाऊंगा।
15: NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
17: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई। अभी
15: दीपांशु, NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
17: अभी हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा, क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
15: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि ABVP NSY के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
18: किसी भी एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम? कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट की सरकार का काम। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए। मगर देश में उल्टा हो रहा है, पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता, वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले

0: स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
1: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
2: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
3: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
2: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजी नगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे
4: हैं।
2: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
1: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पे पर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं, और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है, युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में ना किताब है ना खिड़कियां हैं, ना कोई बेंच है ना कुछ किताबें हैं उसके अंदर, बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जैन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जैन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैठाया जा सकता जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी
7: हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान है। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट नहीं आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां 4 में से 3 पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये डूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की जबकि 1 पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी 1 पद भी नहीं जीत सका।
9: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा और मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
10: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना है, वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
11: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी 3 जगह बटी हुई थी, 3 लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटर से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
12: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेएनजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेएनजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
13: मैं एबीवीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो 0 हो गया। कांग्रेस 1 सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में 1 सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
14: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
15: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डबास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
12: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है। 4-0 से डूसू से बाहर कर दिया है।
15: देखा जा रहा राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
12: देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
15: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
12: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
15: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
12: देखिए विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं, और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है, जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है, जहां एबीवीपी ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं, जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है, और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
9: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और एवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
15: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि NSUI ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
9: हमारे एबीपी डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
15: रिया देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, NSUI और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखती हैं?
9: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
15: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया ये बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
9: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही, जो हर बार जीती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
15: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया, इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
8: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
15: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है
16: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
15: दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
16: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथ लेके जाऊंगा।
15: NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
16: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
15: दीपांशु, NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
16: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
15: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि ABVP NSY के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
17: किसी भी एग्जाम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम? कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है, शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उल्टा हो रहा है। पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा का पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा, स्कॉलरशिप्स। पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स से स्कॉलरशिप छीनी गई है। 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती है। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
0: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
18: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
1: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजीनगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे
19: हैं।
1: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें? टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोला।

0: जिसे ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज, मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पेपर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग तब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं, और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है, कल भी है, 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1,00,000 से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है। युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा है, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जेन जी है, मुद्दा जेन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर यह नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है न कुछ किताबें हैं, उसके अंदर बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अंधभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जेन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जेन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जब कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं छात्रों के पक्ष में रखने आए और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी
9: हूँ, हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट नहीं आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से एबीवीपी ने बाजी मारी, जहां चार में से तीन पदों पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो वहीं एक पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया।
1: ये टूसू के नतीजों के बाद जश्न की तस्वीरें, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का डंका बजा। एबीवीपी ने चार में से तीन पदों पर जीत हासिल की, जबकि एक पद निर्दलीय उम्मीदवार को मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी एक पद भी नहीं जीत सका।
8: एज अ गर्ल कैंडिडेट मेरा मेन मोटिव वुमेन सेफ्टी का ही रहेगा। मैं ये इंश्योर करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक लड़की को, हर एक स्टूडेंट को सेफ सिक्योर फील हो, और जो दूर से लड़कियां पढ़ने आती है, जो दूर से हमारी बहनें पढ़ने आती है, उनको एक होम फील हो।
10: आज सभी सालों की मेहनत सफल हुई है, हमारी सारे भाइयों की मेहनत सफल हुई है। छात्रों के लिए काम करना और उनके लिए जो भी प्रोवाइड हो वो करना, वो यश का काम है, उसको संपन्न करना वो हमारा काम है।
1: एबीवीपी के यश डब्बास अध्यक्ष बने, वहीं रिया छावड़ी को सचिव और लक्ष्य राज सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत मिली। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीता।
11: काफी टफ था, जो मेहनत मतलब मैंने करी वैसी मेहनत उनकी भी थी, तो उस मेहनत के अंदर वो मेहनत थी, तीन जगह बटी हुई थी, तीन लोग उसी एक ही पोस्ट के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे और तीनों काफी साल से मेहनत कर रहे थे, बट अंतिम शायद मुझे लगा मेरी ज्यादा मेहनत थी तो मैं ज्यादा अच्छे वोटर से जीता हूँ।
1: सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष पद जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन NSUI से जुड़े थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बागियों का आरोप था कि बड़े नेताओं के बच्चों और सिफारिश के आधार पर NSUI ने टिकट दिए, जिसका नतीजा अब सबके सामने है।
12: हमारे लिए हर एक वर्ग एक समान है। हमारे विद्यार्थी परिषद में हमें सिखाया जाता है कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम क्षेत्रवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे।
1: डूसू के नतीजे उस वक्त आए हैं जब जेंजी आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट करके साफ किया कि जेंजी सरकार के साथ है। वहीं राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए।
13: मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं, और पूरा छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो झूठ का गूंज है उसका पर्दाफाश कर दिया है। पर्दाफाश होने के बाद अब कांग्रेस कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो जीरो हो गया। कांग्रेस एक सीट नहीं जीत पाए, आप सोच के देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का चुनाव में एक सीट कांग्रेस को मिला नहीं है।
14: भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिषद परिवार को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अपना एक स्पष्ट जनादेश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनावों में दिया है।
1: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को 52 कॉलेजों में मतदान हुआ था। इसमें 40.46% वोटिंग हुई, और अब नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि डूसू में एबीवीपी का जलवा कायम है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
15: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डबास, प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए हैं। तो यश, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
12: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से डूसू से बाहर कर दिया है।
15: देखा जा रहा है राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच एबीवीपी की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा एबीवीपी का दिल्ली के अंदर?
12: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
15: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो भी इंदौर में चल रही है?
12: वो आप सब देख चुके हैं कैसे, जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
15: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो एबीवीपी के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
12: देखिए विनोद जाखड़ जी यहाँ अंदर थे नहीं और जो भी एनएसयूआई के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे वो भी रोका टोकी करते, उन्होंने किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
15: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है जहां एबीवीपी ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने वीपी की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी एबीवीपी में सेफ चल रही थी।
8: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं एबीवीपी में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से एबीवीपी में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और एवीपी अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज एवीपी 3 सीटों पर जीती हुई है।
15: रिया आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं को मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि एनएसयूआई ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, एबीवीपी ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आगे बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो।
8: हमारे एबीपी लड्डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
15: रिया देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, एनएसयूआई और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखती हैं?
8: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
15: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
8: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही जो हर बार जीती है, पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
15: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए देखा गया, इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
16: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपथी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपथी उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
15: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है
17: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
15: तो दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
17: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्यनिकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। जो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है। मैं साथी लेके जाऊंगा।
15: NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
17: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
15: दीपांशु, NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
17: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
15: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि ABVP NSY के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
18: चिंतित एग्जाम में भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम? कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है। शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम है। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए। मगर देश में उल्टा हो रहा है, पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। 2-3 आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था, उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6%

0: वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है। 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
1: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
2: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दाम भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी विलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
3: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
2: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजीनगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं।
4: और सिंबल पक्ष ना कुर्मी दर के जुदे में ना पैटा फुटा कुर्बो के नहीं सिंबल तो फैक्टर हाँ सिंबल फैक्टर सिंबल चिन्ह बुकी की रेखों नोटों सिंबल
5: कोनो की चापास से भरे थे का अपना
4: ना ना भरे चापे
5: कुर्मी दर पर कोनो चाप
4: हाँ कुर्मी दर को चाप आते अपना अरे सिद्धांत तो शेगला बोल चुका नोटों पोते कुर्मी दर तो हूँ कुर्मी दर के भालो जगह चले एक उन कुर्मी दर के आठ कोनो जगह नियास के पास
5: सिद्धांत ने जब पुत्र करा
4: मोटा मोटी ताई
2: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें? टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा आज तक।
1: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
1: कुछ left और right wing के लोग history को अलग अलग interpret करते हैं सर, उससे सर social harmony और peace में कुछ दिक्कतें आती हैं देश में।
0: देखो दुनिया में एक subject है इतिहास जिसको किसी भी तरह से पेश किया जा सकता है, जैसे औरंगजेब, वो बेचारा कबर में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर, सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।

0: इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पेपर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये 3 तस्वीरें बता रही है कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।
2: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे, लहरों पर विजय लिखे, वो हौसला हमारा हो। आज भारत का युवा इसी हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नए चुने कर्मचारियों को वर्चुअली संबोधित किया। नवनियुक्त कर्मचारी भारत सरकार के राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभागों में शामिल हुए। सरकार के अनुसार 20वें रोजगार मेले के साथ ही अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। पीएम मोदी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया।
2: भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले।
1: उधर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, तो वहीं यूपी में 6 महीने के अंदर 1,00,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया।
3: भर्ती बोर्ड और आयोग जब शासन की किसी राजनीति का शिकार नहीं होते हैं और वहां से पारदर्शी और स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया परीक्षाओं की संपन्न होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहां पे जो अब मेरे सहयोगी गण बोल रहे थे कि अब तक 9.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने ये नियुक्ति की पत्र वितरित किए हैं, आज भी है कल भी है। 2017 के पहले जिन्होंने इन्हीं नियुक्ति पत्र वितरण में गदर मचाई थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं नोट कर लें, आज से फिर हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख से अधिक युवाओं को हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं।
1: रोजगार पर रण जारी है, युवाओं को लेकर इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। विपक्ष सरकार के वर्तमान पर सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष के कार्यकाल की याद दिला रही है।
3: काम 17 के पहले भी हो सकता था, राज्य तो वही है, जनसंख्या भी वही है, चुनौतियां भी वही हैं। उन्होंने चुनौती को समस्या माना और मुंह मोड़ करके केवल और केवल अपने परिवार और सिंडिकेट से बेमानी और भ्रष्टाचार करवाते रहे। हमने चुनौती को समस्या नहीं, चुनौती को समाधान तक पहुंचाया है और परिणाम है आज यूपी की पर कैपिटा इनकम को 9 वर्ष में 3 गुना करने में।
4: और आज तो इतना बड़ा विज्ञापन देखा, अगर सब हिसाब किताब लगा दें तो करोड़ों नौकरियां तो पहले ही मिल गई हैं। आज कोई बेरोजगारी नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, अगर वो जो नौकरियां बताई गई हैं अगर हम उनको गिन लें और जोड़ लें तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में तो कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।
1: मुद्दा जैन जी है, मुद्दा जैन अल्फा है। जहां सरकार अपने कामों पर पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है।
3: जो लोग कर नहीं पाए आज वे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इसीलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि वे गिनते जाइए, 1 लाख से कम युवाओं को नौकरी, उससे कम पे नहीं उससे ज्यादा पे ही चर्चा करेंगे। 1 लाख से अधिक नौजवानों को अगले 6 महीने के अंदर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे।
4: कुछ दिन पहले कॉकरोच पार्टी के सदस्य नोएडा गए थे जो दिल्ली से लगा हुआ है, सबसे ज्यादा चमक धमक नोएडा में ही है। वहां की लाइब्रेरी में न किताब है न खिड़कियां हैं, न कोई बेंच है न कुछ किताबें हैं, उसके अंदर बस लाइब्रेरी है। पूरे प्रदेश में कहीं लाइब्रेरी नहीं होगी, लाइब्रेरी तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें नहीं होंगी। आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हो?
1: उधर इंदौर में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सरकार पर हमलों की नई किश्त जारी की।
5: स्टूडेंट ईमानदार होता है वहां अनभक्त डिसऑनेस्ट होता है, झूठा होता है। सिस्टम नहीं चाहता कि स्टूडेंट सवाल पूछे, इसीलिए सिस्टम अनभक्त को तैयार करता है, अंधभक्त को प्रमोट करता है, अंधभक्त को पूरे देश में फैलाता है।
1: राहुल गांधी ने छात्रों से बात की, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा की और सरकार पर जमकर निशाना साधा।
5: पूरा पैसा जो कमाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाया जाता है, आपके स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट से, वो सारा का सारा घुमाकर बीजेपी को दिया जाता है नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। उस लेयर के नीचे अलग अलग लोग हैं, हर संस्था को कैप्चर कर रखा है।
1: अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जैन जी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसका वोट प्रतिशत 20 से भी ज्यादा है। ऐसे में जैन जी आंदोलन के बाद ये हर पार्टी के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है, जहां तय होगा कि आखिर देश का युवा किसके साथ है।
6: इंडिया का नया चैप्टर यहाँ पे ये कहा जा रहा है और इंदौर का हुंकारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये वो वक्त है जहाँ कांग्रेस को लगता है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों को सुन रही है, कभी बैटमैन और कभी बैटमैन कभी गार्डियन के तौर पर राहुल गांधी को जताया और बताया जा सकता जाता है।
7: हम लोग आज यहाँ छात्रों की गुंज में इकट्ठे हुए हैं और अब बहुत ज्यादा क्रेज है हमें राहुल गांधी जी से मिलने का, उन्हें देखने का और उनसे संवाद करने का। वो जो यहाँ बात रखने आए हैं, छात्रों के पक्ष में रखने आए हैं और हम उनका हर समय सपोर्ट करेंगे।
8: मैं तो पहले बोल चुकी हूँ,
7: हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारी समय की बर्बादी होती है और सालों साल मेहनत करते रिजल्ट नहीं आता है, इन सब से बहुत परेशान हो गए और हमें इसका हल चाहिए।
1: क्योंकि ये युवा सिर्फ इसी चुनाव में नहीं बल्कि अगले कई सालों तक देश की सियासत की दिशा तय करेगा। ऐसे में हर पार्टी इन युवाओं को अपनी ओर खींचने में पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद से जीते हुए सभी उम्मीदवारों से आज तक संवाददाता ने बातचीत की, अब आपको सुनाते हैं।
9: मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ 2026 के विजेता हैं यश डवास। प्रेसिडेंट की पोजीशन वो जीत गए, तो यश पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक कर दिया NSUI ने, विनिंग मार्जिन बहुत कम हो गया, कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
10: देखिए, विनिंग मार्जिन हो सकता है पहले के मुकाबले कम हुआ हो, लेकिन NSUI को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अब की बार क्लीन स्वीप कर दिया है, 4-0 से डूसू से बाहर कर दिया है।
9: देखा जा रहा है राहुल गांधी की एक तरफ इंदौर में छात्रों की गूंज चल रही है, कांग्रेस पार्टी का जो सारा कैंपेन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है जेंजी फोकस था, उस बीच ABVP की जीत यहां भी और पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखा गया यूनिवर्सिटी में और भी अन्य क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियों में, तो आगे का क्या रोड मैप रहेगा ABVP का दिल्ली के अंदर?
10: देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे पूरे साल काम करती आती है वैसे ही पूरे साल काम करती रहेगी। हम हर एक दिन छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे, हर एक छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, हर एक जगह छात्रों की आवाज बनकर जाते रहेंगे।
9: तो कांग्रेस की जो मुहिम है छात्रों की गूंज, उसको आप कैसे देखते हैं जो अभी इंदौर में चल रही है?
10: वो आप सब देख चुके हैं कैसे जो आज हमारा रिजल्ट आया है और NSUI को 4-0 से हराया है, तो ये राहुल गांधी जी या फिर विनोद जाखड़ जी या फिर कांग्रेस जो छात्रों को गुमराह करने की कोशिश करता है, वो उनको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्मार्ट है, जेंजी स्मार्ट है, वो आपके इन फॉल्स नैरेटिव में नहीं आने वाले हैं।
9: विनोद जाखड़ ने एक आरोप ये भी लगाया कि चुनाव के जब अंत में नतीजे आने फाइनल शुरू हो गए, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो ABVP के साथ मिल चुका है, कहीं ना कहीं रिगिंग के उन्होंने बड़े आरोप लगाए।
10: देखिए, विनोद जाखड़ जी यहां अंदर थे नहीं और जो भी NSUI के कैंडिडेट अंदर थे वो आराम से उठ के गए, अगर ऐसा कुछ होता तो यहां पे वो भी रोका टोकी करते, किसी ने रोका टोकी नहीं की। खैर, उनकी आदत है जब वो हारते हैं वो कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगी जाते हैं।
9: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों का नतीजा आ गया है जहां ABVP ने 3 पैनल की पोजीशन जीती है और वहीं एक इंडिपेंडेंट ने VP की पोजीशन जीती है। इसी बीच मेरे साथ रिया छावड़ी हैं जो अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सेक्रेटरी बन चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो रिया, इतनी छोटी आपकी उम्र है और ये पद आपको मिला है और सुबह से देखा जा रहा था आपकी सीट ही पूरी ABVP में सेफ चल रही थी।
11: हाँ जी, और इसके लिए हमने बहुत मेहनत भी करी है। मैं ABVP में पिछले 4 साल से हूँ, मैं 2023 से ABVP में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए वर्क करती हूँ, स्टूडेंट्स राइट्स के लिए वर्क करती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको पता है मेरे बारे में, वो जानते हैं मेरा वर्क, तो उन्होंने अब हम पे और ABVP अपना विश्वास दिखाया, इसलिए आज ABVP 3 सीटों पर जीती हुई है।
9: रिया, आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं के मुद्दे को लेकर देखा जाता है कि NSUI ने भी मैनिफेस्टो में कई चीजों को जगह दी थी, ABVP ने भी कई चीजों को जगह दी थी, तो पहले तो देखा गया सेंट्री पैड और जो डार्क जोन्स हैं उन पर काम करने को लेकर दोनों दल बात कर रहे थे, अब आखिर बतौर महिला आप कौन से ऐसे जो काम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में करेंगी जिससे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पढ़ाई की बेहतरी हो?
11: हमारे ABVP लेट डूसू ने अपने पिछले टेन्योर में भी 1000+ कैमराज लगवाए थे, पिंक बूथ लगवाए थे, वामिका वैन चलवाई थी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर इन चीजों में कहीं भी कमी है तो हम वो पूरी करें पहले तो, और फिर हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की को सेफ फील हो, सिक्योर फील हो, होम फील हो, हमारे यही सबसे बड़ा वो रहेगा मोटिव मेरा खासकर कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर एक लड़की की सेफ्टी एश्योर कर पाऊँ।
9: रिया, देखा गया कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज चल रही है, NSUI और कांग्रेस का दावा था कि जेंजी उनके साथ हैं, पर चुनाव के जो नतीजे आए उनके विरोध में आए हैं कहीं ना कहीं, तो नेशनल पॉलिटिक्स में आप जेंजी का जो रोल है कैसे देखती हैं?
11: ये तो उनको भी क्लियर हो चुका है और पूरे देश को क्लियर हो चुका है कि जेंजी हमारे साथ है, जेंजी उनके साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए बात करते हो, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा और रील बाजों के साथ हो, तो जेंजी हमारे साथ है और हम इसी का ही प्रूफ है कि हम 3 सीटों पर जीते हैं।
9: पर विनिंग मार्जिन इस बार देखा गया रिया बहुत कम रह गया, साथ ही देखा गया सामने से बहुत टक्कर रही।
11: वो तो हर एक कैंडिडेट की अपनी अपनी मेहनत है और पर एंड में तो जीती एबीवीपी ही जो हर बार जीती है। पिछली बार भी हम 3 सीटों पे जीते थे, इस बार भी हम 3 सीटों पे जीते हैं, तो यही बताता है कि विश्वास जो ट्रस्ट है वो स्टूडेंट्स का एबीवीपी ने बनाया हुआ है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो ट्रस्ट बना रहे। और
9: बहुत टफ कंपटीशन था आपके लिए, देखा गया इस बार जो एबीवीपी का पैनल 3 पोजीशन तो जीत गया, पर जो पिछली बार से इस बार के मार्जिन थे बहुत ज्यादा कम हो गए, कैसे देखते हैं एबीवीपी की परफॉर्मेंस?
12: देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो विद्यार्थी परिषद ने काफी समय से इसके अंदर हमारा पूरा पैनल था कि माहौल था कि 4-0 से हम जीतने वाले, बट कहीं ना कहीं एक सीट हम हार गए और उसका एक कारण है सामने कैंडिडेट सिंपति की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से सिंपति उनको ज्यादा मिली, बट बाकी 3 सीटों के ऊपर सारे विद्यार्थियों ने हम पे भरोसा जताया। और सबसे बड़ी बात, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, 12 साल बाद राजस्थान के व्यक्ति को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी, तो मैं आपके माध्यम से सभी राजस्थान के भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद का विश्वास नहीं टूटने दिया और ये जरूर दिखाया कि वास्तविकता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजस्थान के प्रवासी छात्र उन्हीं के साथ हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहेंगे।
9: मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के विजेता दीपांशु शौकीन है, जो जीत के ऐसे शौकीन निकले कि उन्होंने ऐसा मार्जिन दे दिया और बतौर इंडिपेंडेंट और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, डूसू के इतिहास में पहली बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आया है
13: और सबसे ज्यादा वोट भी मेरी आज तक के डूसू के इतिहास में 30,610 वोट मुझे मिले हैं, जो आज तक शायद डूसू के इतिहास में हमने नहीं देखा किसी की आई हूँ किसी भी पोस्ट पर।
9: तो दो रिकॉर्ड आपने दीपांशु भाई तोड़ दिए, पहले आप वजह बताइए, आपने जूते छोड़ रखे थे सारे चुनाव प्रचार में, मैं कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पर रील्स देख रहा था, कहाँ है जूते आपके?
13: ये जूते सिर्फ उतरना नहीं, ये न्याय सत्याग्रह की शुरुआत मेरी सत्या निकेतन से हुई थी कि जब तक उन छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता जिनकी हत्या उस हादसे में हुई, तो मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। तो 1.5 लाख छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, तो नंगे पैर चलकर जो परेशानियां मुझे होती थी, वो एहसास दिलाती थी कि मुझे उन 1.5 लाख छात्रों की आवाज बनना है, तो उनकी परेशानियों के लिए मुझे कुछ करना है।
9: मैं साथी लेके जाऊंगा। NSY से देखा गया कि आप बागी होकर लड़ते हैं, क्या NSY से कोई कांग्रेस से कोई फोन आया कि घर वापसी की?
13: नहीं, मेरी कोई अभी बात नहीं हुई अभी।
9: दीपांशु, NSY में अगर फोन आए वो बोले जाना चाहेंगे वापस, घर वापसी करना चाहेंगे?
13: हम देखते हैं, ये फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर होगा क्योंकि उन छात्रों की वजह से ही हमारी ये जीत हुई।
9: तो ये दीपांशु शौकीन थे मेरे साथ, मैन ऑफ द मैच मैं इनको बोलूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा गया है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने दो रिकॉर्ड तोड़े, एक तो विनिंग मार्जिन का और साथ पहली बार देखा गया कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पैनल में जीत कर आया। पहले देखा जाता कि एबीवीपी NSY के जो कैंडिडेट थे वो जीतते थे, पर पहली बार हुआ है कि छात्रों ने एक मत होकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने बहुमत देकर जिताया है।
0: इंदौर में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर सिस्टम पर प्रहार किया। क्या कहा राहुल गांधी ने आपको सुनाते हैं।
5: आज हम देखें और स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट्स खुश नहीं है, स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स को फ्यूचर नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट्स प्रेशर में है। आइए स्टूडेंट्स की आवाज सुने, आप सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हो सुनते हैं।
14: किसी भी एग्जाम में भरोसा कैसे किया जा सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है एग्जाम? कैसे कहेंगे कि कोई एग्जाम सही में सिलेक्शन सही से हुआ है या नहीं?
5: स्टूडेंट देश का फाउंडेशन होता है, स्टूडेंट देश को बनाता है और उसका नेक्स्ट स्टेप शिक्षा देश की नींव है। और जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है, शिक्षा कोई फेवर नहीं है, शिक्षा हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट का हक है, शुरुआत से अंत तक, किंडरगार्टन से स्कूल, मिड डे मील, स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से रोजगार, ये कड़ी पूरी का पूरा करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है, बिजनेसेस का काम नहीं है, हिंदुस्तान और स्टेट्स की सरकार का काम है। मतलब किसी भी देश का शिक्षा का जो सिस्टम होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए, मगर देश में उल्टा हो रहा है। पहले IITs बनी, स्कूल्स बने, नवोदय विद्यालय बने, अब पूरा का पूरा रिवाइंड किया जा रहा है। दो तीन आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आंकड़ों के बल पर बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं प्रूफ देकर आंकड़े देकर हम बोलते हैं। तो देखिए, शिक्षा कैसे बर्बाद हो रही है, ये इस साइड देखिए, ग्राफ देखिए, ये है हिंदुस्तान की शिक्षा का बजट। पहले 2014 में जब हमारी सरकार थी, बजट का 4.6% शिक्षा में जाता था। उसके बाद बजट कम करते करते करते करते 2.6% ऑफ बजट एजुकेशन में जाता है, 7.7 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा में जाने थे, अगर वो बजट मेंटेन किया जाता, वो शिक्षा में नहीं गए, वो अरबपतियों के हाथ गए, वो अदानी अंबानी के हाथ गए। दूसरा आंकड़ा स्कॉलरशिप्स, पिछले 10 साल में 1.5 करोड़ स्टूडेंट से स्कॉलरशिप छीनी गई है, 1.5 करोड़ कम स्कॉलरशिप्स हिंदुस्तान और बाकी सरकारें देती हैं। और टीचर्स की बात करें तो 10 लाख रोजगार की बात होती है, मगर आज हिंदुस्तान में 10 लाख टीचर के पोस्ट वेकेंट पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, यूनियन बजट में कम पैसा, टीचर भर्ती कम।
0: अब बात पश्चिम बंगाल के, जहां पर उपचुनाव में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। नंदीग्राम में जहां ममता बैनर्जी के प्रत्याशी नाम वापस ले लेते हैं तो कांग्रेस प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं रेसी नगर सीट पर भी ममता बैनर्जी को झटका ही लगा।
1: टीएमसी में टूट के बाद साख की जंग बनी नंदीग्राम सीट पर। सियासी घटनाक्रम इतना तेजी से बदला कि ममता बनर्जी को सामने आकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान करना पड़ा, इंडिया गठबंधन की एकता का दम भरना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी का ये दांव भी ज्यादा वक्त तक चल नहीं सका। ममता के समर्थन के ऐलान के कुछ ही देर बाद बंगाल पुलिस ने कई पुराने मामलों को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत में जबरदस्त उबाल।
15: देखिए, ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करेगी तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ममता बनर्जी की कैंडिडेट खुद नहीं रही, पार्टी साइन बोर्ड बन चुकी है। पहले कांग्रेस को साइन बोर्ड कहती थी, अभी उसी साइन बोर्ड को जाके वो साइन दूसरा वाला साइन बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। अब दो साइन बोर्ड अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके कितना दूर तक जा पाएंगे तो भगवान ही बता पाएगा आगे आने वाले समय में।
1: दरअसल 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में ममता बनर्जी गुट की ओर से नंदीग्राम सीट से संचिता प्रधान डे को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को संचिता प्रधान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिली और इस मुलाकात के बाद अचानक ही संचिता ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन की तारीख 16 सितंबर को ही खत्म हो गई थी। ऐसे में ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन इसके ठीक बाद कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी से मामले ने और तूल पकड़ लिया। नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है, लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं, इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनावी मुकाबला ही खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी, हम लड़ेंगे भी जीतेंगे भी। इस बीच नंदीग्राम के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, साथ ही इसे लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर करेगी। उधर रेजीनगर सीट उपचुनाव में ट्विस्ट देखने को मिला। यहां से ममता गुट के प्रत्याशी रबीउल आलम चौधरी ने आज सुबह चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, जहां उन्होंने चुनाव चिन्ह न मिलने को इसकी वजह बताया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं।
16: আর সিম্বল পাচ্ছে না কর্মীদের কে যদি আমি না পাইটা ভোটটা করবো কেন সিম্বলটাও তো ফ্যাক্টর হ্যাঁ সিম্বল ফ্যাক্টর সিম্বল চিনাবো কি করে এখন নতুন সিম্বল
17: কোনো কি চাপ আছে বাইরে থেকে আপনার
16: না না বাইরে চাপ আছে
17: কর্মীদের উপর কোনো চাপ
16: হ্যাঁ কর্মীদের উপর চাপ আছে আপনার আর সিদ্ধান্ত সেগুলো বলছি তো নতুন প্রতীক কর্মীদের তখন কর্মীদেরকে ভালো জায়গায় ছিল এখন কর্মীদেরকে আর কোনো জায়গায় নিয়ে আসতে পারছি না
17: সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোথা করে
16: মোটামুটি তাই
1: ममता गुट की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ें। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया गया है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्रा। आज तक
0: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: इंदौर में छात्रों के गूंज में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा सिस्टम को स्टूडेंट नहीं अंधभक्त चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के मंच पर पीएम मोदी की मिमिक्री को लेकर बीजेपी आग बबूला। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा, एनएसयूआई का नहीं खुला खाता। बंगाल में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत, गिरफ्तारी पर राहुल खड़गे ममता का हल्ला बोल। दिल्ली में पूरे केजरीवाल परिवार को नोटिस। एसआईआर के दौरान रिकॉर्ड पिछली सूची से ट्रैक नहीं होने पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। आईआईटी बॉम्बे में छात्र की खुदकुशी मामले में एफआईआर दर्ज। मुंबई क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर, पीड़ित मां बोली बेटे को किया गया प्रताड़ित। देश की मौजूदा सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा जेंजी की है, जिसने सियासत की पटकथा को नए सिरे से गढ़ने के लिए पार्टियों को मजबूर कर दिया। धर्म, जाति और महिलाओं के मुद्दों के अलावा अब हर पार्टी की नजर जेंजी वोट बैंक पर है, और जेंजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार, पे पर लीक जैसी समस्या की है।
1: एक ही दिन में आई ये तीन तस्वीरें बता रही है कि जेंजी ही अब देश की सियासत तय करने वाला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ भी नियुक्ति पत्र के साथ छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर पहुंचे। उधर राहुल गांधी ने गूंज कार्यक्रम में रोजगार और पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर छात्रों से चर्चा की। जिस मुद्दे पर देश का युवा सड़कों पर उतरा है, आज उसी वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर पार्टी जानती है कि युवा देश की सत्ता की तकदीर लिखते हैं। भले ही मौजूदा वक्त में युवा जेंजी हो, लेकिन धर्म, जाति, जेंडर की सियासत के बीच अब हर पार्टी को समझ में आ रहा है कि यही उनका भविष्य तय करेंगे, और इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है।